0: पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। विधि विधान से बहनें भाई की कलाई पर बांध रही हैं रक्षा सूत्र। सुख समृद्धि के साथ भाई की लंबी उम्र की कामना। मध्य प्रदेश के नीमच में कलाकार ने बनाई गई अनोखी राखी। 13 रुद्राक्षों पर उकेरी 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें, लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। सावन के अंतिम दिन आज समाप्त हो रही है अमरनाथ यात्रा। छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ संपन्न होगी। इस साल लगभग 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन।

0: आखिरी चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण का असर, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में लोग कर सकते हैं खगोलीय घटना के दीदार। मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा की विशाल प्रतिमाओं के साथ इको फ्रेंडली मूर्तियों का क्रेज, आस्था भक्ति के साथ पर्यावरण सुरक्षा का संदेश। सावन पर देश भर के मंदिरों में दिखे झूलनोत्सव के रंग, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और सीकर के मंदिरों में उमड़े भक्त, मधेपुरा के पालकेश्वरनाथ मंदिर में हिंडोले पर विराजमान हुए राधा कृष्ण। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है, यहां पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते, रिस्पेक्ट करते। बाली की एक अद्भुत बात दूसरी यह है कि ज्यादातर घरों के बाहर गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। बाली की एक और सबसे अद्भुत बात है कि कई सौ वर्ष पहले भारत छोड़ दिया, पर सबसे ज्यादा करीब भारत के हैं, आज भी इनके नाम रामा, गणेश, सीता, देवी, दुर्गा, सबसे ज्यादा कॉमन नाम यहां पर आज भी यही रखे जाते। बाली की एक और सबसे खासियत बात है, वो ये है कि जब यहां पर सनातनीय हिंदू अपना वार्षिक त्योहार मनाते हैं तो लगभग 12 से 24 घंटे का मौन व्रत धारण करते हैं, नेपी के रूप में, जब नौ वर्ष के रूप में मनाया जाता है तो मौन धारण करते हैं। तो अद्भुत बात यह है कि लगभग 12 घंटे के लिए एयरपोर्ट की गति भी रुक जाती है। यहां लगभग 17,000 से ज्यादा आइलैंड, छोटे छोटे टापू, 17,000 से ज्यादा, जिसमें मात्र 900 टापुओं पर जीवन है, बाकी अभी भी ऐसे ही। और ये लोग अभी भी अपने आप को भारतीय मानते, बड़े स्माइली फेस हैं, उन्मुक्त हैं, आनंदित रहते हैं, संस्कृति को लेकर चलते हैं, हर परिस्थिति में संस्कृति को लेकर चलते हैं। यहां पर प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, 6वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी आदि आदि के अनेक मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, इन मंदिरों की प्रधानता है। अब से ठीक कुछ दिन पहले हम जकार्ता गए थे, जकार्ता के पास भी एक जगह है, उसका नाम है जोग जकार्ता। वहां 11वीं शताब्दी का टेम्पल है, और कुछ दिन पूर्व ही भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां आए थे, और इंडोनेशिया और भारत का मधुर संबंध है वो और प्रगाढ़ हुआ, और उस मंदिर का संरक्षण भारत को प्राप्त हुआ। और यहां भारत से बड़े प्रगाढ़ रिश्ते हैं, भारत के लोगों को ये बहुत प्रेम करते हैं, और भारत के लोग भी बाली को और इंडोनेशिया को बहुत प्रेम करते हैं। तो यहां के लोगों की एक और सबसे अद्भुत बात है कि अपनी भाषा इन्होंने बचाए रखी, और भाषा में भी ज्यादातर शब्दों का प्रयोग ये संस्कृत का ही करते हैं। जैसे हम लोग सिर को खोपड़ी बोलते हैं, ये लोग कपाल बोलते हैं, कपाल। पति को स्वामी, प्रायः पूर्व समय में हमारे भारत में, अब तो हस्बैंड हो गया, अब हस्बैंड ही नहीं बचा, गोलू, सोना, मोना, हैं? बेबी, बच्चा, बेबी, पति, बेबी, धन्य है देवी, हनी, ओ हनी मनी, अच्छा हनी, वाह, है हनु, हाँ वाह, हाँ ये अद्भुत बात है कि बाली की एक और ये सबसे अभूतपूर्व बात कि यहाँ पूर्णमासी का उत्सव मनाया जाता। पूर्णमा का अर्थ है पूर्ण माँ, यही पूर्णमा। तो वाह, मतलब पूरे बाली में जितने भी सनातनी हिंदू रहते उनका एक मंदिर होता है, हर घर का एक मंदिर, मध्य में जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। भारत के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाली के बारे में, हम यही कहेंगे कितनी भी दूरी हो भारत से, दुनिया के जो भी लोग देखें, हमारी प्रार्थना है दूरी कितनी भी हो संस्कारों से नजदीकी इतनी ही बनाए रखनी चाहिए। जब कभी भगवान ने प्रकृति बनाई होगी तो परमात्मा ने प्रकृति बनाते बनाते एक नाटक किया था, उस बारे में हम आपको बताना चाहते कि भगवान ने जब संसार बनाया तो संसार बनाते बनाते परमात्मा पहले हर जगह मिल जाता था सबको ही, शुरू शुरू की बात। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत हुआ करती थी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, भगवान बड़े परेशान होते थे, ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए, एक तो बनाया ऊपर से अब सब मुसीबतों को झेलो, परेशानियों को दूर करो। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने शंकर जी से उपाय पूछा कि कोई उपाय बताओ, तो भगवान ने उपाय, भगवान महादेव ने उपाय दिया कि एक काम करो मंदिरों में बैठ जाओ गांव में एक जगह, ताकि वहीं पर व्यक्ति आके मांग लिया करे। तो पहले कबीले हुआ करते थे, तो मंदिरों में जाकर के परमात्मा बैठ गया तो लोग मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगाने लगे, और मंदिर में भगवान का कोई काम नहीं बचा, पूजा तो बाद में, पहले मनोकामना पूरी करो। ये भी लंबी चाल चली, अब वहां भी थोड़ा परमात्मा को परेशानी हुई, तो परमात्मा फिर भागे भगवान श्री हरि के पास, महादेव के पास श्री हरि, कि हम तो बड़े परेशान हो गए, तो पहले तो चाहे जहां मिल जाते थे तो चलो मिल जाओ, पकड़ जाते थे तो लोग छोड़ते ही नहीं थे, हर दो तीन जन्म की तैयारी कर लेते थे, हम मंदिरों में भी लंबी लंबी लाइन है, लाइन ही खत्म नहीं हो रही। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, 8-10 गांव के एक गांव में एक मंदिर पे बैठो, हर गांव के हर मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं। अब वहां भी भीड़ बढ़ गई, वहां भी लाइन बंद ना हो, और ज्यादा जोर पड़ने लगा। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, दुनिया के एक जगह पर बैठो मात्र। परमात्मा भगवान दुनिया की एकमात्र मंदिर में जाके बैठ गया, वहां भी लंबी लाइन बढ़ गई, लोगों को पता लग गया, खबर लग गया कि ये वाला मंदिर ज्यादा चमत्कारी है, बागेश्वर वाला, यहां जाना चाहिए। तो लंबी लंबी लाइन वहां भी लग गई, और वहां भी परमात्मा को टाइम ना मिला, भगवान को टाइम ना मिला। तो भगवान बड़े परेशान हुए कि अब ऐसे कहां जाया जाए, आदमी से बचपाना बड़ा कठिन हो गया है, और आदमी है ही ऐसी खोपड़ मंजन, आदमी का नाम ही है खोपड़िया, जो सिर है उसको खोपड़ी कहते हैं, और खोपड़ी का मतलब ही है खो गई और पड़ी है, इसलिए तो खोपड़ी है, खो गई और पड़ी है, तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक है। अब परमात्मा भी हैरान खोपड़ी से, हो ही जाते हैं, परमात्मा क्या, पतियों से पूछो अथवा पत्नियों से पूछो, लंबी लंबी लाइनें इसी बात पे लगती हैं कि हमारे स्वामी की खोपड़ी बेकार है, और पतियों से पूछो क्या है, अरे क्या बताएं महाराज, हमारी घरवाली की खोपड़ी खराब है, खोपड़ी ठीक करो। और सब आदमी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे की खोपड़ी ठीक करवाने आते, भाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, लुगाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, पड़ोसी की खोपड़ी ठीक हो जाए, मित्र की खोपड़ी ठीक हो जाए, नौकर की खोपड़ियां ठीक हो जाए, मालिक की खोपड़ी ठीक हो जाए, तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक। तो भगवान एक ही जगह बैठे बैठे परेशान हो गए, भीड़ लंबी लाइन, परमात्मा ने सोचा कि क्या किया जाए कि आदमी से बचा जाए और काम भी हो जाए और आदमी के पास भी रहा जाए। तो भागे भागे गए कि बचाओ, अब तो बड़ी हालत खराब हो गई। बोले हुआ क्या? अरे बोले हालत इतनी खराब हो गई हमारी कि पूछो मत, जगह जगह लंबी लाइन लगी हुई है और आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान शंकर जी ने उस वक्त कान में एक मंत्र दिया कि हम तुम्हें एक ऐसी जगह बताते हैं जहां रहा जा सकता और आज तक आदमी खोज रहा है। पता है कान में क्या कहा भगवान शंकर ने? आदमी के मन में जाके बैठ जाओ। मंदिरों में बैठोगे तो ये खोज लेगा, बड़े बड़े तीर्थों पर बैठोगे तो ये खोज लेगा, आदमी के दिल में जाके बैठ जाओ, ये बाहर खोजेगा अंदर नहीं खोजेगा, ये पा नहीं पाएगा और जो अंदर खोजेगा वो पा जाएगा। आज तक परमात्मा उसके बाद अभी भी बैठा है, अंदर बैठा है और दिल में बैठा है। बस हम लोगों ने बाहर खोजने की जिद की, कोशिश की और आज तक तुम लगे हुए हो, हम लगे हुए हैं। बाहर खोजने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है और वो आज तक नहीं मिला। और आपके जीवन में मात्र एक दिन ध्यान की बात घटी, थोड़ी सी, वो भी आपने प्रैक्टिस की, ध्यान की यही कहा, प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी और आपको नए नए अनुभव होने लगे। और विचार करो जब ये सच में तुम्हारे अंदर ध्यान आ जाएगा तो क्या क्या अनुभव नहीं होगा, क्या क्या नहीं घटेगा, कितना आनंद नहीं आएगा, कितना उत्साह नहीं भरेगा, कितनी प्रसन्नता नहीं भरेगी। लेकिन उसमें भी एक बात है, वो पते की बात है। ये मन तुम्हें फिर चालबाज में फंसाएगा। घर जाते ही कहेगा कि चलो ऊर्जा संचय तक तो ठीक था, अब कौन रोज सुबह सुबह उठे, 3 बजे उठे, फिर ये करे, फिर ये करे, और उससे हो भी क्या जाना है। कुछ चीजें, हर चीजें हो जाने के लिए नहीं की जाती हैं, की जाती हैं करने के लिए। मन और मकान दोनों को बीच बीच में साफ किया जाना चाहिए। मकान को बार बार साफ नहीं करोगे तो जाले पड़ जाएंगे और मन को बार बार साफ नहीं करोगे तो विचारों के भी जाले पड़ जाएंगे। दोनों जगह रहने जैसी हैं, मन भी और मकान भी। इसलिए मन को साफ किए जाने का सर्वोत्तम उपाय है विचारों की शुद्धि। और जितने बेहतरीन विचारों की शुद्धि आपकी होगी उतने ही परे देखना, बेहतर समझना, बेहतर सुनना और बेहतर जीना आप जीना सीख पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो बहुत कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें परिस्थितियों का बहुत फर्क नहीं पड़ता, ना प्रभाव का ना अभाव का, क्योंकि उनके पास एक मंत्र होता है और वो मंत्र आज हम आपको देना चाहते। उनके पास एक जीने का जो मंत्र होता वो ये होता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या छोड़ना चाहिए, वो इस पर ध्यान देते हैं कि क्या पकड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए ये छोटी सोच के लोगों की बुद्धि की परिस्थिति है, क्या पकड़ना चाहिए ये बेहतर सोच के लोगों की स्थिति है। और इसके ऊपर भी एक स्थिति है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए, इन दोनों से भी ऊपर उठा जा सकता है कि ना कुछ छोड़ना चाहिए ना कुछ पकड़ना चाहिए। एक एक आदमी हमारे बहुत अच्छे से सुआ करते थे तो हमारे साथ वो भी बहुत चाय पीते थे, बड़े फुरकेबाज थे चाय के मामले में हमारे जैसे। अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई तो हमारे पास चाय आई, तो हमने इशारा किया अपने चेलों को, जरा भाई इनको भी लाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। हम पहली बार चौंके कि लगभग 8-10 साल की दीक्षा हो गई उनकी, उन्होंने चाय को पहली बार मना किया, थोड़े पुराने चेले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने चाय छोड़ दी। हमें बड़ी खुशी हुई, हम कहा चलो बेहतर हुआ, कम से कम गुरु चेला दोनों एक ही नरक में तो नहीं जाएंगे, अगर चाय पीने से नरक मिलता होगा तो कम से कम दोनों एक ही जगह तो नहीं मिलेंगे, तुम कुछ दिन रहोगे फिर दूसरी जगह जाओगे। लेकिन बाद में खबर आई कि वो दूसरे कप में कुछ पी रहे थे, तो हमें बड़ा अचंबा लगा, तो हम उनके पास पहुंच गए, उनका अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने चाय छोड़ दी, बोले नहीं नहीं कॉफी पी रहे हैं। तो चाय छोड़ दी ये बात अलग है, पर कॉफी पकड़ ली ये बात अलग है थोड़ा। अब वो कहो कि आप इसमें भी आपको प्रसन्नता है, ठीक है, हम इन दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठने की बात आज करना चाह रहे हैं कि कुछ ना पकड़ा जाए ना कुछ छोड़ा जाए। जीवन में पकड़ना ही है तो केवल परमात्मा को पकड़ा जाए। मन बड़ा जादूगर है, मन में ही सब है, मन ही दुख की स्थिति पर ले जाता हो, मन ही सुख की परिस्थिति पर ले आता। दुख और सुख कुछ नहीं है, मन की अवस्था का नाम दुख है और मन की व्यवस्था का नाम सुख है, मन की स्थिति का नाम ही आनंद है। ठीक अभी आपको पता लगे कि आप जो बाली आए हैं और आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे, हो सकता पार्टी वार्टी कर दे, लेकिन तब तक अचानक दूसरी न्यूज ब्रेकिंग हो कि तुम्हारे पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लगी। तो जो मन अभी अभी प्रसन्न हुआ था वो तुरंत थोड़ा सा डाउन होगा कि 2 करोड़ की उसे क्यों, वो तो नास्तिक है, अधर्मी है, पापी है। यही मन की परिस्थिति सुख दिखाती है, यही मन की परिस्थिति दुख दिखाती है। और मन के जाल को आपने यदि समझ लिया तो समझो जीवन के जाल को आपने समझ लिया, और मन के जाल को ना समझा तो जीवन का जाल तुम्हें समझना आएगा। ये मन तुम्हें नई नई फैंटेसी देगा, नए नए भाव देगा, जो कर चुके होगे वो कहेगा ये तो कुछ नहीं है और ये बड़ा आलसी है, इसे जब पूजा तुमसे नहीं करवानी होगी तो कहेगा बस 5 मिनट और, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा 5 मिनट में। और तुम अंदाजा करना कि जब भी इसने 5 मिनट को सोने कहा 3 घंटे के पहले नींद ना खोली इसने। इसे पता है कि कोई एक छोटा सा उदाहरण इसके मन में दो।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। विधि विधान से बहने भाई की कलाई पर बांध रही हैं रक्षा सूत्र, सुख समृद्धि के साथ भाई की लंबी उम्र की कामना। मध्य प्रदेश के नीमच में कलाकार ने बनाई गई अनोखी राखी, 13 रुद्राक्षों पर उकेरी 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें, लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। सावन के अंतिम दिन आज समाप्त हो रही है अमरनाथ यात्रा, छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ संपन्न होगी यात्रा। इस साल लगभग 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। सावन पूर्णिमा पर आज लगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण का असर, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में लोग कर सकते हैं खगोलीय घटना के दीदार। मुंबई सहित देशभर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा की विशाल प्रतिमाओं के साथ इको फ्रेंडली मूर्तियों का क्रेज, आस्था और भक्ति के साथ पर्यावरण सुरक्षा का संदेश। सावन पर देशभर के मंदिरों में दिखे झूलनोत्सव के रंग, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और सीकर के मंदिरों में उमड़े भक्त, मधेपुरा के पालकेश्वरनाथ मंदिर में हिंडोले पर विराजमान हुए राधा कृष्ण।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: आज है भाई बहन के प्यार का खास त्योहार, इस दिन बहन भाई की कलाई पर बांधती है राखी। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, प्यार और विश्वास की निशानी है। भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन और उपहार देते हैं। ये त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पीछे इंद्र और इंद्राणी, कृष्ण द्रौपदी और यमराज यमुना जैसी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिन भर मौजूद रहेगा, तो वहीं बहनें सुबह, दोपहर या शाम किसी भी समय राखी बांध सकेंगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन लाल, पीले, नारंगी या गुलाबी जैसे शुभ और चमकीले रंग के कपड़े पहनना माना जाता है बेहद शुभ। आज लगा साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण, खगोल प्रेमियों के लिए साबित होने वाला है खास मौका। चंद्र ग्रहण को अमेरिकी समेत कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 6:53, दोपहर 12:32 तक रहेगा ग्रहण, करीब 5.5 घंटे चलेगी ये खगोलीय घटना। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने से सूतक काल का प्रभाव नहीं होगा, आज रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का संयोग है। देश के सभी मंदिरों के कपाट सामान्य दिनों की तरह पूजा के लिए खुले रहेंगे, त्योहार मनाने में भी नहीं आएगी कोई अड़चन। नीमच में बनी अनोखी शिव राखी, 13 रुद्राक्षों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उकेरी गई हैं तस्वीरें। राखी के बीच में दिखेंगे मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव, यानी एक छोटी राखी में समाई शिव की पूरी आस्था। रुद्राक्ष की बेहद छोटी सतह पर हुई कमाल की चित्रकारी, कलाकार ने सिर्फ एक दो बाल वाले महीन ब्रश से तस्वीरें बनाई। नीमच के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने तैयार की है ये खास राखी, इसमें महाकाल से लेकर सोमनाथ और केदारनाथ तक के चित्र हैं। रक्षाबंधन पर ये राखी बनी आकर्षण का केंद्र, रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग और पशुपतिनाथ का संगम इसे बनाता है बेहद खास। काशी की गुलाबी मीनाकारी राखियों की विदेशों में धूम, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक राखियों की डिमांड, स्पेन में भी काशी को राखियों का क्रेज। सात समंदर पार पहुंची काशी की गुलाबी मीनाकारी, राखियों के कारोबार ने छुआ 10 करोड़ का आंकड़ा, विदेशों में एनआरआई के बीच बढ़ी राखियों की मांग। काशी की खास राखियों ने बनाई ग्लोबल पहचान, फ्लोरिडा कैलिफोर्निया से मिले राखियों की ऑर्डर, हाथों से तैयार होती है काशी की खास राखियां। एक राखी बनाने में लगते हैं 5 से 6 घंटे, चांदी पर नक्काशी, फिर होती है गुलाबी मीनाकारी, 1500 से 10,000 तक राखियों की कीमत है। काशी की कला अब विदेशों में बांटेगी भाई बहन का प्यार, गुलाबी मीनाकारी राखियों ने बाजार में मचाई धूम, पारंपरिक कला ने राखियों को बनाया है खास। गाजियाबाद में राखियों की खरीदारी हुई तेज, अमेरिकन डायमंड राखियां बनी बहनों की पहली पसंद, रंग बिरंगी राखियों से सजे गाजियाबाद के बाजार, बहनें भाइयों के लिए पसंद कर रही हैं खास राखियां। कुंदन और मोती के साथ क्रिस्टल राखियों की मांग, रुद्राक्ष वाली राखियां भी खूब बिक रही हैं। बच्चों को भा रही हैं कार्टून और लाइट वाली राखियां, तो वहीं एडी राखियों में चांदी जैसी चमक का आकर्षण है। बहनों को भा रही हैं चमकदार डिजाइनर राखियां, गाजियाबाद में राखी की खरीदारी ने पकड़ी है रफ्तार। गाजियाबाद जेल से आई खास तस्वीर, कैदी बना रही हैं भाई बहन के प्यार की राखी, जेल में तैयार हो रही है 15,000 राखियां। कैदियों के हाथों से सजेगी भाइयों की कलाई, राखी बनाते कैदियों ने दिया बदलाव का संदेश, कैदी सीख रहे हैं राखी बनाने का हुनर। कैदियों के हुनर से त्योहार में घुला प्यार, जेल की चार दीवारी से बाहर पहुंचेंगी खुशियां, राखी बनाकर नई शुरुआत कर रहे हैं कैदी। कैदियों ने राखियों में पिरोया भाई बहन का प्यार, राखियां बनी कैदियों के बदलाव की पहचान। कैदियों ने राखियों में भरा बदलाव का रंग, जेल की राखियां देंगी नई जिंदगी का संदेश। जमशेदपुर में अनोखे तरीके से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, पेड़ों को बांधी गई राखी, आदिवासी महिलाओं ने पेड़ों को माना अपना भाई। पद्मश्री जमुना टूडू ने पेड़ को राखी बांधी, जंगल बचाने वाली महिलाओं की अनोखी पहल। रक्षाबंधन पर जंगल में दिखी अनूठी तस्वीर, 50 महिलाओं ने पेड़ों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, जंगल बचाने का प्रण लिया। आदिवासी परंपरा के साथ मनाया गया रक्षाबंधन, हरे परिधानों में जंगल पहुंची आदिवासी महिलाएं, गीत गाते हुए पेड़ों की पूजा की। पेड़ों की आरती कर राखी बांधी, जंगल की रक्षा को समर्पित महिलाओं का अनोखा पर्व, महिलाओं ने पेड़ को बताया अपना भाई। नागपुर की छात्राओं ने 65 फीट लंबी और 75 फीट चौड़ी महाराखी तैयार की, राखी बनाने में बांस, कागज और पत्तियों जैसी पर्यावरण के अनुकूल चीजों का इस्तेमाल हुआ। छात्राओं की बनाई ये राखी इतनी बड़ी है कि इसे देखकर हर कोई हैरान है, रक्षाबंधन से पहले छात्राओं ने अपनी कला और मेहनत से दिखा खास संदेश दिया। इस विशाल राखी को बनाने में प्लास्टिक की जगह प्राकृतिक और आसानी से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल की गई हैं, यानी राखी के साथ साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया है। नागपुर में छात्राओं की महाराखी ने रक्षाबंधन की तैयारियों को खास बना दिया। 65x75 फीट की इस राखी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। छात्रों की इस पहल में भाई बहन के प्यार के साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया। महाराष्ट्र में रक्षा के साथ बंधन को रिश्तों के साथ पर्यावरण और देखभाल से जोड़ने की परंपरा भी बताई गई। श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलला के लिए भेजी गई खास राखी, मान्यता है ये राखी उनकी बहन शांता की ओर से है। रामलला की राखी के केले के तनों के रेशों से तैयार की गई है। इसमें मधुबनी कला और रेशमी धागों का भी इस्तेमाल हुआ है। श्रृंगी ऋषि आश्रम की राखी रक्षाबंधन पर रामलला को चढ़ाई जाएगी। हर साल आश्रम में रामलला के लिए राखी भेजने की परंपरा है। दिल्ली के कृष्णा नगर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। बाजारों में त्योहार को लेकर नजर आ रहा है खासा उत्साह। रक्षाबंधन से पहले महिलाएं हाथों में लगवा रही हैं मेहंदी। बाजारों में मेहंदी लगाने वालों के पास बढ़ी भीड़।

0: रंग बिरंगी राखियां बनी आकर्षण का केंद्र, दुकानों पर सजी तरह तरह की सुंदर राखियां, जमकर हो रही है राखियों की बिक्री। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में बढ़ी चहल पहल, राखियों की मांग बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिले, हो रहा है जबरदस्त मुनाफा। शिरडी साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया सोने का ब्रोच, 75 ग्राम सोने के ब्रोच में जड़े हीरे, गोल्डन ब्रोच की कीमत 11,19,000। इटली से भक्त सतीश कुमार ने साईं चरणों में ब्रोच अर्पित किया, बेशकीमती पत्थरों से जड़ा है सोने का ब्रोच। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने निभाया रक्षा का वचन, महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी, पुलिस थानों में मनाया रक्षाबंधन। पुलिसकर्मियों की कलाई पर सजा रक्षा सूत्र, पुलिस ने महिलाओं को दिया सुरक्षा का भरोसा। काशी में किन्नर अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा, किन्नर समुदाय ने निकाली बाबा विश्वनाथ की शोभा यात्रा, गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे किन्नर। शीतला घाट से विश्वनाथ मंदिर तक निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों के साथ साथ निकला भव्य जुलूस, हर हर महादेव के जय घोष से उठी गूंज उठी काशी। किन्नर समुदाय ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, रथ पर सवार दिखे किन्नर समुदाय, नृत्य और भक्ति में दिखे सराबोर दशाश्वमेध, घाट पर किया मां गंगा का पूजन। कोलकाता में सोने और हीरे की राखियों की धूम देखने को मिली, रक्षाबंधन पर गोल्ड डायमंड राखियों की डिमांड, भाइयों के लिए महंगी राखियां खरीद रही हैं बहनें। बाजार में गोल्ड की राखियों की चमक ने खींचा सभी का ध्यान, गोल्ड डायमंड राखियों की बिक्री में आई तेजी। बिजनौर में छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन, राखी के धागे में बंधा रक्षा का रिश्ता। रक्षाबंधन पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, दिल्ली प्रयागराज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, शकूर बस्ती प्रयागराज के बीच भी चलेगी। 19 कोच की होगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन, 9 स्लीपर कोच होंगे ट्रेन में, 2 एसी थर्ड और 6 जनरल कोच शामिल।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त,

0: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की और इसके महिमा की, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा है। अब जान लेते हैं दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये चंद्र ग्रहण कोई विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं है, एक उपछाया ग्रहण है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को हो रही है। ये उपछाया ग्रहण 28 अगस्त को प्रातः 6:53 पर आरंभ होगा और इसका समापन पूरी तरीके से दोपहर में 12:31 पर होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। ये जो उपछाया ग्रहण है ये भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। एक तो वैसे ही ये उपछाया ग्रहण है और दूसरा चूंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा इसीलिए किसी भी प्रकार के सूतक के नियम या किसी भी प्रकार की सावधानियां इस ग्रहण में लागू नहीं होंगी। किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है और 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है। तो रक्षाबंधन के पर्व पर इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व का ग्रहण से कोई संबंध नहीं है और रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यतः रक्षाबंधन पर भद्रा का विचार किया जाता है,
रक्षाबंधन पर भद्रा महत्वपूर्ण होती है और भद्रा 28 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे समाप्त हो जाएगी। तो 28 अगस्त को आप पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, किसी तरह की कोई रुकावट, कोई मनाही, किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले एक पक्ष से 15 दिन से लेकर 1 महीने तक रहेगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि के लिए, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव मध्यम रहेगा। इनको अपने करियर और अपने रिश्तों का ध्यान देना होगा। मेष, वृषभ, कन्या और धनु, मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण अनुकूल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। इनको करियर के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इनको अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा और इन लोगों को इस समय बड़े निर्णयों में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपके बड़े निर्णय गड़बड़ हो सकते हैं, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण का प्रभाव बेहतर और अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यतः बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई की मंगल कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं और बहन की रक्षा और सुरक्षा का वचन भी देते हैं। प्राचीन परंपरा ये है कि ब्राह्मणों द्वारा, आचार्यों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधी जाती है और उनकी मंगल कामना की जाती है। जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, वो यजुर्वेद का पाठ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के पर्व से करते हैं। तो मुख्यतः रक्षाबंधन के पर्व पर एक तो भाई बहन की आपसी संबंध, उनकी आपसी सुरक्षा हो जाती है, और अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं, तो रक्षाबंधन का पर्व उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांधें,
पहले रक्षा सूत्र को भगवान को समर्पित करें और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधेंगी। ऐसा करने से उनके संबंध मधुर बने रहेंगे, उनके संबंधों में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप जानने का। रक्षा सूत्र बांधने के पहले बहनों को उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे। दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। विधि विधान से बहने भाई की कलाई पर बांध रही हैं रक्षा सूत्र। सुख समृद्धि के साथ भाई की लंबी उम्र की कामना। मध्य प्रदेश के नीमच में कलाकार ने बनाई गई अनोखी राखी। 13 रुद्राक्षों पर उकेरी 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें, लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। सावन के अंतिम दिन आज समाप्त हो रही है अमरनाथ यात्रा। छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ संपन्न होगी। इस साल लगभग 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। सावन पूर्णिमा पर आज लगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण का असर, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में लोग कर सकते हैं खगोलीय घटना के दीदार। मुंबई सहित देशभर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारी। बप्पा की विशाल प्रतिमाओं के साथ इको फ्रेंडली मूर्तियों का क्रेज। आस्था भक्ति के साथ पर्यावरण सुरक्षा का संदेश। सावन पर देशभर के मंदिरों में दिखे झूलनोत्सव के रंग। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और सीकर के मंदिरों में उमड़े भक्त। मधेपुरा के पालकेश्वरनाथ मंदिर में हिंडोले पर विराजमान हुए राधा कृष्ण।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उस।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में।
5: जी नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। जी हां, भाई बहन के बीच अटूट बंधन, विश्वास और प्यार की। ये रिश्ता बेहद खास है और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
5: देखिए, रक्षा सूत्र बांधने के पहले उसको भगवान को अर्पित करिए और इसके बाद वो रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिए। ऐसा करने से आपके संबंध भाई के साथ मधुर बने रहेंगे। यानी अगर भगवान को समर्पित करके आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे तो भाई बहन के संबंध बेहतर बने रहेंगे।
4: और चलिए अब जान लेते हैं 28 अगस्त 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या कहता है।
5: दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 9:48 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए अब जान लेते हैं क्या है रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व।
5: हम आज बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व की। इस पर्व का पौराणिक महत्व और धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, उस पवित्र धागे को रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का और सहायता का वचन देते हैं। महाभारत काल में एक कथा आती है, ऐसी मान्यता है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था और इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को भी राखी बांधी जाती है और राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रावणी भी कहते हैं और इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन से शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। ये दिन शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन शिक्षा और ज्ञान के उपाय भी किए जा सकते हैं।
4: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
5: मेष राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो चलिए जान लेते हैं कि भाई बहन का पवित्र बंधन वाला ये त्योहार हम कैसे मनाएं, कैसे हमें मनाना चाहिए रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार।
5: रक्षाबंधन का पर्व मनाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से ये त्योहार मनाना चाहिए? एक थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें, जिससे रक्षा सूत्र बांधने के बाद अपने भाई की आरती कर सकें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा करके बैठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें और इसके बाद जो घी का दीपक है उसको जला करके उससे आरती करें और फिर मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करें। रक्षा बंधवाने के बाद जो भाई हैं वो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें और बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तु दीजिएगा जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र, तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ उपहार में मत दीजिएगा।
4: और अब वक्त हो गया है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में जानने का।
5: कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय आपको हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
5: जी आज का पहला प्रश्न देवाशीष घोष जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। 19 जनवरी 1970 का जन्म है, 8:35 रात को बैरकपुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, भविष्य में नौकरी कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देवाशीष जी, कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा भी बुध की चल रही है। देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ठीक ठाक नौकरी इस साल के अंत में मिल जानी चाहिए। और जहां तक आपके आर्थिक स्थिति का सवाल है, भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिला जुला के ठीक रहेगी। जून 2027 के बाद से स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक पीला पुखराज या एक टोपाज सुनहला ये आप बनवा लीजिए, 6-8 रत्ती का सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा।
4: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का और जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
5: जी अगला प्रश्न मनीष शर्मा जी ने हमें नोएडा से लिखा है। 18 मई 2004 का जन्म है, 1:15 AM दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं भविष्य में किस करियर में जाऊं, क्या मेरी दिशा होगी और क्या मैं सरकारी नौकरी में जा सकता हूं। मनीष जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, बैंकिंग या फाइनेंस में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अगर आप प्रयत्न करें तो। और आपकी उम्र लगभग 22 साल हुई है, उम्र के 25-26 साल में आपके लिए सफलता की संभावना बनती है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करें तो आपको लाभ होगा।
4: तो चलिए जानते हैं कि किस कामना की पूर्ति के लिए हम अपने भाई को कैसा रक्षा सूत्र बांधें।
5: अब ये जानते हैं कि अपने भाई को उसकी मनोकामना पूरी होने के अनुसार कौन सा रक्षा सूत्र बहन को बांधना चाहिए। भाई की अच्छी शिक्षा के लिए और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा, उसको शिक्षा और एकाग्रता में लाभ होगा। अगर आपके भाई के विवाह में विलंब हो रहा है तो भाई के शीघ्र विवाह के लिए ऐसा रक्षा सूत्र बांधिए जिसमें सफेद रंग के नग लगे हों या रक्षा सूत्र सफेद रंग का हो। भाई के जीवन में अगर विवाह संबंधी समस्या है तो अपने भाई को पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधिए, बहुत उचित होगा। भाई के रोजगार में फायदा हो, भाई की आर्थिक स्थिति में फायदा हो, इसके लिए नीले रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा। भाई की रक्षा हो नकारात्मक ऊर्जा से, भाई स्वस्थ रहे, दुर्घटना से रक्षा हो, इसके लिए अपने भाई को लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधिएगा। आपके भाई की हर प्रकार से रक्षा हो, इसके लिए लाल, पीले और सफेद रंग के धागों से बना हुआ मिश्रित रक्षा सूत्र बांधिएगा। तो आप अपने भाई की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और भाई के मांगल्य के लिए, भाई के जीवन में शुभता के लिए अलग अलग रंग के रक्षा सूत्र अपने भाई को बांध सकती हैं।
4: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
5: तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई नया अवसर मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: ये तो हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के पावन त्योहार पे जब हम अपने भाई को राखी बांधते हैं तो हमें रिटर्न में कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है। तो किस मनोकामना के लिए बहन को कैसा उपहार दें, आइए जान लेते हैं पंडित जी से।
5: अब आपके बहन की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, बहन जीवन में स्वस्थ और प्रसन्न रहे, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए बहन को कैसा उपहार दें? बहन का करियर अच्छा हो, बहन की नौकरी अच्छी हो, इसके लिए अपनी बहन को अच्छी कलम, पुस्तकें और लैंप, ये आप उपहार में दे सकते हैं। अगर आपकी बहन के विवाह में विलंब हो रहा है तो बहन के शीघ्र विवाह के लिए बहन को सुगंध और पीले वस्त्र उपहार में दे सकते हैं। बहन का वैवाहिक जीवन सुखद हो, विवाह की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए बहन को चांदी के आभूषण, फुटवेयर, जूते चप्पल उपहार में दे सकते हैं। बहन के जीवन में संतान संबंधी समस्याएं दूर हों, इसके लिए अपनी बहन को बाल कृष्ण की मूर्ति और संगीत का सामान आपको देना चाहिए। बहन की आर्थिक संपन्नता हो, बहन की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो, इसके लिए बहन को लाल वस्त्र, मिठाई और चावल, ये उपहार में दीजिए। आपकी बहन के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बड़े आसानी से आ जाएगी।
4: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
5: मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, बेवजह की चिंता ना करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: तनाव हो सकता है। करियर में धैर्य बनाए रखें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न विकास जी ने थाने महाराष्ट्र से हमें लिखा है। 1 अगस्त 1962 का जन्म है, 9:51 प्रातः मुंबई महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। विकास जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कर्क राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, भविष्य आपका बिल्कुल ठीक है। पैसे रुपए के हिसाब से, संतान की उन्नति के हिसाब से आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, ये संभावना आपकी कुंडली के लिए बन रही है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, पेट का, प्रोस्टेट का, यूरिन और किडनी से संबंधित समस्याओं का ध्यान देना आपके लिए जरूरी रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिएगा, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा।
1: और अब जानेंगे आज के अंतिम प्रश्न के बारे में, तो चलिए जानते हैं आज का चौथा और अंतिम प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी

0: थी जी ने हमें इटावा से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 20 जून 1998, 9:05 रात को, इटावा, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा नौकरी तो कर रहा है लेकिन नौकरी में उसकी कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, तो उसका भविष्य और जीवन कैसा होगा, क्या उसकी कुंडली में कोई काल सर्प योग भी है। विनीता जी, आपके पुत्र की कुंडली है मकर लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दें कि चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन है कुंडली में, तो वो सफलता में थोड़ा विलंब करेगा और बेटे के मन में चिंता और तनाव भी थोड़ा पैदा करेगा, लेकिन कुल मिला जुला के 2028 के फरवरी के बाद आपके बेटे का करियर और जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। साल 2027 में इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना चाहिए, एक इनको ओपल बनवा करके पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और इनसे बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बेहतर होगा। ज्योतिष में काल सर्प योग कुछ नहीं होता, इसीलिए उसकी चिंता करने की या उसका तनाव पालने की कोई जरूरत आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है।
1: पंडित जी, एक सवाल था मन में, क्योंकि रक्षाबंधन का पावन त्योहार है और कई बहनें ऐसी हैं जिनके कोई भाई नहीं है, तो ऐसे में वो किसको राखी बांधे।
0: जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बहनें ऐसी हों जिनके कोई भाई ना हो, तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बहनों के कोई धर्म भाई होते हैं, मुंह बोले भाई होते हैं, उनको राखी बांध करके वो रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण संबंध आपका ईश्वर के साथ होता है, और हम सामान्यतः कहते हैं ना कि ईश्वर ही हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, हमारा परिवार है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके इष्ट देव हैं, जिनके प्रति आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है, भगवान शिव हों, भगवान कृष्ण हों, भगवान गणपति हों, हनुमान जी हों, जिसके प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है, जिस देवता के स्वरूप के प्रति, आप उनको रक्षाबंधन बांध सकती हैं और रक्षाबंधन का पावन पर्व मना सकती हैं। लेकिन देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि रक्षाबंधन का जो पर्व था वो मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को, अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधा जाता था। भाई बहन का एंगल उसमें तब आया जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा बांधा, क्योंकि उनके हाथ से रक्त निकल रहा था। तो चूंकि भगवान कृष्ण की मान्यताओं के बाद रक्षाबंधन में भाई बहन का संबंध जुड़ा, इसलिए अगर आप भगवान कृष्ण को अपना भाई माने, भगवान कृष्ण को भाई मानकर उनको रक्षा सूत्र बांधें और उनसे प्रार्थना करें, तो ये पर्व आपके लिए बहुत शुभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 28 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, विदेश में या दूर स्थान में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो गया है इसी के साथ आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण भी है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, रक्षाबंधन के पर्व का ग्रहण से कोई संबंध नहीं होता, रक्षाबंधन पर भद्रा देखना महत्वपूर्ण होता है। भद्रा का विचार किया जाता है और भद्रा 28 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग समाप्त हो जाएगी। इस बार आप पूरे दिन जब चाहें रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। किसी भी तरह की कोई रुकावट, कोई वर्जना, कोई रोक आपके ऊपर नहीं है।
1: और अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जानते हैं 28 अगस्त 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

0: इसी के साथ वक्त है आज की गुडलक राशि को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि क्या कहती है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की गड़बड़ियां क्या हैं और उन्हें जीवन में सुधार कैसा करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है तुला। आपको चंचलता से और दिखावे से बचना चाहिए और जीवन में अच्छा मित्र बनाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए।
0: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
1: जी

0: को बताते हैं कि अगर बार बार आपकी नौकरी छूट जाती हो तो आप क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, इसके बाद सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ऐसा रोज करिए, और सप्ताह में एक दिन शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए, बार बार नौकरी का छूटना बंद हो जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो
1: है। रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का क्या होगा प्रभाव और ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। और इसी बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी की 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पहाड़ों पर सफर हमेशा खूबसूरत होता है, लेकिन पहाड़ों का मौसम और हालात कब बदल जाएं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। चमोली जिले में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आई रुकावट ने एक बार फिर से यही संदेश दिया है। पहाड़ों की यात्रा में उत्साह के साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। मौसम विभाग के अलर्ट और स्थानीय प्रशासन की सलाह को ध्यान में रखते हुए यात्रा की बेहतर प्लानिंग की जाए तो मुश्किल परिस्थितियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।
4: बद्रीनाथ धाम जाने की राह में आई मुश्किल को दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने रास्ता रोका तो अब मशीनों और मजदूरों ने मोर्चा संभाल लिया है। उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द रास्ता साफ हो, यात्रा फिर रफ्तार पकड़े और भक्त बिना किसी रुकावट के अपने आराध्य बद्रीनाथ के दर्शन कर पाए।
5: बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात मारवाड़ी और विश्वप्रयाग के आगे 10 से 15 मीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कल देर रात यहाँ ऊपर पहाड़ी से भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो धस चुका है। यहाँ पे इस समय जो जेसीबी मशीनें हैं लगी हुई हैं, बीआरओ द्वारा यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है, जो कार्यदायी संस्था है वो यहाँ पे काम कर रही है।
4: चमोली जिले में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा धंसने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। मारवाड़ी पुल और विष्णुप्रयाग के बीच करीब 50 मीटर सड़क धंस गई। इसी वजह से बद्रीनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक रास्ते में फंस गए। हालांकि अब रास्तों को खोलने का काम तेजी से चल रहा है।
5: मशीनें इस समय लगी हुई हैं, लेकिन कब तक मार्ग खुलेगा कह नहीं सकते हैं। ऐसे में जहां भूस्खलन हुआ वहीं तीर्थयात्रियों की भी मुश्किलें खड़ी हो गई है। हालांकि काम चल रहा है, लेकिन कब तक खुलेगा ये देखना होगा।
4: वहीं नेपाल में आई फ्लैश फ्लड का असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी पड़ा है। बाढ़ से रसुआगढ़ी केरुंग रूट प्रभावित होने के चलते इस रास्ते से होने वाली यात्रा और आवाजाही प्रभावित हुई है। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर मौसम कब करवट ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सफर से पहले थोड़ी सावधानी और बेहतर प्लानिंग बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखें, स्थानीय प्रशासन की सलाह को प्राथमिकता दें। सबसे जरूरी हालात अनुकूल हों तभी यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सुरक्षित सफर ही आपकी मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जापान में इन दिनों एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सैकड़ों लोग एक साथ जुटे हैं, हाथों में मोटी मोटी रस्सियां हैं और इन रस्सियों के सहारे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी भरकम किले को खींच रहे हैं। दरअसल यहां ऐतिहासिक किले को उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाने का काम जारी है और इसके लिए मशीनों के साथ साथ इंसानी ताकत का भी सहारा लिया जा रहा है।
4: ये तस्वीरें जापान के हिरोसाकी शहर की हैं, जहां इतिहास को वापस उसकी जगह पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ जुटे, हाथों में रस्सियां, कदमों में तालमेल और पूरी ताकत के साथ बुर्ज को खींचते लोग नजर आए। सबसे खास बात ये रही कि बुर्ज को खींचने के लिए लोगों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग चुने गए स्वयंसेवकों ने करीब 400 टन वजनी इस बुर्ज को रस्सियों की मदद से 3 मीटर से ज्यादा ऊपर उठाया। दरअसल ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा बड़ा संरक्षण अभियान है। किले की दीवारों के ऊपर मौजूद इस बुर्ज को करीब 70 मीटर दूर उसकी मूल जगह पर वापस ले जाया जा रहा है। इस पूरे मिशन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये बुर्ज मूल रूप से 1611 में बनाया गया था, लेकिन साल 2015 में आए भूकंप ने किले की दीवार को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दीवार की मरम्मत के लिए बुर्ज को उसकी जगह से हटाना पड़ा। करीब एक दशक बाद अब इस ऐतिहासिक बुर्ज की घर वापसी हो रही है। खास बात यह है कि इस काम में मशीनों के साथ साथ आम लोगों की ताकत को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इंसानों के जरिए किए जाने वाले हिस्से का काम खत्म हो गया और अब बाकी प्रक्रिया मशीनों की मदद से पूरी हो रही है। 400 टन के बुर्ज को रस्सियों से खींचते सैकड़ों लोग, तस्वीरें भले ही अनोखी हों लेकिन संदेश बेहद खास है। जब बात अपनी विरासत को बचाने की हो तो लोगों का साथ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जर्मनी के कोलोन में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मेले गेम्सकॉम 2026 का आगाज हो गया है। बुधवार को 26 अगस्त से शुरू हो रहे इस मेले में दुनिया भर की 1700 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां गेमिंग के दीवानों को नए नए गेम्स की झलक तो मिल ही रही है, साथ ही कई खास इवेंट्स भी आयोजित किए जा रहे हैं।
4: ये है
6: जर्मनी जहां के कोलोन में दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो और कंप्यूटर गेमिंग ट्रेड फेयर चल रहा है। यहां दुनिया भर से गेम डेवलपर, पब्लिशर और गेमिंग प्रेमी नए गेम्स हार्डवेयर और तकनीक को देखने पहुंच रहे हैं। यहां की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि गेम अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। यहां कोई टैबलेट पर गेम खेल रहा है, कोई कंप्यूटर पर तो कोई बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर गेम का नया एक्सपीरियंस ले रहा है। गेम्स में रचे बसे इस संसार का एक्सपीरियंस अद्भुत है। यहां गेमिंग के किरदारों के गेटअप में भी लोग पहुंचे हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में गेमिंग की दुनिया कैसे होने वाली है। जर्मनी के कोलोन शहर में चल रहे इस महा इवेंट में करीब 1700 से ज्यादा कंपनियां अपने गेम और नई तकनीक लेकर पहुंचे हैं। गेमिंग की इस बढ़ती दुनिया में सिर्फ गेमर्स ही नहीं, दुनिया की बड़ी टेक और गेमिंग कंपनी भी अपना भविष्य तलाश रही है। गेम्सकॉम में सेगा और एक्सबॉक्स जैसे बड़े नाम मौजूद हैं, जो अपने नए गेम्स और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला बड़ा गेम कौन सा होगा, सवाल ये भी है कि एआई के साथ गेमिंग की दुनिया कितनी एडवांस होने जा रही है।
7: Wir haben eine riesige Vielfalt auf der Gamescom und es gibt Trends wirklich in unterschiedlichsten Bereichen, bei den Spielen, aber zum Beispiel auch bei den Technologien. Es geht viel um den sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz, es geht um Indie-Spiele, die besonders erfolgreich sind, aber es geht genauso um die positiven Effekte von Games für Themen, die uns gesellschaftlich interessieren, wie für die Stärkung der Demokratie.
6: जिस रफ्तार से हाल के सालों में गेमिंग का क्रेज बढ़ा है, उसके पीछे सिर्फ उसकी लोकप्रियता नहीं है बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी है। अनुमान है कि 2026 में दुनिया भर का वीडियो गेम बाजार करीब 330 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी गेमिंग की दुनिया में स्क्रीन के सामने बैठा खिलाड़ी अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल बिजनेस खड़ा है। फिलहाल तो 30 अगस्त तक गेमिंग के इस महामेले के दरवाजे खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ वायरल वीडियोस, जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
8: छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसे आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखे सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।
14: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
19: देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों ने सेना के जवानों को बांधी राखी। रक्षाबंधन पर सबसे पहले महाकाल को बांधी राखी, भस्म आरती में पुजारी परिवार की महिलाओं ने निभाई परंपरा। सावन के अंतिम दिन आज समाप्त हो रही है अमरनाथ यात्रा, छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ संपन्न होगी यात्रा। इस साल लगभग 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, देश भर से बाबा के भक्त करेंगे शिरकत, 15 किलोमीटर लंबी यात्रा। सावन पूर्णिमा पर आज लगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण का असर, अमेरिका यूरोप और अफ्रीका में लोग कर सकते हैं खगोलीय घटना के दीदार। बाढ़ प्रभावित नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
19: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
20: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
19: शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन के साथ। आज भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन है, देश भर में राखी की रौनक है, सुबह भी मिठाई की दुकानों में भीड़ है तो अब घरों में राखी बांधी जा रही है, यानी हर जगह राखी की रौनक देखने को मिल रही है।
20: रक्षाबंधन की रौनक सिर्फ शहरों और बाजारों तक सीमित नहीं है बल्कि देश की सरहद पर भी राखी का प्यार पहुंचा है। कई स्कूली बच्चे और महिलाएं वहां जवानों के लिए राखियां लेकर पहुंच रही हैं। ऐसे में जवान की कलाई पर राखी बांधी गई, तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई और ये सभी तस्वीरें आपके सामने आ गई हूं।
19: वहीं आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा है, ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा और इस खगोलीय घटना के दीदार अमेरिका यूरोप और अफ्रीका के लोग कर रहे हैं, तो कब तक है ये ग्रहण आगे आपको बताएंगे।
20: साथ ही विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र ही नहीं देशभर में गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में खास उत्साह देखा जा रहा है। कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं तो कहीं पर बाप्पा का स्वागत किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारी कुछ अलग है। यहां आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। कैसे हैं ये गणपति बताएंगे आगे।
1: इसके अलावा सावन में भगवान के झूलनोत्सव की परंपरा भक्तों के लिए खास महत्व रखती है। हर साल धरती जब बारिश की फुहारों से सराबोर होती है, प्रकृति आनंद में झूमती है, तब भक्त अपने भगवान को झूले पर बिठाते हैं, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो या फिर सीकर। हर जगह ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है, तो इसके रंग भी आगे आपके सामने होंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
20: रक्षाबंधन का पावन पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कर रही है।
1: मध्य प्रदेश के नीमच में एक कलाकार ने अनोखी राखी बनाई है। इस राखी में 13 रुद्राक्षों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है। यह अनोखी राखी भगवान शिव को समर्पित है।
20: सावन पूर्णिमा पर आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा है और इस बार भी चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, साथ ही इसका असर भी नहीं होगा। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में लोग खगोलीय घटना के दीदार कर सकते हैं।
1: गणेशोत्सव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मूर्ति बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। कर्नाटका के तेनकाशी में इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं, तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तिकार रंग बिरंगी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
20: साईं बाबा में देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है। अपनी मुराद पूरी होने पर वो साईं बाबा को दिल खोलकर दान भी देते हैं। इस बार चर्चा उन्हें चढ़ावे में मिले इस सोने और हीरे वाले ब्रोच की है। दरअसल 75 ग्राम वजनी इस सोने और हीरे जड़े ब्रोच की कीमत करीब 11,19,000 रुपए बताई गई है। इस ब्रोच को इटली से आए एक शख्स ने दान किया है।
1: नेपाल और तिब्बत की बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये सामूहिक प्रार्थना धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर तुगलक लांग में आयोजित की गई और इसमें 2000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु जुटे। गुरु दलाई लामा ने भी आपदा में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
20: मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक लड़की ने अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसों को बचाकर पंछियों के लिए आलिशान आशियाना बना दिया है। लड़की का नाम सलोनी जैन है। इन्होंने पंछियों के लिए खूबसूरत 6 मंजिला इमारत बनाई, जिसमें छोटे छोटे गोल दरवाजे लगे हुए हैं। इस अनूठे आशियाने को तालाब के किनारे बनाया गया है।
1: जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत हो गई है और इस बार मेले में 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां नए वीडियो गेम्स की झलक के साथ गेमिंग प्रेमियों के लिए कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में लोग अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर का लुक बनाकर पहुंचे हैं। मेले में गेमिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल पर भी जोर है। गेम्सकॉम 30 अगस्त तक चलेगा।
20: तो इस बार बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है मैत्री मूवी मेकर्स की बिग बजट फिल्म राणा बली। 16 अक्टूबर को दुनिया भरों में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राहुल संकृत्यायन के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक फिल्म अपने भव्य अंदाज और दमदार कहानी के लिए चर्चा में है।

0: शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे रक्षाबंधन के पर्व के साथ। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन है। देश भर में राखी की रौनक है। कल देर रात तक लोग राखी खरीदते हुए दिखाई दिए तो वहीं सुबह मिठाई की दुकानों पर भीड़ नजर आई है।
1: जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली मुंबई समेत दूसरी जगहों से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी हर जगह राखी की रौनक। रक्षाबंधन के मौके पर कई राज्यों में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी गई है। लेकिन रक्षाबंधन की ये रौनक सिर्फ शहरों और बाजारों तक सीमित नहीं है, देश की सरहद पर भी राखी का प्यार पहुंचा है। स्कूली बच्चे जवानों के लिए राखियां लेकर पहुंचे और किसी ने जवान की कलाई पर राखी बांधी तो किसी ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत।

0: भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर स्नेह और विश्वास का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्योहार भाई बहन के बीच भावनात्मक लगाव का प्रतीक है। बहनें आज अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख और शांति की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार का बहनों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार रक्षाबंधन के दिन ही चंद्र ग्रहण और भद्रा लगने से राखी बांधने के शुभ मुहूर्त को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। रक्षाबंधन श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाने की परंपरा है। इस बार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 पर प्रारंभ हो चुकी है। पूर्णिमा तिथि का समापन का समय 28 अगस्त यानी 9:48 पर है। पूर्णिमा तिथि भले ही सुबह समाप्त हो जा रही है, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त आज ही के दिन बन रहा है। इस शुभ दिन बहने शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। राखी बांधने का पहला शुभ मुहूर्त आज सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक, इसके बाद दोपहर 11:56 से दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त भी राखी बांधने के लिए बेहद शुभ है। आमतौर पर पूर्णिमा तिथि में पूरे दिन बहने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है, लेकिन राहु काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। आज राहु काल सुबह 10:46 से 12:22 तक है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी के दिन सबसे पहले रक्षा सूत्र और पूजा की थाल भगवान को समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद ही बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने के लिए भाई का मुंह पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ होना शुभ माना जाता है। रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहनें भाई की आरती उतारती हैं और मिठाई खिलाकर उनके लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं। राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देकर प्यार से भरे इस खूबसूरत रिश्ते में एक नई मिठास घोल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो राखी का पर्व भाई और बहन के गहरे रिश्ते और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और आज के दिन चंद्र ग्रहण और भद्रा पड़ने की वजह से राखी बांधने के शुभ मुहूर्त पर कुछ कंफ्यूजन हो गया है। आइए जानते हैं कि क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, आरती कर रही हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हुई नजर आ रही हैं। आज श्रावण पूर्णिमा भी है और इसी के साथ सावन मास का आज के दिन समापन भी हो रहा है। देश के कई तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु सुबह से पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। स्नान के बाद दान पुण्य और पूजा अर्चना का दौर जारी है, यानी सावन के आखिरी दिन आस्था के घाटों पर भी श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज आसमान में भी खगोलीय घटना देखने को मिल रही है। कई देश में चंद्र ग्रहण का नजारा दिखाई दे रहा है, हालांकि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा। यहाँ किसी तरह का सूतक मान्य नहीं होगा, लोग आराम से दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। तो हर जगह पर अब राखी आज मनाई जा रही है सुबह से ही, हालांकि यहां पर यानी भारत में चंद्र ग्रहण लागू नहीं होगा, इसलिए भारत में किसी भी समय पर राखी बांध सकते हैं। और बाजारों में भी काफी रौनक आज दिखाई दे रही है, तरह तरह की रंगीन राखियां बाजारों में नजर आ रही हैं।

0: तो देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आज रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज सावन मास का अंतिम दिन है और आज सावन मास का समापन हो रहा है। आज के दिन बेहद ही शुभ योग बन रहा है। आज के दिन चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भारत से ये ग्रहण नजर नहीं आने वाला है और इसीलिए आज का पूरा दिन ही शुभ माना जा रहा है। और ज्योतिषाचार्य के मुताबिक आज पूरे दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, किसी भी वक्त राखी बांधी जा सकती है।
1: भारत में चंद्रग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ग्रीस में दिखेगा और कई ऐसी जगह हैं, दूसरे शहर हैं जहां पर चंद्रग्रहण का असर पड़ने वाला है, लेकिन भारत में इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला।
0: और देखिए ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिमी एशिया में किस तरह से चंद्र ग्रहण नजर आ रहा है। हालांकि भारत में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला है। और ग्रीस की ये तस्वीर आपके सामने है, चंद्र ग्रहण की ये तस्वीर।
1: तो ग्रीस में चंद्र ग्रहण का नजारा ये आप देखिए, दृश्य अपने आप में बेहद खास है। अफ्रीका यूरोप के कई देशों में ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है और अफ्रीका यूरोप में भी चंद्र ग्रहण की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत में हालांकि चंद्र ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला।

0: तो सुबह 11:21 तक चंद्र ग्रहण यहाँ पर चलने वाला है। आंशिक चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 18 मिनट की होगी। दक्षिण अमेरिका में ये चंद्र ग्रहण की तस्वीरें, ये ग्रीस से आप देख रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप में भी चंद्र ग्रहण का खास नज़ारा देखने को मिला और असर भी वहाँ पर पड़ने वाला है, लेकिन भारत में इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो आज रक्षाबंधन का पर्व है, ऐसे में सबके मन में ये सवाल था कि चंद्र ग्रहण की वजह से मुहूर्त क्या होगा। तो आज के दिन रक्षाबंधन पर राखी बांधने का कोई खास ऐसा मुहूर्त नहीं है, किसी भी वक्त राखी बांधी जा सकती है क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं पड़ने वाला।
1: आपको बता दें ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है जो देखने को मिल रहा है, और ऐसे में खगोलीय दृष्टि से देखें तो बेहद ही खास रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी एशिया से लेकर दक्षिणी यूरोप तक जगह जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं। कई देशों में ये चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लिहाजा रक्षाबंधन पूरे दिन मनाया जा सकता है और चंद्र ग्रहण का इससे कोई जुड़ाव नहीं है। बेहद ही जरूरी खगोलीय घटना जरूर है, ये पूरे दुनिया में कई देशों में देखने को मिल रही है, हालांकि भारत में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला है।
0: तो ये तस्वीर आप ग्रीस की देख रहे हैं, आसमान में खगोलीय घटना देखने को मिल रही है, कई देशों में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है चंद्र ग्रहण का। हालांकि ये तस्वीर आप ग्रीस की देख रहे हैं, भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा, तो यहाँ किसी भी तरह का कोई सूतक मान्य नहीं है।
1: जम्मू कश्मीर के सांबा से रक्षाबंधन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। सरहद प्रदेश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच स्कूली बच्चे पहुंचे हुए दिखाई दिए और उनके हाथों में राखियां थी और दिल में जवानों के लिए सम्मान।
0: बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया, उनकी लंबी उम्र की कामना की। घर परिवार से दूर सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए ये पल बेहद ही खास रहा। राखी बंधवाने के बाद जवानों ने भी बच्चों को गिफ्ट देकर उनका उत्साह बढ़ाया।
1: तो देखिए देश की रक्षा करने वाले जवानों को किस तरह से यहाँ पर उनके लिए प्रेम जाहिर किया जा रहा है और किस तरह से उन्हें राखी बांधी जा रही है। सरहद पर आज सिर्फ राखी नहीं बंधी है बल्कि जवानों और बच्चों के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता भी और मजबूत हुआ।
2: बहुत अच्छा लगता है देखकर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है कि अपने घर नहीं जा सकते, इतने बड़े त्योहार में अपनी बहनों को मिस करते हैं। इसीलिए यही चीज ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को लेकर आए थे। छोटी छोटी बच्चियों ने इन जवानों को के हाथ में राखी बांधी जो कि इन्होंने खुद बनाई थी, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी हुई बट थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था।
0: जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सरहद के रखवालों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान जताया। जवानों ने भी बच्चों को उपहार देकर इस मुलाकात को यादगार बनाया है। देश की रक्षा में घर से दूर तैनात जवानों के लिए ये पल अपनों के बीच होना जैसा एहसास लेकर आया।
1: आपको बता दें राखी के इस धागे ने जवानों और बच्चों के बीच स्नेह की डोर को और मजबूत कर दिया है। जिस तरह से यहाँ पर मासूम बच्चियां पहुंची हुई दिखाई दी, इन छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी और रक्षाबंधन का पर्व कुछ इस तरह से मनाया। कुछ इस तरह से यहाँ पर जवानों के प्रति अपने प्रेम को, अपने स्नेह को व्यक्त किया है इन छात्राओं ने, इन बच्चियों ने, और रक्षाबंधन के दिन इस त्यौहार को मनाया है। किस तरह से जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की तस्वीरें आपके सामने ही बता रही हैं, रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खासा अंदाज में मनाया गया है।
3: विद्या मंदिर हाई स्कूल से आई हूँ यहाँ पे आज सीआरपी कैंप में राखी बांधने, क्योंकि ये लोग सब अपनी बहनों से दूर रहते हैं इसलिए हम हर साल यहाँ पे राखी बांधने आते हैं।
4: ये अपने घरों से बहुत दूर होते हैं और इनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो इसलिए हम राखी बांधने आए हैं।
5: बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये हमारा 4th ईयर है, हम कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर आते हैं और एक भाई बहन का सच में एक रिश्ता जो है वो महसूस करते हैं कि ऐसा बन गया है, क्योंकि 4 साल एक छोटा समय नहीं है, तो इसमें हर बार सभी भाइयों से मिलना, सबसे वही स्नेह पाना, वही सम्मान पाना, तो ये बहुत गर्व की बात है अपने आप में।
0: तो जवानों को राखी बांधती हुई ये तस्वीरें आप देख रहे थे। वहीं आगे बढ़ते हैं, रक्षाबंधन पर रामनगरी अयोध्या का भी अलग नजारा है। इस पावन पर्व पर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा। सरयू घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, लोग सरयू में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान के बाद दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
1: आपको बता दें आज श्रावण का आखिरी दिन है और सावन मास का समापन हो रहा है, इसलिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु आज सरयू तट पर पहुंच रहे हैं। घाटों पर मंत्रोच्चार, पूजा पाठ और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ भक्ति और आस्था का माहौल है।
6: हमारे अयोध्या में लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, गौदान पूजा कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। बड़ा भारी महत्व है जो सावन महीना में स्नान दान करता है और भोलेनाथ का भजन भाव करता है, जल चढ़ाता है, उनकी सारी कामना पूरी हो जाती है। और काफ़ी भीड़ है, 1 बजे रात से स्नान चालू हुआ है, अब तो पूरी रात आज यहीं रहे हैं।
1: उज्जैन में रक्षाबंधन पर महाकाल की विशेष पूजा आरती हुई, भगवान को भक्तों ने राखी अर्पित की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर की ये तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर पूजन हुआ है सावन का आज आखिरी दिन, और कुछ इस तरह से आज के इस आखिरी दिन को मनाया गया है। यहाँ पर दुग्धाभिषेक किया गया, आरती पूजन किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के नीमच से रक्षाबंधन पर कला और आस्था का अनोखा संगम सामने आया। चित्रकार राहुल कुमार ने इस बार एक खास राखी तैयार की है, जिस पर 12 अलग अलग रुद्राक्षों में 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें उकेरी गई, लेकिन इस राखी को खास बनाती है इसकी बारीक कारीगरी।
7: जिन रुद्राक्षों पर ये चित्र बनाए गए हैं उनकी सतह बेहद छोटी है, और इतनी छोटी कि उस पर किसी तस्वीर को उकेरना अपने आप में बड़ी चुनौती है। राहुल ने बेहद महीन ब्रश की मदद से रुद्राक्षों पर एक एक ज्योतिर्लिंग की आकृति को उकेरा है, और छोटी सी सतह पर इतनी बारीकी से काम किया गया है कि हर ज्योतिर्लिंग को अलग पहचान देने की कोशिश साफ नजर आती है। यानी रक्षाबंधन की इस खास राखी में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्यार ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रति आस्था और कलाकार की बारीक कारीगरी की भी खास झलक देखने को मिल रही है।
8: भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप बनाया है। जैसा कि आप देखें, ऊपर भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन, उसके बाद आपके काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, वेदनाथ, केदारनाथ, ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंगों के एक समूह को बना करके मैंने एक अनोखी राखी का निर्माण किया है एक कलाकार होने के नाते। और विशेषता एक और इसमें जुड़ती है कि मैं मालवा क्षेत्र से आता हूँ, तो यहाँ पे अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ विराजित हैं जो कि मंदसौर स्थित है। तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों को पूरे गोलाकार आकृति में बना करके रुद्राक्ष के ऊपर महीन और बीच सेंटर में, केंद्र में भगवान पशुपतिनाथ महाराज को स्थापित किया है अपने कलाकारी के द्वारा। तो ऐसे करके मैंने एक सेवा की है कलाकार होने के नाते, और एक अनोखी राखी और एक नवाचार करने का प्रयोग किया है।
1: चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए रक्षाबंधन और झूलन उत्सव के और
9: गुंडी चुड़ी, इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट।
11: क्या है रक्षा बंधन के पर्व की महिमा? रक्षा बंधन के पर्व पर ग्रहण का क्या होगा प्रभाव, और ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों ने सेना के जवानों को बांधी राखी। रक्षाबंधन पर सबसे पहले महाकाल को बांधी राखी, भस्म आरती में पुजारी परिवार की महिलाओं ने निभाई परंपरा। सावन के अंतिम दिन छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ आज समाप्त हो रही है अमरनाथ यात्रा। इस साल लगभग 5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। देशभर से बाबा के भक्त करेंगे शिरकत। 15 किलोमीटर लंबी है ये यात्रा। सावन पूर्णिमा पर आज लग रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण का असर, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में खगोलीय घटना के दीदार। बाढ़ प्रभावित नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। भारतीय चेस मास्टर आर प्रगनंदा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार पर आगे बढ़े उससे पहले एक शानदार खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारतीय चेस मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 20 साल के ग्रैंड मास्टर ने अमेरिका में खेले गए खिताब को अपने नाम किया है।
2: दरअसल ग्रैंड चेस टूर फाइनल 2026 का खिताब उन्होंने जीतकर इतिहास रच दिया है। ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के दिग्गज ग्रैंड मास्टर फेबियानो काउराना को 15-13 के स्कोर से हराया।
1: और देखिए, इस जीत के बाद उन्हें प्राइज मनी के रूप में 2 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 1,90,00,000 रुपए मिले हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है आर प्रज्ञानंदा की। एक बार फिर से उन्होंने एक शानदार जीत दर्ज की है। अमेरिका में एक बार फिर से भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। भारत को, भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला एक और काम आर प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर से किया है और भारत का परचम एक बार फिर से विदेशों में लहराया है।
2: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई बहन के प्रेम के पर रक्षाबंधन की बात करते हैं जो कि आज मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, आरती कर रही हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। तो वहीं आज श्रावण पूर्णिमा भी है
1: और इसी के साथ सावन मास का समापन भी हो रहा है। देश के कई तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्नान के बाद दान पुण्य और पूजा अर्चना का दौर भी जारी है, यानी सावन के आखिरी दिन आस्था के घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और आसमान में भी खगोलीय घटना देखने को मिल रही है।
2: कई देश में चंद्र ग्रहण का नजारा दिखाई दे रहा है, हालांकि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा, तो यहाँ किसी तरह का सूतक मान्य नहीं है। लोग आराम से दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं।
1: तो देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज एक तरफ जहां सावन का समापन हो रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, और तीसरी ओर चंद्र ग्रहण का असर कई देशों में देखने को मिल रहा है।
2: राखी एक डोर है प्रेम और दोस्ती के धागों से बनी हुई, और ये प्यारा सा त्योहार उसी रिश्ते को प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी है। और जहां तक बात गिफ्ट की हो तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है।
1: लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांधना उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहन के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में भी मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं, बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन सी राखी सकती हैं और भाई अपनी बहन को ढेर सारे प्यार के साथ कौन सा उपहार दे सकते हैं।
3: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंडबैग, मैरून कलर का हैंडबैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर

0: क्लोथ्स गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रांग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधे, और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड्स की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कुछ स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी, जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं, जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाए। वही बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं, और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं, साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी लेके दे सकते हैं, आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं, और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वही बात करते हैं धनु राशि की कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग, या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। शनि की दो राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर फिरोजी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की हैं तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए, और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधे, और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: देश आज भाई बहन के अटूट रिश्ते के पावन पर्व के रंग में डूबा हुआ है। रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह का सबसे बड़ा प्रतीक है। बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र तो बांध ही रही हैं, पेड़ों को भी राखी बांध रही हैं।
2: भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूत डोर, रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक पूरे देश में छाई हुई है। बाजार गुलजार हैं और बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध रही हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं तो भाई की ओर से बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उन्हें उपहार देने का सिलसिला भी चल रहा है। भाई बहन के इस त्योहार की छटा जंगलों तक में दिखाई पड़ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुड्डू

0: और उनकी टीम जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सब पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आईं। जमुना टुड्डू चाकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई हैं। इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टुड्डू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उसे बचाने की शपथ लेती है।
1: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधते हैं।
0: भगवान के दरबार में भी रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला चल रहा है। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान उन्हें 2 फीट की यही खूबसूरत राखी बांधी गई, जिसे मंदिर के पुजारी ओम शर्मा के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया।
2: इस पे बाबा का स्वरूप हुआ है पूरा, उसमें नेत्र है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, मिरर का वर्क है, मोर पंख है, डमरू है, मोती है, सभी मिला के और राखी पूरी बनाई है। इसमें सभी प्रकार के जितने भी गण हैं बाबा के उसको सबको मिला के और इस राखी को पूरा करा है।
0: रक्षाबंधन पर श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलला के लिए राखी भेजने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से ये राखी भेजी जाती है। जरी और मोतियों से सजी ये विशेष राखी पूरे विधि विधान के साथ भक्तिमय उल्लास के बीच अयोध्या पहुंची। इस विशेष राखी को ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार आरती के बाद रामलला को अर्पित की जाती है। भगवान को अर्पित होने वाली राखियों के अलावा रक्षाबंधन के लिए कई ऐसी राखियां तैयार की गई जो बेहद आकर्षक दिखती हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में एक कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म मिनिएचर चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया है, जिस पर उकेरा गया है मंदसौर स्थित प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का सूक्ष्म चित्र। यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई देती है। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी का निर्माण किया। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनी हुई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। ये महाराखी देशभक्ति, ईश्वर की भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश देती है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, अयोध्या से मयंक शुक्ला, मंदसौर से अजय बाड़ोलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इस सावन में भगवान के झूलन उत्सव की परंपरा भक्तों के लिए खास महत्व रखती है। हर साल धरती जब बारिश की फुहारों से सराबोर होती है, प्रकृति आनंद में झूमती है, तब भक्त अपने भगवान को झूले पर बिठाते हैं
4: और इस दौरान भक्ति की ऐसी धारा बह उठती है जिसमें हर कोई भीगा हुआ नजर आता है, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो या फिर सीकर।

0: रंग बिरंगे फूलों से सजे मंदिर, मौसमी फूलों से सजा दरबार और चांदी के झूले पर विराजमान भगवान का विग्रह। ये नजारा है राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी का। यहाँ नगर से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में हर साल सावन के महीने में झूलनोत्सव की रौनक देखने को मिलती है। 500 साल से चली आ रही इस परंपरा में हर साल ऐसा ही भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। स्वर्ण जड़ित चंदन के झूले पर जब राधा कृष्ण विराजमान होते हैं तो उनकी अनुपम छवि के दर्शन के लिए भक्त खींचे चले आते हैं। हर दिन अलग अलग थीम पर होने वाले श्रृंगार से इस आयोजन को चार चांद लग जाते हैं। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में इस साल का झूलनोत्सव कई मायनों में खास रहा। एक ओर वृंदावन से आए कलाकारों ने मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया तो वहीं पुजारियों ने भगवान का फल और फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया। हिंडोले पर विराजमान प्रभु के दर्शन के लिए यहां भक्त घंटों इंतजार करते हैं। लंबी लंबी कतारों से होते हुए जब वे भगवान को झुलाते हैं तो प्रेम और वात्सल्य की झलक उनके चेहरे पर झलक जाती है।
1: 100 वर्षों से चल रहा है ये प्रोग्राम, जो भी है पहले इधर भी होया करता था, अभी ये खाली जो है
2: झूले यहाँ पर
1: झूले, एक तो है चांदी का झूला है यहाँ पर, और एक ये जो सोने की जो पॉलिश का है इधर वाला है लेफ्ट साइड में, और ये लकड़ी का झूला है, तीन झूले है।
0: सावन के रिमझिम फुहारों में जब धरती हरियाली की चादर ओढ़े नवजीवन का संदेश देती है तब मंदिरों में आस्था और भक्ति की धारा बह उठती है। देश भर के शिवालयों में बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई देती है तो वहीं मंदिरों में झूला उत्सव की भव्यता भक्तों का मन मोह लेती है। चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो या फिर सीकर, प्रेम और भक्ति की इस धारा में हर कोई नतमस्तक नजर आता है। सावन के झूलनोत्सव के दौरान सजे ये मंदिर, यहाँ उमड़ती ये भीड़ सिर्फ एक उत्सव की तस्वीर नहीं बल्कि ये सदियों पुरानी परंपरा और लोगों की गहरी आस्था की कहानी कहती है। सीकर से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इस साल श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन का समापन हो गया है और 57 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पवित्र गुफा पहुंचे और रक्षाबंधन के अवसर पर गुफा में छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई।
0: श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार और इस पावन अवसर पर संपन्न हुई अमरनाथ यात्रा। इस वर्ष 3 जुलाई को पहले जत्थे के साथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई थी और उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलग अलग जत्थों में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान उनका भक्ति भाव और जोश देखते ही बना और रक्षाबंधन के पर्व पर 28 अगस्त को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के प्रवेश और अंतिम पूजा के साथ श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष के अमरनाथ दर्शन का औपचारिक समापन हो गया। अमरनाथ यात्रा का छड़ी मुबारक यात्रा सबसे अहम हिस्सा है। अमरनाथ यात्रा के संपन्न के लिए श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से शुरू हुई छड़ी मुबारक यात्रा ने पारंपरिक पड़ावों पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक की यात्रा पूरी की। रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह सूर्योदय के समय छड़ी मुबारक ने पवित्र गुफा में प्रवेश किया और फिर अंतिम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ। अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं अधिक रही। इस वर्ष 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए जबकि 2025 में ये संख्या 4,14,000 से अधिक थी। 57 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा में इस बार सिर्फ 12 दिनों के भीतर ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन का कीर्तिमान स्थापित हो गया। परंपरा के अनुसार अमरनाथ गुफा में मुख्य पुजारी के बाद पवित्र छड़ी की वापसी यात्रा होती है। 30 अगस्त को पहलगाम में अंतिम पूजा और पारंपरिक जल विसर्जन समारोह होगा और उसके साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा पूरी तरह सम्पन्न हो जाएगी और अगले वर्ष की यात्रा तक के लिए धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब इंस्टा स्टोरी में आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने में पीछे नहीं है। देखिए शालिनी महल की फनी इंस्टा स्टोरी।
2: 5 ऐसी डेस्टिनेशन हैं जो आपको मरने से पहले जरूर विजिट करनी चाहिए। सबसे पहले पैसे हैं आपके पास? हाँ पैसे हैं। अब कहोगे मैंने सेविंग्स की नहीं है। अम्मी की सब्जी में से जो पैसे बचते हैं उसको सेविंग नहीं कहते। अब्बू के वॉलेट में से जो एक दरम दो दरम निकालते उसको भी सेविंग नहीं कहते। और जो आपके अपनी स्कूल की फीस में से पैसे बचा लेते हो उसको भी सेविंग नहीं कहते। और जो दोस्त के पैसे लेके उधार और उसको वापस ना करना वो भी सेविंग नहीं है। ठीक है पहले सेविंग कर लो फिर बताऊंगा 5 कौन सी जगह हैं। वीडियो देख रहे हैं एंड तक।
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
14: देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों ने सेना के जवानों को बांध दिया। रक्षाबंधन पर सबसे पहले महाकाल को बांधी राखी, भस्म आरती में पुजारी परिवार की महिलाओं ने निभाई परंपरा। सावन के अंतिम दिन छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ आज समाप्त हो रहा है अमरनाथ यात्रा। इस साल लगभग 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। देशभर से बाबा के भक्त करेंगे शिरकत, 15 किलोमीटर लंबी यात्रा। सावन पूर्णिमा पर आज लगा रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण का असर। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में खगोलीय घटना के दीदार। बाढ़ प्रभावित नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। भारतीय चेस स्टार और आर प्रज्ञानंदा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की और इसके महिमा की, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 9:48 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये चंद्र ग्रहण कोई विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं है, एक उपछाया ग्रहण है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को हो रही है। ये उपछाया ग्रहण 28 अगस्त को प्रातः 6:53 पर आरंभ होगा और इसका समापन पूरी तरीके से दोपहर में 12:31 पर होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। ये जो उपछाया ग्रहण है ये भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। एक तो वैसे ही ये उपछाया ग्रहण है और दूसरा, चूंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा इसीलिए किसी भी प्रकार के
सूतक के नियम या किसी भी प्रकार की सावधानियां इस ग्रहण में लागू नहीं होंगी, किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है और 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व का ग्रहण से कोई संबंध नहीं है और रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यतः रक्षाबंधन पर भद्रा का विचार किया जाता है, रक्षाबंधन पर भद्रा महत्वपूर्ण होती है और भद्रा 28 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे समाप्त हो जाएगी। तो 28 अगस्त को आप पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, किसी तरह की कोई रुकावट, कोई मनाही, किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा,
किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से आपको बचना चाहिए। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले एक पक्ष से 15 दिन से लेकर एक महीने तक रहेगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि के लिए, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव मध्यम रहेगा। इनको अपने करियर और अपने रिश्तों का ध्यान देना होगा। मेष, वृषभ, कन्या और धनु, मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण अनुकूल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। इनको करियर के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इनको अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा और इन लोगों को इस समय बड़े निर्णयों में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपके बड़े निर्णय गड़बड़ हो सकते हैं, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण का प्रभाव बेहतर और अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है, मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि,
करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, बेवजह की चिंता ना करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में धैर्य बनाए रखें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यतः बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई की मंगल कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं और बहन की रक्षा और सुरक्षा का वचन भी देते हैं। प्राचीन परंपरा ये है कि ब्राह्मणों द्वारा, आचार्यों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधी जाती है और उनकी मंगल कामना की जाती है। जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं वो यजुर्वेद का पाठ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के पर्व से करते हैं। तो मुख्यतः रक्षाबंधन के पर्व पर एक तो भाई बहन की आपसी संबंध, उनकी आपसी सुरक्षा हो जाती है, और अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं तो रक्षाबंधन का पर्व उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांधें, पहले रक्षा सूत्र को भगवान को समर्पित करें और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधेंगी। ऐसा करने से उनके संबंध मधुर बने रहेंगे, उनके संबंधों में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप जानने का। रक्षा सूत्र बांधने के पहले बहनों को उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे। दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहां पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते, रिस्पेक्ट करते। बाली की एक अद्भुत बात दूसरी यह है कि ज्यादातर घरों के बाहर गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। बाली की एक और सबसे अद्भुत बात है कि कई सौ वर्ष पहले भारत छोड़ दिया, पर सबसे ज्यादा करीब भारत के हैं। आज भी इनके नाम रामा, गणेश, सीता, देवी, दुर्गा, सबसे ज्यादा कॉमन नाम यहां पर आज भी यही रखे जाते। बाली की एक और सबसे खासियत बात है, वो ये है कि जब यहां पर सनातनीय हिंदू अपना वार्षिक त्योहार मनाते हैं तो लगभग 12 से 24 घंटे का मौन व्रत धारण करते हैं। नेपी के रूप में जब नववर्ष के रूप में मनाया जाता है तो मौन धारण करते हैं। तो अद्भुत बात यह है कि लगभग 12 घंटे के लिए एयरपोर्ट की गति भी रुक जाती है। यहां लगभग 17,000 से ज्यादा आइलैंड, छोटे छोटे टापू, 17,000 से ज्यादा, जिसमें मात्र 900 टापुओं पर जीवन है, बाकी अभी भी ऐसे ही। और ये लोग अभी भी अपने आप को भारतीय मानते, बड़े स्माइली फेस हैं, उन्मुक्त हैं, आनंदित रहते हैं, संस्कृति को लेकर चलते हैं, हर परिस्थिति में संस्कृति को लेकर चलते हैं। यहां पर प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, 6वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी आदि आदि के अनेक मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, इन मंदिरों की प्रधानता है। अब से ठीक कुछ दिन पहले हम जकार्ता गए थे। जकार्ता के पास भी एक जगह है, उसका नाम है जोग जकार्ता। वहां 11वीं शताब्दी का टेम्पल है। और कुछ दिन पूर्व ही भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां आए थे, और इंडोनेशिया और भारत का मधुर संबंध है वो और प्रगाढ़ हुआ, और उस मंदिर का संरक्षण भारत को प्राप्त हुआ। और यहां भारत से बड़े प्रगाढ़ रिश्ते हैं, भारत के लोगों को ये बहुत प्रेम करते हैं, और भारत के लोग भी बाली को और इंडोनेशिया को बहुत प्रेम करते हैं। तो यहां के लोगों की एक और सबसे अद्भुत बात है कि अपनी भाषा इन्होंने बचाए रखी, और भाषा में भी ज्यादातर शब्दों का प्रयोग ये संस्कृत का ही करते हैं। जैसे हम लोग सिर को खोपड़ी बोलते हैं, ये लोग कपाल बोलते हैं, कपाल। पति को स्वामी, प्रायः पूर्व समय में हमारे भारत में, अब तो हस्बैंड हो गया, अब हस्बैंड ही नहीं बचा, गोलू सोना मोना है? बेबी, बच्चा, बेबी, पति, बेबी, धन्य है देवी, हनी, ओ हनी मनी, अच्छा हनी, वाह, है हनु, वाह, हाँ। ये अद्भुत बात है कि बाली की एक और ये सबसे अभूतपूर्व बात कि यहाँ पूर्णमासी का उत्सव मनाया जाता। पूर्णमा का अर्थ है पूर्ण मा, यही पूर्णमा। तो वाह, मतलब पूरे बाली में जितने भी सनातनी हिंदू रहते उनका एक मंदिर होता है, हर घर का एक मंदिर, मध्य में जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। भारत के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाली के बारे में, हम यही कहेंगे
कितनी भी दूरी हो भारत से, दुनिया के जो भी लोग देखें, हमारी प्रार्थना है दूरी कितनी भी हो संस्कारों से नजदीकी इतनी ही बनाए रखनी चाहिए। जब कभी भगवान ने प्रकृति बनाई होगी तो परमात्मा ने प्रकृति बनाते बनाते एक नाटक किया था, उस बारे में हम आपको बताना चाहते कि भगवान ने जब संसार बनाया तो संसार बनाते बनाते परमात्मा पहले हर जगह मिल जाता था सबको ही, शुरू शुरू की बात। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत हुआ करती थी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भगवान बड़े परेशान होते थे, ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए, एक तो बनाया ऊपर से अब सब मुसीबतों को झेलो, परेशानियों को दूर करो। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने शंकर जी से उपाय पूछा कि कोई उपाय बताओ। तो भगवान ने उपाय, भगवान महादेव ने उपाय दिया कि एक काम करो, मंदिरों में बैठ जाओ, गांव में एक जगह, ताकि वहीं पर व्यक्ति आके मांग लिया करे। तो पहले कबीले हुआ करते थे, तो मंदिरों में जाकर के परमात्मा बैठ गया तो लोग मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगाने लगे, और मंदिर में भगवान का कोई काम नहीं बचा, पूजा तो बाद में, पहले मनोकामना पूरी करो। ये भी लंबी चाल चली, अब वहां भी थोड़ा परमात्मा को परेशानी हुई। तो परमात्मा फिर भागे भगवान श्री हरि के पास, महादेव के पास श्री हरि, कि हम तो बड़े परेशान हो गए, तो पहले तो चाहे जहां मिल जाते थे तो चलो मिल जाओ, पकड़ जाते थे तो लोग छोड़ते ही नहीं थे, हर दो तीन जन्म की तैयारी कर लेते थे। हम मंदिरों में भी लंबी लंबी लाइन है, लाइन ही खत्म नहीं हो रही। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, 8-10 गांव के एक गांव में एक मंदिर पे बैठो, हर गांव के हर मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं। अब वहां भी भीड़ बढ़ गई, वहां भी लाइन बंद ना हो, और ज्यादा जोर पड़ने लगा। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, दुनिया के एक जगह पर बैठो मात्र। परमात्मा भगवान दुनिया की एकमात्र मंदिर में जाके बैठ गया, वहां भी लंबी लाइन बढ़ गई, लोगों को पता लग गया, खबर लग गया कि ये वाला मंदिर ज्यादा चमत्कारी है, बागेश्वर वाला, यहां जाना चाहिए। तो लंबी लंबी लाइन वहां भी लग गई, और वहां भी परमात्मा को टाइम ना मिला, भगवान को टाइम ना मिला। तो भगवान बड़े परेशान हुए कि अब ऐसे कहां जाया जाए, आदमी से बचपाना बड़ा कठिन हो गया है, और आदमी है ही ऐसी खोपड़ मंजन, आदमी का नाम ही है खोपड़िया, जो सिर है उसको खोपड़ी कहते हैं, और खोपड़ी का मतलब ही है खो गई और पड़ी है, इसलिए तो खोपड़ी है, खो गई और पड़ी है, तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक है। अब परमात्मा भी हैरान खोपड़ी से, हो ही जाते परमात्मा क्या, पतियों से पूछो अथवा पत्नियों से पूछो, लंबी लंबी लाइनें इसी बात पे लगती हैं कि हमारे स्वामी की खोपड़ी बेकार है, और पतियों से पूछो क्या है, अरे क्या बताएं महाराज, हमारी घरवाली की खोपड़ी खराब है, खोपड़ी ठीक करो। और सब आदमी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे की खोपड़ी ठीक करवाने आते, भाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, लुगाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, पड़ोसी की खोपड़ी ठीक हो जाए, मित्र की खोपड़ी ठीक हो जाए, नौकर की खोपड़ियां ठीक हो जाए, मालिक की खोपड़ी ठीक हो जाए, तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक। तो भगवान एक ही जगह बैठे बैठे परेशान हो गए, भीड़ लंबी लाइन, परमात्मा ने सोचा कि क्या किया जाए कि आदमी से बचा जाए और काम भी हो जाए और आदमी के पास भी रहा जाए। तो भागे भागे गए कि बचाओ, अब तो बड़ी हालत खराब हो गई। बोले हुआ क्या, अरे बोले हालत इतनी खराब हो गई हमारी कि पूछो मत, जगह जगह लंबी लाइन लगी हुई है और आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान शंकर जी ने उस वक्त कान में एक मंत्र दिया कि हम तुम्हें एक ऐसी जगह बताते हैं जहां रहा जा सकता, और आज तक आदमी खोज रहा है। पता है कान में क्या कहा भगवान शंकर ने, आदमी के मन में जाके बैठ जाओ। मंदिरों में बैठोगे तो ये खोज लेगा, बड़े बड़े तीर्थों पर बैठोगे तो ये खोज लेगा, आदमी के दिल में जाके बैठ जाओ, ये बाहर खोजेगा अंदर नहीं खोजेगा, ये पा नहीं पाएगा, और जो अंदर खोजेगा वो पा जाएगा।
आज तक परमात्मा उसके बाद अभी भी बैठा है, अंदर बैठा है, दिल में बैठा है। बस हम लोगों ने बाहर खोजने की जिद की, कोशिश की, और आज तक तुम लगे हुए हो, हम लगे हुए हैं, बाहर खोजने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, और वो आज तक नहीं मिला। और आपके जीवन में मात्र एक दिन ध्यान की बात घटी, थोड़ी सी, वो भी आपने प्रैक्टिस की, ध्यान की यही कहा, प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, और आपको नए नए अनुभव होने लगे। और विचार करो, जब ये सच में तुम्हारे अंदर ध्यान आ जाएगा तो क्या क्या अनुभव नहीं होगा, क्या क्या नहीं घटेगा, कितना आनंद नहीं आएगा, कितना उत्साह नहीं भरेगा, कितनी प्रसन्नता नहीं भरेगी। लेकिन उसमें भी एक बात है, वो पते की बात है, ये मन तुम्हें फिर चालबाज में फंसाएगा। घर जाते ही कहेगा कि चलो ऊर्जा संचय तक तो ठीक था, अब कौन रोज सुबह सुबह उठे, 3 बजे उठे, फिर ये करे, फिर ये करे, और उससे हो भी क्या जाना है। कुछ चीजें, हर चीजें हो जाने के लिए नहीं की जाती हैं, की जाती हैं करने के लिए। मन और मकान दोनों को बीच बीच में साफ किया जाना चाहिए। मकान को बार बार साफ नहीं करोगे तो जाले पड़ जाएंगे, और मन को बार बार साफ नहीं करोगे तो विचारों के भी जाले पड़ जाएंगे। दोनों जगह रहने जैसी हैं, मन भी और मकान भी। इसलिए मन को साफ किए जाने का सर्वोत्तम उपाय है विचारों की शुद्धि। और जितने बेहतरीन विचारों की शुद्धि आपकी होगी, उतने ही परे देखना, बेहतर समझना, बेहतर सुनना और बेहतर जीना, आप जीना सीख पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो बहुत कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें परिस्थितियों का बहुत फर्क नहीं पड़ता, ना प्रभाव का ना अभाव का, क्योंकि उनके पास एक मंत्र होता है, और वो मंत्र आज हम आपको देना चाहते। उनके पास एक जीने का जो मंत्र होता है वो ये होता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या छोड़ना चाहिए, वो इस पर ध्यान देते हैं कि क्या पकड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए, ये छोटी सोच के लोगों की बुद्धि की परिस्थिति है। क्या पकड़ना चाहिए, ये बेहतर सोच के लोगों की स्थिति है। और इसके ऊपर भी एक स्थिति है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए, इन दोनों से भी ऊपर उठा जा सकता है कि ना कुछ छोड़ना चाहिए ना कुछ पकड़ना चाहिए। एक आदमी हमारे बहुत अच्छे से सुआ करते थे, तो हमारे साथ वो भी बहुत चाय पीते थे, बड़े फुरकेबाज थे चाय के मामले में हमारे जैसे। अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई तो हमारे पास चाय आई, तो हमने इशारा किया अपने चेलों को कि जरा भाई इनको भी लाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। हम पहली बार चौंके कि लगभग 8-10 साल की दीक्षा हो गई उनकी, उन्होंने चाय को पहली बार मना किया, थोड़े पुराने चेले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने चाय छोड़ दी। हमें बड़ी खुशी हुई, हम कहा चलो बेहतर हुआ, कम से कम गुरु चेला दोनों एक ही नरक में तो नहीं जाएंगे, अगर चाय पीने से नरक मिलता होगा तो कम से कम दोनों एक ही जगह तो नहीं मिलेंगे, तुम कुछ दिन रहोगे फिर दूसरी जगह जाओगे। लेकिन बाद में खबर आई कि वो दूसरे कप में कुछ पी रहे थे, तो हमें बड़ा अचंबा लगा, तो हम उनके पास पहुंच गए, उनका अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने चाय छोड़ दी, बोले नहीं नहीं कॉफी पी रहे हैं। तो चाय छोड़ दी ये बात अलग है, पर कॉफी पकड़ ली ये बात अलग है थोड़ा। अब कहो कि आप
इसमें भी आपको प्रसन्नता है, ठीक है। हम इन दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठने की बात आज करना चाह रहे कि कुछ ना पकड़ा जाए ना कुछ छोड़ा जाए। जीवन में पकड़ना ही है तो केवल परमात्मा को पकड़ा जाए। मन बड़ा जादूगर है, मन में ही सब है, मन ही दुख की स्थिति पर ले जाता हो, मन ही सुख की परिस्थिति पर ले आता। दुख और सुख कुछ नहीं है, मन की अवस्था का नाम दुख है और मन की व्यवस्था का नाम सुख है, मन की स्थिति का नाम ही आनंद है। ठीक अभी आपको पता लगे कि आप जो बाली आए हैं और आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे, हो सकता पार्टी वार्टी कर दे, लेकिन तब तक अचानक दूसरी न्यूज ब्रेकिंग हो कि तुम्हारे पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लगी। तो जो मन अभी अभी प्रसन्न हुआ था वो तुरंत थोड़ा सा डाउन होगा कि 2 करोड़ की उसे क्यों, वो तो नास्तिक है, अधर्मी है, पापी है। यही मन की परिस्थिति सुख दिखाती है, यही मन की परिस्थिति दुख दिखाती है। और मन के जाल को आपने यदि समझ लिया तो समझो जीवन के जाल को आपने समझ लिया, और मन के जाल को ना समझा तो जीवन का जाल तुम्हें समझना आएगा। ये मन तुम्हें नई नई फैंटेसी देगा, नए नए भाव देगा। जो कर चुके होगे वो कहेगा ये तो कुछ नहीं है और ये बड़ा आलसी है, इसे जब पूजा तुमसे नहीं करवानी होगी तो

0: मन हार जाएगा और व्यक्ति जीत जाएगा। मन कहता है कहां पड़े हो, कौन पूजा पाठ करे, बार बार जन्म थोड़ी मिलना है, बार बार थोड़ी आना है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। ये मन की चालें, मन को पता है कि ऐसी बातें बोलने से बार बार नहीं आना है, ये गलतियां करेगा, ये पड़ेगा फंसेगा जाल में। इसलिए मेरे पागलो, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन का प्रभाव जीवन पर होता है, और जीवन का प्रभाव भाग्य पर होता है। आप जो सोचोगे वो शब्द बनेगा, जो शब्द बनेगा वो तुम्हारा कर्म बनेगा, और जो तुम्हारा कर्म बनेगा वो तुम्हारी आदत बनेगी, और जो आदत बनेगी वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। पूरा खेल है सोच का, पूरा खेल है मन का। जीवन को बेहतर करना है, सोच को बेहतर कर लिया जाए। जीवन को प्रसन्न करना है, मन को प्रसन्न कर लिया जाए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
8: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है कभी।

0: पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
1: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
3: आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
4: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
5: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
6: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
7: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
7: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
9: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
3: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
10: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
11: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
12: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
13: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
6: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है। और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
14: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
0: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
16: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
17: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
18: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
1: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
19: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 ने घर मंगा सकते।
20: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए रिश्तों का सेलिब्रेशन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, Shaping Future, Creating Leaders.
3: देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों ने सेना के जवानों को बांध दिया। रक्षाबंधन पर सबसे पहले महाकाल को बांधी गई राखी। भस्म आरती में पुजारी परिवार की महिलाओं ने निभाई परंपरा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। देश भर से बाबा के भक्त करेंगे शिरकत। 15 किलोमीटर लंबी है यात्रा। सावन पूर्णिमा पर आज लगा रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण का असर। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में खगोलीय घटना के दीदार। बाढ़ प्रभावित नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। भारतीय चेस स्टार आर प्रज्ञानंदा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि। ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: आज लगा साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। खगोल प्रेमियों के लिए साबित होने वाला है खास मौका। चंद्र ग्रहण को अमेरिका समेत कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 6:53 से दोपहर 12:32 तक रहेगा ग्रहण। करीब 5.5 घंटे चलेगी ये खगोलीय घटना। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने से सूतक काल का नहीं होगा कोई भी प्रभाव, और आज रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का है संयोग। देश के सभी मंदिरों के कपाट सामान्य दिनों की तरह पूजा के लिए रहेंगे खुले। त्योहार मनाने में भी नहीं आएगी कोई अड़चन। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार। इस दिन भाई बहन की बहन भाई की कलाई पर बांधती है राखी। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, प्यार और विश्वास की निशानी। भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन और उपहार देते हैं। ये त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पीछे चंद्र और इंद्राणी, कृष्ण द्रौपदी और यमराज यमुना जैसी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी। आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिन भर रहेगा मौजूद। बहने सुबह, दोपहर और शाम किसी भी समय बांध सकेंगी राखी। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन लाल, पीले, नारंगी या गुलाबी जैसे शुभ और चमकीले रंग के कपड़े पहनना माना जाता है बेहद खुश। उज्जैन में रक्षाबंधन पर उतारी गई बाबा महाकाल की विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रक्षाबंधन महोत्सव, भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को बांधी गई पहली राखी। महिलाएं बाबा महाकाल को बांधती हैं रक्षा सूत्र, महाकाल के दरबार से होती है रक्षाबंधन की शुरुआत, 125,000 लड्डुओं का लगा भोग। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया रक्षाबंधन, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलला के लिए भेजी गई है खास राखी, मान्यता है कि ये राखी उनकी बहन शांता की ओर से है। रामलला की राखी केले के तने के रेशों से तैयार की गई है, इसमें मधुबनी कला और रेशमी धागों का भी इस्तेमाल हुआ। श्रृंगी ऋषि आश्रम की ये राखी रक्षाबंधन पर रामलला को चढ़ाई जाएगी, हर साल आश्रम से रामलला के लिए राखी भेजने की परंपरा। दिल्ली के कृष्णा नगर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, बाजारों में त्योहार को लेकर नजर आ रहा है खास उत्साह। रक्षाबंधन से पहले महिलाएं हाथों में लगवा रही हैं मेहंदी, बाजारों में मेहंदी लगाने वालों के पास बड़ी डिमांड। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, मुस्लिम लड़कियों ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी। भद्रवाह में बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व, बच्चियों और महिलाओं ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर बांधी राखी। महिलाओं ने थाली उतारकर, तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर जवानों को बांधी राखी। भारतीय सैनिकों ने दिया छात्राओं को भेंट किया उपहार। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने जवानों में बांधी राखी। कोलकाता में बंगाल मंत्री दिलीप घोष ने भी बंधवाई, बांग्ला के मंत्री दिलीप घोष ने बंधवाई राखी, बहनों को दिया गया आशीर्वाद। लखनऊ में बहनों ने जेल पहुंचकर अपने कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सलामती की दुआ। रक्षाबंधन को लेकर प्रशासन की तरफ से किए गए विशेष इंतजाम, बहनों ने भाइयों से की मुलाकात। रायपुर के सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर, महिलाओं ने अपने कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। सेंट्रल जेल पर सुबह से राखी बांधने के लिए महिलाओं के लिए लगी भीड़, महिलाओं ने कैदी भाइयों को राखी बांधकर उनकी सलामती की कामना की। प्रयागराज में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए चलाई गई 650 बसें, 29 अगस्त तक चलेगी बस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी, राष्ट्रपति ने एक्स हैंडल पर लिखा, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक। गृहमंत्री अमित शाह ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी, राहुल गांधी अखिलेश यादव ने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर पर रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन, बच्चियों ने सीएम का मुंह मीठा कर बांधी राखी। अहमदाबाद पुलिस की शी टीम ने पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के साथ मनाया रक्षाबंधन पर बांधी राखी। जमशेदपुर में स्थानीय लोगों को दिव्यांग बच्चियों और महिलाओं ने बांधी राखी, बच्चियों को उपहार के भी। नीमच में बनी अनोखी शिव राखी, 13 रुद्राक्षों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उकेरी गई है तस्वीर। राखी के बीच में दिखेंगे मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव, यानी एक छोटी राखी में समाई शिव की पूरी आस्था। रुद्राक्ष की बेहद ही छोटी सतह पर हुई कमाल की चित्रकारी, कलाकार ने सिर्फ एक दो बाल वाले महीन ब्रश से ये तस्वीर बनाई है। नीमच के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने तैयार की है ये खास राखी, इसमें महाकाल से लेकर सोमनाथ और केदारनाथ तक के चित्र। रक्षाबंधन पर ये राखी बनी आकर्षण का केंद्र, रुद्राक्ष, ज्योतिर्लिंग और पशुपतिनाथ का संगम इसे बनाता है बेहद खास।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए रिश्तों का सेलिब्रेशन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद। यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है। ये इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, दिन भर रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर सबसे पहले महाकाल को बांधी गई राखी, भस्म आरती में पुजारी परिवार की महिलाओं ने निभाई परंपरा। नेताओं ने भी मनाया राखी का त्योहार, रक्षा मंत्री को एनसीसी कैडेट्स ने बांधी राखी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी बच्चों ने बांधी राखी। सावन पूर्णिमा पर आज लगा रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण का असर, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में खगोलीय घटना का दीदार। बाढ़ प्रभावित नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। भारतीय चेस स्टार आर प्रज्ञानंदा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार मनाया जा रहा है। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे राखी की कहानी की। आपको बताएंगे कि युगों युगों से किस तरह ये पावन परंपरा चली आ रही है। आपको बताएंगे कि किस तरह से भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन। एक ऐसा दिन जब बहनों के स्नेह का धागा रक्षा का कवच बनकर भाइयों की कलाई पर चमकता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि ये वो शुभ और खास दिन है जब बहनें भाइयों की सलामती की दुआएं करती हैं। इस खास दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। क्या हैं वो मान्यताएं, जानेंगे और बताएंगे कि रक्षाबंधन को लेकर हमारे देश में कैसी कथाएं हैं। कहते हैं कि राखी के इस पावन रक्षा सूत्र ने कई बार रिश्तों की मर्यादा रखी है। तो चलिए जानते हैं रक्षा सूत्र की मर्यादा की वो पावन कथाएं जो युगों युगों से हमारी आस्था बनकर सफर करती आ रही हैं, जिसने भाई बहन के रिश्तों को इतना प्रगाढ़ कर दिया है कि वो एक वचन बन गया, एक कर्तव्य बन गया, रिश्तों की ऐसी अटूट डोर बन गई जो कभी नहीं टूट सकती। और साथ ही बात करेंगे राशि और राखी के सहयोग की। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है, जो मुख्य रूप से सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सनातन परंपरा में इस पर्व की जड़ें बेहद गहरी हैं, जिसका ताना बाना देवराज इंद्र से लेकर भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी तक की पावन कथाओं से बुना है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में दर्ज ये पौराणिक मान्यताएं ये दर्शाती हैं कि कैसे एक छोटा सा रक्षा सूत्र हर युग में संकट टालने, वचन निभाने और रिश्तों को अमर बनाने का सबसे बड़ा माध्यम बना।

0: रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की वो डोर है जो भाई बहन को जीवन भर एक दूसरे से जोड़कर रखती है। रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है, क्योंकि इस पवित्र धागे में बंधी है युगों युगों पुरानी संस्कृति। हमारी पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का महत्व बेहद गहरा है। रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है और इससे जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया और इस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकट के समय द्रौपदी का साथ निभाने का वचन दिया। द्रौपदी के चिरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया।
1: कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का, अभय वर देने का था, इस प्रकार से हम मानते हैं।
0: रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप रख कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे और बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी, लेकिन राजा बलि ने विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई और उन्होंने आम महिला का रूप धारण किया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और बदले में राजा बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आई।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है। वक्त बदला, दौर बदले, लेकिन रक्षाबंधन के इस धागे का मोल कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर ये धागा सजाती है तो इसमें भाई की लंबी उम्र की दुआ और भाई की आंखों में बहन की सुरक्षा का अनकहा वादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।
2: रक्षाबंधन का त्योहार परंपराओं, रीति रिवाजों और भावनाओं का एक ऐसा जीवंत उत्सव है जो हर साल भाई बहन के रिश्ते में नई मिठास घोलता है। सावन की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व केवल कलाई पर धागा बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुबह के स्नान ध्यान से लेकर देवताओं को पहली राखी अर्पित करने, थाली सजाने, भाई के माथे पर अक्षत तिलक लगाने और मिष्ठान खिलाने के अलावा सुख दुख में साथ निभाने के पवित्र संकल्प तक फैला हुआ है। पीढ़ियों से चली आ रही ये खूबसूरत परंपराएं आज भी आधुनिक दौर में हमारे पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती से थामे हुए हैं। ये त्योहार कितना मंगलकारी है और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में और विस्तार से जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।

एक ऐसी अद्भुत परंपरा जिसमें समाया है भाई बहन का प्यार, एक ऐसा प्यारा बंधन जिसका पालन अनादि काल से किया जा रहा है, रक्षा बंधन जिससे जुड़ी है मर्यादा, एक ऐसी पावन तिथि जो निश्चल प्रेम को अभिव्यक्त करती है। अद्भुत है रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी मान्यताएं। रक्षाबंधन पर जहां बहनें अपने भाई के सुखी जीवन और लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन निभाते हैं। आपको बताते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार कितना मंगलकारी है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। मान्यता है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उसकी मंगल कामना की जाती है। इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरम्भ करते हैं। इस दिन शिक्षा का आरम्भ करना भी अच्छा माना जाता है। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं।

0: प्रथा शास्त्रों में बताई गई है ये भी जानिए।
1: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है, या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: माना जाता है कि ये बंधन तो विश्वास का है और जो आपकी रक्षा का दायित्व निभाता है वही आपका भाई हो सकता है। अगर आपका कोई भाई नहीं तो भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के अलावा आप किसे अपना भाई बना सकते हैं ये जानिए।
1: किसी भी हम अपने भाई को, चाहे वो हमारा मानसिक भाई हो, शारीरिक हमारी माता का सहोदर नहीं है, तब भी जो हमें रक्षा करता है और सबसे पहले हमारी धरती माता की रक्षा करने वाले हमारे वो भाई जो सीमाओं पर हमारे लिए गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, सबसे बड़े रक्षक हमारे वो, उनको भाई बनाया जा सकता है। लेकिन देवताओं में गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण को अपने भाई के स्वरूप में मानकर आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं।
0: तो देखा आपने कितना अद्भुत मंगलकारी रिश्तों को अटूट बंधन में बांधने वाला त्योहार है रक्षाबंधन।
2: रक्षाबंधन का पावन पर्व भारतीय संस्कृति की उस महान महिमा का प्रतीक है जहां एक नाजुक सा धागा भाई बहन के रिश्ते को जन जन के अटूट बंधन में बांध देता है। ये त्योहार केवल स्नेह की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि त्याग, निष्ठा और कर्तव्य का वो रूप है जिसके बारे में जानकारी हमारे शास्त्रों और इतिहास में मिलती है। इस पर्व की असली दिव्यता इसके सात्विक विधि विधान में छिपी है, जब शुभ मुहूर्त और पावन बेला में देवताओं का स्मरण, कुमकुम, अक्षत का दिव्य तिलक, आरती की मंगल लौ और मंत्रोच्चार के बीच कलाई पर सजने वाला रक्षा सूत्र मिलकर इस पूरे उत्सव को एक अलौकिक त्योहार से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक अनुष्ठान बना देते हैं। तो चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है इस त्योहार का विधि विधान।

0: दुनिया का सबसे पावन त्यौहार जब भाई और बहन का दिखता है प्रेम और समर्पण, जहां विश्वास का रक्षा सूत्र बन जाता है जीवन भर का बंधन, एक ऐसा अटूट रक्षा कवच जब भाई हर संकट में बनता है अपनी प्यारी बहन की ढाल और बहन करती है अपने भाई की सदैव मंगल कामना। अद्भुत है ना रिश्तों की ऐसी पावन डोर, जिसकी महिमा धर्म ग्रंथ और पुराणों में भी गाई गई है। अब बताते हैं कि आपको भाई की कलाई पर राखी बांधनी कैसी है और कैसे मनाना है रक्षाबंधन का त्यौहार।
1: करना कैसे चाहिए, भाई के माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और भाई की आरती उतार करके उसको माला पहनाएं, फिर कुछ उसको मीठा खिलाएं, उसके बाद में उसके दाहिने हाथ के कलावे पर, दाहिने हाथ पर उसको कलावा या मोली या जो भी आप राखी लाई हैं, रक्षा सूत्र लाई हैं, उसको बांधना चाहिए। ये विधि है।
0: थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें, जिससे भाई की आरती करें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा कर बैठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और आरती करें। फिर मिठाई खिलाकर भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। उसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आप अपने भाई को राखी बांधते समय कुछ मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करना भाई के जीवन में खुशहाली और सफलता का कारक होता है।
1: तेन बद्धो बले राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रवृन्नामि रक्षे माचल माचला, इस प्रकार से अथवा कोई भी मांगलिक मंत्र बोल करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः बोल करके, अगर मंत्र नहीं बोल सकते अपने भाई के कलावे जो है हाथ पर अपना रक्षा सूत्र बांधिए, और इस प्रकार से यदि आप राखी मनाएंगे तो उसका आपको जड़ा अच्छा लाभ होगा, उसका फल मिलेगा।
0: मान्यता है कि रेशम का ये धागा सिर्फ एक रस्म भर नहीं बल्कि ये संबंधों में मधुरता और सलामती का रक्षा सूत्र है। परंपरा है कि अगर बहन भाई की कलाई में तीन गांठ बांधती है तो इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चलिए अब आपको बताते हैं तीन गांठों का मतलब और तिलक लगाने की सही विधि। अनामिका उंगली से ललाट पर टीका लगाएं, फिर उसे अंगूठे से माथे के ऊपर तक कर दें। तिलक पर अक्षत लगाकर भाई की लंबी उम्र की कामना करें। रक्षा सूत्र बांधते समय तीन गांठें लगाना शुभ कार्य होता है। पहली

0: गांठ में बहन भाई की लंबी आयु मांगती है। दूसरी में बहन भाई से जीवन भर स्वयं की रक्षा का प्रण चाहती है। तीसरी गांठ में बहन भाई के जीवन में ताउम्र मधुरता की कामना करती है। कई बहनें अपने भाइयों को भगवान के स्वरूप वाली राखी भी बांधती हैं, जो कि सर्वोत्तम मानी गई है। लेकिन तब क्या करें जब उस राखी को कलाई से उतारना पड़े।
1: लेकिन यदि आप भगवान के स्वरूप वाली राखी लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उस रक्षा को जब आप खोल देते हैं, कहीं भी यत्र यत्र स्थान पर रख देते हैं, तो उससे बड़ा आपको दोष लगता है। अगर भगवान के स्वरूप राखी बांधे, रक्षा सूत्र बांधे, तो ये ध्यान रखें कि उसको कूड़े में न फेंके, उसको इधर उधर न रखें, उसको सही जगह पर रखें और सही जगह उसका या तो फिर जल प्रवाह कर दें, तो उस राखी का आपको विशेष फल मिलेगा।
0: तो देखा आपने, रक्षाबंधन के विधान में भाई के जीवन के व्यवधान दूर करने की कामना छिपी है।
2: राखी एक डोर है प्रेम और दोस्ती के धागों से बनी हुई, और ये प्यारा सा त्योहार उसी रिश्ते का तो प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी है। और जहां तक बात गिफ्ट की हो, तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंग को और गहरा कर सकती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांधना उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहन के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए, तो उसके जीवन में भी मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाई को कौन सी राखी बांध सकती हैं, और भाई अपनी बहन को ढेर सारे प्यार के साथ और कौन सा उपहार दे।
0: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वही अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंडबैग, मैरून कलर का हैंडबैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं, तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं, उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिल्वर कलर के क्लोथ्स गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधे। और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कोई स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाए। वही बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं। साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी लेके दे सकते हैं। आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वही बात करते हैं धनु राशि की कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। शनि की दो राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर फिरोजी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की हैं तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए। और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधे और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं कुछ वायरल खबरें जो आपको हंसाएंगी भी और गुदगुदाएंगी भी।
7: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के सनों के साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की ये बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसी आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखी सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए रिश्तों का सेलिब्रेशन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, दिन भर रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त।
8: इंदौर में खजराना गणेश को अर्पित की गई 40x40 इंच की अनूठी राखी, भव्य राखी में दिखी राष्ट्र भावना की थीम।
7: वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मनाया जा रहा राखी का त्योहार, बड़ी संख्या में महिलाओं ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की राखी।
8: नेताओं ने भी मनाया राखी का त्योहार, रक्षा मंत्री को एनसीसी कैडेट्स ने बांधी राखी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी बच्चों ने बांधी राखी।
7: नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, त्रिशूली हाइड्रोपावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया गया।
8: भारतीय चेस स्टार आर प्रज्ञानानंदा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
7: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
8: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
7: आज धूमधाम से मनाया जा रहा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार। इस दिन बहन भाई की कलाई पर बांधती है राखी। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, प्यार और विश्वास की निशानी है। भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन और उपहार देते हैं। आज लगा साल का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण, खगोल प्रेमियों के लिए साबित होने वाला है ये खास मौका। उज्जैन में रक्षाबंधन पर उतारी गई बाबा महाकाल की विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को बांधी गई पहली राखी।
8: जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, मुस्लिम लड़कियों ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी। भद्रवाह में बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व, बच्चियों और महिलाओं ने बीएसएफ जवानों की कलाई पे राखी बांधी। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने जवानों को बांधी राखी। कोलकाता में बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बंधवाई राखी, बहनों को दिया आशीर्वाद। लखनऊ में बहनों ने जेल पहुंचकर अपने कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, भाइयों को राखी बांधवाकर उनकी लंबी उम्र उनके सलामती की दुआ की।
7: अकोला में गणपति बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां हो रही तैयार, एक मिट्टी से बनी ये मूर्तियां विसर्जन के बाद आसानी से घुल जाती हैं। पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव पिछले 5 साल से बना रही है मिट्टी के गणपति, उनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं, आस्था के साथ प्रकृति को बचाना है। महाराष्ट्र स्टाइल की ड्रेस वाली गणपति मूर्तियों की डिमांड बढ़ी, अलवर के कारीगर इन्हें करीब 1 हफ्ते में तैयार कर रहे। बाबा पालकेश्वर नाथ मंदिर में भव्य झूलन मेला शुरू, मंदिर की सजावट ने किया मंत्रमुग्ध। झूलन मेले के मौके पर भोलेनाथ का किया गया खास श्रृंगार, बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी।
8: तिरुचिरापल्ली में अवनी पूर्णिमा पर शिव भक्तों ने कावेरी नदी की भव्य आरती की, वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने सुख शांति की कामना की। तिरुचेंदूर के समुद्र तट पर अवनी पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भक्तों ने मिट्टी के दीप जलाकर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पुरी में बलभद्र की जयंती पे श्री जगन्नाथ मंदिर की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल। आज रक्षाबंधन पर अमरनाथ यात्रा होगी संपन्न, 3 जुलाई को शुरू हुई थी यात्रा। बांदीपुरा में आज से शुरू हुई छोटा अमरनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में साधु संत भक्ति भाव से कर रहे यात्रा, उपायुक्त जफर हुसैन ने दिखाई हरी झंडी।
7: 16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म राणा बाली, इंटरनेशनल एक्टर अर्नुल वास्तु भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म खोसला का घोसला 2 पार्ट 2 रिलीज, लगभग 20 साल के बाद आ रहा सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा का ओटीटी पर रिलीज, नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी बॉबी देओल की बंदर, Z5 पर स्ट्रीम हुई। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध, सुमित व्यास, दीना गुप्ता, देविन भोजानी और अमायरा दस्तूर का अहम रोल इसमें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट बिल्कुल तैयार है।
7: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
8: आज मनाया जा रहा बहन और भाई के प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन, सरहद पर जवानों को भी बांधी गई राखी।
7: जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में कड़ी सुरक्षा के बीच में छोटा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, देशभर से बाबा के भक्त करेंगे शिरकत।
8: आज लग रहा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा इसका असर, सूतक काल भी यहां पर नहीं होगा मान्य।
7: बाढ़ प्रभावित नेपाल में मुश्किल के बीच में जिंदगी बचाने का काम तेज, लापता लोगों की भी तलाश लगातार जारी।
8: भारतीय चेस स्टार आर प्रज्ञानानंदा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज, ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने।

0: और चलिए रक्षाबंधन के इस पर्व की सबसे पहले आप सभी को जीएनटी मेरी तरफ से और सरगम की तरफ से शुभकामनाएं। देखिए त्योहार मनाइए अच्छे से खुशियों के साथ, यही हमारा मकसद है और देखिए यही इस चैनल का मकसद है कि उत्सव के तमाम रंग आप तक पहुंचाएं। तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में राखी की रौनक है, बाजार गुलजार है, मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी है और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली मुंबई समेत तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, और मैं ये कहूँ कि रक्षाबंधन की जो वाइब्स है ना वो सुबह से ही आ रही है और हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन की मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज का दिन ही इतना खास है क्योंकि आज के दिन का इंतजार बहनों और भाइयों दोनों को ही बहुत लंबे समय से होता है शगुफ्ता ने, क्योंकि आज जो बहनें हैं भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाली हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करने वाली है और भाई भी बहन को आशीर्वाद देने वाला है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं त्योहार की जो जगह जगह से सामने आ रही हैं। आपको बता दें बहुत ही लंबे समय से जीएनटी आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा था किस तरीके से बाजारों में राखियों की रौनक साफ देखने को मिल रही थी और साथ ही में आखिरकार आज जो त्योहार जिसका लंबे समय से इंतजार है वो आ गया है। अगर राखियों की बात करें शगुफ्ता तो कौन कौन सी राखियां हैं जो ट्रेंड में है उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं।
0: हमने जितने भी शोज किए ना सरगम जीएनटी पर तो जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ बात की उन्होंने कहा कि लाल रंग का रक्षा सूत्र सिंपल सा धागा अगर आप बांध देती हैं ना उसकी वैल्यू इन ट्रेडिशनल और मॉडर्न राखी से कहीं ज्यादा है। लेकिन आजकल देखिए ट्रेंड्स के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
1: सही बात है,
0: गोल्ड सिल्वर की राखियां आपको बाजार में मिल जाएंगी अगर देखिए आप मॉडर्न तरीके से इस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहती हैं, अपने भाई के हाथों पर आप सोने चांदी की राखी को सजाना चाहती हैं। तो देश की सरहद पर भी देखिए राखी का प्यार पहुंचा है, किसी ने जवान की कलाई पर राखी बांधी है तो किसी ने तिलक लगाकर उनको मिठाई खिलाई है और मिठाई भेजी है और यही तो देखिए रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक छोटा सा धागा होता है लेकिन रिश्ते बहुत मजबूत कर देता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई, इस दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को राखी भी अर्पित की।
1: बिल्कुल, देखिए इसी तरह वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित की गई। मध्य प्रदेश के नीमच में तो आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ 12 रुद्राक्षों पर विशेष किस्म के ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म मिनिएचर चित्र उकेरे गए, साथ ही बीच में एक रुद्राक्ष पर पशुपतिनाथ महादेव का चित्र भी बनाया गया है। क्योंकि शगुफ्ता बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत से घरों में ये कल्चर है कि भाई बहन एक दूसरे के साथ ये रक्षाबंधन का त्योहार बनाए उससे पहले भगवान को राखी अर्पित की जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आपको बता दें आज रक्षाबंधन का त्योहार तो मनाया ही जा रहा है और साथ ही आज श्रावण पूर्णिमा भी है और आज ही रक्षाबंधन का पर्व भी है जैसे मैंने आपको भी बताया। लिहाजा महाकाल के दरबार में आज रक्षाबंधन का पर्व भी बेहद उल्लास के साथ मनाया गया। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सावन महीने के अंतिम दिन बड़ी संख्या में धर्मालु महाकाल मंदिर पहुंचे, रोजाना की तरह महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। आप देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड पे तस्वीर है किस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है पंचामृत से। ओम नमः शिवाय के जाप के बीच बाबा महाकाल का मनोहारी श्रृंगार भी हो रहा है और इसके बाद परंपरा अनुसार बाबा महाकाल को भस्म भी अर्पित की गई।
0: भस्म भूत होने के बाद बाबा महाकाल की सुबह की पहली आरती की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो बताया आपको सरगम ने। इसके बाद पुजारियों और उनके परिवार द्वारा एक राखी बनाई गई जो भगवान महाकाल को समर्पित की गई। इस दौरान भगवान को 125,000 लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया। उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वेश्वर का विशेष श्रृंगार हुआ। प्रेम विश्वास और रक्षा के इस पर्व पर देखिए मंगला आरती में भगवान को आस्था की पावन राखी अर्पित की गई।
1: बिल्कुल, देखिए मंगला आरती के बाद आम भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए। सावन पूर्णिमा के दिन महादेव सपरिवार झूलन उत्सव मनाते हैं जिसमें बाबा रुद्राक्ष के झूले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे में मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें भी लगी हुई हैं और बाबा का श्रृंगार भी किया जा रहा है।
2: महाकाल मंदिर में श्रद्धा भक्ति और परंपरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। देश की सबसे पहली राखी भगवान महाकाल को बांधी गई। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई। इसी दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को राखी अर्पित की। मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों से मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों की शुरुआत सबसे पहले भगवान महाकाल के आंगन से होती है।
3: की पूर्णिमा है जिस दिन भाई जो रक्षाबंधन मनाया जाता है भाई के साथ बाबा के साथ आज हमने मनाया सबसे पहली राखी उन्हें जो पुजारी परिवार के द्वारा चांदी की उन्हें अर्पित की गई और उनसे कामना की गई कि आप सभी की रक्षा करें हमारे भाइयों की हमारे बेटों की हमारे पिता की और जितने भी विश्व में हमारे भाई हैं उन सब की आप रक्षा करें और ऐसे ही हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
2: भगवान महाकाल के लिए राखी तैयार करने वाली पुजारी परिवार की महिलाओं ने पूरे सावन माह में व्रत उपवास रखा। करीब एक हफ्ते की मेहनत के बाद उन्होंने अपने हाथों से बाबा महाकाल के स्वरूप और प्रिय प्रतीकों को ध्यान में रखकर करीब 2 फीट की विशेष राखी तैयार की। इस विशेष राखी को रेशमी कपड़े रेशमी धागे और आभूषणों से तैयार किया गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख और गौ माता को भी स्थान दिया गया।
3: हम लोगों जो पुजारी परिवार होता है वो 1 महीना पहले से ही जुटता है और उसके अंदर रुद्राक्ष त्रिशूल और जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है वो बाहर से भी आती है और घर में भी बैठकर जुटाई जाती है और उससे फिर राखी बनाई जाती है और फिर वह राखी सबसे पहले अर्पित की जाती है।
2: राखी को आकर्षक बनाने के लिए इसमें कांच वर्क मोरपंख और रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही बाबा महाकाल के प्रिय त्रिनेत्र ओम और त्रिपुंड को भी राखी के डिजाइन में शामिल किया गया। पर्व की शुरुआत तड़के होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती से हुई। सुबह सबसे पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान करवाया गया, फिर दूध दही घी शहद और फूलों के रस से बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। ओम नमः शिवाय के जाप के बीच भगवान महाकाल का मनोहरी श्रृंगार हुआ। इसके बाद परंपरा अनुसार बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। भस्म भूत होने के बाद बाबा महाकाल की सुबह की पहली आरती की गई।
4: भावों को पंचामृत से अभिषेक किया गया, दूध दही से शक्कर घी फलों के स्नान से फलों के रस से स्नान कराया गया, विजया से स्नान कराया गया, इस तरह से स्नान कराया गया, सुगंधित द्रव्य से स्नान करा के बाबा को विशेष श्रृंगार हुआ। बाबा को भस्म चढ़ी और आज राखी चढ़ी। आज पुजारी परिवार की तरफ से सर्वप्रथम राखी हमारे परिवार की महिला बहनें बनाती है और आज वो चढ़ी। उसके बाद भक्तजन भी लाते हैं, कोई देश विदेश से कोई भक्त अपने मनोकामना करते हैं, बाबा महाकाल को कोई भाई मानते हैं तो उसको लेके आते, तो वो भी सब राखी बाबा को हमने अर्पण किए।
2: सावन के आखिरी दिन महाकाल की इस विशेष पूजा आरती में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु रात से ही मंदिर के बाहर जुटने शुरू हो गए थे। बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार और आरती देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे। कई महिलाओं ने महाकाल को आरती समर्पित की।
5: हम स्पेशली आज महाकाल के दर्शन के लिए आए थे, हमने शाम को संध्या आरती करी थी, बहुत खूबसूरत बाबा के आकस्मिक हमें दर्शन मिले और हमारा मन गदगद हो गया। जय महाकाल।
6: रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, आज हमने बाबा को अपने हाथों से राखी बनाकर बाबा को भेंट करी है और बाबा सब भाई बहन की रक्षा करे, वो सबकी ऐसी मनोकामना पूर्ण करे।
7: माँ पर्व पे बाबा को राखी सबसे पहले समर्पित की गई है पुजारी परिवार द्वारा और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उनने मेरी राखी स्वीकार करी। मैं मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बाबा सब पे ऐसी कृपा बनाए रखे।
2: बाबा महाकाल को इस विशेष अवसर पर 125,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया जिसे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में बांटा गया। देश भर में उज्जैन इकलौता ऐसा स्थान है जहां इतनी सुबह आरती पूजन का क्रम शुरू होकर रात करीब 11 बजे शयन आरती तक चलता है। रक्षाबंधन के दिन महाकाल मंदिर में भक्ति और उत्सव का ये अनोखा संगम जितना अलौकिक था उतना ही अविस्मरणीय। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, और साथ ही एस्ट्रोलॉजर संजय शर्मा जी हमारे साथ जीएनटी पर जुड़ गए हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों को ही रक्षाबंधन के इस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। श्रुति जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए रक्षाबंधन का चूंकि त्यौहार है तो इस त्यौहार को मनाने का सही वक्त, अभिजीत मुहूर्त, शुभ वक्त जो लोग भी जानना चाहेंगे। देखिए हमारे जैसे लोग जो दफ्तर में बैठे हैं पूरा का पूरा दिन, हालांकि हमने कल डिस्कस किया है कि पूरा दिन ही शुभ है, क्या है सही वक्त, किस तरह से बांधी जाए राखी और किस घड़ी में बांधी जाए राखी?
8: गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, और रक्षाबंधन की तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन को समझना पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रक्षाबंधन का मतलब है आप बांध रहे हैं कुछ ऐसा, कुछ सूत्र, रक्षा का सूत्र, ताकि सामने वाले की रक्षा हो सके और कल को जो जिससे आपको उम्मीद भी है कि हो सकता है ये मेरी रक्षा करेगा। तो इसलिए ये इस प्रकार से जो है पर्व को मनाया जाता है। और ज्योतिष में खासतौर पर देखें ये श्रावण मास की पूर्णिमा, लूनर फेस्टिवल है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को ही ये रक्षाबंधन का होता है, क्योंकि इसके बाद जो है भाद्रपद और अश्विन का जो मास शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, तर्पण आदि इत्यादि जो हम करते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति जो है वो इस तरह की होती है कि उतनी अनुकूल नहीं होती, इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। अब बात आती है कि भाई किस समय पे बांधा जाए, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए भद्रा नहीं है, क्योंकि ज्योतिष इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग्स की, ये थोड़ा ऑस्पिशियस है, ये ऐसा है आने वाली घटनाएं जो घटित होने वाली होती हैं उसको आभास करके ही हम ये जो समय की गणना जो है करते हैं। इस बार का रक्षाबंधन वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए इस मामले में कि भद्रा का तो नहीं पड़ा लेकिन चंद्र ग्रहण पड़ गया, अब वो भी लगभग लगभग पूरा हो रहा है, तो 12-22 तक का जो था वो अभिजीत मुहूर्त था लेकिन उसमें राहु काल भी था, लेकिन फिर एक 35 से लेके 4:35 तक का एक आपको समय मिल जाता है। यूं तो आप पूरे दिन किसी दिन भी बांध सकते हैं, लेकिन किसी दिन नहीं सॉरी किसी समय भी बांध सकते हैं आज के दिन, लेकिन जब आप बहुत कॉन्शियस होते हैं इन सब चीजों को लेके, तो मैं कहूंगी कि 4:35 तक का ये समय है जो कि 1:32 से लगभग शुरू हो जाएगा, और उसके बाद अगर वो उस समय तक भी नहीं बांध पाते तो रात को 9:10 से 10:35 तक का ये जो समय है वहां पे आप जरूर इसको जो है संपूर्ण कर लें, क्योंकि कल से भाद्रपद का मास वैसे भी शुरू होने वाला है, तो आज के समय के लिए मैं ये कहना चाहती
1: हूं। संजय जी आपसे मैं सवाल पूछूंगी, उससे पहले श्रुति जी एक कंफ्यूजन जो मेरे जहन में भी था कि जो आप बता रहे हैं ना कि राहु काल बीच में पड़ रहा है, तो अभी जो समय हो रहा है यानी 12:30 के बाद किस वक्त राखी बांधी जा सकती है?
8: देखिए 12:22 के बाद लगभग आप बांध ही सकते हैं।
1: अच्छा, ओके।
8: 1:35 तक, और 1:35 से मैंने कहा आपने कहा शुभ मुहूर्त, तो स्पेसिफिकली हम ड्राइव करते हैं क्योंकि इसमें जो है धनु लग्न और मकर लग्न पड़ेगा, तो धनु और मकर जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज और वर्क प्रोस्पेरिटी से जुड़े हुए हैं, तो 4:35 तक आप बांध सकते हैं।
1: अच्छा राहु काल अब खत्म हो चुका है, अब 35 मिनट तक बांध सकते हैं। संजय जी आपके पास आएंगे, आपको भी रक्षाबंधन के पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और शगुफ्ता की तरफ से। संजय जी देखिए मैं कहूंगी कि जैसे हम लोग दफ्तर में यहाँ पर बैठे हैं, भाई दूर है, बुरा भी लगता है, लेकिन ऐसी बहुत सी बहनें होंगी जो अपने काम पर होंगी या किसी भी कारणवश वो अपने भाई के साथ आज के दिन नहीं होंगी, ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार वो किस तरीके से मना सकती है, कौन से मंत्रों का उच्चारण वो कर सकते हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं? संजय जी
9: जी सबसे पहले आप सबको जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं और आप सबको जो है इस पावन पर्व की शुभकामनाएं, और सिर में रक्षा सूत्र उनकी रक्षा करे, और कहते हैं कि रक्षा जो बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की होती है, और भगवान को सबसे गणपति महाराज राखी बांधे, फिर कृष्ण की बांधे, और भगवान को शिव को राखी बांधे, क्योंकि श्रावणी का पर्व है और आज के दिन जो है श्रावण मास पूर्ण हो जाएगा, और ये श्रावण का जो मास है पूर्णिमा का दिन है ये सबसे पूर्ण दिन माना जाता है, रात ग्रहण भी है, जिस कारण से आपके जीवन में ये संपूर्णता देने वाला है। और आपने बड़ा सुंदर पूछा कि किस मंत्र से, कहा जाता है एक मंत्र है ओम ये न बद्धो बई राजा दानवेंद्रो महाबला तेन बदनामी रक्षेषु मा चले मा चले। कहते कि बावन भगवान ने जो है बलि से कहा कि मुझे जो है 3 पग धरती चाहिए, और वो 3 पग धरती जब मांगी तो उन्होंने कहा कि आखिरी पग तो मेरे सर पे ही रख दो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलो। पाताल लोक चले गए और भगवान को जो है उन्होंने अपने पास रख लिया। तो उस वक्त जो है लक्ष्मी जी ने आकर के और नारद जी के कहने पर जो है अब राजा बलि को राखी बांधी और बांध करके फिर अपने विष्णु भगवान पति देव को लेकर के चली गई। तो इतनी सारी कथाएं हैं और कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। भद्रा काल में क्या है, रावण की बहन ने जो है उनको भद्रा काल में जो है राखी बांध दी, क्योंकि जो भद्रा है वो सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है, और उसने जब अपने उस काल में राखी बांध दी तो उससे जो है उनके वंश का ही सर्वनाश हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि भद्रा काल में कभी भी जो है राखी को नहीं बांधना चाहिए। शुभ मुहूर्त जो सबसे बढ़िया अमृत काल का मुहूर्त था वो तो निकल गया, क्योंकि 5 बजकर के सुबह प्रारंभ हुआ 57 मिनट से लेकर 9:48 तक का होगा, 3 घंटे और 41 मिनट। दूसरा मुहूर्त अभी जो चल रहा है 12:22 से 1:58 तक आप कर सकते हैं, और इसके बाद भी जो है शाम को 4 बजे के बाद का मुहूर्त है। उसके बाद 5:13 से 6:58। तो ये सारे अच्छे मुहूर्त हैं आज के दिन, जिसमें आप रक्षा का सूत्र जो है बांध सकते हैं। और नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, अतिगंडी योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग है, बुद्ध आदित्य योग है। तो आज इतना अच्छे अच्छे दिन है, जिसलिए जो है आप राखी बांधे। और अगर राखी का कलर अगर आप कॉम्बिनेशन बनाए तो येलो और लाल का कॉम्बिनेशन अगर बांध सकते हैं तो बांधे। कहा जाता है कि अगर जिसके पास राखी नहीं खरीदनी जिसने तो कलावा भी बांध सकते हैं, क्योंकि सबसे प्योर जो माना जाता है रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र वो कलावा ही माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि वो सबसे बड़ा सूत्र है। अगर उसको आप बांध देते हैं क्योंकि रेशम की राखी फिर भी खुल जाएगी या आर्टिफिशियल जो बनाई राखी टूट जाएंगी, पर जो रक्षा का जो सूत्र है वो आप महीने क्या साल भर भी जो है बांध करके रखें तो खराब नहीं होगा, क्योंकि वो रक्षा सूत्र अगले साल तक भी बंधा रह सकता है। तो इसलिए रक्षा का सूत्र ऐसा हो जो कम से लंबे सालों तक बंधा रहे, और कॉटन की राखी हो वो सबसे बढ़िया रहती है, सिल्की राखी हमेशा।
0: बिल्कुल संजय जी, बड़ी सही बात आपने कही। आई एम श्योर कि आप और श्रुति दोनों ही इस बात से अग्री करेंगे कि ये जो आजकल का चलन चला है ना, मॉडर्न चलन की सोना चांदी की राखी, ये राखी वो राखी, पहले आपको याद है पहले के वक्त में जब हम छोटे थे तो हमारी माए कहती थी कि लाल रंग का जो धागा है वही बांध दो, ठीक है, क्योंकि आप पर्व त्योहार मना रहे हैं तो उसमें आपकी भावना जो है वो अगर प्योर है तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो किसी का सामर्थ्य है सोना चांदी खरीदने का और किसी का सामर्थ्य संजय जी और श्रुति जी नहीं है। संजय जी क्या कहेंगे इस पे?
9: बिल्कुल, देखो क्या है कि स्वर्ण और चांदी खरीदना आज के युग में कहते कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है। तो इसलिए सबसे कहते हैं ये जो त्योहार है प्रेम का अटूट बंधन है, क्योंकि प्रेम का त्योहार है, संपूर्णता का त्योहार है, दो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन जो है आप एक छोटा सा धागा और एक माथे पे तिलक लगा देते हैं भाई के, और चावल लगा देते हैं और भाई की आरती उतार देते हैं और एक धागा बांध देते हैं तो एकदम संपूर्ण कहलाएगा। क्योंकि देखो जितना हम चीजों को नॉर्मल रखेंगे उतनी ही जिंदगी आसान हो जाती है। इसी प्रकार से अगर बहन सामर्थ्यवान है तो मिठाई लाए, पर कम से कम लाए, क्योंकि आज का जो युग है उसमें महंगाई इतनी ज्यादा है। तो जितना जिससे बन सके, सोना और चांदी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक प्रेम का धागा बहुत जरूरी है जीवन के लिए, और वही धागा अपने भाई को बांधें और थोड़ा मीठा मुंह कराएं और आरती कर दें, जिससे कि त्योहार का जो पर्व है वो शुभता लेकर के आए और मन में शांति और सुकून लेकर के आए। तो ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें सोना चांदी त्याग करके और प्रेम के बंधन को बढ़ाने की आवश्यकता है। और कहा जाता है कि पहला जो धागे का सूत्र होता है, 3 सूत्र होते हैं धागे में, पहला होता है भाई की रक्षा हो और भाई की लंबी आयु, दूसरा बहन की रक्षा हो, तीसरा होता है धागा अटूट प्रेम रहे कि जब तक जीवन पर्यंत है बहन भाइयों में कोई झगड़ा झंझट नहीं हो और अपने माता पिता का सम्मान करें। तो ये और ईश्वर को राखी बांधने का अर्थ है कि आप ईश्वर में हमेशा समर्पित रहें। तो जब ऐसे योगों में आप राखी बांधते हैं प्रेम श्रद्धा बस इससे राखी बांध देते हैं तो रक्षा सूत्र हजारों या लाखों साल तक जो है कार्य करेगा जीवन के अंदर, और बहन भाई का जो ये रिश्ता है वो अटूट रहेगा। तो ये योगों में आप राहु काल छोड़ करके पूरे दिन में जो समय है उनमें राखी बांध सकते हैं। और आप कृष्ण और द्रौपदी का आप राखी का सूत्र देखें, भगवान कृष्ण ने जो है द्रौपदी की जो रक्षा करी, क्योंकि उनके जो है हाथ के ऊपर जब चक्र लगा तो माता द्रौपदी
1: जी। बिल्कुल संजय जी, बहुत खूबसूरत बात भी आपने कही कि सोना चांदी जो भी देना चाहते हैं, वैसे ये आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से आप अपने भाई को किसी भी तरीके की राखी दे सकते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र है, अगर उसमें प्यार हो तो क्या सोना क्या चांदी। अगर आप छोटी से छोटी राखी अपने भाई को दे रहे हैं तो उसकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। श्रुति जी, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, राखी का जो त्योहार है, अक्सर जब भी हम राखी वर्ड बोलते हैं, रक्षाबंधन बोलते हैं, तो जहन में भाई बहन आता है, लेकिन मैंने शादी के बाद अपने ससुराल में देखा कि यहाँ पर राखी का बड़ा व्यापक महत्व है। यानी जो बेटी है, स्पेशली घर में जो छोटी छोटी बेटियां होती है, वो अपने पिता को राखी बांधती हैं, भाभियों को राखी बांधी जाती है, और आजकल तो अगर भाई नहीं है तो बहनें आपस में भी राखी बांध देती हैं। तो
8: आप सही कह रही हैं और ये इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ज्योतिष इसके पीछे कारण है और सर ये बाजारीकरण हुआ है, जैसे कहते हैं ना पिछले 30 सालों में लगभग, जैसे टीवी आया, एडवर्टीजमेंट आई, तो वो मूवीज आई, हमने सिनेमा देखी, तो वहां पे भाई बहन आपस में बांध रहे, भाईचारा आपस में, क्योंकि बहन जब शादी करके चली जाती है तो कैसे उसका जुड़ाव आप मायके से रखेंगे कि हाँ तुम परेशान मत हो ना, हम हैं, उसको वो विश्वास देना। तो एक वो रिलेशनशिप वहां पे स्ट्रेंथन किया गया, क्योंकि वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। आज जो राखियां बनती है वो बाजारीकरण है और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो है रक्षा सूत्र को बांधना, जिसकी हम रक्षा चाहते हैं, जिससे हम रक्षा चाहते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी आयु लंबी करें, क्योंकि इंसान के रूप में ही कोई आके आपकी रक्षा करेगा, तो वो आप उस व्यक्ति को रक्षा का सूत्र बांधते हैं। लाल रंग से बांधते हैं क्योंकि मंगल का प्रतीक है, वो ऊर्जा भी है और वो साहस है, वो करेज है, एक ब्राइटनेस इंसान में जो है एनर्जी का लेवल वो बना रहता है, इसलिए कहते हैं कि आप लाल और पीले रंग से शुभता से बांधे। सोने चांदी को भी मैं इस तरीके से देख लेती हूँ कि चले ये गुरु है, एक विजडम है, और चांदी जो है हम वहां पे मन मजबूत या हर किसी को सूट करे जरूरी नहीं है, मन मजबूत हो, और शुक्र यानी कि आपका जो इनसाइट, आपका डिस्क्रिशन है कि सही गलत में आप सही फैसला कर सकें एक ऐसे समय में, तो वो आपका बचाव वहां पे कर दे जाए, तो इसलिए हम बांध लेते हैं। पहले के जमाने में आप देखेंगे जब वो बांधते थे रक्षा सूत्र तो हाथ से उतारते नहीं थे, मेरे पिताजी भी थे और उससे पहले भी, वो कहते थे नहीं उतारना नहीं है इसको, तो वो कहीं कहीं महीने बंधी रहती थी क्योंकि वो रक्षा सूत्र था। इट वॉजंट अ ब्रेसलेट कि आपने बांध दिया और आपने सेलिब्रेट कर लिया, ये आपको पता नहीं है, मतलब आम जनमानस में ज्यादातर इतना दौड़ भाग की जिंदगी है।
0: बिल्कुल, बड़ी सही बात श्रुति जी आपने कही कि वैल्यूज जो जुड़ी हुई है ना फेस्टिवल्स के साथ या रक्षाबंधन के साथ, उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी हो तो वो त्योहार भी अपना रंग जो है वो ज्यादा दिखाता है। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रक्षाबंधन की रौनक लगातार आपको दिखाते रहेंगे, रंग लगातार जारी है, जीएनटी देखते रहिए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, दिन भर रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इंदौर में खजराना गणेश को अर्पित की गई 40x40 इंच की अनूठी राखी, भव्य राखी में दिखी राष्ट्र भावना की थीम। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी मनाया जा रहा राखी का त्योहार, बड़ी संख्या में महिलाओं ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की राखी। नेताओं ने भी मनाया राखी का त्योहार, रक्षा मंत्री को एनसीसी कैडेट्स ने तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी बच्चों ने बांधी राखी। नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, त्रिशूली हाइड्रोपावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया। भारतीय चेस स्टार आर प्रज्ञानानंदा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज, ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने।

0: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेएनके पर। लगातार हम आपको रक्षाबंधन के रंग दिखा रहे हैं और देखिए भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन जो है देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, उनकी आरती उतार रही हैं और उनकी सुख समृद्धि और उनकी लंबी आयु की कामना कर रही हैं। वहीं आज श्रावण पूर्णिमा भी है, इसी के साथ सावन मास का भी समापन हो रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए देश के कई तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु सुबह से पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
1: देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्नान के बाद दान पुण्य और पूजा अर्चना का दौर भी जारी है, यानी सावन के आखिरी दिन आस्था के घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। आज आसमान में खगोलीय घटना देखने को मिली, कई देशों में चंद्र ग्रहण का नजारा दिखाई दे रहा है लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ किसी तरह का सूतक मान्य नहीं है। लोग आराम से दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब देखिए 12 अगस्त को लगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद आज दुनिया ने चंद्र ग्रहण का नजारा देखा। हालांकि भारत में साल के इस अंतिम चंद्र ग्रहण का दीदार नहीं हुआ, इसके कारण रक्षाबंधन के त्यौहार पर इसका कोई भी असर नहीं माना जा रहा। लेकिन दुनिया के जिन हिस्सों में चंद्र ग्रहण नजर आया वहां माहौल कैसा था और इस चंद्र ग्रहण में

आसमान में एक बार फिर से दिखा अद्भुत खगोलीय नजारा। जब दुनिया के कई हिस्सों में रात होने के बावजूद चांद की चमक फीकी पड़ गई।

0: ग्रीस, स्पेन, क्यूबा, नाइजीरिया, बोलिविया और ईरान सहित दुनिया के कई देशों में लोगों को चंद्र ग्रहण के अनोखे नजारे का दीदार हुआ। तमाम जगहों पर इस चंद्र ग्रहण को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता नजर आई। बड़े बड़े टेलीस्कोप और कैमरों से लैस लोगों ने न केवल चंद्र ग्रहण का नजारा देखा बल्कि इसकी तस्वीरें भी कैद की। साल 2026 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:35 पर उप छाया के साथ पहले स्पर्श से शुरू हुआ। आंशिक ग्रहण का मुख्य चरण करीब 8:45 पर शुरू हुआ। सुबह 9:43 पर चंद्र ग्रहण अपने चरम पर था, तब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से सबसे अधिक ढका नजर आया। आंशिक चंद्र ग्रहण की समाप्ति सुबह 11:21 पर हुई। वही उप छाया से अंतिम स्पर्श के साथ ग्रहण संपन्न होने का समय दोपहर 12:32 पर है। इस बार लगाइए पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण है। इस दौरान जब ग्रहण अपने चरम पर था, जब चंद्रमा का लगभग 96% हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में पहुंच गया, इसी वजह से कई जगहों पर चंद्रमा लालिमा लिए हुए तांबई रंग का भी नजर आया, जिसे आम बोलचाल में ब्लड मून भी कहा जाता है।
1: Por más que estar al a 96% de que se va a cubrir el disco lunar, parte todavía va a ser iluminado por el sol. Pero sabemos que la luz del sol se va a refractar por la, en la atmósfera de la Tierra. Entonces, vamos a ver ahora cómo está la atmósfera de la Tierra y según el color que se dé, nos va a decir si está contaminada o está bastante limpia.
0: सूर्य ग्रहण के समान ही चंद्र ग्रहण भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध पे आ जाने पर लगता है। फर्क ये है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुँचने से रोक देती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों की भौगोलिक स्थिति के कारण कहीं इन्हें देखा जा सकता है तो कहीं बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि इस बार लगा चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आया, क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण लगा उस समय भारत में दिन का वक्त रहा। चंद्रमा क्षितिज के नीचे होने के कारण भारत में लोग चंद्र ग्रहण का दीदार नहीं कर सके, जबकि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में जहां रात का वक्त था वहां इस चंद्र ग्रहण का शानदार नजारा देखा गया। भारत के लिहाज से अहम बात ये भी रही कि यह चंद्र ग्रहण श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर लगा, जब देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि जानकारों और ज्योतिषियों के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन के विधि विधान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
2: रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी, और ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में अनावश्यक डर, तनाव, गुस्सा या किसी रिश्ते में गलतफहमी बढ़ने से बचना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रक्षाबंधन का ये पर्व नकारात्मक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व है, इसलिए इस दिन भाई बहन के बीच प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
0: ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देखा गया, लिहाजा यहाँ सूतक भी लागू नहीं हुआ और मंदिरों में पूजा पाठ सहित सभी धार्मिक कार्य सामान्य रूप से चलते रहे। इसके बाद अब अगला चंद्र ग्रहण अगले साल यानी 2027 में 20 से 21 फरवरी की रात्रि में लगेगा और भारत में भी इसका दीदार होने की संभावना है, लिहाजा लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, चंद्र ग्रहण के बारे में हालांकि हम रिपोर्ट तो दिखा रहे थे, अब ये बताइए कि देखिए भारत में तो नहीं दिख रहा, ये भी कंफ्यूजन हमने जीएनटी पर क्लियर कर दी है, रक्षाबंधन का त्योहार भी मना सकते हैं, इसके बाद चंद्र ग्रहण के बाद क्या कुछ कर लेना चाहिए, क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार

0: त्यौहार यूं ही मना सकते हैं बेझिझक, ये भी जरा कंफ्यूजन जो है उसको एक बार फिर से दूर कर दीजिए।
1: देखो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि भारतवर्ष में तो स्पर्श ही नहीं किया ग्रहण ने,
0: बिल्कुल
1: परंतु क्या है कि पूरी ब्रह्मांड की बात करें, पूरे संसार की बात करें, तो आप ना तो सूर्य अस्त होता है ना चंद्रमा अस्त होते हैं, कभी भी अस्त नहीं होते, दोनों की पृथ्वी घूमती रहती है। पर ग्रहण का जो प्रभाव होता है मानव जीव और राशियों के ऊपर अवश्य होता है, प्रकृति के ऊपर अवश्य होता है, परंतु भारतवर्ष में स्पर्श नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सुबह का जो समय है 8:04 से लेकर 11:22 का जो समय था, जो इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से था, वो सूर्य ग्रहण का, वो चंद्र ग्रहण का समय था, और उस 3:15 का ग्रहण है। पर ये क्या है कि ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, ना इसका सूतक है, ना पातक है, कुछ भी नहीं है, जिस कारण से आपको बिल्कुल घबराने नहीं चाहिए, और पूरे दिन में जो आपके रक्षाबंधन का समय है जो मैंने बताया है, उस समय शाम का समय भी 5 बजे के बाद से आप कर सकते हो, दिन में अभी 12:22 से लेकर 1:58 तक बांध सकते हो। तो आज जो है कहते हैं कि भद्रा काल जो है उसमें हमें राखी नहीं बांधनी, मैंने जो बिल्कुल स्पष्टता से बताया। तो ये क्या है कि जो समय है इस समय का सदुपयोग करें और ईश्वर का जो है ध्यान करें, और ग्रहण के पश्चात जो शास्त्रों में विधान है कि स्नान बहुत जरूरी है ग्रहण में, किसी भी पवित्र नदी में, आज पूर्णमासी का दिन है, भारत में बहुत सारे लोग जो है पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन जो है अवश्य स्नान करते हैं, और ग्रहण के दिन तो अवश्य ही करते हैं, और उसके बाद स्नान के बाद में जो है भगवान का ध्यान करें। और दान पुण्य का बड़ा महत्व है, कहा जाता है कि अन्न का दान जो है ग्रहण के पश्चात जरूर कर देना चाहिए, कि किसी भी प्रकार का अन्न जो है, आप कनक लेकर के, गेहूं लेकर के, कोई भी खाने की चीज लेकर के और ग्रहण के पश्चात जो दान करें, तरल चीजों का ना करें, जो ठोस चीजें उनका जो है दान करें, और भगवान का ध्यान करें। और चंद्रमा माँ का ग्रहण है तो वाइट वस्तु का दान आप करें, चीनी इत्यादि का, तो और ज्यादा शुभ रहेगा, और अपने पूर्वजों का भी जो है ध्यान करें आज के दिन। और कहा जाता है कि चंद्रमा और राहु जब एक साथ आ गया है तो उस वक्त जब ग्रहण लगता है तो आदमी को डिप्रेशन की संभावना हो जाती है। चंद्रमा राहु, चंद्र केतु, चंद्र बुध या राहु सूर्य जब ग्रहण में होते हैं ग्रह, तो उस वक्त ग्रहण लग जाते हैं। तो उस वक्त जब जब भी ग्रहण काल हो तो अपना मानसिक संतुलन बनाने के लिए आप इस वक्त जो है चंद्रमा की पूजा करें, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, या फिर ओम श्राम श्रीम सोम से चंद्रमसे नमः, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है, तो आप ओम नमः शिवाय, कंटाक्षरी जो मंत्र है नमः शिवाय 5 एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप जब नमः शिवाय बोले या ओम नमः शिवाय बोले तो वो सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, जैसे भूमि गगन वायु अग्नि और नीर है, वैसे ही ओम नमः शिवाय है। तो आपको सबको बैलेंस करना है और शिव की उपासना करते जाएं, जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें, और कहा जाता है शास्त्रों के अंदर,
0: संजय जी आपने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया है कि चंद्र ग्रहण जरूर है लेकिन मन में किसी तरीके का वहम नहीं रखना, यानी भारत में नहीं दिख रहा है, भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं है, ऐसे में पूरा दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं, आपके पास आएंगे। लेकिन श्रुति जी आपसे यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहूंगी, देखिये कई लोग हैं जिन्होंने सुबह जो शुभ मुहूर्त था उसमें भाई को राखी बांध दिया लेकिन जिन्होंने नहीं बांध दिया, और ये तो मैं कहूंगी मेरा ही सवाल है कि हम आजकल की जो जेंजी है या नई जनरेशन है ना, उनको ये तो पता है रक्षा सूत्र बांधना है, फिर भाई कुछ उपहार देता है बहन को, लेकिन पहले हमने देखा था कि हमारी माताएं बताती थी कि आरती उतारनी होती है, तो क्या प्रोसेस है जो थाल सजा रहे हैं भाई के लिए उसमें क्या क्या रखे, अक्षत रोली कुमकुम इसके अलावा, और खास तौर पर एस्ट्रोलॉजिकली किस रंग के कपड़े पहनना आज शुभ होता है, इसको लेकर भी हमारे दर्शकों को बताएं।
2: बिल्कुल, देखें जेंजी की सबसे खूबसूरत और अच्छी बात मुझे जो लगती है ना वो ये है कि दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी क्यूरियस,
0: राइट,
2: उनको हर चीज का ना व्हाई एंड हाउ जानना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। अब आते हैं ज्योतिष पे, देखिए ज्योतिष यानी आपका जो कैलेंडर है काल की गणना, वो ज्योतिष के आधार पर ही हुई है। तो ये जो त्योहार है वो मैं उसी को कहूंगी कि लूनर फेस्टिवल, इसलिए इसको कहा गया क्योंकि चंद्रमा की स्थिति देखकर ही इसको मनाया जाता है। ये खास तिथि हिंदू कैलेंडर में जिसको ज्योतिष की हम गणना जैसे करते हैं वो श्रावण मास की पूर्णिमा की ही होती है। अब चूंकि यहाँ पे हम ग्रहों की एनर्जी ही चैनलाइज कर रहे हैं तो वहां पे रंगों का प्रतीक जो थाल होती है उसका साइंस भी देखिए मैं आपको बताऊं, लाल रंग मंगल का आ जाता है, अक्षत यानी चावल, जो पूरा संपूर्ण चावल है, वो कहीं ना कहीं वीनस की समृद्धि की, जो आपका सेंस ऑफ डिस्क्रिशन है उसकी जो है वो बात करता है। तो जब भी हम थाल सजाते हैं, हम उसमें कहते हैं कि अग्नि तत्व का एक घी का दिया आप उसमें दीपक जलाएं, उसमें अक्षत रखें, रोली कुमकुम रखें। भी बहुत गुस्से वाला भाई होता, मैं कोई और दिन होता, मैं कहती आप चंदन का तेल लगाएं, लेकिन
0: शांत
2: आज
0: हो
2: के दिन
0: जाएगा।
2: यही कहा जाएगा कि आज के दिन यही कहा जाएगा कि आप वो लाल रंग वाला तिलक लगाएं, कि हम चाहते हैं उसमें वो ऊर्जा बनी रहे, उसकी तबीयत ना खराब हो। फिर आता है, देखिए बुध प्रोस्पेरिटी की बात आती है, उसमें हम जल रखते हैं, जल जो है चंद्रमा का प्रतीक वहां पे आता है, और उसके साथ हम कोई हरा फल अगर आप रखते हैं, वरना कई बार
0: ठीक
2: दुर्वा
0: है
2: घास रखते हैं, तो हरा
0: चलिए।
2: फल आपका नाशपाती या अमरूद हो गया, तो
0: बिल्कुल
2: ऐसे चार पांच चीजें आपकी होती है, और जो शुरुआत होती है वो सांकेतिक जल से, जैसे कहते हैं ना शुद्धिकरण से होती है। उसके बाद आप तिलक
0: बिल्कुल
2: लगाते हैं, आप अपना वो रक्षा का सूत्र बांधते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, फिर आरती उतारते हैं। तो ये जो चार
0: बिल्कुल,
2: पांच
0: चलिए
2: स्टेप हैं
0: रक्षाबंधन
2: ये
0: पर
2: बेसिक
0: बिल्कुल चलिए। वक्त की थोड़ी सी कमी है श्रुति जी, माफ कीजिएगा क्योंकि ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा इस वक्त। चलिए, अगर किसी का भाई नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को भी राखी बांध सकते हैं, ये भी हमारे खास मेहमान जो है वो हमें लगातार जानकारी देते हैं। संजय जी और श्रुति जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये रंग और ये पेशकश यूं ही जारी है, देखते रहिए जी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए रिश्तों का सेलिब्रेशन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: देखिए, देश आज भाई बहन के अटूट रिश्ते के पावन पर्व के रंग में डूबा हुआ है। रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह का सबसे बड़ा प्रतीक है।
1: बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र तो बांध ही रही हैं, पेड़ों को भी राखी बांध रही हैं, भगवान को भी राखी अर्पित की जा रही है। ऐसा क्यों, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।
2: भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूत डोर, रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक पूरे देश में छाई हुई है। बाजार गुलजार हैं और बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध रही हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, तो भाई की ओर से बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उन्हें उपहार देने का सिलसिला भी चल रहा है। भाई बहन के इस त्योहार की छटा जंगलों तक में दिखाई पड़ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुड्डू और उनकी टीम जंगल में पेड़ों को राखी बांध कर त्योहार मनाया। ये सब पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आईं। जमुना टुड्डू चाकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई हैं। इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टुड्डू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांध कर उसे बचाने की शपथ लेती है।
3: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधते हैं।
2: भगवान के दरबार में भी रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला चल रहा है। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान उन्हें 2 फीट की यही खूबसूरत राखी बांधी गई, जिसे मंदिर के पुजारी ओम शर्मा के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया।
4: इस पे बाबा का स्वरूप हुआ है पूरा, उसमें नेत्र है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, मिरर का वर्क है, मोर पंख है, डमरू है, मोती है, सभी मिला के और राखी पूरी बनाई है। इसमें सभी प्रकार के जितने भी गण हैं बाबा के, उसको सबको मिला के और इस राखी को पूरा करा है।
2: रक्षाबंधन पर श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलल्ला के लिए राखी भेजने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से ये राखी भेजी जाती है। जरी और मोतियों से सजी ये विशेष राखी पूरे विधि विधान के साथ भक्तिमय उल्लास के बीच अयोध्या पहुंची। इस विशेष राखी को ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार आरती के बाद रामलल्ला को अर्पित की जाती है। भगवान को अर्पित होने वाली राखियों के अलावा रक्षाबंधन के लिए कई ऐसी राखियां तैयार की गई जो बेहद आकर्षक दिखती हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में एक कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म मिनिएचर चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया है, जिस पर उकेरा गया है मंदसौर स्थित प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का सूक्ष्म चित्र। यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई देती है। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी का निर्माण किया। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनी हुई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। ये महाराखी देशभक्ति, ईश्वर की भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश देती है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, अयोध्या से मयंक शुक्ला, मंदसौर से अजय बाड़ोलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का,
0: और चलिए रक्षाबंधन से जुड़ी हुई खास पेशकश जीएनटी पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन, दिन भर रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी मनाया जा रहा राखी का त्यौहार, बड़ी संख्या में महिलाओं ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की राखी। नेताओं ने भी मनाया राखी का त्यौहार, रक्षा मंत्री को NCC कैडेट्स ने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी बच्चों ने बांधी राखी। झूलनोत्सव पर फतेहपुर में श्री जानकी वल्लभ के मंदिर में देखा अद्भुत नजारा, प्रतिमा का फूलों से हुआ विशेष श्रृंगार, मंदिर परिसर को भी सजाया गया। नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया गया। भारतीय चेस स्टार आर प्रज्ञानानंदा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज, ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: आज धूमधाम से मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार, इस दिन बहन भाई की कलाई पर बांधती है राखी। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, प्यार और विश्वास की निशानी है, भाई अपनी बहन को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन और उपहार देते हैं। ये त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसके पीछे इंद्र और इंद्राणी, कृष्ण द्रौपदी और यमराज यमुना जैसे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। वाराणसी में रक्षाबंधन पर उतारी गई बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। रक्षाबंधन पर भगवान विश्वनाथ को बांधी गई राखी, भक्तों ने लगाए जयकारे। उज्जैन में रक्षाबंधन पर उतारी गई बाबा महाकाल की विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रक्षाबंधन महोत्सव, भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को बांधी गई पहली राखी। महिलाएं बाबा महाकाल को बांधती है रक्षा सूत्र, महाकाल के दरबार से होती है रक्षाबंधन की शुरुआत, 125,000 लड्डुओं का लगा भोग। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया रक्षाबंधन, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलला के लिए भेजी गई है खास राखी, मान्यता है कि राखी उनकी बहन शांता की ओर से है। रामलला की राखी केले के तने के रेशे से तैयार की गई है, इसमें मधुबनी कला और रेशमी धागों का भी इस्तेमाल हुआ है। श्रृंगी ऋषि आश्रम की ये राखी रक्षाबंधन पर रामलला को चढ़ाई जाएगी, हर साल आश्रम से रामलला के लिए राखी भेजने की परंपरा है। मुंबई में विधायक राम कदम ने महिलाओं से बंधवाई राखी, महिलाओं के साथ खिंचवाई तस्वीरें। फिरोजपुर केंद्रीय जेल में बहनों ने भाइयों को बांधी राखी, भाई की लंबी उम्र की कामना की। जम्मू कश्मीर के बने हाल में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, मुस्लिम लड़कियों ने जवानों की कलाई पे राखी बांधी। भद्रवाह में बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। बच्चियों और महिलाओं ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी। महिलाओं ने थाली उतारकर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर जवानों को राखी बांधी। भारतीय सैनिकों ने दिया छात्राओं को उपहार। जम्मू कश्मीर के संभा में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने जवानों को बांधी राखी। कोलकाता में बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बंधवाई राखी, बहनों को दिया आशीर्वाद। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में महिलाओं ने अर्पित की राखी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, बच्चों को बांटे उपहार। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनाया रक्षाबंधन का उत्सव, बच्चियों ने बांधी राखी। दिल्ली में साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार अब्बास नकवी को बांधी राखी, नकवी ने भेंट के उपहार। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिलाओं के साथ मिलकर मनाया रक्षाबंधन का पर्व, महिलाओं ने बंधवाई राखी। इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर को अर्पित की गई राखी, राखी में भारत की संस्कृति, शक्ति, समृद्धि और विकास की झलक। लखनऊ में सीएम योगी ने बच्चियों से बंधवाई राखी, बच्चियों को बांटे उपहार। रजौरी में सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को महिलाओं ने बांधी राखी, जवानों ने महिलाओं को दिया आशीर्वाद। जामनगर की जेल में बहनों ने भाइयों को बांधी राखी, सुबह से राखी बांधने के लिए लगी भीड़। रोहतास में बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने के लिए पहुंची, भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। लखनऊ में बहनों ने जेल पहुंचकर अपने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र उनकी सलामती की दुआ की। रक्षाबंधन को लेकर प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं विशेष इंतजाम, बहनों ने भाइयों से की मुलाकात। रायपुर के सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर आई सामने, महिलाओं ने अपने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। सेंट्रल जेल पर सुबह से राखी बांधने के लिए महिलाओं की लगी भीड़, महिलाओं ने कैदी भाइयों को राखी बांधकर उनकी सलामती की कामना की। प्रयागराज में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए चलाई गई 650 बसें 29 अगस्त तक चलेंगी बसें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। राष्ट्रपति ने एक्स हैंडल पर लिखा, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक। गृहमंत्री अमित शाह ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पर रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन, बच्चियों ने सीएम का मुंह मीठा कर उन्हें राखी बांधी। अहमदाबाद पुलिस की शी टीम ने पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व, बांधी उन्हें राखी। जमशेदपुर में स्थानीय लोगों को दिव्यांग बच्चियों और महिलाओं ने बांधी राखी, बच्चियों को उपहार की भेंट। आज लगा साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण, खगोल प्रेमियों के लिए साबित होने वाला है सबसे खास मौका। चंद्र ग्रहण को अमेरिका समेत कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 6:53 से लेकर 12:32 तक रहेगा ये ग्रहण, करीब 5.5 घंटे चलेगा ये खगोलीय घटना। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने से सूतक काल का नहीं होगा कोई प्रभाव, आज रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का है संयोग। देश के सभी मंदिरों के कपाट सामान्य दिनों की तरह पूजा के लिए खुले रहेंगे, त्योहार मनाने में भी नहीं आएगी कोई अड़चन। नीमच में बनी अनोखी शिव राखी, 13 रुद्राक्षों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उकेरी गई तस्वीरें। राखी के बीच में दिखेंगे मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव, यानी एक छोटी राखी में समाई शिव की पूरी आस्था। रुद्राक्ष की बेहद छोटी सतह पर हुई कमाल की चित्रकारी, कलाकार ने सिर्फ एक दो बाल वाली महीन ब्रश से ही तस्वीरें बनाई। नीमच के चित्रकार राहुल कुमार लुहार ने तैयार की है खास राखी, इसमें महाकाल से लेकर सोमनाथ और केदारनाथ तक के चित्र। रक्षाबंधन पर ये राखी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग और पशुपतिनाथ का संगम इसे बनाता है बेहद खास। नागपुर के छात्राओं ने 65 फीट लंबी और 75 फीट चौड़ी महाराखी तैयार की। राखी बनाने में बांस, कागज, पत्तियों जैसे पर्यावरण के अनुकूल चीजों का इस्तेमाल हुआ। छात्राओं की बनाई राखी इतनी बड़ी है कि इसे देखकर हर कोई हैरान है। रक्षाबंधन से पहले छात्राओं ने अपनी कला और मेहनत से दिया खास संदेश। इस विशाल राखी को बनाने में प्लास्टिक की जगह प्राकृतिक और आसानी से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल की गई, यानी राखी के साथ साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया है। नागपुर में छात्राओं की महाराखी ने रक्षाबंधन की तैयारियों को खास बना दिया। 65x75 फीट की इस राखी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। छात्रों की इस पहल में भाई बहन के प्यार के साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन को रिश्ते के साथ पर्यावरण और देखभाल से जोड़ने की परंपरा भी बताई गई है। देवघर में सावन के आखिरी दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भोलेनाथ के दर्शन। सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। देवघर में नमो सेवा शिविर का समापन समारोह में गीतों पर झूमे श्रद्धालु, सांसद मनोज तिवारी और सांसद निशिकांत दुबे हुए इसमें शामिल। अयोध्या में सावन के आखिरी दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, मंदिरों में लगे भक्तों की लंबी कतारें। आज रक्षाबंधन पर अमरनाथ यात्रा होगी संपन्न, 3 जुलाई को शुरू हुई थी यात्रा। पवित्र गुफा मंदिर में छड़ी मुबारक पहुंचने के साथ यात्रा होगी खत्म, करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने की बाबा बर्फानी के दर्शन। बांदीपुरा में आज से शुरू हुई छोटा अमरनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में साधु संत भक्ति भाव से कर रहे ये यात्रा, उपायुक्त जफर हुसैन ने दिखाई हरी झंडी। यात्रा को लेकर भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह, श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू कश्मीर में बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज होगी संपन्न, 12 दिनों तक चली यात्रा। तिरुचिरापल्ली में अवनी पूर्णिमा के मौके पर श्री भक्तों ने कावेरी नदी की भव्य आरती की, वैदिक मंत्रोच्चारों पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने सुख शांति की कामना भी की। तिरुचिरापल्ली में अवनी पूर्णिमा पर जनेऊ संस्कार और वैदिक अनुष्ठान संपन्न, पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धालुओं ने धार्मिक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। तिरुचेंदूर के समुद्र तट पर अवनी पूर्णिमा पर श्रद्धालु की उमड़ी भीड़, भक्तों ने मिट्टी के दीप जलाकर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। थूथुकुड़ी में अवनी पूर्णिमा पर तिरुचेंदूर समुद्र तट पर दिखा आस्था का अद्भुत नजारा, भक्तों ने समुद्र किनारे मिट्टी के दीपक जलाकर पूजा अर्चना की। पुरी में बलभद्र की जयंती पर श्री जगन्नाथ मंदिर की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल। जबलपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट के लिए किया भूमि पूजन, सीएम मोहन यादव रहे इस दौरान मौजूद। ओडिशा के गंजम में सीएम मोहन चरण मांझी ने धवलेश्वर मंदिर की परिधि विकास परियोजना का किया उद्घाटन, कई अन्य मंत्री भी रहे इस दौरान मौजूद। संबल में प्रशासन ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को दी बड़ी सौगात, 21 महिलाओं को मिला आवासीय भूमि का पट्टा। मालदा में मंत्री सुकांत मजूमदार ने अरोधपुर में नए केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ भवन का किया उद्घाटन, कहा बच्चों को मिलेगी अच्छी सुविधा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली वासियों को दी बड़ी सौगात, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। राखी के साथ मेहंदी और त्योहार की दूसरी चीजों की भी जमकर हो रही है खरीदारी, सरोजनी नगर में मेहंदी की दुकानों में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रक्षाबंधन से पहले सरोजनी नगर मार्केट रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ नजर आया, पारंपरिक से लेकर नए डिजाइन की राखियां खरीदने के लिए बाजारों में लगी महिलाओं की भीड़। महाराष्ट्र स्टाइल की ड्रेस वाली गणपति मूर्तियों की डिमांड बढ़ी, अलवर के कारीगर ने करीब एक हफ्ते में कर रहे हैं तैयार। अलवर में गणपति की मूर्तियां खास मिट्टी से बनाई जा रही हैं, इसमें केमिकल नहीं मिलाया जाता है, इसलिए पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। अलवर की गणपति मूर्तियों की देश विदेश में है अच्छी खासी डिमांड, एक साल पहले ही मिल जाते हैं कारीगरों को कई ऑर्डर्स।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए रिश्तों का सेलिब्रेशन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देशभर में राखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्कूली छात्राओं से राखी बंधवाई और उनसे खास संवाद भी किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर बच्चियों के साथ खास संवाद किया।
7: तुम्हारा खुल गया, गौर से करते। अच्छा ये करना है, ऐसे करना है बच्चे।
8: आपका बचपन का सपना
7: आप लोगों को मिलने का हुआ।
6: श्रावण पूर्णिमा के साथ ही देवघर में चल रहा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आज संपन्न हो गया है, लेकिन मेले के अंतिम दिन भी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह कम नहीं है। सुबह से ही देवघर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दूर दूर से पहुंचे कांवड़िए और श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और उनकी पूजा अर्चना के लिए कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। एक महीने तक चले इस आस्था के महापर्व में लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। आज श्रावण पूर्णिमा के साथ ही श्रावणी मेले का भी समापन हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देवघर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि आज के दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है ये जो मेला है इसका भी समापन हो गया है, जिसकी तस्वीरें देवघर से सामने आ रही
5: है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, दिन भर रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी मनाया जा रहा राखी का त्योहार, बड़ी संख्या में महिलाओं ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की राखी। पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी, प्रधानमंत्री ने बच्चों से किया सीधा संवाद, कहा अटूट भरोसे का बंधन है ये त्योहार। नेताओं ने भी मनाया राखी का त्योहार, रक्षा मंत्री को एनसीसी कैडेट्स ने तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी बच्चों ने बांधी राखी। झूलनोत्सव पर फतेहपुर में श्री जानकी वल्लभ के मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा, प्रतिमा का फूलों से हुआ विशेष श्रृंगार, मंदिर परिसर को भी विशेष तौर पर सजाया गया। नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की
5: नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिंकी भाभी और लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां, जहां आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार। तो चलिए सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
6: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए काव्या के पग फेरे में सूरज और ईशा निभाएंगे अनोखी रस्म। रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर घर छोड़कर जाएगी नयनिका।

विहान बनेगा जोड़ी मेकर, बढ़ेंगी आरंभी और ध्रुव की नजदीकियाँ। अपनी ही बैड न्यूज से फूट फूट कर रोएगी राध्या, प्रथम बनेगा सहारा।

0: और साथ ही रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर उत्कर्ष अपनी बहना स्नेहा और शिवांगी संग झूम कर नाचेंगे, बंधवाएंगे राखी। तो वहीं जिया भी अपने भैया राजा ज्वेल के हाथों में बांधेगी प्यार भरी राखी, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: ईशा और सूरज एक तरफ, जहां आकाश को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ चल रही है काव्या बंटी की शादी रस्म में। चलते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
0: सूरज और ईशा की अनोखी रस्म
2: हुआ हूँ देखो आज भी, करूँ मैं ये गुजारिशें
0: पग फेरे के लिए घर।

0: सूरज और ईशा के सामने रिया की रिपोर्ट का खुलासा। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा मिहिका को पढ़ाने में बिजी है कि इसी बीच वहाँ पर ब्लूटूथ पहुँच जाता है, वो भी मुंह बनाकर, क्योंकि उसे भूख लगी है पर उसे टेस्टी खाना मिला नहीं है। ऐसे में ईशा उसे सवाल भी करती है, बस फिर क्या, मुस्कुराते हुए बंटी जेब से निकाल लेता है चॉकलेट, क्योंकि उसे चॉकलेट खाने का मन जो कर रहा है। ऐसे में ईशा चॉकलेट के दो हिस्से करती है, बड़ा हिस्सा बीटी को देती है और छोटा हिस्सा मिहिका को। ऐसे में बीटी अपनी समझदारी दिखाता है और अपनी छोटी बहन को बड़ा हिस्सा दे देता है और यही हिस्सेदारी बवाल की वजह बन जाती है।
1: मेरे ख्यालों में जो तू हो।
2: नहीं, बड़ा वाला हिस्सा इसे जो ही छोटी है ना।
1: दिया दिया तो ना जाऊं कहीं वापस।
2: थैंक यू। अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है छुरमिश, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है?
3: मानती हूँ
2: भूख मेरे बेटे बीटी को लगी थी ना, तो बड़ा वाला चॉकलेट का हिस्सा अपनी बेटी मिश को क्यों दिया? क्या बोल रहे, जो देख रही हूँ वही बोलूंगी ना छुई मुई जी।
3: आप गलत समझ रही है, क्योंकि मैं खुद चॉकलेट का बड़ा हिस्सा पूछता हूँ।
0: मोनिका तो सच से अनजान थी। खैर, इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती वहाँ पर पूरन आ जाता है। ऐसे में ईशा समझाने की कोशिश करती है लेकिन मोनिका बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि देवरानी जिठानी में लड़ाई शुरू होती वहाँ पर पहुँच जाती है ताई माँ, जो अपनी नाराजगी सब पर जताती है, खास कर मोनिका पर।
2: यही कमा दी गई इस घर में यार।
4: चुप, एकदम चुप और खबरदार, किसी ने भी एक शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे शर्म करो, कापिया पत्थर देने के लिए आने वाली है और सबके सामने बहस करने में लगे, ये नहीं कि तैयारी करो उसके आने की।
5: तैयारी की? तू तो सीधे किचन में जा,
4: 100 काम पड़े हैं वहां तेरे लिए। चल,
5: पंचायत में लगी है
3: चॉकलेट खाने।
0: भाई ताई माँ मोनिका को बखूबी जानती है, इसीलिए सिचुएशन संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी पग फेरे के लिए बंटी और काव्या दोनों घर पर आ जाते हैं और उनका स्वागत सभी खुशी खुशी करते हैं। बंटी और काव्या दोनों ताई माँ का आशीर्वाद लेते हैं, परिवार जनों के गले मिलते हैं और बेहद खुश हैं। ऐसे में बंटी और रिया दोनों जब आसपास खड़े होते हैं तो दोनों को हिचकिचाहट महसूस होती है। ऐसे में पग फेरी की रस्म शुरू होने से पहले ही आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि दरवाजे पर आ जाता है पोस्टमैन जो लेकर आया है मेडिकल रिपोर्ट, वो भी रिया की। ऐसे में फटाफट रिया जाकर वो मेडिकल रिपोर्ट ले तो लेती है लेकिन सूरज उसके हाथ से ले लेता है और गलती से वो रिपोर्ट लिफाफे से नीचे गिर जाती है और लग जाती है ईशा के हाथों में। ऐसे में ईशा रिया का नाम देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले कि वो रिपोर्ट पढ़ पाती रिया वो रिपोर्ट छीन लेती है और करने लगती है बहाने।
2: शादी की इतनी खुशी थी ना, तो उस खुशी में मैंने बहुत कुछ चूस के खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अरे भाभी, इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करती, मैं ठीक हूँ।
3: रिया, तू जितनी चाहे दवाई ले, पर मैं जानती हूँ तू पीठ काला नमक नींबू खाने से अभी लाते।
2: कहा तू पक्के के लिए आई है ना, तो उस पर ध्यान दे, मैं ठीक हूँ।
3: अच्छा देखा, तेरे मुंह में क्या है?
2: काव्या, इन्हें बोला ना मैं ठीक हूँ। चलो पक्के की ऐसा हम पूरी करते हैं।
0: असल में रिया नहीं चाहती कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट घर वाला कोई देखे। ऐसे में उसने पग फेरी की रस्म का बहाना कर इस बात को रफा दफा कर दिया। ऐसे में पग फेरी की रस्म भी शुरू हो गई और उस रस्म के हिसाब से नए नवेले दूल्हा दुल्हन को हाथों में कलेवा बांधा जाता है और लगाई जाती है ढेर सारी गांठें और मियां बीवी को वो गांठें खोलनी है। ऐसे में ईशा ये काम दे देती है रिया को और देखिए कैसे रिया बंटी को वो कलेवा पहना तो रही है लेकिन दोनों के बीच वो हिचकिचाहट अब भी मौजूद है। इससे पहले कि बंटी और काव्या की ये रस्म शुरू होती सूरज एतराज जताना शुरू कर देता है क्योंकि उसे इस रस्म के बारे में पता ही जो नहीं था।
6: ईशा जी, शादी तो हमारी भी हुई है, ने ऐसी रस्म क्यों नहीं की?
7: क्योंकि शादी के बाद तुम्हें लड़ाई झगड़े से
6: थी। अच्छा, लड़ाई झगड़े?
5: ईशा जी, आप क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है?
6: अभी लड़ाई झगड़ा आप शुरू कर रही हैं फिर से, देखें। और कसूरवार मुझे मानती है हमेशा।
7: सूरज, मैंने कब लड़ाई झगड़ा शुरू किया?
6: अरे हमेशा आप ही तो करती है, अभी कर तो
7: देवर जी, जो कल नहीं हुआ वो आज हो सकता है। आप दोनों भी खेलिए खेल और देखते हैं कौन जीतता है।
5: बात तो दोनों के हाथों में है।
0: भाई नेकी और पूछ पूछ लगे हाथ, ये रस्म सूरज और ईशा के साथ भी हो गई। पूरन और मोनिका दोनों ने दोनों के हाथों में कलेवा बांध दिया और बस ये दोनों जोड़े शुरू हो गए ये रस्म अदा करने के लिए। एक तरफ काव्या और बंटी कलेवा की गांठें खोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सूरज और ईशा भी इस रस्म में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। खैर इस रस्म में सूरज जीत हासिल कर लेता है और बेहद खुश है और वहाँ पर काव्या भी जीत जाती है और पूरे परिवार को इस तरह खुश होता देख रिया चुपचाप दबे पांव वहाँ से निकल जाती है रिपोर्ट छिपाने के लिए। अब देखना होगा कि क्या घर वालों को पता चल पाएगा कि रिया किस मुसीबत से जूझ रही है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नौनिका ने कर लिया है घर छोड़कर जाने का फैसला, यानी त्योहार के शगुन में आ गया है अब शगुन। चलिए देखते हैं क्या तमाशा हो रहा है।
9: मेरे प्यारे भैया को बहन,
10: परिवार में रक्षाबंधन की खुशियाँ,
9: बहन का ये संबंध, राखी का त्योहार।
11: ओ मेरी प्यारी बहना को भैया का
10: शगुन में लगा अब शगुन।

0: শিক্ষার ছোট চলি নয়নিকা। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में सभी घर वाले एकजुट हुए हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। और देखिए कैसे इस त्योहार की शुरुआत हो गई है, जहां बहनें अपने भाइयों को बांध रही हैं राखी।
1: प्यारी बहना को भैया का दुलार, भाई बहना।
0: तभी होती है नयनिका की एंट्री। भाई नयनिका सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाह रही है, लेकिन कोई भी नयनिका को आशीर्वाद नहीं दे रहा।

ऐसे में सभी घर वालों को शौक तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि नयनिका अपना बैग पैक कर नीचे आई है और वो घर छोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में घर आए मेहमान भी नयनिका से कई सवाल पूछने लगते हैं, उसे भी राखी बंधवाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाकी घर वाले जो नयनिका से नफरत करते हैं ऐसा करने से कर देते हैं साफ साफ इनकार। तभी वहाँ पर टिन्नी भी पहुँच जाती है जो सबके सामने फिर एक बार अपनी माँ नयनिका की बेइज्जती कर रही है, जिसमें उसका साथ उसकी दादी भी दे रही है और कुछ घर वाले हैं जो नयनिका से नफरत करते हैं। इसी बात को लेकर छिड़ गई है बहसबाजी, लेकिन इन सभी बातों पर रोक लगाने के लिए नयनिका सबको बताती है कि वो ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। ऐसे में फिर भी नयनिका को ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन अब उसने फैसला ले लिया है। जाते जाते रुषा नयनिका को राखी बांधती है। और नयनिका वहाँ से चली जाती है। वैसे तो टिन्नी के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत है, लेकिन उसे ज्यादा देख उसके भी आंसू बह गए।

0: औरत के बारे में मूवी बनाई ठीक तो गया है। मैं किसके बारे में बात करूँ, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है।
1: तुम अपनी माँ को ये औरत कह रही हो।
0: इंसान जब बहुत दर्द में होता है तभी ऐसी बातें करता है।
1: वैसे तुम कहाँ जा रही हो माँ, कब तक लौटूंगी।

0: नोएनिका तो अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए रुशा है ना, जो देखिए कैसे सभी से लड़ रही है और नोएनिका को सही बता रही है। रुशा की बात सुनने को और मानने को तैयार नहीं है, सभी नोएनिका को ही गलत ठहरा रहे हैं। भाई फिलहाल तो नोएनिका ने घर छोड़ दिया है, अब देखना होगा कि रिश्तों में और कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आद्या और प्रथम की जिंदगी में कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। आइए देखते हैं कि इनकी जिंदगी में ड्रामा हो रहा है या फिर आई है खुशियाँ।

0: फूट फूट कर रोई राध्या। दादी ने कसे ताने। प्रथम और एकता बने राध्या का सहारा।
1: देखो तुम्हारी लाडली बहू की ब्लड रिपोर्ट। बताइए ना रिपोर्ट में क्या लिखा है
2: कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती।
1: तुम अपने वजन के कारण जिंदगी भर माँ नहीं बन सकती।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तभी तो देखिए कैसे वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उसका माँ बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। ऐसे में उसकी ममता के आंसू बह रहे हैं।
3: पूछ दे
4: सब ठीक हो जाएगा।

0: ये रिपोर्ट ना, ये सब झूठ है, नहीं मानते इस रिपोर्ट को। तुम तो मानो,
1: मानो या ना मानो बेटा, लेकिन तुम्हारे ना मानने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। सच तो ये है कि तुम्हारी राध्या जिंदगी भर मानेगा और तुम जिंदगी भर बाप होने का सुख नहीं भोग सकोगे बेटा।
2: ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, मुझे लगता है दूसरे डॉक्टर को भी दिखाना।
1: चुप करो बाप, ये देखो। अरे पढ़े लिखे होंगे तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, इतनी बड़ी नामचीन और इतने तजुर्बेदार डॉक्टर के स्टैंप है इसके ऊपर, इससे ज्यादा और कोई क्या बोलेगा, ये रिपोर्ट सच्ची है।
3: भाई दादी को तो बस मौका चाहिए राध्या को खरी खोटी सुनाने का, और आज उन्हें ये मौका मिल ही गया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सभी घर वालों के सामने ये तक कह दिया कि अगर प्रथम उनकी पसंद की लड़की से शादी करता तो प्रथम को ये दिन देखना ना पड़ता। बस फिर क्या, दादी की ये बातें सुनकर प्रथम भी दादी पर नाराज होता है। बात आगे बढ़ती कि तभी घर में हो जाती है बुलबुल की एंट्री, जो आकर सीधा चाचा और चाची के गले लग जाती है, और तभी आती है एकता भी। ऐसे में एकता को देख दादी हो जाती है बेहद खुश, क्योंकि एकता दूसरी बार गुड न्यूज जो देने जा रही है। अब दादी तो एकता से बहुत खुश है, इसलिए देखिए कैसे आरती कर घर में उसका स्वागत कर रही है, और एकता वो भी बेहद खुश है, लेकिन अनजान है कि घर में माजरा किया हुआ है। ऐसे में वो आती है और खुश होकर राध्या से भी गुजारिश करती है कि वो भी जल्द से जल्द गुड न्यूज दे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देख एकता हैरान है। इतना ही नहीं, एकता की नजर चेयर पर पड़ी राध्या की मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ जाती है। ऐसे में वो रिपोर्ट देख एकता भी इमोशनल हो जाती है, और वो राध्या का सहारा बनने की कोशिश करती है कि तभी दादी फिर से शुरू कर देती है राध्या पर ताने कसना।
1: एकता, बेटा तुम इसको छोड़ो और अपने में ध्यान दो। वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इसकी गलती की वजह से हो रहा है। एकता देखो, दूसरी बार मां बनने जा रही है, दूसरी बार एकता दूसरी बार मां बनने जा रही है, और इसके वजन को देखो और अपने वजन को देखो, तुम्हारे वजन से आधी है। अगर तुमने भी जरा सा ध्यान दिया होता तो आज हम सबको ये दिन देखना नहीं पड़ता।
0: बस कीजिए दादी, बहुत हो गया, अब देखिए राधा आगे अपने थे, अब कुछ और भी लगती जा रही, और दुखी किए जा रही है मुझे।
1: वाह, सही बोल रहे हो, राधा दुखी है ना, और उसकी वजह से जो पूरा परिवार जिंदगी भर दुखी रहेगा, उसका कुछ नहीं।
3: अब प्रथम भले ही राध्या की ढाल बनकर खड़ा है, लेकिन दादी के ताने राध्या के दिल को कचोट रहे हैं। ऐसे में राध्या अपने आप को रोक नहीं पाई और वहां से दौड़कर चली गई अपने कमरे में आंसू बहाने के लिए। देखना होगा क्या राध्या को पता चल पाएगा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट से छेड़खानी की गई है। मुंबई से कैमरामैन साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सीरियल तू ही रे में उलझे हुए हैं स्वाति और वृंदा के रिश्ते, और ये दोनों ही संजय संग एक दूसरे के रिश्ते से अनजान हैं। आइए देखते हैं कि सीरियल में क्या हो रहा है खास।
3: वृंदा और संजय का आमना सामना। कविता की चाल से वृंदा अनजान।

0: नरेंद्र बनेगा रावण। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में जल्द होने वाला है वृंदा और संजय का आमना सामना, और उसी का आज प्रोमो शूट फिल्माया जा रहा है। जरा देखिए कैसे वृंदा अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गई है सरिता के घर में रहने के लिए, इस बात से अनजान कि उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि वो संजय है जिसने उसकी मांग भरी थी। अब वृंदा और संजय का आमना सामना कब और कैसे होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो वृंदा सरिता की देखरेख करने के लिए सरिता के साथ उसके घर में रहने के लिए चली गई है। सरिता की तबीयत खराब रहती है, ऐसे में वृंदा उसका बखूबी ख्याल रख रही है, लेकिन उसे क्या पता कि जिसका ख्याल रखने वो आई है उसके इसी घर में कई सारे दुश्मन हैं, जिनमें से एक दुश्मन यानी कि कविता की नज़र बार बार सरिता पर है, क्योंकि कविता ने कर दी है सरिता की दवाइयों में फेरबदल, और वृंदा वो तो ठहरी बिना पढ़ी लिखी। ऐसे में वो देख देख कर सरिता को दवाइयाँ तो दे रही है पर अनजान है कि इन दवाइयों के साथ घोटाला हो चुका है।
1: आई नो, कहाँ से आ गई ये लड़की। ये जब से आई है तब से मुझे ऐसा लगता है कि सरिता पे पहरा लगा दिया है किसी ने, और पहले संजू था जो सरिता को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रहा था, अब उसकी जगह वृंदा ने ले ली है जो मेरे लिए अम्मू है। तो चल रहा है अब कश्मकश वही है कि जितने भी मैं हर्डल्स हटाती हूँ उतने वापस आ जाते हैं, और इस बार तो स्ट्रॉन्गर है जो अम्मू है। तो देखते हैं, आज की प्लानिंग यही है कि बस दवाइयों की उथल पुथल करूंगी, कुछ चेंजेस करूंगी, और जो सरिता बीमार है वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाए।
0: अब कविता अपने मकसद में कामयाब कैसे होगी ये तो उसके षड्यंत्र पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर प्रेमलता और धनकोर दोनों बेहद परेशान हैं, क्योंकि प्रेमलता को उसका बेटा नंदू नजर नहीं आ रहा। ऐसे में वो नंदू को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं मार्केट में, जहां पर उनकी मुलाकात हो जाती है वृंदा की दादी से, और ऐसे में वृंदा की दादी उसे बताती है कि नंदू अतुल के साथ वृंदा के पास गया है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में वृंदा की दादी धनकोर को ताने भी कसती है। ऐसे में ये बात धनकोर को बखूबी पता है और वो अपना मुंह भी बना रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विपुल दौड़ कर आकर धनकोर को बैड न्यूज देता है।
2: माँ, माँ, नरेंद्र भाई को आपने जा छुपा के रखा था ना, अब गांव वालों ने वहाँ आग लगा दी है।
3: क्या?
2: हाँ, चलो
3: घर को आग लगा, घर को आग लगा दी।
2: हाँ,
3: चल धन को जा, कहीं झोपड़े के साथ साथ तेरा वो कान्या भी भसमला हो गया।
4: देखो प्रेमलता तो वैसे भी नरेंद्र के सपोर्ट में नहीं है, वो तो बेचारी वो अपना सपोर्ट नहीं ले पा रही है, बट इंटरनली प्रेमलता का ऐसा है कि ये गलती कर रहा है, ये गलती आदमी है। तो अभी हाँ, उनको जहाँ पे उनको रखा था वहाँ पे आग लग गई है, विपुल जी ने आके बताया है। अब देखते हैं कि नरेंद्र जी सही सलामत है या नहीं है, बट प्रेमलता को इस टाइम उसका बच्चा चाहिए, तो उसका इस सब में कुछ इतना ध्यान नहीं है कि नरेंद्र जी कहाँ क्या।
0: दादी और प्रेमलता तो चुपचाप वहाँ से निकल गए, लेकिन धनकोर और विपुल पहुँच गए हैं उस कमरे में जहाँ पर नरेंद्र छिपा बैठा था। ऐसे में उस कमरे की जली हुई हालत देखकर धनकोर और विपुल दोनों ही परेशान हो रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र का दी एंड हो गया है कि तभी सामने पड़ा ड्रम हिलने लगता है। ऐसे में धनकोर को पता चल जाता है कि नरेंद्र उसी के अंदर है। बस फिर क्या, अपने आप को संभालते हुए नरेंद्र बाहर आता है और पूरा वाकया धनकोर और विपुल को बताता है। इतना ही नहीं, अपना रौद्र रूप भी दिखाता है जिसे देखकर धनकोर और विपुल दोनों ही हैरान हो रहे हैं।
5: गांव वालों ने कराया,

0: अब गांव वाले तो नरेंद्र की करतूतों को जान गए थे, इसीलिए वो उसके दुश्मन बन गए हैं। लेकिन अब नरेंद्र ने भी ठान ली है कि वो गांव वालों को ना सिर्फ सबक सिखाएगा बल्कि किसी भी हालत में वृंदा को ढूंढकर उससे जबरन ब्याह रचाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जिया और ज्वेल ये दोनों बहुत ही प्यार से सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन का फेस्टिवल। राखी के अलावा ये दोनों इस खास दिन पर और क्या मस्ती कर रहे हैं, चलिए देखते हैं।

0: आया रक्षाबंधन का त्योहार।
1: बहना को भैया का दुलार, भाई बहन का ये संबंध राखी,
0: भाई बहन की नोकझोंक में छिपा ढेर सारा प्यार।
1: हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा
0: कभी सेल्फीज की बहार, तो कभी डांस का खुमार। जिया और ज्वेल की मस्ती बेशुमार। सीरियल क्यों की सास भी कभी बहू थी टू में समायरा का किरदार निभाने वाली जिया नारिग्रा आज अपने भाई ज्वेल नारिग्रा के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना रही हैं। दोनों ही भाई बहन एक्टिंग की दुनिया में उभरता चेहरा है। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनके घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए।
2: हेलो एवरीवन, मैं हूँ जिया नारिग्रा और रक्षाबंधन है एंड आज मैं आपको मेरे भाई से मिलवाऊंगी ज्वेल नारिग्रा। तो आपने इनको आदर्श बाल विद्यालय में देखा होगा, इट्स अ सीरीज विच हैज जस्ट रिलीज्ड ऑन प्राइम वीडियो और ये भी एक्टिंग इंडस्ट्री में है। बहुत स्वीट इंसान है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत स्वीट इंसान है एंड उनको रूबिक्स क्यूब वो सब सॉल्व करना बहुत आता है। तो प्लीज़ ज्वेल भैया आपके बारे में बोलोगे अभी?
3: यस श्योर। सो हैव एवरीवन, आई एम ज्वेल नारिग्रा, ब्रदर ऑफ जिया नारिग्रा। और उसने अभी कहा कि मैं अभी इंडस्ट्री में हूँ, आई बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 6 years 7 years। तो हाँ, मैंने आदर्श बाल विद्यालय सीरीज की है, रिसेंटली रिलीज हुई है। देन आई हैव डन वन मूवी नेम मड़गांव एक्सप्रेस, वो भी प्राइम वीडियो में है। और उसके से अभी मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट, टीवी सीज, प्रिंट शूट, शॉर्ट फिल्म एक्सेट्रा। सो या, सो रक्षाबंधन टाइम अभी राखी पहनाएगी मुझे एंड गिफ्ट मिलेगा, लेट्स गो।
2: एंड यू विल प्रोटेक्ट मी?
3: ऑफ कोर्स।
2: ये तो बहुत सॉफ्ट इंसान है, इसमें ये कुछ मस्ती नहीं करता है, सबकी मानता है, किसी को सामने नहीं बोलता है। सो इसमें कुछ मस्ती वाली चीज़ नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज एक इंसान अगर बहुत सॉफ्ट हुआ तो दूसरी इंसान बहुत मस्ती खोर होनी चाहिए। तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड ही इवन हेल्प्स मी इन एवरीथिंग। इसका कुछ बुरा है ही नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है। चलो अभी मेरे बारे में बोलो।
3: नेम तो ये, यस यस, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। कांट से द सेम अबाउट जिया, नहीं आई एम जोकिंग। जिया इज ऑफकोर्स रियली स्वीट पर्सन, माई लिटल सिस्टर। ऑफकोर्स मस्ती खोर तो है, ऐसा तो रहना ही चाहिए। एंड वही, शी ऑल्सो हेल्प्स मी विथ एवरी थिंग, इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस जो भी है। सो ओवरऑल शी इज़ अ रियली स्वीट पर्सन, मस्ती खोर है बट शी इज़ माई सिस्टर। यस
2: ओके, आई गेस। चॉकलेट्स एंड कैंडीज अ लॉट, बहुत खाते थे। तो हम लोग को एक डेयरी मिल्क मिलता था, तो ही यूज टू टेक 60% और मुझे 40% देते थे। तो वो मुंह में डालता था, उसके पहले ही मैं ले लेती उसका, तो मेरे को 60% मिल जाता था और फिर मैं मेरा उसको दे देती थी तो उसको 40% मिल जाता था। और बड़ा भाई है तो उसको मानना पड़ता है, तो मैं खा लेती थी ज्यादा।
3: ये डिसएडवांटेज है, मेरे मम्मी पापा सब ऑफकोर्स इसको फेवर करना पड़ता है, लिटिल सिस्टर है तो।
0: भाई राखी का त्योहार हो और भाई बहन के बीच नोक झोंक ना हो, भला कैसे हो सकता है? भाई आज तो घर में प्यार भी है, तकरार भी है और मस्ती की भरमार भी है, क्योंकि आज बहना अपने प्यारे भैया राजा की कलाई में राखी जो सजा रही है और भाई उसके चेहरे पर लंबी मुस्कान भी आ रही है। तो चलिए शामिल हो जाते हैं जिया और ज्वेल के साथ उनके रक्षाबंधन के सेलिब्रेशन में।
2: तो चलो मेरे साथ आरती की थाली बना के लेके आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे थाली बनाना नहीं आता? बहुत अच्छे से आता है, चलो आप लोग के साथ बनाती हूँ थाली।
1: तू है तो टेढ़ी मेढ़ी राय।
2: पहले मैं थोड़ा चावल डालूंगी इसके अंदर, कंकू है ही पहले से, मैं चावल डालूंगी, इसको बंद कर दूंगी अभी। और फिर मैं मेरे फेवरेट कलर की राखी डालूंगी। मैं दिया लगाऊंगी, ये भी येलो कलर का एंड लास्ट में एक चॉकलेट मेरे भाई के लिए। तो चलो ये थाली लेके जाते हैं मेरे भाई के पास।

0: देखो भैया, मैंने आपके लिए इतने अच्छे से थाली सजाई है।
1: थैंक यू जिया, नाइस डेकोरेशन।
0: थैंक यू। चलो तो पहले मैं दिया जलाऊंगी।

0: थैंक यू.
1: अच्छी लग रही है ना?
0: यस वेरी नाइस.
1: फिर मैं आपको कंकू लगा लूंगी. कंकू कंकू.

0: आपको मेरे बारे में क्या पसंद है वो आप बोलो।
1: अरे बाप रे, क्या नहीं पसंद आपको पूछना चाहिए। ओ ना ना, सीरियसली एवरीथिंग अबाउट हर इज जस्ट ग्रेट यार। हर पर्सनैलिटी, लुक्स तो नहीं कह सकते नहीं मजाक मजाक ना, शी इज ब्यूटिफुल, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, इमोशनली दिस मेच्योर एंड या वेरी स्वीट, स्वीटेस्ट पर्सन। लेट्स गो जिया, मेरी बहन है ना इसलिए ऑफकोर्स। वाह थैंक यू यार।
0: अच्छा भैया, मैंने आपको राखी बांधी बट आपने मेरा गिफ्ट नहीं दिया।
1: ओ गिफ्ट, गिफ्ट तो नहीं है मेरे पास।
0: ऐसा कैसे हो सकता है यार,
1: आप बड़े हो गए हो, चलता है ना।
0: बड़े नहीं, आप मेरे से बड़े हो ना, आपको मुझे गिफ्ट देना चाहिए। मैंने आपको राखी बांधा ना,
1: पर अभी आप मैच्योर हो गए, मैंने इतना अच्छा अच्छा बोला।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलता, मुझे गिफ्ट चाहिए।
1: लाइयो। हां हां यस, क्लोज योर आईज, नो चीटिंग, नो चीटिंग, ओके नाउ ओपन।
0: ठीक है
1: फॉर यू, देखो देखो। Yes.
0: Wow.
2: दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के।
0: Thank you.
1: Welcome.
0: अभी मैं हर दिन इसमें पानी पीऊंगी।
1: Yes yes. कैसा लगा? अच्छा है?
0: बहुत।
1: Yes. क्या बोलते हैं? क्या बोलना चाहिए भैया को?
0: Thank you.
1: Welcome.
0: मैंने उनको राखी बांध दी है और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दे दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट है। सो आई एम ऑल्सो हैप्पी, ही इज ऑल्सो हैप्पी, तो एक हैप्पी मोमेंट में एक सेल्फी ले देते हैं। चलो
3: केवल राखी बांधना ही सेलिब्रेशन नहीं बल्कि इन यादों को संजोना भी एक सेलिब्रेशन है। ऐसे में ज्वेल और जिया दोनों ने मिलकर आज के दिन को खास मनाया और ली ढेर सारी सेल्फीज जिसमें प्यार है, मस्ती है और ढेर सारी छेड़छाड़ है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता होता ही अनमोल है। भाई मानना पड़ेगा जिया और ज्वेल को, रक्षाबंधन के त्योहार पर भी इन्होंने अपना घर दिवाली के त्योहार की तरह सजा दिया है। खैर अब चलते हैं जिया और ज्वेल के कमरे में जहां पर इनकी बचपन की ढेर सारी यादें कैद हैं।
0: चलो तो मैं आज आपको हम दोनों का रूम दिखाऊंगी जहाँ पे हम लोग सब मस्ती वस्ती करते हैं। चलो तो ये है मेरा बेड और ये है मेरे भाई का बेड। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे थोड़ी सी चीजें आती है रूबिक्स क्यूब में, तो जैसे कि रक्षाबंधन है, तो आज मेरा भाई मुझे और थोड़ी टिप्स सिखाएंगे। तो ना वो बहुत बिजी हो जाते हैं उनके रियल लाइफ में, वो जिम जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पूरे टाइम बाहर ही रहते हैं, तो अभी थोड़ा बहुत मिलना कम हो गया है। तो आज जैसे कि मेरे भाई घर पे है वो मुझे सिखाएंगे। चलो
1: सो आपको क्या करना है, पहले तो ये आपको ढूंढना है वाइट, फिर इसके बाजू में प्लस बनाना है, ठीक है? जैसे वन है ना वैसे थ्री, तो ये लो आप,
0: ये लो।
1: तो इसको आप नीचे करोगे हाँ, और फिर बाकी के दो ढूंढो, सी वन इज ईयर, इसको ऐसे, ओके वेरी नाइस, एंड लास्ट वाओ प्लस, लेट्स गो, वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट, आई विल शो यू, सी सी दिस इज हियर, तो यू नो यू हैड टोल्ड देम एज वेल कि यू डू अप लेफ्ट डाउन राइट, तो दिस इज हियर, यू विल डू अप लेफ्ट डाउन राइट, अप डाउन राइट, वन मोर टाइम, अप लेफ्ट डाउन राइट, तो सी दिस हैज गॉन हियर, तो ये वाइट हो गया,
0: वाओ
1: सेम लाइक दैट, डू दिस This one, yes.
0: Up.
1: Left, down, right. Up, left, down, right. Wow, very nice. Wow. Good job, good job. See, same with this, okay? Haan, do it. Haan, see, ho gaya. And now last white is here. Isko idhar lao, haan, do it. Down, right, up, left, down, right. One more time, up, left, down, right. Wow, let's go. Okay, abhi pura sikhaunga to pura din chala jayega.

0: ओके सो दीज आर द बुक्स हैरी पॉटर जिया ने रीड की है, जेरेमी स्टिल्टन भी जिया ने रीड किया, पर्सी जैक्सन मैंने रीड किया.
1: ये है हमारे थ्री टॉप बुक्स ना.
0: यस करेक्ट,
1: थ्री बुक्स है हमारी.
0: दिस इज माय पर्सनल फेवरेट. पर्सी जैक्सन बहुत मस्त है. इट्स फिक्शन, गॉड्स पे है, ग्रीस का है, ग्रीक गॉड्स, सो इट्स अमेजिंग. ओके सो नाउ जिया विल शो यू आवर फोटोज बचपन के. वन फोटो. ओ वाओ क्यूट.
1: ये मेरा भाई है और ये मैं हूँ.
0: यस बहुत पुराना है ये.
1: डैम मैं समथिंग 3 साल की थी.
0: हाँ तो आई मस्ट बी 6 समथिंग.
1: ये देखो मेरा भाई कितना लग रहा है.
0: थैंक यू. अभी भी ना, अभी और क्यों
1: नहीं, अभी नहीं, अभी वो अलग है.
0: नो नो.
1: और एक बहुत अच्छा फोटो है.
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं क्यूट वाला देखो.
1: हाँ
0: सो मी जिया मम्मी और पापा. यस दूसरे पिक्स.
1: तभी तो मेरे भाई बहुत अच्छे थे.
0: अरे अभी इतना सब बोला, इतने अच्छे भाई है, स्वीट.
1: अभी अच्छे है, मैंने कहा बोला अभी अच्छे.
0: वेट वेट इसमें हम दैट्स मी.
1: गेस करो कि ये कौन है, मैं हूं या मेरे भाई
0: है. अरे इट्स मी यार, इट्स मी.
1: हां
0: यस मैं ही हूं ना. हां उन सुने. हां तो इतना क्यूट तो मैं ही होऊंगा ऑफ कोर्स.
1: ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी मेरा एक फोटो दिखाती हूं. ये देखो
0: वाओई मस्त मस्त मस्त यार. क्यूटी ड्रेस.
1: आपसे भी ज्यादा क्यूट दिख रही
0: है. ड्रेस अच्छा है, ड्रेस अच्छा है, बस ड्रेस अच्छा है.
2: अब बातों ही बातों में इन्होंने एक दूसरे की ढेर सारी पोल तो खोली, लेकिन पोल खोलते खोलते इन्हें लगाई है भूख और ऐसे में दोनों पहुंच गए हैं बाहर और सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने बना रहे हैं अपनी स्पेशल डिश जो ऑल टाइम इनकी फेवरेट है.
0: ओके सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. सो दिस दीज आर द सॉसेस, ओरिगानो चिली फ्लेक्स, चीज एंड देयर इज आल्सो कैप्सिकम. आई विल ब्रिंग इट.
1: हां चलो, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और मैं और मेरे भाई आज आपको बताने वाले हैं कि हम लोग स्पेशल ओकेजंस में हम लोग नाचोस कैसे बनाते हैं.

0: Let's go. So, first we'll add the sauces.
1: ये कौन सा सॉस है?
0: This is sweet onion. Oh, that's good. That's good.
1: Oh, nice.
0: Yes. You put this.
1: ये क्या है?
0: मैं दूसरा idea तो this is Thousand Island.
1: Thousand Island.
0: तुझे आता है चीज़ ग्रेट करना?
1: हाँ, मुझे सब आता है.
0: चलो करो.
1: चलो.
0: Okay.

0: Okay, done, done. So now we'll add the capsicum. Capsicum is a game changer. है बहुत मस्त लगता है इसमें nachos पे. अभी
1: oregano chili flakes.
0: Lastly oregano and chili flakes.
1: Sure.
0: So ये chili flakes oregano है ना mixed up yes. डालो डालो. थोड़ा थोड़ा. Okay, done. Some chili flakes and done. Let's go. एक सेकंड to mix it. Wait 1 minute. I'll.
1: तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं और मेरे भाई कैसे नाचोस बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे.

0: ये है हमारे हाथ का कमाल, किसी को भी खिला दो सबको पसंद आएगा। ये ऐसे ही हमारे जैसे ऐसे मस्त रक्षाबंधन एंजॉय करो, आपके भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करो, जैसे मेरा भाई मुझे रक्षा करता है वैसे मुझे भी चाहिए कि आपका भाई आपको रक्षा करे। एंड हैप्पी रक्षाबंधन,
1: हैप्पी रक्षाबंधन गाइस, एंजॉय
0: एंजॉय, बाय बाय।
2: इसे कहते हैं परफेक्ट राखी डे सेलिब्रेशन, ऐसे में नाचना तो बनता है। जरा देखिए कैसे जिया के साथ उसके भाई ज्वेल ने ताल से ताल मिलाई और जिया ने तो उसे नाचना गाना भी सिखाया।

खैर, रक्षाबंधन के त्योहार का असली मजा यही है, जहां एक तरफ प्यार है वहीं पुरानी नोकझोंक, एक दूसरे की शिकायतें और उन शिकायतों में छिपी ढेर सारी केयर। और इसी केयर के साथ जिया और ज्वेल ने अपने आज के इस त्योहार को स्पेशल मना लिया है। मुंबई से नुपुर मौची के साथ।

0: सुधा अपने देव से दूर गांव में जीवन गुजार रही है और कर रही है एक साल पूरा होने का इंतजार। और इसी बीच वो चौहान फैमिली से जुड़ी जानकारी भी जुटाने में लगी है। चलिए देखते हैं वसुधा के हाथ क्या जानकारी लगी है।
1: वसुधा संग हुआ हादसा।
2: हमारी मुंडवा वाली फैक्ट्री से हमारा एक ट्रक माल लेके निकला था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया।
1: घर वाले हैं अनजान।
2: लड़की भी उस ट्रक के चपेट में आ गई, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं।
1: क्या वसुधा के सामने खुलेगा मुंडवा का राज? जी टीवी के सीरियल वसुधा में अनजाने में चौहान इंडस्ट्री के ट्रक से वसुधा का एक्सीडेंट हो तो गया था, लेकिन वसुधा अब सही सलामत है। लेकिन उसी के साथ वसुधा के हाथों लग गया है चौहान इंडस्ट्रीज का विजिटिंग कार्ड भी, जिसे देखकर वसुधा हैरान हो रही है। अब वसुधा को क्या पता कि ऊपर वाला उसे मुंडवा में लेकर आया है, जिससे वो अनजान है। हालांकि उसे झटका तब लगता है जब उसकी नजर सामने लगे बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ है मुंडवा। ऐसे में वसुधा हैरान तो हो जाती है और तुरंत पहुंच जाती है महादेव के मंदिर और देखिए कैसे हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ऊपर वाला उसे कोई तो संकेत दे रहा है। वसुधा ने महादेव से हल मांगा और देखिए कैसे अगले ही दिन वसुधा पहुंच गई चौहान इंडस्ट्री के बाहर, जहां पर उसने बोर्ड को गंदा देखा। ऐसे में उससे रहा ना गया और देखिए कैसे वो मटके में पानी भर के ले आई और उस बोर्ड को साफ करने लगी। इसी बीच मुंडवा में चौहान इंडस्ट्री को जो संभाल रहा है वो मैनेजर भी आ जाता है, जो इस बात से अनजान है कि ये वसुधा है, क्योंकि वसुधा वहाँ पर गौरी के नाम से रह रही है। खैर ये देखकर मैनेजर खुश तो होता है और तो और वसुधा को इंडस्ट्री के अंदर भी ले जाता है। ये देख वसुधा बहुत खुश है कि यहाँ तो काम भली भांति चल रहा है, लेकिन वो हैरान इस बात से है कि आखिर सब इतने प्यार से काम कर रहे हैं लेकिन बोर्ड किसी ने गंदा कर दिया है। ऐसे में वो अपनी बात भी मैनेजर के सामने रखती है, लेकिन मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ पर काम करने वाला हर व्यक्ति चौहान परिवार से बेहद प्यार करता है।
3: चंद्रिका मैडम का बहुत सम्मान करते हैं, कितनी भी गड़बड़ हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, कोई काम छोड़कर नहीं जाता। बोर्ड भी रोज यही लोग साफ करते हैं।
1: अब वसुधा के सामने धीरे धीरे सच्चाई आ तो रही है, लेकिन वसुधा इस बात को लेकर परेशान है कि जो चंद्रिका सबका इतना ख्याल रखती है, आखिर कौन चंद्रिका का इतना बड़ा दुश्मन है जिसके चलते चंद्रिका अपने परिवार के एक भी सदस्य को मुंडवा भेजना नहीं चाहती। देखना होगा कि अब वसुधा सच का पता लगा पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: आहनवी और निहाल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि ना चाहते हुए भी रुचिता और निहाल का किस्मत कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे।
4: अलग तुझ में असर कुछ है के
1: शुरू हुई जानवी और निहाल की मेहंदी की रस्म।
4: कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है के
1: मोहित की रुचिता पर बुरी नजर।
5: क्या
1: शादी ने ढाया रुचिता पर कहर। टीवी की सीरियल मन सुंदर में आज हो रही है जानवी और निहाल की मेहंदी की रस्म, जहां पर जानवी अपने हाथों में निहाल के नाम की मेहंदी रचवाने के लिए तैयार है। ऐसे में चेतना भी वहां पहुंच जाती है मेहंदी की थाल लेने के लिए, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसके सर का पल्ला गिर जाता है और वो घबरा जाती है अपनी सासू माँ के डर से। ऐसे में रुचिता उसकी मदद करती है और रुचिता चेतना की फेवरेट बन जाती है। खैर, जानवी की मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी है। जानवी तो खुश है ही, साथ ही रुचिता और दादी, वो दोनों भी बहुत खुश हो रही हैं। रुचिता तो अपनी बहन का बखूबी ख्याल रख रही है, कभी उसको पानी पिला रही है तो कभी अपने हाथों से खाना खिला रही है, क्योंकि यही तो मौका है जो वो अपनी बहन के साथ बिता सकती है। तो वहीं दादी भी पहुंच गई है जानवी की नजर उतारने के लिए, और तो और वो जानवी की मेहंदी की रस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही है। खैर, सभी घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। ऐसे में चेतना भी अपने हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। इसी बीच आ जाती है चेतना की बेटी भी, जो मेहंदी की कोन लेकर खाली हथेलियां ढूंढ रही है, क्योंकि उसे भी मेहंदी लगाने का शौक चढ़ रहा है। ऐसे में सब उसे मना करते हैं और वो उदास होकर बैठ जाती है, लेकिन उसे उदास देखकर रुचिता वहां पहुंच जाती है अपनी खाली हथेलियां लेकर। ये देखकर चेतना की बेटी बहुत खुश हो जाती है और रुचिता उसकी भी फेवरेट बन जाती है। वैसे रुचिता की नानी को रुचिता की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, तभी तो देखिए कैसे वो उसे वहां से उठाने आ जाती हैं। तो वहीं निहाल के घर वाले निहाल को ले आते हैं जानवी के पास बिठाने के लिए, ताकि वो जानवी के हाथ में जो लगी मेहंदी है उसमें अपना नाम ढूंढ सके। लेकिन निहाल उसके हाव भाव देख कर तो लग रहा है कि वो ये शादी प्रेशर में आकर कर रहा है। खैर, वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी आता है कहानी में अगला ट्विस्ट, क्योंकि चेतना लेकर पहुँच जाती है आलता जानवी के पैरों में लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर पहुँच गया है मोहित भी, जो वीडियो बनाने का बहाना कर रहा है और तो और रुचिता के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, और इसी बीच वो रुचिता को धक्का भी मार देता है, जिसके चलते आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वो आलता जानवी की मेहंदी में गिर जाता है और उसका इल्जाम रुचिता अपने सर लेती है, जिसके चलते मेहंदी की रस्म में हो जाता है अपशगुन। भाई, मोहित को तो पता चल गया है कि निहाल की नजर मोहित पर है, क्योंकि उसे उस पर हो गया है शक। ये सिचुएशन तो निहाल ने संभाल ली, लेकिन मोहित दूसरा मौका ढूंढेगा रुचिता को परेशान करने का, और निहाल वहाँ पर भी उसकी ढाल बनकर खड़ा होगा।
5: तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, ध्यान नहीं देती हूँ क्या?
1: खैर, रुचिता की नानी को तो यही लग रहा है कि कहीं रुचिता के रहते ये शादी में कोई ट्विस्ट ना आए, इसीलिए उन्होंने रुचिता को आदेश दे दिया है कि वो अपनी बहन से दूर रहेगी। हालांकि रुचिता का भाई रोहान आकर नानी पर बरसता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दो बहनों को अलग किया जाए। अब देखना होगा क्या वाकई नानी जिस बात से डर रही है वो हकीकत में बदल जाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: एंटरटेनमेंट की दुनिया में आए दिन कोई ना कोई खबर ऐसी होती है जो वाकई होती है रॉकिंग और शॉकिंग। तो देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज।
1: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर है रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग खबर आ रही है अक्षय कुमार की। हाउसफुल 2 के बाद फिल्म मेकर साजिद खान और अक्षय कुमार एक साथ फिर से एक नई फिल्म लेकर आने वाले हैं, और ये फिल्म होगी कॉमेडी। हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन खबरें ट्रेंड कर रही हैं। इसी के साथ अक्षय कुमार से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। अक्षय कुमार की नींद सिमर भाटिया जल्द ही डेब्यू करने जा रही हैं बॉलीवुड में। खबरों की माने तो सिमर भाटिया की एक फिल्म आने वाली है रोशन मैथ्यू के साथ, जो फिल्म होगी रोमांटिक कॉमेडी, और इस फिल्म की शूटिंग भी नवंबर 26 से शुरू हो जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। देख लीजिए स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टूका ये प्रोमो, जहां पर 10 साल पुराना राज जल्दी सभी के सामने आएगा और उसी के चलते बदल जाएगी पूरी कहानी।
6: एक कहानी सुना, 10 साल पहले एक बेचारी लड़की और एक लड़का जो उसे टॉर्चर करता था, और फिर एक दिन उसकी माँ ने बंदूक उठाई और वो लड़का गोली चलाई थी नंदिनी ने, और इल्जाम दिया था आपने। आप सच आप कहेंगे या मैं बताऊंगा?
1: कलर्स के सीरियल मन्नत में जल्द ही मन्नत और विक्रांत अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं, धैर्य का सच सभी के सामने लाने में। देख लीजिए प्रोमो जहां पर धैर्य खुद अपना खुलासा करेगा।
7: विक्रांत मेरे पास ना एक आइडिया है, कल जन्माष्टमी, जन्माष्टमी घर पे पेड़े बनते हैं, क्यों ना हम पेड़े में ट्रूथ सीरम मिला दे, सच बोलने की दवाई, और वो पेड़ा धैर्य जी को खिला दे, उसके बाद उन्हें हेलुसिनेशन होने लगेगा और वो सबके सामने अपना सच कबूल कर लेंगे।
1: सीरियल उड़ारियां और छोटी सरदारनी में नजर आ चुकी एक्ट्रेस कमल ददियाला जल्द ही जी टीवी के नए सीरियल दिलों की रामलीला में नजर आएंगी नए किरदार के रूप में, ऐसी खबरें आ रही हैं। वर्टिकल ड्रामा की फेमस जोड़ी मोहित कुमार और कनिका कपूर फिर से एक साथ नजर आएंगे एक नई कहानी में, और ये कहानी भी वर्टिकल होगी स्टोरी टीवी के लिए।
0: अनुपमा कुकिंग प्रतियोगिता जीत चुकी है और उनकी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं अरमान और अभिरा, और हुआ जमकर नाच गाना तो चलिए देखते हैं सीरियल अनुपमा और ये रिश्ता का महासंगम।

अनुपमा की जीत का जश्न। अनुपमा संग अरमान अभीरा का सेलिब्रेशन। शाह हाउस के बाहर डांस का धमाल। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने सपनों का स्वाद का खिताब जीत लिया है। और वो खिताब जीत कर पहुँच गई है अपने मोहल्ले में, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। लेकिन उसे सरप्राइज तब मिलता है जब वहाँ पर फूलों की बरसात कर अरमान और अभीरा करते हैं उनका स्वागत। ऐसे में उन्हें देखकर अनुपमा हो जाती है बेहद खुश।

0: सबसे पहले तो
1: आप सबको सुपर कांग्रेचुलेशन.
2: थैंक यू.
0: लेकिन मुझे तो पता ही था कि आप ही जीतोगे.
2: अच्छा,
0: क्योंकि वो विनर्स वाली स्पार्क ना सिर्फ आप ही में थी, और जैसे फुलझड़ी से फुलझड़ी जलती है, आपसे हमने भी वो वाली स्पार्क ले ली है. मतलब हमें भी अब यकीन होने लगा है कितनी बड़ी सी दुनिया में हम भी अपना एक छोटा सा घर बना सकते हैं.
1: तुम्हें तो लगने लगा था कि हम बड़े हो रहे, लाइफ छोटी हो रही, हमें पता ही नहीं था कि उम्र के साथ साथ सपने भी बड़े होते जाते हैं.
0: और उन सपनों के पूरा होने पर उसकी खुशी और भी ज्यादा बड़ी.
2: और तो है,
0: और आप तो यकीन और हौसले का सॉलिड कॉम्बिनेशन हो. अनमोल,
1: कोशिश में हौसला और सपनों पे यकीन हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं.
0: सच में
3: भाई, अरमान अभीरा को अपने घर के बाहर देखकर अनुपमा भी बहुत खुश हो रही है और उनका धन्यवाद कर रही है. इसी बीच वहां पर आ जाती है जया, जो इनकी बातों पर ब्रेक लगाती है और इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने का आग्रह करती है, वो भी डांस के जरिए. बस फिर क्या, जया ने ऐलान किया और अनुपमा अरमान अभीरा संग पूरे मोहल्ले वाले शामिल हो गए.

0: भाई मानना पड़ेगा, जश्न हो तो ऐसा जो साथ मिलकर सेलिब्रेट किया जाए। और बा वो तो ट्रॉफी लिए नाच रही हैं। खैर नाच गाना पूरा हुआ, ऐसे में अब अनुपमा चाहती है कि वो अरमान अभीरा की मेहमान नवाजी करे।
1: अच्छा चलो अब घर चलो, फ्रेश हो जाओ और गरम गरम खाना बनाती और तेरे लिए नूडल्स।
2: अब नहीं, मुझे तो अपनी वो फाइनल वाली बाहुबली खानी है।
1: हाँ हाँ मैं भी। अच्छा चल बाहर।
3: नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वो आंटी। अरमान को अच्छी तरह पता है कि वो फाइनल वाली बाहुबली थाली एक जन के लिए बनाने में और इतनी सारी थाली बनाने में बहुत बड़ा फर्क होता है, पता है ना?
2: अब तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा के पूछोगे तो हाँ पता
1: है। बना देती चल।
3: नहीं नहीं आंटी, हम थाली फिर कभी खाएंगे, लेकिन आज तो हम खुदार फैमिली दादी सा और गर्लीज की तरफ से आपके लिए गुड विशेस और एक बहुत ही स्पेशल चीज लेकर आए हैं। ये देखिए। ये भी हमने आपसे इंस्पायर होकर बनाया है।
1: मतलब
3: हमने आपके ही वीडियोस देखकर टुगेदर अपने हाथों से राजस्थान की जान घेवर बनाया है।
1: तुम दोनों ने बनाया?
3: मेरे लिए?
1: एक तो वैसे ही तुम लोग इतना समय निकाल के यहाँ पर इस खुशी में शामिल होने आए हो, वो ही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। ऊपर से ये अपने हाथों से बनाकर लाए, सबसे ज्यादा अनमोल गिफ्ट दुनिया में सिर्फ एक ही है, समय है ना? और वो तुम लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
4: वाह बाबूजी, जो ये बात अरमान अभी आपके हाथों से बना मिला है, बोलो।
0: भाई अरमान और अभीरा के हाथों की बनी हुई मिठाई खाकर सभी ने तारीफों के पुल बांध दिए। वैसे अरमान अभीरा के यहाँ आने की एक वजह है क्योंकि इनकी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं और इन्हें टेंशन हो रही है कि आखिर कैसे वो अपनी बेटियों के दोस्त बने और उनसे उनकी परेशानियों के बारे में जाने और अनुपमा उन्हें सही दिशा दिखा सकती है। ऐसे में अनुपमा ने उनकी परेशानी को भांप लिया और बड़ी ही समझदारी से अरमान अभीरा को समझाया।
4: नई पीढ़ी आती है, उस पर अपना अपना ब्रिज बनाती है, हम सबको चढ़ना सीखना पड़ता है।
3: सो जनरेशन गैप हर जनरेशन को करना पड़ता
4: है। बिल्कुल सही। आजकल पेंटिंग में इतने सारे बुक लिखे गए हैं, सोचो तो सब सही है और जानो तो सब गलत है, क्योंकि हर माँ बाप को अपनी नई किताब लिखनी पड़ती है। हर माँ बाप अलग होते हैं, उनके बच्चे अलग होते हैं, उनके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, तो कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आती कि ऐसे ऐसे करना है बच्चों के साथ में।
3: थैंक यू सो मच अनु आंटी, मुझे आपकी ये सीख हमेशा याद है।
2: और मुझे चार जनरेशन का एक्सपीरियंस कौन इग्नोर कर सकता है।
3: करेक्ट। अच्छा अब हम चलते हैं।
4: अच्छा
2: जाने से पहले एक सेल्फी ले लेते
3: हैं। गुड आइडिया।
0: अब खुशी इतनी बड़ी है तो इसे कैमरे में कैद करना तो बनता है, इसीलिए देखिए कैसे अरमान अभीरा ने अनुपमा और उसकी पूरी टीम के साथ ढेर सारी सेल्फीज खींची और इन लम्हों को बना लिया यादगार।

0: खैर अनुपमा के आंगन में खुशियां झूम कर आई हैं, लेकिन ट्विस्ट भी आने को तैयार है। देखना होगा कि अनुपमा आने वाले ट्विस्ट का सामना कैसे करेगी। मुंबई से कैमरामैन साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: रंभी और ध्रुव की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं, और इन दोनों के करीब आने में सबसे बड़ा हाथ आरंभी के बेटे विहान का है, जिसकी वजह से ये दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
2: आरंभी, ध्रुव और विहान की सैंडविच पार्टी। ध्रुव और विहान ने बनाया स्माइली वाला सैंडविच।
3: यादों में रहे हर दम।
2: देखे खुशियों के पल। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आ गया है मौसम खुशियों का। भाई काफी सारी टेंशन्स के बाद अब फाइनली आरंभी घर आ गई है, और ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने बेटे विहान संग बिता रही है। लेकिन विहान को तो बड़ी यानी कि ध्रुव की कंपनी पसंद है, और आज ध्रुव और विहान मिलकर बना रहे हैं ये स्पेशल वाला सैंडविच, जिस पर है स्माइली, और वो बन रहा है खास आरंभी के लिए।
4: क्योंकि मुझे सैंडविच खाना है, डाट नहीं खानी।
5: सुपर हीरो डिशी ने बोला ना कि वो बेड पे बैठ के नहीं खा रहे, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो?
4: विहान, एक्चुअली आपकी मम्मा ना बहुत सोच है, और सोच सोच के ना उनको भूख लगती है, तो एक काम करते हैं, उनके लिए एक सुपर स्माइलिंग सैंडविच बनाते हैं।
5: सुपर स्माइलिंग सैंडविच, ये क्या होता है?
4: अरे वेरी इजी, सी
2: में व्यान अपनी मम्मी को ले आता है, और देखिए कैसे ध्रुव जबरदस्ती आरंभी को खिला रहा है सैंडविच, वो भी अपने हाथों से, कभी आरंभी को तो कभी विहान को। पे यहाँ देखने को मिला एक हैप्पी मोमेंट।
6: वो तेरे बिना मर जाना, तेरे बिना मर जाना, तू ही सांसों का सहारा है तेरे।
4: मिस्टर चिड, जो भी सोच रहे हो ना उसको पॉज कर, यहाँ आओ सैंडविच खाओ।
5: यस मामा।
7: नहीं बेटा, मुझे नहीं खाना।
5: मामा प्लीज कम, हमने अपने स्पेशल
8: सुपर वंडर मॉम के लिए सुपर स्माइलिंग सैंडविच।
5: मैं सुपर वंडर मॉम को भूख लग गया, पर वो तो नहीं बोल रहा है, पर मम्मा तो नो बोल रही है।
4: अरे विहान, अब मम्मा की नो को सीरियसली मत लो। पता है एक बार मैं भी ऐसे नो नो नो बोल के भाग रहा था, जब मुझे चोट लग गई थी और आपकी मम्मा इंजेक्शन लेके पीछे पीछे भाग रही थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि चोट लगे तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और भूख लगे तो सैंडविच
5: खाना पड़ता है।
4: यस, सो विहान अटेंशन, 3 2 1 गो।
5: क्या ड्रामा कर रहे हो दोनों लोग? टेंशन चल रही है, जल्दी आपको खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, काम करो टेंशन जल्दी।
9: थामा हाथ, सवरने लगी लकीरें हाथों की।
5: सुपर हीरो डीसी, वन मोर बाइट।
4: वन मोर, ओके ओके, वन मोर बाइट एंड वन फॉर विहार।
2: वैसे इसी के साथ धीरे धीरे जुड़ रहा है ध्रुव और आरंभी का किस्मत कनेक्शन, दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। भाई दोस्ती की शुरुआत तो हो गई है, अब उम्मीद है कि जल्द ही प्यार का एहसास भी होगा। कदम पर आरंभी की मुश्किलों में उसके साथ खड़ा है ध्रुव। ऐसे में जब भी आरंभी परेशान होती है तो ध्रुव पहुंच जाता है उसे समझाने, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतना ही नहीं, ध्रुव तो विहान का भी बेहद अच्छा दोस्त बन चुका है, इनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती जा रही है। ऐसे में जब ये सारी बातें डिंपल को पता चलेगी तो असली बवाल शुरू होगा, क्योंकि डिंपल को एक और मौका मिल जाएगा आरंभी पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर भेजने का।
10: शायद दिख जाएगा। दिखना चाहिए, इसलिए कि एक दोस्ती तो पनप रही है जो ऑडियंस भी देख रही है, और जिस दिन डिंपल को पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल रंगबाजी दिलों की फेम रणबीर यानी उत्कर्ष अपनी बहनों संग मना रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं उत्कर्ष के इस सेलिब्रेशन में और चलते हैं उनके घर।

पहचाना इन्हें। ये है सीरियल रंगबाजी दिलों की के रणबीर यानी कि उत्कर्ष गुप्ता, जो सीरियल में तो हमेशा प्यार की रंगबाजी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज सास बहू और बेटिया के कैमरे के सामने ये अपनी बहनों संग न सिर्फ रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, बल्कि डांस की बहार के साथ साथ मस्ती बेशुमार है। तीनों भाई बहन मिले हैं तो एक दूसरे की पोल भी खोल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार भी जता रहे हैं और बहनें भाई से तोहफा भी पा रही हैं। यानी आज इस खास मौके पर तीन की तिकड़ी रंग जमा रही है और जमाई भी क्यों ना। भाई उत्कर्ष, स्नेहा और शिवांगी तीनों ही एंटरटेनमेंट जगत के चमकते सितारे हैं। तो आइए करते हैं मुलाकात उत्कर्ष और उनके पूरे परिवार से और मनाते हैं रक्षाबंधन का त्योहार।

0: नमस्ते, मेरा नाम उत्कर्ष है और आज तक आप सभी का स्वागत है मेरे घर पे। और रक्षाबंधन के दिन पे हम सब साथ में बोलना चाहेंगे कुछ?
1: नहीं नहीं आप बोलिए
0: नहीं,
1: पहले।
0: आप मेरे को देख रही हैं। ये है
1: नमस्ते,
0: मेरी बड़ी सिस्टर स्नेहा गुप्ता और ये है मेरी छोटी
1: हाय
0: सिस्टर, मतलब
1: शिवांगी
0: मेरे से
1: गुप्ता।
0: बड़ी शिवांगी गुप्ता,
1: तेरी से
0: और
1: छोटी
0: ये सबसे छोटी घर की मेरी मम्मी
1: जी, बिल्कुल सही
0: सुमित्रा
1: बात।
0: गुप्ता।
2: नमस्कार।
0: देखा जाए तो ये त्योहार बहनें राखी बांधती है भाइयों को, क्योंकि भाई बहन ये कहती है कि
3: हम तेरी रक्षा करेंगे हमेशा, हम तेरे को
0: हाँ
3: टाइम पे एयरपोर्ट लेने आएंगे, छोड़ने जाएंगे,
1: सही
3: सब कुछ
1: बात
3: हम
1: है।
3: करेंगे।
2: ये एक्चुअली हमारे घर की राजकुमारी है।
3: प्रिंसेस।
0: अच्छा,
2: हम हमेशा यही बोलते हैं उत्कर्ष
1: हाँ।
2: हमारे घर की क्या है, प्रिंसेस।
0: यार यहाँ पे तो नैले पे दहला हो गया।
2: आज तो मौका है, और वैसे भी साल में पूरा पूरे साल में एक ही टाइम होता है जब उत्कर्ष की जेब खाली होने वाली होती है, क्योंकि हम लोग कैश में बिलीव नहीं रखते ना, ये रखता हम गिफ्ट्स में बिलीव रखते हैं। हम कहते
0: और ये सबसे ज्यादा झूठ है कि इसी दिन होता है, ये हमेशा ही होता है, हर महीने मेरी जेब खाली कर देते हैं तीनों के तीनों।
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी,
0: मैं पैसा रखता ही नहीं अपनी जेब में, मुझे पता है।
2: जैसे ही इसका चेक आता है, आते ही पहले मंदिर में जाता है, फिर मेरे पास आता है, फिर सारा डिस्ट्रीब्यूट मैं ही करती हूँ, पूरा पैसा बच्चों का, तीनों बच्चों का।
0: यस यस यस, ये बहुत ही मुश्किल से होता है, क्योंकि कभी कभार स्नेहा दी भी शूट कर रही होती है, मेरी बहन भी शूट पे होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आगे पीछे कभी कभार बनाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे लिए हम तीनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन ये जब काम करने के लिए हैदराबाद या फिर बाहर होती है चेन्नई, तो वहाँ से राखी आती है मेरे लिए। यस,
1: लास्ट ईयर भी आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ था।
0: सो लेट्स डू दिस। चलो,
4: रक्षाबंधन की थाली सज तो चुकी है, लेकिन तीनों की बातें रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज इन्हें मौका मिला है एक दूसरे की पोल खोलने का। तो देखिए कैसे उत्कर्ष, स्नेहा और शिवांगी तीनों ही मिलकर एक दूसरे की पोल खोले जा रहे हैं और हंसी के ठहाके भी लग रहे हैं।
0: मेरी बहन शादी ना ही डॉग को लेके जाएगी, ना डॉग को साफ करती है, वो सिर्फ मुझे प्रिंसेस बोल रही है। इस घर की एक्चुअल प्रिंसेस ये है, और सारे जितने भी काम है, जितनी भी शॉपिंग से घर की और पूजा पाठ का काम है, वो सिर्फ और सिर्फ शिवांगी दीदी करती है।
2: शिवांगी को जिसे आप सीरियल्स में देखते हैं ना, एक बड़ी संस्कारी बेटी होती है, और फिर वो
0: कोई लड़का जो देख रहा हो, जिसे भी संस्कारी बहुए चाहिए हो, सो
3: बहू
0: चाहिए हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट हो।
2: हाँ, शिवांगी बिल्कुल वैसी ही है, मतलब एकदम सुबह उठ के पूजा पाठ और ये वो, और फिर ये सब सजाना हर फेस्टिवल पे,
0: कभी खुशी कभी
2: हाँ, कभी खुशी कभी गम की काजोल है ये बिल्कुल। सो ये जितने भी संस्कार वाले
0: है,
2: हाँ इत ऐसा भी नहीं है यार,
0: ये वो है। ये कौन है जिसने मुझे मुड़के नहीं देखा,
2: ऐसा भी कुछ नहीं है, ये ज्यादा बोल रहे। तो ये है उत्कर्ष हमारे घर की, क्या है हमारे घर की
3: क्वीन
2: पू। तो ये बहुत संस्कारी लड़की है, तुम्हारे घर के जितने भी अच्छे अच्छे संस्कार वाले काम होते हैं, पूजा पाठ से लेके सब कुछ यही करती है। बस एक ही इसमें वो नहीं है, बस ये जैसे हमारे सीरियल्स में जब हमारी बहुएं सोती हैं तो वो तैयार होके मेकअप विद मेकअप सोती हैं, वो ये ऐसे नहीं सोती है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है।
0: चलो, सोती भी बहुत है हमारे घर की सबसे लेजी पर्सन।
2: लेजी नहीं है, उसको सोना पसंद, जब भी खाली होती है वो सो जाती है।
0: नहीं, मैं आई एम टॉकिंग

0: audio.
1: नहीं।
2: उसका चाहे कितना लेट शूट हो, कहीं से भी कितना लेट आए, बट उठती वो सुबह ही है।
0: जब शादी की बात आती है ना, मम्मी फुल सपोर्ट दे देती है,
2: नहीं
0: फुल डिफेंस।
2: नहीं, जो बात सच है, एवरीवन, उत्कर्ष जो है अपने कामों में अलर्ट है, वो अपने में, लेकिन स्नेहा का ये है, वो कितना भी लंबा शूट करके आए, कितना थक के आए, पर उसको उठना सुबह टाइम से है, जिम जाना है, और अपनी जो भी उसकी एक्टिविटीज होती हैं ये करती हैं। और जो शिवांगी है, उनको टाइम मिलते ही वो कहीं पर भी सो सकती हैं। और उत्कर्ष गुप्ता है, उनका तो अंदाज ही निराला है, जो कि मैं बयां भी नहीं कर सकती।
0: कौन से अंदाज की बात कर रहे हो?
3: रहने वो खोपचे में ही रहने बात को।
4: इससे पहले कि और पोल आगे खुलती, तीनों भाई बहन ने अपनी बातों पर ब्रेक लगा दिया और शुरू किया रक्षाबंधन का त्योहार मनाना। ऐसे में आरती के लिए दिया जगाया गया और फिर शुरू हुआ इस त्योहार का सेलिब्रेशन। और उत्कर्ष, उन्हें तो देखिए, वो राखी देखकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज उन्हें बहुत बढ़िया सरप्राइज मिल रहा है।
0: अरे वाओ, व्हाट इज दिस?
3: नहीं, अभी तो चांदी ही है।
0: चांदी जितना ही पैसा मिलेगा फिर।

0: नहीं नहीं
1: राखी बनने के बाद
2: राखी मैं मानती हूँ तुम ही
1: बनी
2: रही हो मम्मी कह रही है कि मैं लाइमलाइट किसी को नहीं लेने दूंगी गाना भी मम्मी का ही नहीं
1: क्योंकि देखिए उत्कर्ष हमेशा डाइट पे रहता है ये आप सबको पता है इसलिए वो इतना फिट है
2: तो मैं सिर्फ थोड़ा सा खिलाऊंगी क्योंकि मेरे को ये तो जानबूझ के खिलाएगा जो मना करोगे वो तो करना ही है
1: क्या है भाई
3: शगुन शगुन का है
2: गूगल पे चला ना
3: गूगल पे भी मिलेगा
2: ये देख लीजिए आपका इतना बड़ा
3: एक्टर
2: इतने सारे दे रहा है पैसे
3: मैं
2: तुम लोग गुप्ता है
3: नहीं नहीं आज शॉपिंग पे लेके
2: जाओ आप कहाँ है तो छोड़ने थोड़ा ना वाले

0: ये तो गोल्ड ही है ना।
1: हाँ ये सोने की जात लाइन चल रही
2: है।
1: अब एक की बात तो ये समझ नहीं आ रही है कौन से
3: जैसा मेरे मेरे को
1: फाइनली गोल्ड बोल के तेरा दिल रखना पड़ेगा।
2: समझ गया हम चांदी
1: चांदी प्योर चांदी
2: तो अब चांदी
1: जितने भी पैसे तू कमाए सारे हम पे लगा
2: बस लड़की जाती है।

0: अब इसके अंदर क्या है वो राज, वो मैं राजी रहने
1: दो. राजी रहने दो.
0: मैं
1: मेरे मम्मी के लिए. हेलो.
2: ये आपकी के लिए.
1: चलो चलो अब जाएंगे हम सीधा बाहर.
3: ये तो सिर्फ और सिर्फ शगुन के लिए था. तो अभी हम बाहर चलेंगे, मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे. ठीक है चलो. इन लोगों के लिए तो एक मुझे लगता है वो ये होगा जिस टाइम पे मैंने फर्स्ट मैं शो कर रहा था कैसे यारियाँ. मैंने इन दोनों को 50,000 दिए थे शॉपिंग के लिए, सिर्फ शॉपिंग के लिए.
4: तब से आज तक ये कंटिन्यू करता है, अपनी सिस्टर को बहुत प्रायोरिटी देता है. चाहे बीच में मैं अगर कहूँ कभी मैं रख लेती हूँ पैसे और फिर मैं इससे बीच में बोलती हूँ तो राखी अगर अगस्त है या राखी का दिन आने वाला है तो ये कहता है मम्मी मेरे पास नहीं है, नहीं तो कभी नहीं बोलता. और अपनी सिस्टर्स के लिए अपनी जो भी इसकी मतलब शॉपिंग का या कुछ भी है वो पैसा हमेशा रखता है अपनी बहनों के लिए.
5: रक्षाबंधन वाले टाइम पे ही सबसे महंगा जूता दिलाया था, कुछ 50,000 के आसपास का जूता था वो. और वो जूता को बहुत जब उसका सीरियल चल रहा था ना,
3: वही जूते आज तक खाता आ रहा हूँ मैं.
5: नहीं वो जूता फट गया, टूट गया. मैंने उससे उसके बाद कितने शूज खरीदे क्योंकि मुझे शूज का बहुत शौक है.
3: कम से कम नहीं 100 से भी अबव हमारे पास सिर्फ जूते रखे हुए हैं अकेले के मैडम के.
5: तो फिर उसके बाद भी जो मैंने शूज लिए मैंने सब काफी फेंके हैं, दिए हैं, लेकिन सिर्फ वो एक शूज है जो मैं कभी किसी को नहीं देती. उसकी हालत खराब हो चुकी है लेकिन वो उसके साथ मेरे सेंटीमेंट मतलब बहुत जुड़े हुए हैं. वो मेरे भाई का पहला, उसने कमाना शुरू किया था और उसने पहला इतना महंगा गिफ्ट दिया था. तो वो मैं शूज कभी भी किसी को नहीं दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी.
3: थैंक यू सो मच. रुलाएगी क्या पगली.
6: मैं तो यही बताना चाहती हूँ कि उत्कर्ष अपने लिए बहुत कम शॉपिंग करता है. स्नेहा दी और मैं ही हैं जो उसके लिए शॉपिंग करते हैं. हम किसी भी कंट्री जाएं, सिटी जाएं, उत्कर्ष के लिए हम ही लेके आते हैं. अदरवाइज ये जो भी शॉपिंग करता है मम्मी के लिए, हमारे लिए, हम यूजुअली छोटे छोटे क्लिप्स ये डालता रहता है. छोटे छोटे क्लिप्स हम डालते रहते हैं लेकिन हम लोग
3: पैसा खर्च करने पे डर लगता है.
6: एग्जैक्टली. हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि जैसे भी हम फ्री हों तो हम अपनी मम्मी को टाइम दें और बाहर जाएं. तो उत्कर्ष हमें शॉपिंग उस टाइम जरूर करवाता है.
4: हमेशा मुझे जब भी अगर ये मेरे साथ जाता है तो गोल्ड का ही दिलाता है हमेशा.
3: थैंक यू सो मच आप सभी का कि इस पवित्र त्योहार में आपने हमें हमारा साथ दिया. और सभी को थैंक यू, सास बहू और बेटियां के दर्शकों को थैंक यू सो मच.
4: सभी की तरफ से
3: हैप्पी रक्षाबंधन. और एक डांस तो बनता है.
7: भाई बहनों ने अपने भाई की कलाई में राखी सजा दी तो भाई ने उन्हें तोहफा देकर उनका दिल खुश कर दिया. और सबसे ज्यादा खुश हैं उत्कर्ष की मम्मी क्योंकि उत्कर्ष उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं. खैर आज के दिन को सिर्फ यहीं सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा बल्कि इन लोगों ने तो आगे की प्लानिंग भी कर रखी है.

फिलहाल तो सास बहू और बिटिया के कैमरे के सामने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए तीनों भाई बहन मिलकर जमकर नाच रहे हैं और एक दूसरे के साथ ताल से ताल भी मिला रहे हैं। और तो और, इस खुशी में उत्कर्ष की मम्मी भी शामिल है।

0: जो इतनी हो। खैर, हम चारों को यूँ नाचता गाता छोड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें तैयारी भी तो करनी है बाहर जाने की।
1: दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना।
0: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: एक तरफ जहां सीरियल्स की मसाला खबरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रियलिटी शोज की दुनिया में लगा है एंटरटेनमेंट का तड़का। चलिए देखते हैं कि इस रियलिटी शो में क्या मजेदार हो रहा है।
3: मगेशी मैम, आपकी डेब्यू फिल्म, पहली फिल्म से आप इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई, वो फिल्म कैसे मिली और कैसे हुआ ये चमत्कार?
4: मुझे तो फिल्म करनी ही नहीं थी
5: है?
4: हाँ बिल्कुल, मुझे जाना था अब्रॉड अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। सूरज जी और उनके फादर राज बाबू एक दिन घर पर आए और सूरज जी ने कहानी सुनाई। बहुत बेहतरीन कहानी थी, आंखों में बिल्कुल पानी आ गया सुनते सुनते। मैं बस कहानी में बह गई, पर कहानी ने जब एंड किया तब मैंने कहा थैंक यू, बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसमें ना ये नहीं होता तो फिर शायद मैं कर लेती। अब उनको थोड़ी ना बताती कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सूरज जी ने कहा ओके कोई बात नहीं, वो चले गए। हफ्ते 10 दिन बाद वापस फोन आया कि वो जो आप बोल रहे थे कि नहीं चाहिए वो उसको चेंज किया गया है, तो हम वापस आएंगे। वापस सूरज जी ने ए से जेड तक पूरी कहानी नरेशन की। ऐसे कम से कम 7 बार हुआ। सातवीं बार मैंने बोला कि इम्पॉसिबल, ऐसे इंसान को जो इतना पैशनेटली नरेशन कर रहा है, इतनी अच्छे से कहानी सुना रहा है, उसको तो मैं ना कह ही नहीं सकती।
5: चेंजेस भी कर रहा
4: है।
6: मेरा इस गाने से एक बहुत कोर मेमोरी है, बहुत अच्छा। तो मैम, अगर मैं इस गाने पे आपके साथ थोड़ा सा स्टेज शेयर कर सकूं तो ये एक और कोर मेमोरी हो जाएगा मेरे लिए।

0: आज बहू और बेटियां में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा भाई बहन के पवित्र प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, दिन भर रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी, पीएम ने बच्चों से किया सीधा संवाद, कहा टूट भरोसे का बंधन है ये त्योहार। नेताओं ने भी मनाया राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन को लेकर सबको दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री को एनसीसी कैडेट्स ने, तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी बच्चों ने बांधी राखी, सीएम योगी ने भी बंधवाया रक्षा सूत्र। झूलनोत्सव पर फतेहपुर में श्री जानकी वल्लभ के मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा, प्रतिमा का फूलों से हुआ विशेष श्रृंगार, मंदिर परिसर को सजाया। नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आज धूमधाम से मनाया जा रहा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार, इस दिन बहन भाई की कलाई पर बांधती है राखी। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, प्यार और विश्वास की निशानी है, भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन और उपहार देते हैं। ये त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसके पीछे इंद्र और इंद्राणी, कृष्ण द्रौपदी और यमराज, यमुना जैसी कई पौराणिक कथाएं। वाराणसी में रक्षाबंधन पर उतारी गई बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रक्षाबंधन पर भगवान विश्वनाथ को बांधी गई राखी, भक्तों ने लगाए जयकारे। उज्जैन में रक्षाबंधन के मौके पर उतारी गई बाबा महाकाल की विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया, भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को बांधी गई पहली राखी। महिलाएं बाबा महाकाल को बांधती हैं रक्षा सूत्र, महाकाल के दरबार से होती है रक्षाबंधन की शुरुआत, 1.25 लाख लड्डुओं का लगा भोग। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया रक्षाबंधन, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। ऋषि आश्रम से रामलला के लिए भेजी गई खास राखी, मान्यता है कि ये राखी उनकी बहन शांता की ओर से है। रामलला की राखी केले के तने के रेशों से तैयार की गई, इसमें मधुबनी कला और रेशमी धागों का इस्तेमाल हुआ। ऋषि आश्रम की राखी रक्षाबंधन पर रामलला को चढ़ाई जाएगी, हर साल आश्रम से रामलला के लिए राखी भेजने की परंपरा है। मुंबई में विधायक राम कदम ने महिलाओं से बंधवाई राखी, महिलाओं के साथ खिंचवाई तस्वीर भी। फिरोजपुर केंद्रीय जेल में बहनों ने भाइयों को बांधी राखी, भाई की लंबी उम्र की कामना की। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, मुस्लिम लड़कियों ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी। भद्रवाह में बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व, बच्चियों और महिलाओं ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर बांधी राखी। महिलाओं ने थाली उतारकर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर जवानों को बांधी राखी, भारतीय सैनिकों ने दिया छात्राओं को उपहार। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने जवानों को बांधी राखी। कोलकाता में बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बंधवाई राखी, बहनों को दिया आशीर्वाद। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में महिलाओं ने अर्पित की राखी, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, बच्चों को बांटे उपहार। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनाया रक्षाबंधन का उत्सव, बच्चियों ने बांधी राखी। दिल्ली में साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार अब्बास नकवी को बांधी राखी, नकवी ने भेंट किए उपहार। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिलाओं के साथ मिलकर मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, महिलाओं ने बंधवाई राखी। इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर को अर्पित की गई राखी, राखी में भारत की संस्कृति, शक्ति, समृद्धि और विकास की झलक। लखनऊ में सीएम योगी ने बच्चियों को दिया उपहार, उनसे बंधवाई राखी, बच्चियों को बांटे उपहार। राजौरी में सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को महिलाओं ने बांधी राखी, जवानों ने महिलाओं को दिया आशीर्वाद। जामनगर के जेल में बहनों ने भाइयों को बांधी राखी, सुबह से राखी बांधने के लिए लगी भीड़। रोहतास में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, भाइयों की लंबी उम्र की उन्होंने कामना की। लखनऊ में बहनों ने जेल पहुंचकर अपने कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सलामती की दुआ की। रक्षाबंधन को लेकर प्रशासन की तरफ से किए गए विशेष इंतजाम, बहनों ने भाइयों के साथ की मुलाकात। रायपुर के सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर, महिलाओं ने अपने कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। सेंट्रल जेल पर सुबह से राखी बांधने के लिए महिलाओं की लगी भीड़, महिलाओं ने कैदी भाइयों को राखी बांधकर उनकी सलामती की दुआ की। प्रयागराज में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए चलाई गई 650 बसें, 29 अगस्त तक चलेगी बसें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी, राष्ट्रपति ने एक्स हैंडल पर लिखा, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक। गृहमंत्री अमित शाह ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर पर रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया, बच्चियों ने सीएम का मुंह मीठा करवाकर बांधी राखी। अहमदाबाद पुलिस की शी टीम ने पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के साथ मनाया रक्षाबंधन पर बांधी राखी। जमशेदपुर में स्थानीय लोगों को दिव्यांग बच्चियों और महिलाओं ने बांधी राखी, बच्चियों को उपहार किए भेंट। आज लगा साल का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण, खगोल प्रेमियों के लिए साबित होने वाला है ये खास मौका। चंद्र ग्रहण को अमेरिका समेत कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये ग्रहण। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 6:53 से दोपहर 12:32 तक रहा ग्रहण, करीब 5.5 घंटा चला ये खगोलीय घटना का नजारा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने से सूतक काल भी नहीं लगा, आज रक्षाबंधन चंद्र ग्रहण का है संयोग। देश के सभी मंदिरों के कपाट सामान्य दिनों की तरह पूजा के लिए खुले, त्योहार मनाने में भी नहीं आई कोई अड़चन। नीमच में बनी अनोखी शिव राखी, 13 रुद्राक्षों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उकेरी गई तस्वीरें। राखी के बीच में दिखेंगे मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव, यानी एक छोटी राखी में समाई शिव की पूरी आस्था। रुद्राक्ष की बेहद छोटी सतह पर हुई कमाल की चित्रकारी, कलाकार ने सिर्फ 1-2 बाल वाले महीन ब्रश से ये तस्वीरें बनाई। नीमच के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने तैयार की है एक खास राखी, इसमें महाकाल से लेकर सोमनाथ और केदारनाथ तक के चित्र। रक्षाबंधन पर यह राखी बनी आकर्षण का केंद्र, रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग और पशुपतिनाथ का संगम इसे बनाता है बेहद खास।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक बसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा, भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं, भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं, जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, दिन भर रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी, पीएम ने बच्चों से किया सीधा संवाद, कहा टूट भरोसे का बंधन है ये त्योहार। नेताओं ने भी मनाया राखी का त्योहार, रक्षा मंत्री को एनसीसी कैडेट्स ने तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी बच्चों ने बांधी राखी, सीएम योगी ने भी बंधवाया रक्षा सूत्र। झूलनोत्सव पर फतेहपुर में श्री जानकी वल्लभ के मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा, प्रतिमा का फूलों से हुआ विशेष श्रृंगार, मंदिर परिसर को सजाया गया। नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, त्रिशुली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखिए, मौली या कलावा ये सिर्फ साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये देवों द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा रही है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कि कलावा क्यों बांधा जाता है? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कलावा से जुड़ी ऐसी ही खास बातें।
1: सनातन संस्कृति का संस्कार है कलावा, त्रिदेवों का वरदान है कलावा, त्रिशक्तियों का दिया हुआ सुरक्षा कवच है कलावा। बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला है कलावा। आपने देखा भी होगा, कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो या धार्मिक अनुष्ठान, आपने कलाई पर कलावा जरूर बांधा होगा। माना जाता है कि पूजा पाठ या अनुष्ठान से अभिमंत्रित ये ऐसी ढाल है जो सदैव आप पर ईश्वर की कृपा बनाए रखती है।
2: यह जो कलावा मौली रक्षा सूत्र, एक ही चीज को कई नामों से जाना जाता है। भगवान के पूजा पद्धति में सर्वप्रथम यह जो 16 उपचार हैं, खोडशोपचार, उसी के अंतर्गत भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए नारे का प्रयोग किया जाता है। यह नारा जो देवता को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद स्वरूप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर उसको 3 राउंड घुमा करके ब्रह्म ग्रंथि से युक्त गांठ उसमें दे करके रखते हैं।
1: रक्षा सूत्र कहिए या मौली, जिसके साथ जुड़ी है हमारी सनातनी आस्था, इसे यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता रहा है, क्योंकि कलावा बांधना हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है कलावा। कलावा 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आमतौर पर ये सूत का बना हुआ होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। 3 धागे त्रिशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था।
2: जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तिनत्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार राजा बलि को माता लक्ष्मी ने जाकर के यही रक्षा सूत्र बांधा था। क्यों बांधा था? बामना अवतार के समय भगवान विष्णु जब आए, आकर के 3 पग में पूरी पृथ्वी को, लोगों 3 लोग को भगवान ने दान में ले लिया। नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके माता लक्ष्मी ने वही रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा था। और उसी दिन ब्राह्मणों के उपाकर्म श्रावणी का दिन था, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्राप्त थी, इसलिए हमारे यहाँ माताएं बहनें भी भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षाबंधन के नाम से त्योहार प्रचलित हुआ।
1: सनातनी परंपराओं में मंगल कार्यों की शुरुआत में संकल्प के लिए हो या देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ज्योतिष की जानकार ये दावा करते हैं कि कलावा बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र शरीर के कई हिस्सों में आप बांध सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां बांधते हैं मौली।
2: वैवाहिक समारोह में जो मंडपाच्छादन होता है तो उस मंडप में भी हम लोग नारा बांधते हैं, और उसमें कुछ विषय सामग्रियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि लोहे के छल्ला है, हल्दी की गांठ है इत्यादि। पीढ़े पर भी बांधते हैं, चौकी पर भी बांधते हैं, और जो वर और कन्या होती हैं, वर और कन्या के दाहिने हाथ में बांधा जाता है, उसमें यह नारा रक्षा सूत्र।
1: मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने के कई लाभ भी बताए गए हैं, और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह की कलावा बांधने का महत्व भी ज्योतिष बताते हैं। माना जाता है कि इसका न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि कलाई पर सजी ये डोर आपकी सेहत से भी बंधी हुई होती है। कलावा धारण करने के लाभ क्या है?
2: कलावा धारण करने से हमारे हाथ के पास, यहाँ देखेंगे कि वहाँ तीन नाड़ी होती है, नाड़ी तीन प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। यहाँ बांधे रहने से यहाँ से धड़कन भी, हाथ के पास जो है धड़कन भी नापने के लिए यहीं से हम लोग देखा, डॉक्टर लोग देखा करते हैं। उसी जगह के उसी पॉइंट को नारा बांध करके उसको दबाए रहते हैं, जिसके कारण से वह अनियंत्रित न होने पावे।
1: कलावा कफ वात पित्त को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मन्नतों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले की रक्षा भी करती है। हर तरह के कलावा के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कुछ दिनों के बाद जब कलावा थोड़ा बदरंग और ढीला हो जाता है, तो आप इसे बिना सोचे समझे अपने हाथों से उतारने से पहले समझिए कि इसे बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ किसी भी जगह पर रख देना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है। इसलिए मौली या रक्षा सूत्र बांधने का भी नियम तय है। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व कलावा का है, उतना ही उसे उतारने और बदलने के नियम का भी है। वो नियम क्या होंगे, किन सावधानियों पर आपको ध्यान देना होगा, आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
0: माना जाता है कि कलावा बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कहते हैं कि इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये माना जाता है कि कलावा बांधने से वात पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं, इसकी सावधानियां भी समझनी जरूरी है।

मन को शांति प्रदान करता है कलावा। इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाता है कलावा। कलावा से होती है आध्यात्मिक उन्नति। कलावा से आते हैं संस्कार और सन्मति। तो देखा आपने कितना कारगर है आपके जीवन से जुड़ा ये कलावा। ये हम नहीं कह रहे।

0: वाला ये धागा हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और जीवन के मूल्यों से जुड़ा है।
1: सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, उसके बाद चढ़ा हुआ नारा, भगवान की पूजा में सम्मिलित नारा लेकर के ब्राह्मण के द्वारा या किसी पूज्य व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ में धारण किया जाता है। यजुर्वेद कहता है कि ये नारा धारण करने से देवता प्रत्यक्ष रूप से आकर के आपकी रक्षा करते हैं। वो परोक्ष और अपरोक्ष की विधि को अपना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अग्रगण्य रहते हैं। और इसी नारा प्रतीकात्मक रूप में हम लोग हाथ में बांध करके भगवान की उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं।
0: माना जाता है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधना चाहिए। पर्व त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संस्कृति यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधी जाती है। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। माना जाता है कि पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से जुड़ी हर वस्तु का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। कलावा के उपयोग के साथ भी जुड़े हैं नियम और सावधानियाँ। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मन्नतों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। लाल और पीला रंग मिलकर बहुत शुभ फल देते हैं। लाल रंग शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि पीला रंग धन और सौभाग्य से जुड़ा होता है। सफेद रंग का कलावा पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जीवन में सुरक्षा और समृद्धि दोनों लेकर आता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावा पतला होना चाहिए। एक बार बांधा हुआ कलावा एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अलावा काले और हरे रंग का भी कलावा लोग बांधते हैं। कलावा देखने में साधारण सा धागा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। अगर आप इसे सही तरीके से पहनते हैं तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। लेकिन अगर इसमें उपयोग में लापरवाही कर दी जाए तो ये जीवन में दिक्कतें बढ़ा भी सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। कहते हैं अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांध कर किए गए संकल्प का उल्लंघन कभी ना करें। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलावे को कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: देखिए, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा बांधने से ग्रहों की कृपा भी पाई जा सकती है। मौली बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से आपकी रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मौली या फिर रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी बताए गए हैं। कौन कौन से अलग अलग कलावे आप धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

0: जानकारों का मानना है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौली बांधने के लाभ भी अलग अलग हैं। कहते हैं इसे त्रिदोष यानी वात पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट बताते हैं कि कलाई के हिस्सों में कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। कलावे के बंधे रहने से इन बिंदुओं पर दबाव बना रहता है, जो दिल दिमाग और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। तो देखा आपने, कलावा चिकित्सीय गुणों से भी भरपूर है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपके मन में शांति और पवित्रता का भी संचार करता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप अलग अलग कलावा धारण कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आपके जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान किस तरह कर सकता है कलावा। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें। इसे बृहस्पतिवार सुबह बांधें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करें। शुक्रवार सुबह इसे धारण करें।
1: मांगलिक द्रव्य के रूप में कलावा रक्षा सूत्र वस्त्र के निमित्त देवता को अर्पण किया जाता है। ध्यान को एकाग्रता की ओर अग्रसर करने के लिए यह सारी पद्धतियां बनी हुई है। जब हमारा ध्यान एकाग्र रहेगा तो हम व्यापार करें या युद्ध करें या पढ़ाई करें या सेवा करें, वह कार्य सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है।
0: रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधना अच्छा होगा। इसे शनिवार की शाम को बांधें। इसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो अच्छा होगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पूर्व माँ काली को अर्पित करें। इसे किसी अन्य रंग के धागे के साथ ना बांधें। हर प्रकार से रक्षा के लिए लाल पीले सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पहले भगवान को अर्पित कर दें। तो आप भी चमत्कारी कहे जा रहे इस कलावे को धारण करें, जिससे आपके जीवन के संकटों का नाश हो सके और जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। माना जाता है कि कलावा धारण करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: देखिए, देश आज भाई बहन के अटूट रिश्ते के पावन पर्व के रंग में रंगा हुआ है। रक्षाबंधन का ये त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह का सबसे बड़ा प्रतीक है। बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र तो बांध ही रही हैं, पेड़ों को भी राखी बांध रही हैं, भगवान को भी राखी अर्पित की जा रही है।
5: भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूत डोर, रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक पूरे देश में छाई हुई है। बाजार गुलजार हैं और बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध रही हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, तो भाई की ओर से बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उन्हें उपहार देने का सिलसिला भी चल रहा है। भाई बहन के इस त्योहार की छटा जंगलों तक में दिखाई पड़ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुड्डू और उनकी टीम जंगल में पेड़ों को राखी बांध कर त्योहार मनाया। ये सब पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आईं। जमुना टुड्डू चाकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई है, इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टुड्डू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उसे बचाने की शपथ लेती है।
6: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधते।
5: भगवान के दरबार में भी रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला चल रहा है। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान उन्हें 2 फीट की यही खूबसूरत राखी बांधी गई, जिसे मंदिर के पुजारी ओम शर्मा के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया।
7: इस पे बाबा का स्वरूप हुआ है पूरा, उसमें नेत्र है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, मिरर का वर्क है, मोर पंख है, डमरू है, मोती है, सभी मिला के और राखी पूरी बनाई है। इसमें सभी प्रकार के जितने भी गण हैं बाबा के, उसको सबको मिला के और इस राखी को पूरा करा है।
5: रक्षाबंधन पर श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलला के लिए राखी भेजने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से ये राखी भेजी जाती है। जरी और मोतियों से सजी ये विशेष राखी पूरे विधि विधान के साथ भक्तिमय उल्लास के बीच अयोध्या पहुंची। इस विशेष राखी को ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार आरती के बाद रामलला को अर्पित की जाती है। भगवान को अर्पित होने वाली राखियों के अलावा रक्षाबंधन के लिए कई ऐसी राखियां तैयार की गई जो बेहद आकर्षक दिखती है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म मिनिएचर चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया है, जिस पर उकेरा गया है मंदसौर स्थित प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का सूक्ष्म चित्र। यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई देती है। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी का निर्माण किया। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनी हुई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। यह महाराखी देशभक्ति, ईश्वर की भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश देती है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, अयोध्या से मयंक शुक्ला, मंदसौर से अजय बाड़ोलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए, वक्त हो चला है आपको कुछ वायरल वीडियोस दिखाने का, जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
8: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के सनों के साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की यह बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है, गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं, माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसी आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें, क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखी सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश की सरहदों पर रक्षाबंधन की रौनक, नाथुला में भारत चीन सीमा पर जवानों को बांधी गई राखी, राष्ट्र सुरक्षा के संकल्प को बहनों ने नमन किया। पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी, पीएम ने बच्चों से किया संवाद, कहा टूट भरोसे का बंधन है ये त्योहार। सियासी गलियारे में भी धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को बांधी गई राखी, पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बंधवाई राखियां। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी रक्षाबंधन की धूम, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माताओं बहनों ने बांधी राखी, मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। यूपी की जेलों में भाई बहन के प्रेम के त्योहार की रौनक, जेल पहुंचकर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, भाइयों ने उपहार में पौधे दिए। नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, त्रिशुली हाइड्रोपावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया गया।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत चंधावा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर वायरा की, आपको भी बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन।
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई।
0: तो चलिए आज चर्चा इसी को लेकर हम करेंगे, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध दी है, लेकिन बहुत सी ऐसी है जो इंतजार कर रहे हैं बस शुभ मुहूर्त कौन सा है। अगर जानना है तो रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन, और देश भर में राखी की रौनक साफ दिखाई दे रही है। रक्षाबंधन की रौनक सिर्फ शहरों और बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सरहद पर भी राखी का प्यार पहुंचा है। कई स्कूली बच्चे, महिलाएं वहां जवानों के लिए राखियां लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जवानों की कलाई पर राखी बांधी गई। वहीं आज ही राखी पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगा। ये चंद्र ग्रहण हालांकि भारत में नहीं दिखा है, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद अभी फिलहाल रक्षाबंधन जारी। लेकिन हमें क्या कुछ उपाय करने हैं, और क्योंकि सूतक माने नहीं है इसलिए भारत में नियम भी लागू नहीं होते, लेकिन क्या वाकई इस ग्रहण के बाद, जो कि कहा जाता है कि दान का बहुत महत्व होता है, तो ऐसे में भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उपाय क्या करने, आगे आपको बताएंगे। सावन के आखिरी दिन शाम में कैसे करें पूजा अर्चना, भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, और अभी फिलहाल कब तक है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज जानेंगे। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। तो भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन, धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में राखी की रौनक है, बाजार गुलजार हैं, मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं, और तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, मुंबई समेत तमाम जगहों से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर इस त्योहार के उल्लास को देखा जा सकता है। देश की सरहद पर भी राखी का प्यार पहुंचा है। किसी ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तो किसी ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, एक छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत। उज्जैन की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर भगवान महाकाल को रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए वहां पर भक्त पहुंचे हैं मंदिर में। रक्षाबंधन के त्योहार की धूम वहां भी देखी जा रही है। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे से भस्म आरती शुरू हुई, और इसी दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को राखी बांधी और 125,000 लड्डू अर्पित किए। और इसी तरीके से वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बाबा विश्वनाथ को राखी बांधी गई है। मध्य प्रदेश के नीमच में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ 12 रुद्राक्षों पर विशेष किस्म के ज्योतिर्लिंगों का सूक्ष्म मिनिएचर चित्र उकेरा गया, और साथ ही साथ बीच में एक रुद्राक्ष पर पशुपतिनाथ महादेव का चित्र बनाया गया। और इस बीच जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सरहद के रखवालों को राखी बांधकर उनके प्रति अपना सम्मान जताया। जवानों ने भी बच्चों को उपहार देकर इस मुलाकात को और यादगार बना दिया।
2: मंदिर हाई स्कूल से आई हूँ यहाँ पे आज सीआरपी कैंप में राखी बांधने, क्योंकि ये लोग सब अपनी बहनों से दूर रहते हैं, इसलिए हम हर साल यहाँ पे राखी बांधने आते हैं।
3: ये अपने घरों से बहुत दूर होते हैं और इनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, इसलिए हम राखी बांधने आए हैं।
4: बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये हमारा 4th ईयर है, हम कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर आते हैं, और एक भाई बहन का सच में एक रिश्ता जो है वो महसूस करते हैं कि ऐसा बन गया है, क्योंकि 4 साल एक छोटा समय नहीं है, तो इसमें हर बार सभी भाइयों से मिलना, सबसे वही स्नेह पाना, वही सम्मान पाना, तो ये बहुत गर्व की बात है अपने आप में।
0: तो भाई बहन के प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन, पूरे देश में मनाया जा रहा है, और बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, आरती कर रही हैं और उनकी सुख समृद्धि लंबी आयु की कामना कर रही है। वहीं आज श्रावण पूर्णिमा भी है और इसी के साथ सावन मास का समापन हो रहा है। तो देश के कई तीर्थस्थलों पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में, सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। स्नान के बाद दान पुण्य और पूजा अर्चना का दौर भी चला, यानी सावन के आखिरी दिन आस्था के घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं आज आसमान में भी खगोलीय घटना देखने को मिली है, कई देशों में चंद्र ग्रहण का नजारा देखने को मिला, हालांकि भारत में ग्रहण नहीं दिखा है। ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का असर नहीं है।
5: हमारे अयोध्या में लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, गौदान पूजा कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। बड़ा भारी महत्व है जो सावन महीना में स्नान दान करता है और भोलेनाथ का भजन भाव करता है, जल चढ़ाता है, उसकी सारी कामना पूरी हो जाती है। बहुत तो काफ़ी भीड़ है, 1 बजे रात से स्नान चालू हुआ है, अब तो पूरी रात आज यहीं रहे हैं।
0: तो आज का दिन कितना शुभ है आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि एक दिन है और योग संयोग बहुत सारे बन रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व सावन पूर्णिमा पर आता है, आज पूर्णिमा भी है, उदयतिथि आज ही है। आज रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है, यह सबसे बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है अक्सर हर साल हम इसको लेकर चर्चा करते हैं कि भद्रा का साया है, लेकिन इस बार गुड न्यूज ये रही कि भद्रा नहीं है। कल रात 8:54 पर भद्रा समाप्त हो गई है और सुबह से कई शुभ मुहूर्त भी बने हुए हैं। चर चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:13 से शुरू होकर 6:48 तक रहेगा। ये पर्व रिश्तों की डोर को मजबूत भी करता है। भाई की कलाई पर बहनें राखी बांध रही हैं। आज चंद्र ग्रहण भी हुआ है और अच्छी बात देखिए कि चंद्र ग्रहण का असर भारत पर नहीं है। सुबह 6:55 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई थी और ग्रहण का समापन हो चुका है 12:30। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दिया, सूतक मान्य नहीं था, यानी कि ग्रहण का असर भारत में नहीं है। ग्रहण का जो पीक समय था वो सुबह 9:43 रहा। शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक बिल्कुल नहीं है और ग्रहण का रक्षाबंधन पर भी असर नहीं है, तो देश भर में राखी के पर्व को लेकर रौनक है। और आज ही सावन का आखिरी दिन भी है, सुबह से मंदिरों में भीड़ है, श्रद्धालु सुबह से महादेव श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में लीन है। हर जगह पर उत्सव को लेकर उत्साह और उमंग साफ देखी जा सकती है। तो रक्षाबंधन का पर्व बड़ी हस्तियों ने भी मनाया है, अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने आवास साथ लोक कल्याण मार्ग पर स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली में रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उन्होंने भी युवाओं से राखी बंधवाई, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निराश्रित बच्चियों से रक्षा सूत्र बंधवाया। एक और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं बाबा बागेश्वर की, उन्होंने भी आज बागेश्वर धाम में रक्षाबंधन का पर्व सेलिब्रेट किया है। कई महिलाओं ने उनको भी राखी बांधी है, इससे उनका पूरा हाथ राखियों से भर गया और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बागेश्वर धाम में आस्था और उल्लास साफ दिखाई दे रहा था। भाई बहन के प्रेम का यह अनोखा संगम देखने को मिला। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में बहनें बागेश्वर धाम पहुंची और इस दौरान उन्होंने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधी। तो देखिए 4:00 और 4:15 का वक्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी शुभ मुहूर्त क्या है, बस यही है आज चर्चा का विषय। अभी और कितने शुभ मुहूर्त आज के दिन है, क्योंकि देखिए आज गुड न्यूज वाली राखी है और स्क्रीन पर तमाम बहनें इस वक्त आज हमारे साथ है। मेरे साथ स्टूडियो में जैसे मैं परिचय करा चुकी हूँ डॉक्टर वाई राखी हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है, नंदिता पांडे हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वायरा की शुरुआत अगर मैं आपसे करूं तो देखिए राखी है तो राखी से शुरुआत होनी चाहिए आज, है ना?
6: बिल्कुल।
0: कितना पावन दिन है, मतलब हर तरफ से ग्रहण लगा, भारत में इसका कोई सूतक माने नहीं था मतलब गुड न्यूज, भद्रा का साया नहीं मतलब गुड न्यूज, उदयतिथि है मतलब गुड न्यूज, और पूरा दिन बेहद शुभ है। कितना अहम हो जाता है आज का दिन?
6: देखिए आज का दिन तो वैसे ही अहम हो जाता है, जिसका आपने अभी तक जितनी देर से आप लगातार बोल रही हैं आपने एक ही बात बोली, रक्षा सूत्र रक्षा सूत्र रक्षा सूत्र। सावन का जो सीधा मतलब होता है वो महादेव से होता है और महादेव के मस्तक पर, मतलब क्योंकि हृदय से भी ऊपर उनके मस्तक पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो मैं तो कहूंगी कि इस बार जो ये ग्रहण बहनों के इस योग को इस कार्य को इनके बंधन को नहीं खराब कर पाया वो महादेव की हम पे बड़ी कृपा है कि महादेव ने कहा सावन है, लाखों लोग लगातार 1 महीने से मेरी पूजा कर रहे हैं, कावड़ लेकर आ रहे हैं, तो ग्रहण तो हुआ पर भारत में नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रग्रहण भारत में कैसे होगा? चंद्रग्रहण के लिए रात होनी जरूरी है और इस वक्त दिन है, तो इसलिए हम इस ग्रहण से बच गए। ग्रहण का असर आपके और हमारे जीवन पर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा एक है तो राजनीतिक उथल पुथल या फिर मौसम पर या फिर शेयर मार्केट पर हो सकता है। लेकिन ये दिन आज का बहुत खास है, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है, फुल मून है और पूर्णिमा व्रत वाली कल थी, आज भी पूर्णिमा है, भाई बहनों के रक्षा के दिन है। और अब तो लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, जमाना बदल गया है, लोग अपने घर को भी जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं, अपनी गाड़ी को भी बांधते हैं, अपने फोन को या अगर लैपटॉप से वो शेयर मार्केट कर रहे हैं तो उसे भी बांधते हैं, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, बहनों को, कुलीग्स को। भाई बहन का ये जो त्यौहार है, पर्व है, वो अंडरस्टैंडिंग का है, जहां बचपन से चॉकलेट शेयर करने से लेकर टीवी के रिमोट्स तक को लेकर हमारे बीच में जो लड़ाइयां होती हैं वो सब खत्म होती हुई दिखाई देती हैं। बहुत खास है आज का पर्व, क्योंकि हम ग्रहण से भी बच गए, सावन भी संपूर्ण हो गया, भादो का महीना लग चुका है और प्रतिपदा तिथि शुरू हो चुकी है। तो मिला जुलाकर अभी भी सूर्यास्त होने तक आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर नंदा आपके पास आऊंगी। अभी कब तक है शुभ मुहूर्त? ये आज हमारा शो है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो बताइए अभी इसके बाद कौन कौन सा समय बेहद शुभ रहेगा वो बहनें जो अभी तक राखी नहीं बांध सकी हैं, उनके लिए समय अभी आगे कौन सा शुभ है?
7: जी आप मुझसे पूछ रहे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, नंदिता जी, नंदिता जी।
7: हाँ जी, मैं डॉक्टर नहीं लगाती हूँ अपने आगे, सो लेट्स बी क्लियर ऑन इट। एनीवेज, जीएनटी के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। रक्षा सूत्र हमारा ऐसा पर्व है, देखिए कि बहुत सारे किंवदंतियां सबको मालूम है लेकिन बहुत सारी चीजें मालूम नहीं। जैसे भगवान राम जब जा रहे थे वनवास के लिए तो माता कौशल्या ने भी उनको एक रक्षा सूत्र बांधा था और औषधि से भर के बांधा था। तो पुराने जमाने में जो वैदिक काल था उस समय मणियों से या स्वर्ण से या अक्षत रोली डाल करके गांठ बांधी जाती थी और सूत्र को फिर हाथ में बांधा जाता था। जिस तरह से असुरों का और देवताओं का आपस में लड़ाई हुई और उस समय जो लड़ाई के समय में असुर एकदम से ओवरपावर कर रहे थे और इंद्रदेव भागे, तो इंद्राणी ने अपनी तप से जो रक्षा सूत्र बनाया था उससे देवताओं की विजय हुई थी और वो इंद्र को पहनाया गया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भाई बहनों का प्रेम का समय हो गया और इतना सुंदर समय है आज का, पूरा दिन आपके लिए शुभ है। राहु काल निकल चुका है, आप जिस समय भी चाहें आप बांध सकते हैं। शाम को संध्या 7 बजे तक का बहुत अच्छा समय है। लगभग आप देखें मेन इंपॉर्टेंट टाइम तो चले गए जो अभिजीत मुहूर्त था या विजय काल था, विजय मुहूर्त था, लेकिन अभी भी आप 6 बजे से लेकर के लगभग 7:45 बजे तक का में जो समय है उस समय आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। संध्या होने के बाद यानी कि जिस समय गोधूली हो जाती है उसके बाद रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता, तो उससे पहले आप बांधें और इसका बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होता है। जिस समय आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो आपने एक मंत्र बोलना है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामापि बंधनामि रक्षे माचलम माचला। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से वो रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने बाली को बांधा था और जिस प्रण के साथ बांधा था कि तुम इतने पराक्रमी हो, तुम इतने विजयी हो, तुम इतने चैरिटेबल हो, उसी एम्पावरमेंट को मैं इस रक्षा सूत्र में लेके आ रही हूँ अपने भाई के लिए, ताकि जब मैं उस रक्षा सूत्र को अपने भाई के हाथ में बांधू तो उसको भी वही बल मिले, वही पराक्रम मिले और उसी तरह से वो विजय रथ में आगे बढ़ते जाए। तो ये एफर्मेशंस होते हैं, ये एक पूजा की विधि होती है, जब आप करते हैं आपके थॉट्स उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और बहनें तो हमेशा अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रे तो करती हैं और भाई भी उसी तरह से कहते हैं कि जिस तरह से तुमने मेरे लिए प्रेयर की है उसी तरह से मैं भी अचल होकर के तुम्हारे साथ तुम्हारे हर संकट में या अच्छे या अच्छाइयों में खड़ा रहूंगा। और इसी रिटर्न में लाइक, क्योंकि बहनों ने इतना प्रे करके दिया है तो रिटर्न में उपहार भी मिलता है। सो द रियल कॉन्सेप्ट इज दिस, और उसको बहुत प्रेम का त्योहार है, प्रेम के पूरा सरोवर है ये। चंद्र ग्रहण चला गया, भारत में तो वैसे भी नहीं था, तो सब शुभ ही शुभ है। और पूर्णमासी का अंत है, आज के दिन बेलपत्री आदि चढ़ाइए पूरे शिव परिवार के ऊपर, आप देखिए सोने में सुहागा है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है।
0: बिल्कुल, बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। एक बार मैं सुमित्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, डॉक्टर सुमित्रा, सुमित्रा जी डॉक्टर लगाती है और नितिशा जी और राखी जी, वैसे नंदा जी आपकी प्रमोशन होने वाली है अब देखिएगा।
7: नहीं नहीं, आई डोंट यूज इट
0: जी। सुमित्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी,
8: प्रमोशन ही प्रमोशन है।
0: हाँ सुमित्रा जी, अब देखिए कई बहने भाई बहुत दूर है, नहीं जा सकते, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, हालांकि आजकल तो बहुत इजी है कि आप बाय पोस्ट राखी भेज देते हैं, वीडियो कॉल पर राखी बांध दी जाती है, लेकिन कई दिल की दूरियां भी तो बहुत होती हैं ना, वो कैसे नजदीकियां में तब्दील होंगी, अभी बताइए जरा आज के दिन क्या उपाय किया जाए।
9: देखिए, सबसे सबको पहले जीएनटी के माध्यम से शुभकामनाएं, और मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, गैस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है और इसलिए मैं इसे करती हूँ। तो शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी कि आज आप देखिए बहुत सारे शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, माने इस बार की राखी मेरे को लगता है ये लाइफ टाइम में सबसे बेस्ट राखी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आपने शुरुआत की, भद्रा भी नहीं हमें मिल रहा है, ग्रहण भी नहीं मिल रहा है, मतलब इस राखी को हम जब चाहे तब आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम की मारा मारी हो जाती है। प्लस काफी सारे शुभ योग बने, जैसे सुकर्म योग बन रहे हैं, श्री पुष्कर योग बन रहे हैं, सर्वार सिद्धि योग बन रहे हैं, बुधादित्य योग बन रहे हैं, हंस योग भी बन रहे हैं, सम सप्तम योग भी बन रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, अगर हम चाहते हैं हमारे बिटरनेस को दूर करना है तो ये योग भी हमें सपोर्ट करेंगे। आज जिन बहनों के अपने भाई के साथ बिटरनेस भी है या उनके आपस में तालमेल नहीं है या बहुत दूर है, तो वापस वो अपने रिलेशनशिप को, उस एनर्जी को वापस रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि हम गुरु के नंबर को यूज करेंगे, गुरु का नंबर होता है 3। हम इस 3 नंबर को यूज करके हम वापस अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर कर सकते हैं। हम लड्डू गोपाल भी येलो कलर की अगर राखी आज बांधे और उसमें हम अगर 3 गांठ बांधे, पहला गांठ जब हम बांधते हैं तो हम ये सोच के बांधेंगे कि भगवान हमारे और हमारे भाई के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि होता ही है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गुस्सा आता है, तो ये सारे चीजों को आज मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। दोबारा जब सेकेंड गांठ बांधेंगे तो सोचेंगे कि हम उनसे मधुरता चाहते हैं और हमारे बीच में जो सम्मान है वो हमेशा बढ़े और हमारे बीच में आपसी तालमेल बढ़े। फिर थर्ड जब गांठ बांधेंगे तो हम बोलेंगे हमारे बीच शांति, प्रेम और अटूट बंधन बने। ये सोचते हुए हम या तो लड्डू गोपाल को बांधेंगे या फिर गणेश जी को बांधेंगे, ये दोनों हम नहीं कर सकते हैं तो हम 3 दूर्वा लेंगे और 3 बार हम गणेश जी को एक एक करके चढ़ाएंगे और यही मन में धारणा रखेंगे कि हम हमारे भाई के साथ एक अच्छे संबंध की शुरुआत वापस कर रहे हैं। ये करके अगर आप एक छोटी सी लेटर लिखें अपने भाई के नाम पे, जो भी आपके उनके साथ मन मुटाव है उसको वहीं लेट गो करके, उसे फोल्ड करके गणेश जी के पास आप रख दीजिए, ये जरूर निश्चित है कि अगले साल आप जरूर अपने भाई के साथ इसको सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि बुध ही एक ऐसा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो क्षमा करना जानता है और उसके अंदर इतनी विजडम होती है। क्योंकि ऑटोमेटिकली आप देखिएगा जब भी हमारी लड़ाइयां होती है ना, सबसे पहले हमारा विजडम डिस्टर्ब होता है और कहीं ना कहीं राहु और केतु इसमें वर्क करते हैं और मिसकम्युनिकेशन होके बहुत सारे इल्यूजन हमारे अंदर आते हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, बातें बंद होती है, लेकिन बुध इन सबको साइड हटाता है और हमारे रिलेशनशिप को वापस से रीजेनरेट करता है, वापस से रीसेट करता है। तो सबके लिए एक सुनहरा मौका है कि जब हम आज अपने घर पे भी राखी बांध रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आपस में बात करने में बहुत बिजी हो जाते हैं, ये नहीं करके जब बांध रहे हैं तो हर एक गांठ के साथ अपने भावनाओं को जोड़िए, आपके अंदर की आत्मा दोनों को जरूर कनेक्ट करेगी और बहुत सारे जो दुविधाएं हैं आपस में वो जरूर रिजॉल्व होगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर नितिशा, अब आपके पास आना चाहूंगी, आज के दिन का ग्रह गोचर समझाते हुए अपनी बात को रखिएगा।
10: जी थैंक यू नवजोत जी, और रक्षाबंधन की सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए भद्रा भाद्र मास लग चुका है और पूरणमासी का अंतिम चरण चल रहा है, क्योंकि सूर्योदय के समय पूरणमासी लग चुकी थी। अभी हमने कुछ ही दिन पहले शो किया था 7 योगों वाला रक्षाबंधन, तो सच में ये रक्षाबंधन बहुत स्पेशल था, क्योंकि हर बार भक्तों को, सबको, यही बहनों को लगता है कि भद्रा लगी होगी और भद्रा भी नहीं लगी, चंद्र ग्रहण का साया भी नहीं था, सुकर्मा योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, इतने बड़े बड़े योग भी हमें मिल गए। और साथ ही साथ ग्रह गोचर की अगर मैं बात करूं तो ग्रह गोचर की स्थिति भी बहुत शुभ बन रही थी। गुरु का हंस नामक राजयोग जो भाई बहनों के जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है, जो 12 साल के बाद आया है और 18 साल के बाद सावन में ग्रहण लगे हैं, तो मैं तो ये भी यही मानती हूँ कि जो ग्रहण भी होते हैं ना वो जीवन में चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए आते हैं। जब आप अपने अंदर की बुराइयों को, आसपास की चीजों को, डिप्रेशन एंजाइटी को भगाते हुए उन चीजों को स्वीकार करते हैं, तो ये ग्रहण आना तो मेरे लिए मैं कहूंगी बहुत अच्छा है। उस समय हम मंत्र जाप करते हैं, शिव जी के बहुत करीब हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है और शिव जी हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने मन पर कंट्रोल पा लेते हैं तो वही मन हमारे मस्तक पर विराजमान हो जाता है एक ताज बनके। तो शिव जी ने उस मन को, क्योंकि उनका अपने मन पर पूरा नियंत्रण है, और जो शिव जी के भक्त हैं, जो सावन को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज पूरणमासी को, सावन की पूरणमासी को जिन्होंने सेलिब्रेट किया है, खीर बनाई होगी आज घर में, वो शिव जी से जुड़े होंगे और उन्होंने अपने चंद्रमा को भी एकाग्र किया होगा, अपने मन को कंट्रोल किया होगा। और ये पूरे योग शुक्र का नीच राशि से गोचर करना, चंद्रमा का कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र से गोचर करना, ये पूरे जो योग बन रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है, जो पूरी तरह से ऊर्जात्मक है। आज देखिए चंद्र ग्रहण के बावजूद भी नवजोत जी सब लोग बहुत ऊर्जात्मक फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जी है, वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। जबकि ये चंद्र ग्रहण पानी से संबंधित एलिमेंट के लिए, बाढ़ है, भूचाल है, इन सब के लिए और राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जल से संबंधित और चीजें आ रही हैं, आतंकवादी हमला, क्योंकि ग्रहण लगा है तो कुछ ना कुछ ऐसे विस्फोट होने के चांसेस भी बनेंगे। साथ ही साथ राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल भी अभी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के दिन बहनों का मन और भाइयों का मन, स्पेशली भाभियों का मन बहुत प्रसन्नचित है। ये बहुत बड़ी बात है कि चंद्र ग्रहण के बावजूद भी हमारे मन को हमने पूरे सावन भर जल चढ़ाकर शिव जी से जुड़कर पूरे मन को शीतल रखा है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर, प्रधानमंत्री जी को देखकर। तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बेटियों को एक तरह से राखी बंधवाकर ये बोला कि मैं प्रधानमंत्री पूरी तरह से अपने देश की बेटियों की रक्षा का प्रण भी लेता हूं। सीएम योगी जी ने रक्षाबंधन करवाया, बहुत अच्छा राखी का सूत्र लग रहा वहां देखकर कि योगी जी भी दिखा रहे हैं कि मैं भी सीएम पूरा उत्तर प्रदेश सबकी सब बेटियों का, बहनों का पूरी तरह से रक्षा करने का वचन लेता हूं। तो रक्षा मंत्री जी को हमने देखा, हमने बाबा बागेश्वर को देखा और जीएनटी को सुबह से देख रहे हो, बहुत स्पेशल स्पेशल इवेंट।
0: बिल्कुल, इसी के साथ साथ हमने सरहद के जवानों की राखी भी दिखाई है। बिल्कुल राखी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहीं से बात को शुरू करते, ग्रहण भी है, हालांकि भारत में सूतक माने नहीं है, हमने किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया है, लेकिन वही बात है कि सूर्य भी एक है, चंद्र भी एक है, ग्रहण भले ही कहीं भी लगे असर पूरी धरती पर रहता है, तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करना जरूरी हो जाता है आज के दिन।
11: जी, कार्यक्रम के शुरुआत में आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, आपने बोला था कि दान, तो ग्रहण भले ही भारत में ना हो, क्योंकि सावन संपूर्ण हुआ है, एक चतुर्मास से पूरा का पूरा महीना संपूर्ण हुआ है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम चावल का दान करें, हम दूध का दान करें, हम दही का दान करें, आपको पता है चीनी बहुत महंगी हो गई, हम चीनी का जो है वो दान करें, ऐसे लोगों तक इस सामान को पहुंचाएं जो शायद इस वक्त समर्थ नहीं है इन चीजों को खरीदने के लिए। जरूरी नहीं है कि दान मंदिर और गुरुद्वारे में किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, इसे महादेव की अति कृपा आप पर मिलती है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगी, अभी आपने पूछा डॉक्टर साहिबा से जैसे कि अगर कुछ भाई हैं जो मन से बड़े दूर हैं तो ईगो किस लिए रखनी, एक फोन उठाइए और कॉल कर लीजिए, आधा दिन बचा है अभी अपने भाई के लिए, वो बचपन की बातें याद करिए, 100 बार उसने आपको मनाया था, 100 बार आपने उसे मनाया था। देखिए आज आपकी जिंदगी में बहुत रिश्ते जुड़ गए हैं, लेकिन वो पहला रिश्ता था जो भगवान ने, ईश्वर ने आपको सबसे पहले दिया था, तो बिल्कुल ईगो को साइड रखकर तुरंत इस कार्यक्रम को देखते देखते कॉल मिलाइए और सिर्फ भाई बोल दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए नंदा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। रक्षाबंधन के दिन क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो?
7: ये बहुत सुंदर प्रश्न है और रक्षाबंधन में ही मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना चाहूंगी जिसे कहते हैं बंसी नारायण मंदिर। और बंसी नारायण मंदिर उत्तराखंड में है और ये मंग वैली में है। ये मंदिर केवल वर्ष में एक दिन खुलता है, वो भी रक्षाबंधन के दिन, श्रावणीपुर में पूर्णिमा के दिन। ऐसा माना जाता है इस मंदिर में ना नारद देव पूजा करते हैं, और क्योंकि माता लक्ष्मी के साथ वो बाली के पास मिलने पाताल गए थे, तो इस एक दिन वहां के लोकल पंडितों को उन्होंने बोला था कि आप यहाँ के लोकल जो गाँव वाले हैं कि आप पूजा करिए, तो उस दिन वहां पे धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। इट्स अ वेरी यूनिक मंदिर और कभी मौका मिले तो आप लोग अवश्य वहां पे जाइए, और बहुत एम्पावर्ड मंदिर है। हरि और हर दोनों की ही पूजा वहां पे होती है। देखिए सावन की पूर्णिमा है और आज के दिन आप केवल पूर्णिमा तिथि में नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, सत्यनारायण की पूजा की जाती है, लेकिन साथ ही साथ श्रावणी पूर्णिमा है तो महादेव और उनके संपूर्ण परिवार की, शिव और शक्ति की भी पूजा आज के दिन होती है। तो जब आप अपने भाई को राखी बांध रही हैं उससे पहले आपने पूजा का थाल अपने मंदिर में जरूर रखना चाहिए, और सबसे पहले आपने अपने पितृ देवताओं को, अपने कुल देवताओं को, इष्ट देवी देवताओं को, लेकिन सर्वोत्तम और सर्वोपरि गणेश देवता और उसके बाद श्रवण कुमार को भी जरूर राखी बांधनी चाहिए। राखी कैसे बांध सकते हैं आप? मौली जो होती है वो लीजिए, उसको थोड़ा सा मौली तोड़ करके उनके नाम से अर्पित कर दीजिए। अगर नहीं है तो सुपारी उनके नाम से रख करके आप उनको पहले अर्पित करें, उसके बाद समस्त देवी देवताओं को जो आपके घर के मंदिर में स्थापित है आप उनको अर्पित कर सकते हैं, और उसके पश्चात फिर उसी थाल में, क्योंकि उन सब की शक्ति वहां पे आती है, उस थाल में आती है, और तब जाकर के आप अपने भाई को राखी बांधें। राखी बांधने का एक तरीका होता है, आप अपने भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले उनके हाथ में थोड़ा सा अक्षत, एक सिक्का या फिर एक फूल आप अवश्य रखें, क्योंकि खाली हाथ में राखी नहीं बांधी जाती, फिर उसको ऐसे मुट्ठी बंद करके तब आप राखी कलावा बांधिए। कलावा बांधते वक्त जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि तीन गांठ बांधे, तो तीन गांठ तो बांधना आवश्यक होता है, और हर गांठ के साथ जब आप प्रे करें कि आपकी गुड हेल्थ के लिए बांध रहे हैं, आपके सक्सेस के लिए बांध रहे हैं, आपके पीस के लिए बांध रहे हैं, आपकी सुख समृद्धि के लिए बांध रहे हैं, तो ये जैसे जब आप बांध करके करती हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत शुभ होता है। और आज के दिन सफेद मिठाई खिलाते हैं तो और उत्तम हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि होती है, पूर्णिमा में सफेद मिठाई का भोग बहुत अच्छे कहते हैं कि शरीर की नेगेटिविटी को हटाता है और जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उसको बाहर करता है। जल जब आप देते हैं तो उस जल में थोड़ा सा मिश्री आप जरूर मिला करके अपने भाई को पिलाइए, और थोड़ा सा जल उसके बाद आप नीचे जमीन में जरूर डाल दीजिए, तो इससे भी भाई को काफी सारा प्रोटेक्शन मिलता है। भाई को उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ बैठा करके जब आप राखी बांधती हैं तो उनको उनकी पूर्व दिशा की और नॉर्थ की जो एनर्जीज होती हैं, नॉर्थ की एनर्जीज कुबेर देवता की होती है, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज शिव जी की होती है, और ईस्ट की एनर्जीज सूर्य देवता की होती है, जो आत्मा के कारक होते हैं। तो आप ऐसे करके जब राखी बांधती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। भाई आपसे बड़े हैं तो रक्षा सूत्र बांधने के बाद उनके पांव छूइए, भाई आपसे छोटे हैं तो आप उनको आशीर्वाद जरूर दीजिए। और राखी का त्यौहार तो प्रेम का त्यौहार है, आपस में जितना प्रेम भाव से आप रक्षा सूत्र बांधते हैं उतना ज्यादा वो एम्पावर्ड हो जाता है, उतना ज्यादा वो रक्षा करता है। भाई से रिक्वेस्ट करिए कम से कम 24 घंटे इस रक्षा सूत्र को बांध के रखें तो ज्यादा उसकी पावर्स आपके पूरी ऑरा में आनी शुरू हो जाती है, सातों चक्र में घूमते हुए ऊपर सहस्रार चक्र से बाहर जाती है, और तब आपकी चारी ऑरा की तरफ जो पूरा जो ऑरिक प्रोटेक्शन है वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसका ख्याल अवश्य रखिएगा। और बाकी तो वैसे होता है कि आपकी जो सोच है, जो एफर्मेशन है, जो प्यार है, वो जितना प्यार उमेड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। राखी की था नारियल रखना ना भूले, नारियल से वार करके उस नारियल को कहते हैं कि बाहर जा करके या तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग के पास जाके अर्पित कर देना चाहिए, उससे भी भाई की नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है।
0: बिल्कुल, चलिए इसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अभी कब तक है शुभ मुहूर्त राखी बांधने का, इसी पर हो रही है चर्चा, देखते रहिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: अभी कब तक है राखी बांधने का मुहूर्त, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का दिन वैसे पूरा दिन ही बेहद शुभ है, और जैसे हमारे तमाम पैनलिस्ट लगातार हमें बता ही रहे हैं कि आप किसी भी वक्त राखी बांध सकते हैं, कि अभी भी वक्त है, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही अपने भाई को राखी बांधेगा। लेकिन एक चर्चा जो अक्सर चलती है, जिसको लेकर कभी कभी अनबन हो जाती भाई बहनों में, कि तोहफा क्या लाए हो मेरे लिए। ये लालच बहनों को भी रहता है, वैसे आजकल तो भाई भी बहनों को गिफ्ट देते हैं और बहनें भी भाइयों को गिफ्ट देती हैं। तो सुमित्रा जी, इस पर आपका क्या कहना है बताइए।
1: जी, सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि घर ही तो ना दे, और दूसरी बात, अभी जब नवजोत जी ने प्रोग्राम शुरू किया था, उन्होंने जेल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि बहनें जेल में जाकर जब राखी बांध रही है तो भाइयों ने उन्हें पौधे दिए। मैं पर्यावरण से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बोलती हूँ ये जागरूकता हमारे अंदर भी आनी चाहिए कि हम या तो बीज या पेड़ एक दूसरे को जरूर दें, क्योंकि पर्यावरण को हम अच्छा करेंगे तभी नेक्स्ट जनरेशन भी हम कुछ छोड़ के जा पाएंगे। नेक्स्ट जो देने की बात आती है ना, जब हम देते हैं तो, क्योंकि न्यूरोलॉजी से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मूलांक जो होता है, डेट ऑफ बर्थ जो होता है, उस बर्थ के हिसाब से अगर हम गिफ्ट देते हैं या लेते हैं तो वो भी हमारे लिए काफी अच्छा ऑस्पिशियस रिजल्ट लाता है। जैसे अगर बात करूँ जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 है या 10 है या 19 या 28, तो जैसे 28 को भी अगर मैं जोड़ू तो 1 हो जाता है, तो जिनका भी 1 आता है मूलांक उनको हम एक पेन गिफ्ट कर सकते हैं। जिनका भी मूलांक 2 आता है उन्हें मिठाई में हम काजू की कतली खिला सकते हैं, उस पर जिसपे बर्फ लगा हुआ हो, या फिर कोई भी चांदी का सामान या फिर चांदी के कलर का सामान दे सकते हैं। जिनका भी मूलांक 3 है उनको हम या तो किताब दे सकते हैं गिफ्ट में, या बेसन का लड्डू दे सकते हैं, खिला सकते हैं। जिनका भी मूलांक 4 है हम उन्हें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर दें, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी सामान, या फिर ईयरफोन ही अगर दें तो वो बहुत अच्छा रहता है दोनों के लिए। जिनका मूलांक 5 है उनको हमें पिस्ता का मिठाई खिलाना चाहिए, और उन्हें कोई ना कोई इंडोर प्लांट जरूर दी जानी चाहिए। जिनका भी मूलांक 6 है उनको परफ्यूम जरूर दें, और जिनका मूलांक 7 है उनको मैट, या तो उसको योगा अगर करते हैं तो योगा मैट दे दें, या फिर अगर पूजा पाठ करते हैं तो आसन दे दें, पर मैट जरूर दें। जिनका भी मूलांक 8 आता है उन्हें कोई भी आप लेदर का सामान दे सकते हैं, या तो वॉलेट या फिर बेल्ट, गर्ल है तो आप पर्स दे दीजिए बहन को। जिनका भी मूलांक 9 है आप उनको कॉपर की बॉटल दें जिसमें पानी रख के पी सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिलेशनशिप है उसके चलने में हमारे बीच के अंदर आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर रोकना है तो आप कभी भी टूटा हुआ चावल या तो उनके सर पे भी ना लगाएं या उनके हाथ में भी ना दें, क्योंकि टूटा हुआ चावल फिर राहु और केतु के दोष को एक्टिवेट करता है और यही आगे जाकर उनके मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनता है। तो इस चीज का, छोटे छोटे चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे और पौधों से प्रेम करेंगे, और एक किसी पौधे को भी आज आप राखी जरूर बांधिए और उसको भी संकल्प करिए कि मैं तेरी प्रोटेक्शन जरूर करूंगा, तो इससे हम पर्यावरण के भी बहुत कुछ कर पाएंगे।
0: वैसे भी सावन का महीना, आप कहा ही जाता है कि प्रकृति के जितना करीब आप रहेंगे उतना भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी। डॉक्टर नितिशा, आपके पास आना चाहूंगी, तोहफों को लेकर आपकी राय क्या है, किस तरीके से, किस हिसाब से तोहफा देना चाहिए?
2: नवजोत जी, आप जानती है कि तोहफों को लेकर मेरी राय
0: बहुत लालची हूँ। हमारी अक्सर इसको लेकर चर्चा होती है। नितिशा जी हमेशा कहते हैं कि तोहफा बहुत जरूरी है,
2: बहुत जरूरी,
0: कोई भी दे कैसा भी तोहफा हो, लेकिन तोहफा इज इम्पोर्टेंट,
2: तोहफा होना चाहिए बस। तो मैं तो पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ठाकुर जी ने मुझे तोहफा दिया है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, सभी काम मेरे ठाकुर जी करवा रहे हैं, तो मेरा पहला तोहफा वो मुझे देते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ सभी भाइयों से, सभी बहनों से, चाहे करवा चौथ आए, चाहे रक्षाबंधन आए, चाहे कुछ भी आए, आपकी जेब में जितना भी है उस समय आप ये मत सोचें कि आगे क्या होगा, आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। आप अपनी पत्नी को, अपनी एंजल को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को जन्मदिन पर, रक्षाबंधन पर कृपया गिफ्ट जरूर दे, चाहे छोटा दे चाहे बड़ा दे। मैं ये नहीं कहूंगी कि गोल्ड ही देना जरूरी है, लेकिन आज चंद्र ग्रहण भी था, पूर्णमासी का दिन है और सभी कार्यों को पूर्ण करता है, तो अगर आप व्हाइट चीजें, चांदी की कोई चीज हो गई, व्हाइट चीजें हो गई, बर्फी हो गई, खीर हो गई, सब बहनों को आज मैंने कहा था कि खीर जरूर बनाएंगी, और अपने भाई को वो केसर वाली खीर जरूर खिलाएंगी, क्योंकि आपके भाई की उम्र भी लंबी हो और आप दोनों के बीच में जो मानसिक एक संतुलन है वो भी बना रहे, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो, उसकी मिठास की तरह हम अभी उस दिन भी बात कर रहे थे कि गुड़ वाली मिठास, शहद वाली मिठास खीर में होनी चाहिए ताकि भाई बहनों का रिश्ता बना रहे। तो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, आप उसको अपने मन से हलवा बना के खिला रहे हो, खीर बना के खिला रहे हो, उसके लिए कुछ भी ले जा रहे हो, गिफ्ट कुछ भी हो लेकिन होना जरूर चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां हर स्त्री हर पुरुष को एक नई उमंग देती है, एक नया हर्षोल्लास देती है। तो आप छोटा सा ही गिफ्ट जरूर दे। और अभी जैसे कि पेड़ पौधों की बात हो रही थी, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पेड़ दे देते हैं। यहाँ पे मैं अपने पितरों के लिए भी कुछ बोलना चाहूंगी कि आज के दिन अपने मुख्य द्वार पर मुल्तानी मिट्टी या गेहूं मिट्टी से राम राम लिखे, राम राम लिख के, या श्री हरि विष्णु का नाम लिख के, नारायण नाम लिख के, उस पे जल छिड़के, तिलक लगाए और वहां पे भी मीठा लगाए। क्योंकि जो हमारे परम पूजनीय, जो हमारे पितृ है, वो श्री हरि विष्णु है, प्रभु राम है, तो उनको भी आज के दिन अपने रक्षा के लिए संबोधित किया जाए कि हे प्रभु राम, मेरी आप भी रक्षा करो, श्री हरि नारायण, आप इस घर की, मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी गाड़ी की, जो भी आपने मुझे दिया है, जिस लायक आपने मुझे समझा है, आप पूरी तरह से मेरे परिवार की रक्षा करें। ऐसा भी जरूर ये उपाय करें। और दूसरा उपाय बहुत विशेष है आज के दिन, गिफ्ट तो दे ही दे, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आज के दिन चंद्र देवता को अर्क जरूर चढ़ाए और बोले कि आपने मुझे इतना बड़ा मन दिया, जो इतना साफ सुथरा है, जो अच्छा है, जो पॉजिटिव रहता है, जो हमेशा सकारात्मक सोच से भरा रहता है, ऐसा मन देने के लिए धन्यवाद। और आप इस मन की मेरी हमेशा रक्षा करें ताकि मेरा मन कभी भी विचलित ना हो, मेरे भाई का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का मन कभी भी विचलित ना हो। ऐसा बोलते हुए उनको अर्क देकर आप देखे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब भाद्रपद मास की भी शुरुआत हो चुकी है, त्योहार ही त्योहार, बुढ़वा मंगल, तीज और जन्माष्टमी, मेरी फेवरेट फेस्टिवल, तो सब आसपास है। पूरी तरह से आपको आज का दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आने वाले पूरा साल, मैं तो कहूंगी, आप बहुत सकारात्मक रहेंगे।
3: बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब डॉक्टर वायरा की आपके पास आना चाहूंगी, इसी के साथ उपाय ये भी बताते चले, क्योंकि रक्षाबंधन भी हम मना रहे हैं, तोहफों की बात भी होगी, लेकिन आज सावन का भी आखिरी दिन है, यानी हम कहें कि कुछ ही घड़ियां, कुछ ही पल, कुछ ही घंटे बचे हैं जब भोलेनाथ को प्रसन्न करने का मौका हमारे पास है। वैसे तो देखिए पूरा साल ही होता है भगवान की कृपा पाने का, लेकिन सावन क्योंकि विशेष महीना कहा भी जाता है, तो ऐसे में अब आज की शाम क्या उपाय किए जा सकते हैं?
4: देखिए पैसा हर किसी को चाहिए होता है, इसीलिए हम लक्ष्मी जी को महालक्ष्मी कहते हैं, और महादेव सिर्फ महादेव को कहते हैं, यानी कि सभी देवताओं के देवता महादेव। और आज सावन का आखिरी दिन है, तो अब तक जो आपने पूरे सावन में नहीं किया, शाम के समय पर, ये भी एक अपने आप में बहुत खूबसूरत तोहफा है कि आप दोनों भाई बहन जो हैं वो मंदिर जाएं, वहाँ की एनर्जीज इकट्ठी करें, गन्ने का रस और शहद दोनों भाई बहन अगर एक साथ महादेव पर अर्पण करते हैं तो बहुत धन आता है। आज आप राखी किस वजह से बना पा रहे हैं? अपनी माता जी की वजह से। तो आज दोनों भाई बहन माँ की चरणों में थोड़ी देर बैठे, चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। आप अक्सर शरद पूर्णिमा के लिए सुनती हैं कि ये चांद बड़ा खूबसूरत होता है, शरद पूर्णिमा का चांद देखना चाहिए, अपने लव वन के हाथ में हाथ डालकर अगर शरद पूर्णिमा पे घूमा जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि सावन की जो पूर्णिमा और सावन का जो आखिरी दिन है, इसमें भाई बहन अगर चंद्रमा की रोशनी में एक दूसरे को खीर खिला दें, एक दूसरे को गले लगा लें, एक दूसरे को दुआ दे दें, बहन बड़ी है भाई के, भाई जो उसके पैर छू ले, भाई बड़ा है बहन उसके पैर छू ले, गले लगा के एनर्जीज ले ले, तो एक वर्ष तक इन दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं होते। सावन की पूरी पूजा भी आपने ना करी, और अगर आज आप शाम को जाकर शिव मंदिर में 16 बत्ती का दीपक उनकी पत्नी के सामने जला दें तो आपके जीवन में जो रिश्तों में अंधेरा है वो खत्म हो जाएगा, आपकी अलमारी में जो अंधेरा है, जहां फाइनेंस नहीं है, जहां पैसा नहीं है, जहां जेवर नहीं है, वो अंधेरा खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो वो अंधेरा आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। अगर आप ये 16 बत्ती का दीपक आज माता पार्वती के सामने जला दें तो पितृ दोष खत्म हो जाएगा। मतलब पूरे महीने की आज बंपर लॉटरी का दिन है, जो अब तक नहीं किया वो अब करिए। तो ये उपाय आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाते हैं, लेकिन चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, हृदय का कारक। ये बात यथार्थ सत्य है कि पानी से जुड़ी समस्या हमें होगी, पानी से जुड़े रोग जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, मच्छरों से रोग बढ़ते हैं, वो भी आगे आने वाले टाइम में आपको काफी दिखाई देंगे। इसलिए पेड़ तो लगाएं लेकिन उनकी कटाई छटाई भी करें, उन्हें साफ सुथरा भी रखें, और कोशिश करें कि अपने घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि अक्सर हम तीज त्योहार मनाने के अगले दिन बाद चीजों को फैलाकर घर में रखते हैं तो जीवन फैल जाता है। तो जो भाई के घर से लाए उसे समेट के रखें, जो भाई के घर लेकर गए उसे समेटने के लिए कहें। और मुझे लगता है कि तोहफों में दुनिया में सबसे बेहतर तोहफा वो है जो आप दें और डबल होकर आपको मिले, तो अपनी बहन को आज पैसे दीजिए आप।
3: बिल्कुल। नंदिता जी आपके पास आना चाहूंगी, ग्रहण को लेकर मैं थोड़ी सी, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि देखिए भले ही भारत में नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग वहम कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें कर ही लेना चाहिए। दो सवाल मेरे

0: उससे पहले एक चीज और बता दूं कि आज वर लक्ष्मी व्रत भी है और माता लक्ष्मी की पूजा जो आज कर लेता है उसको जीवन पर आने वाले साल भर तो कम से कम उनकी कृपा प्राप्त होती है, स्थिरता मिलती है धन लक्ष्मी में। तो धन लक्ष्मी हो, धान्य लक्ष्मी हो, गज लक्ष्मी हो, तो ये आज का दिन, और आज का दिन गायत्री जयंती भी है, तो आप ये सोच रही कि इतना इम्पावर्ड डे है आज का, जिस दिन आपको अगर विद्या चाहिए, गायत्री मंत्र तो वैसे ही एक ऐसा मंत्र है जो आपके पूरे जीवन में अंदर से लेके बाहर तक आपकी पूरी ऑरिक एनर्जी को क्लीन कर देता है। गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिए, आज एक दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी का, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहेगा, बहुत एम्पावरमेंट आएगी। अब रही चंद्र ग्रहण की बात, चंद्र ग्रहण जिन एरियाज में है वो बेसिकली प्राइमरली अमेरिका में, अगर आप हमारे सनातन भाई बहन रहते हैं, या फिर अफ्रीका में रहते हैं, साउथ अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, और ये जितना पैसिफिक अटलांटिक ओशन वाला जो एरिया है, ये सारे एरियाज इस ग्रहण से प्रभावित है। अब ये ग्रहण किस समय में, मैं पहले भी इस बात में बोल रही थी कि ग्रहण खत्म होने के बाद आप रक्षा सूत्र बांधेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या ग्रहण से पहले 9 घंटे का जो सूतक है उससे पहले अगर पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, भद्रा नहीं है तो आप तक, लेकिन हालांकि पूर्णिमा तिथि के साथ साथ भद्रा शुरू हो जाती है, तो ग्रहण के पश्चात ही अगर आप बांधे तो अच्छा है। ग्रहण यूरोप आदि में तो सुबह 7 बजे खत्म हो गया है, तो आपके लिए भी दिन जो है अच्छा है, शुभ है, आप बांध सकते हैं राखी इस समय, इस चीज का ध्यान दें। जब ग्रहण होता है, ग्रहण में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो जेनरिक होता है कि ग्रहण होता है, नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, एक मानसिक, चंद्र ग्रहण में तो एक जनमानस में मानसिक उद्वेग आता है। चंद्रमा क्योंकि जल का कारक होता है, चंद्रमा बादल का भी कारक होता है, तो बादल फटने के चांसेस हो जाते हैं या उस तरह के हो जाते हैं। पर शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र हीलिंग नक्षत्र भी होता है, राहु का नक्षत्र वहां पे बैठा हुआ, तो राहु जो एनर्जीज क्रिएट कर रहा है इस समय और कुंभ राशि में पड़ रहा है, तो वायु तत्व की राशि, वायु से संबंधित दिक्कतें इस एरिया में आएंगी, तो वायु से संबंधित वायरल्स हो, फ्लूज हो, ये सारी चीजों पे बहुत केयरफुल रहना है, जो एरियाज मैंने ग्रहण के अंदर ग्रसित होते हुए बताएं। अगर आपको उनसे बचाव करना है तो आपको तुलसी जल का रेगुलर पान करना चाहिए, तुलसी पात्र के जल का, जिससे कि आपके अंदर वो और एक प्रोटेक्शन रहे। जितने भी हमारे सनातन भाई बहन हैं जो उन सारे एरियाज में है, दूसरा जब भी होता है, बोलते हैं राजनेताओं की मृत्यु होती है या एक राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है या वॉर लाइक सिचुएशन होती है, एग्रवेशन आ जाता है बहुत ज्यादा। अभी आप देखें यूरोप में जिस तरह से वेदर में इतना ज्यादा बदलाव आया है, तो दो दो ग्रहणों से युक्त यूरोप रहा है इस समय, तो उस तरह की चीजें आती है, शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है। ग्रहण के समय कभी भी आपको शेयर मार्केट के उसके 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक का नहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये सारी चीजें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ग्रहण के दौरान, खैर ग्रहण तो अभी खत्म हो गया, यूरोप वगैरह में भी खत्म हो गया, लेकिन ग्रहण के दौरान अगर आपको दवाई खानी है, खाना खाना है, तो आप तुलसी पात्र रखें या कुशाघात रखें, या वो सब भी नहीं मिल रहा है तो लौंग क्लोव्स जो होते हैं उसको आप रखें, और उसके बाद 1 मिनट के बाद आप खाएं, ताकि उसके अंदर, क्लोव्स के अंदर वो सारी एनर्जीज जो नेगेटिविटी होती है और एक एनर्जी में वो खत्म हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं, आप करिए इस समय, आप आराम से रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, ग्रहण का समापन हो चुका है, ग्रहण के समापन के साथ सूतक हो या ग्रहण हो, सब सारी एनर्जीज का खात्मा हो जाता है। चैरिटीज अवश्य करिए, थोड़े से पैसे या सब तनाजा का दान हम कहते हैं सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर कोई सफाई कर्मचारी आपके आसपास है, आप उनको जरूर उनकी उन्नति के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं, या नॉर्मल चाय पानी के लिए भी उनको कुछ पैसे दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है आज के दिन। अगर आप ग्रहण में नहीं भी हैं, भारत में भी हैं, तो चैरिटी तो मैं कहती हूँ दान पुण्य तो हमेशा करना चाहिए, गिफ्ट तो हम हमेशा लेते हैं, लेकिन दान करने से जो हमें एक सुपर दान भगवान देते हैं वो बहुत इमेंसली पावरफुल होता है। वरलक्ष्मी का व्रत है आज, बहुत सारे साउथ इंडिया में तो बहुत मेजरली इस व्रत को किया जाता है, आप भी कर सकते हैं, नहीं भी आपने किया तो आज संध्या के समय लक्ष्मी सूप का पाठ अवश्य करें, घी का दिया जला करके, अगर संभव हो तो खीर बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, उनको ये भोग बहुत पसंद होता है, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र संध्या के बाद नहीं करना चाहिए, पर जो नियम है, अगर आपके घर में, आपके फैमिली में वो नियम चलते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मानसिक आप जाप करेंगे तो मानसिक जाप में आपको ज्यादा एम्पावरमेंट मिलती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं हाँ आज, लेकिन शिव जी, शिव परिवार और नारायण और माता लक्ष्मी, इन सब की पूजा अवश्य करिए, बहुत बहुत एम्पावर्ड डे है आज का, और इस पूजा से करने से जो भी ग्रहण का असर हो या जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी चीजें हट जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर सुमित्रा, एक छोटा सा उपाय चलते चलते क्या बताएंगे आप? जी, मैं चलते चलते

0: देखो, अच्छा वो मुझे नवजोत जी ने मौका दिया बताने का, क्योंकि काफी लोग ग्रहण और ये सूतक से डर भी जाते हैं, तो मैं
1: हाँ
0: उन लोगों के एक छोटा सा मैसेज है कि वो अगर गलती से मान ली उन्होंने रक्षा सूत्र बांध ही दिया है, अब वो घबरा जाते कि चलो इसे खोल देते हैं वापस सही समय में बांध देंगे, ये बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपने बांध दिया है तो रहने दीजिए। क्या होता है उस टाइम के, अगर उस टाइम अगर प्लैनेट्स बहुत प्रेशर में है तो जो एनर्जी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली थी वो थोड़ी कम मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता कि वो नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम रक्षा सूत्र को ना खोले 1.5 दिन बाद, सवा दिन बोलते हो तो सवा दिन बाद खोले, और बाकी लोग जो लोग अपने नियम के अनुसार, बहुत जन देखिएगा अगली पूर्णिमा पे खोलते हैं, बहुत जन जन्माष्टमी पे खोलते हैं, वो उस समय वैसे ही इसे खोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रहण के समय में या कहीं पे भी, आपने बिल्कुल सही बात की कि सूर्य वही है चंद्रमा वही है, अगर हमारे ऊपर नहीं भी हो रहा है पर वो प्लैनेट तो उस एनर्जी के थ्रू पास कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर तो एक असर पड़ रहा है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस समय हम बोलते हैं मंत्रों का जाप करें, जो भी मंत्र आपको पसंद है आप वो मंत्र का जाप करें। बहुत जन मंत्रों का अर्थ भी नहीं जानते तो वो भगवान से सिर्फ यही एक चीज की विनती कर सकते हैं, उस भगवान को याद करके, जिस भी भगवान को चाहते हैं पसंद करते हैं, या अपने सरल भाषा में बोल सकते हैं कि भगवान मेरे को इतनी बुद्धि दे, इतना मेरा हेल्प करें, या मेरा हाथ पकड़ के, मेरे से कोई गलत काम नहीं हो, और मेरे अंदर भी आप ही की तरह प्रकृति के जो स्वभाव है वो मेरे अंदर आए, और मैं भी पार देने की क्षमता रखूं। अगर मैं रोकूंगा हाथ तो मैं कभी दे नहीं पाऊंगा, पर मैंने अपने जीवन अनुभव से देखा आप जितना देंगे ना, ऐसा नहीं होता कि आपका भंडारा खाली हो जाता, आप दे ही पाते हो और ऑटोमेटिकली आपको देने वाले मिलते हैं। तो इसलिए अपने अंदर अगर अपने जितने भी टाइम कोई भी ऐसा मुहूर्त रहता है जब अपने पूजा पाठ करनी है और कोई अच्छा काम नहीं करना है, उस समय आप अपने अंदर आत्मचिंतन करके
1: जी
0: अपने अंदर वो अपारता को लाइए।
1: बिल्कुल। एक एक छोटा सा उपाय नितिशा जी आपसे भी।
2: देखिए नवजोत जी, सुमित्रा जी बड़ी अच्छी बात बता रही थी कि दान या गिफ्ट जरूर देते रहे, तो इसलिए मैं कहूंगी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं, देने वाले हमेशा बनो। और हमारे भाइयों को आज के दिन, अपनी बहनों को पूरे मन से दिल खुश होकर के जो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट और उपाय के उस पर बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले, आपको सभी ग्रहणों से मुक्ति मिलेगी, सभी कलह कलेशों से जो आपके घर में हो रहे हैं, जो भी कष्ट है उससे मुक्ति मिलेगी। और पूरे मन के साथ, पवित्र मन के साथ ऊर्जात्मक होके करो तो फिर वारे न्यारे होने तय हो जाते हैं। और चावल है, ये सब चीजें सफेद छोटी छोटी चीजें, चीनी है, कुछ भी दान जरूर करें, दूसरों की हेल्प करने से परमात्मा हमारी मदद जरूर करता है।
1: चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन रक्षाबंधन पर कैसे हैं देश और दुनिया में रंग, किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है, गुड न्यूज टुडे पर तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन में भगवान के झूलनोत्सव की परंपरा भक्तों के लिए बहुत खास महत्व रखती है। हर साल धरती जब बारिश की फुहारों से सराबोर होती है, प्रकृति आनंद में झूमती है, तब भक्त अपने भगवान को झूले पर बिठाते हैं। इस दौरान भक्ति की ऐसी धारा उठती है जिसमें हर कोई भीगा हुआ नजर आता है, अब चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो या फिर सीकर।

0: रंग बिरंगे फूलों से सजे मंदिर, मौसमी फूलों से सजा दरबार और चांदी के झूले पर विराजमान भगवान का विग्रह। ये नजारा है राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी का। यहाँ नगर से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में हर साल सावन के महीने में झूलनोत्सव की रौनक देखने को मिलती है। 500 साल से चली आ रही इस परंपरा में हर साल ऐसा ही भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। स्वर्ण जड़ित चंदन के झूले पर जब राधा कृष्ण विराजमान होते हैं तो उनकी अनुपम छवि के दर्शन के लिए भक्त खिंचे चले आते हैं। हर दिन अलग अलग थीम पर होने वाले श्रृंगार से इस आयोजन को चार चांद लग जाते हैं। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में इस साल का झूलनोत्सव कई मायनों में खास रहा। एक ओर वृंदावन से आए कलाकारों ने मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया तो वहीं पुजारियों ने भगवान का फल और फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया। हिंडोले पर विराजमान प्रभु के दर्शन के लिए यहां भक्त घंटों इंतजार करते हैं। लंबी लंबी कतारों से होते हुए जब वे भगवान को झुलाते हैं तो प्रेम और वात्सल्य की झलक उनके चेहरे पर झलक जाती है।
1: 100 वर्षों से चल रहा है ये प्रोग्राम, जो भी है पहले इधर भी होया करता था, अभी ये खाली जो है
2: झूले यहाँ पर
1: झूले, एक तो है चांदी का झूला है यहाँ पर, और एक ये जो सोने की जो पालिस का है इधर वाला है लेफ्ट साइड में, और ये के लकड़ी का झूला है। तीन झूले है।
0: सावन के रिमझिम फुहारों में जब धरती हरियाली की चादर ओढ़े नवजीवन का संदेश देती है तब मंदिरों में आस्था और भक्ति की धारा बह उठती है। देश भर के शिवालयों में बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई देती है तो वहीं मंदिरों में झूला उत्सव की भव्यता भक्तों का मन मोह लेती है। चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो या फिर सीकर, प्रेम और भक्ति की इस धारा में हर कोई नतमस्तक नजर आता है। सावन के झूलनोत्सव के दौरान सजे ये मंदिर, यहाँ उमड़ती ये भीड़ सिर्फ एक उत्सव की तस्वीर नहीं बल्कि ये सदियों पुरानी परंपरा और लोगों की गहरी आस्था की कहानी कहती है। सीकर से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका। आज है रक्षाबंधन का पर्व जो हम सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन इस बीच चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है वो है चंद्र ग्रहण। भारत में भले ही चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दिया है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने इसे जरूर देखा है। तो दुनिया के किन किन हिस्सों में दिखा चंद्र ग्रहण और कैसी रही इसकी तस्वीरें, एक एक करके आगे आपको दिखाएंगे।
7: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही है, मंदिरों में खास पूजा अर्चना हो रही है, और इसी पावन मौके पर बाबा रामदेव ने भी कंगना रनौत से अपने गिले शिकवे दूर करने की पहल भी की है। तो बाबा रामदेव ने कंगना के लिए मिठाई और तोहफा भी भेजा है, क्या है पूरा मामला आगे बताएंगे।
4: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आपको नेपाल भी लिए चलेंगे, जहां हर पल जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है, रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है और अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन त्रिशुली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में चल रहा है। मलबे और सुरंग के अंदर फंसी जिंदगियों को बचाने की कोशिश कैसी है, ये भी आपको दिखाएंगे।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए आज आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर में जिसे अब विवाह का सनातन डेस्टिनेशन कहा जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में जोड़े पहुंच रहे हैं और इसी पवित्र धाम में अपने नए जीवन की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो कैसा है ये अनोखा विवाह धाम, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
7: देश की सरहदों पर रक्षाबंधन की रौनक, नाथुला में भारत चीन सीमा पर जवानों को बांधी गई राखी, जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी, प्रधानमंत्री ने बच्चों से किया सीधा संवाद, कहा अटूट भरोसे का बंधन है ये त्योहार। सियासी गलियारे में भी धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को बांधी गई राखी। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बंधवाई राखियां। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी रक्षाबंधन की धूम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माताओं बहनों ने बांधी राखी। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। यूपी के जेलों में भाई बहन के प्रेम के त्यौहार की रौनक। जेल पहुंचकर बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। भाइयों ने उपहार में दिए पौधे। नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। त्रिशूल हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया गया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
7: चलिए चाय पर चर्चा में खबरों की शुरुआत करते हैं आसमान के उस बेहद खूबसूरत नजारे की खबर के साथ जो कि दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में रात के आसमान पर चांद ने अपना रंग बदल लिया। कहीं चांद नारंगी नजर आया तो कहीं उसका रंग सुर्ख लाल दिखाई दिया। दरअसल आज चंद्र ग्रहण लगा और जैसे जैसे चंद्रमा धरती की छाया में दाखिल हुआ उसकी चमक बदलती चली गई। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से चंद्र ग्रहण की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। चांद का एक बड़ा हिस्सा धरती की गहरी छाया में डूबा नजर आया। अपने चरम पर करीब 96% चंद्रमा पृथ्वी की छाया में रहा। इसी वजह से ये आम पूर्णिमा के चांद से बिल्कुल अलग नजर आया, मानो आसमान में चांद ने नारंगी और लाल रंग की चादर ओढ़ ली हो।
11: बिल्कुल, देखिए अमेरिका के एक बड़े हिस्से में इस खगोलीय घटना को देखने का सबसे अच्छा मौका रहा, जबकि यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण के अलग अलग रंग दिखाई दिए। हालांकि भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दिया। दरअसल चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। पृथ्वी बीच में होती है, उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है।

0: तो चलिए अब आपको एक एक करके चंद्र ग्रहण की वो शानदार तस्वीरें दिखाते हैं जो देश भर में सुर्खियों में छाई रही। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीर सेनेगल की, जहां पर शुक्रवार तड़के आसमान में चांद का बेहद अद्भुत और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। दरअसल यहाँ लोगों ने चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा था। बड़ी संख्या में लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे और इस खगोलीय घटना को अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते नजर आए। जैसे जैसे ग्रहण आगे बढ़ा, धरती की छाया धीरे धीरे चांद की सतह पर फैलती चली गई और फिर चांद का रंग बदलने लगा। आसमान में चांद का ये बदला हुआ रूप इतना खूबसूरत था कि इसे देखने वाले लोग बस देखते ही रह गए। किसी ने तस्वीरें खींची तो किसी ने इस अद्भुत नजारे का वीडियो बनाया। यानी कुछ देर के लिए सेनेगल का आसमान चांद के इसी खूबसूरत नजारे के नाम रहा। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं रियो, जहां बीती रात लोगों की नजरें आसमान पर टिकी थी और वजह थी बेहद खूबसूरत चंद्र ग्रहण। आसमान में चांद तो था, लेकिन हर पल उसका रंग रूप बदलता नजर आ रहा था। शुरुआत में चांद अपनी सामान्य चमक के साथ दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे धरती सूरज और चांद के बीच आती गई, धरती की परछाई भी धीरे धीरे चांद पर पड़ती चली गई। और फिर आया वो वक्त जब चांद का रंग कुछ लाल कुछ नारंगी सा नजर आने लगा। आसमान में नजारा इतना खूबसूरत था कि रियो के स्काई वॉचर्स देर रात तक अपनी नजरें चांद से हटाना ही नहीं चाहते थे।
1: चलिए अब तस्वीरें बोलिविया की, जहां आसमान में दिखा चांद का बेहद खूबसूरत और दिलचस्प नजारा। दरअसल यहां आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिला। ग्रहण के दौरान चांद का करीब 96% हिस्सा धरती की छाया में ढक गया। ग्रहण अपने पूरे रंग में स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:13 पर पहुंचा। जैसे जैसे चांद पर धरती की छाया बढ़ती गई, आसमान का नजारा भी बदलता गया। दक्षिण अमेरिका के लोगों के लिए ये साल की खास खगोलीय घटनाओं में से एक रही। बोलिविया की राजधानी ला पा में इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों ने देर रात से ही आसमान पर नजरें जमा रखी और चांद को धरती की छाया में जाते हुए देखा। कैमरों में इस खूबसूरत नजारे को कैद करने की होड़ सी लगी रही।
2: और चलिए अब आपको ट्यूनिशिया लिए चलते हैं, जहां पर आसमान में एक बेहद खूबसूरत खगोलीय नजारा देखने को मिला। चांद पर जैसे ही धरती की परछाई पड़ी, देखते ही देखते चांद का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबता चला गया। ट्यूनिशिया में चंद्र ग्रहण की शुरुआत स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 3:34 पर हुई। शुरुआत में चांद पर धरती की छाया का छोटा सा हिस्सा नजर आया, लेकिन धीरे धीरे ये छाया बढ़ती गई और चांद का बड़ा हिस्सा इसके आगोश में चला गया। सुबह करीब 5:13 पर चंद्र ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा। उस वक्त चांद की करीब 93% सतह धरती की छाया में थी, यानी कि आसमान में नजर आ रहा चांद लगभग पूरी तरह अंधेरे की चादर में ढक गया।
0: अब आपको एथेंस की वो तस्वीरें दिखाते हैं, जहां चंद्र ग्रहण का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। एथेंस में रात करीब 2:33 पर ग्रहण का आंशिक चरण शुरू हुआ। इसके बाद हर गुजरते मिनट के साथ धरती की छाया चांद को अपनी आगोश में लेती चली गई और जैसे जैसे चांद का हिस्सा छिपता गया, आसमान का यह नजारा और भी ज्यादा दिलचस्प होता चला गया। एथेंस में जब ग्रहण अपने सबसे शानदार दौर में पहुंचा, तब चांद का करीब 84% हिस्सा धरती की छाया में छिप चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट भी था। एथेंस के लोगों के पास इस खगोलीय नजारे को ज्यादा देर तक देखने का मौका नहीं था। स्थानीय समय के मुताबिक करीब 3:50 पर ग्रहण अपने सबसे बेहतरीन दौर में था, लेकिन इससे कुछ मिनट बाद चांद आसमान से गायब हो गया।
1: रोम लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें देखिए, जहां सुबह सुबह आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहां लोगों ने चांद का बदला हुआ रंग रूप देखा। दरअसल रोम में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:33 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई। रोम में सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के लिए यह नजारा किसी खूबसूरत आसमानी शो से कम नहीं था। सूरज निकलने से पहले आसमान में चांद और पृथ्वी की छाया का यह अद्भुत खेल देखने को मिला। लोगों ने इस नजारे को सिर्फ आंखों से ही नहीं देखा, बल्कि अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। आसमान में एक तरफ चमकता हुआ चांद, दूसरी तरफ
0: उस पर धीरे धीरे बढ़ती पृथ्वी की छाया।
2: तो अमेरिका से लेकर ब्राजील और मेक्सिको तक लोगों की नजरें आसमान पर टिकी थी। हर कोई इस खास नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहता था। कहीं टेलीस्कोप लगाए गए थे तो कहीं लोग अपने कैमरे और मोबाइल लेकर तैयार नजर आए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। रियो के प्लैनेटोरियम में सैकड़ों लोग जमा हुए। किसी की नजर टेलीस्कोप पर थी तो कोई कैमरे में चांद की तस्वीर कैद करने में जुटा था। जैसे जैसे ग्रहण का असर बढ़ता गया लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ती गई। लोग बारी बारी से टेलीस्कोप के पास पहुंचे, चांद को देखा और इस दुर्लभ खगोलीय नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया।
1: अमेरिका और कनाडा के आसमान की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां गुरुवार की रात चांद का रंग अचानक से सुर्ख लाल हो गया। दरअसल चांद धीरे धीरे धरती की छाया में दाखिल हो रहा था और जैसे जैसे रोशनी कम होती गई उसका रंग लाल होता चला गया। नजारा ऐसा था कि मानो आसमान में किसी ने लाल चांद टांग दिया हो। इस बार ग्रहण के चरम पर चांद का 96.3% हिस्सा धरती की छाया में था। अमेरिका और कनाडा समेत ज्यादातर अमेरिका महाद्वीप में लोगों ने इस अद्भुत खगोलीय नजारे को देखा। हालांकि अलास्का और उत्तर पश्चिमी कनाडा में ये नजारा दिखाई नहीं दिया।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस पहलू की जिसकी वजह से भारत में भी इस चंद ग्रहण को लेकर लोगों की दिलचस्पी रही है। देखिए वो है एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष। देखिए भारत में सदियों से सूर्य और चंद्र ग्रहण को लेकर सिर्फ खगोलीय घटना के तौर पर नहीं इसे देखा जाता बल्कि इनका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी माना जाता रहा है।
0: जी हाँ, विज्ञान के लिए चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन वहीं ज्योतिष में ग्रहण को ग्रहों की स्थिति और उसके असर से जोड़कर देखा जाता है। और शायद यही वजह है कि चंद्र ग्रहण सिर्फ आसमान में होने वाली घटना भर नहीं है बल्कि विज्ञान, परंपरा और जिज्ञासा तीनों को एक साथ जोड़ देता है।

0: आसमान में एक बार फिर से दिखा अद्भुत खगोलीय नजारा। जब दुनिया के कई हिस्सों में रात होने के बावजूद चांद की चमक फीकी पड़ गई, दुनिया में कई जगहों पर आसमान में चांद का रंग बदला नजर आया तो कई जगहों पर चांदनी पर गहरे अंधेरे का साया छा गया, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लग गया। ग्रीस, स्पेन, क्यूबा, नाइजीरिया, बोलिविया और ईरान सहित दुनिया के कई देशों में लोगों को चंद्र ग्रहण के अनोखे नजारे का दीदार हुआ। तमाम जगहों पर इस चंद्र ग्रहण को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता नजर आई। बड़े बड़े टेलीस्कोप और कैमरों से लैस लोगों ने न केवल चंद्र ग्रहण का नजारा देखा बल्कि इसकी तस्वीरें भी कैद की। साल 2026 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:35 पर उप छाया के साथ पहले स्पर्श से शुरू हुआ। आंशिक ग्रहण का मुख्य चरण करीब 8:45 पर शुरू हुआ। सुबह 9:43 पर चंद्र ग्रहण अपने चरम पर था, तब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से सबसे अधिक ढका नजर आया। आंशिक चंद्र ग्रहण की समाप्ति सुबह 11:21 पर हुई। वही उप छाया से अंतिम स्पर्श के साथ ग्रहण संपन्न होने का समय दोपहर 12:32 पर है। इस बार लगाइए पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण है। इस दौरान जब ग्रहण अपने चरम पर था, जब चंद्रमा का लगभग 96% हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में पहुंच गया, इसी वजह से कई जगहों पर चंद्रमा लालिमा लिए हुए तांबई रंग का भी नजर आया, जिसे आम बोलचाल में ब्लड मून भी कहा जाता है।
1: Por más que estar al a 96% de que se va a cubrir el disco lunar, parte todavía va a ser iluminado por el sol. Pero sabemos que la luz del sol se va a refractar por la, en la atmósfera de la Tierra. Entonces, vamos a ver ahora cómo está la atmósfera de la Tierra y según el color que se dé, nos va a decir si está contaminada o está bastante limpia.
0: सूर्य ग्रहण के समान ही चंद्र ग्रहण भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध पे आ जाने पर लगता है। फर्क ये है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुँचने से रोक देती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों की भौगोलिक स्थिति के कारण कहीं इन्हें देखा जा सकता है तो कहीं बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि इस बार लगा चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आया, क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण लगा उस समय भारत में दिन का वक्त रहा। चंद्रमा क्षितिज के नीचे होने के कारण भारत में लोग चंद्र ग्रहण का दीदार नहीं कर सके, जबकि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में जहां रात का वक्त था वहां इस चंद्र ग्रहण का शानदार नजारा देखा गया। भारत के लिहाज से अहम बात ये भी रही कि यह चंद्र ग्रहण श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर लगा, जब देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि जानकारों और ज्योतिषियों के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन के विधि विधान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
2: रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी, और ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में अनावश्यक डर, तनाव, गुस्सा या किसी रिश्ते में गलतफहमी बढ़ने से बचना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रक्षाबंधन का ये पर्व नकारात्मक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व है, इसलिए इस दिन भाई बहन के बीच प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
0: ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देखा गया, लिहाजा यहाँ सूतक भी लागू नहीं हुआ और मंदिरों में पूजा पाठ सहित सभी धार्मिक कार्य सामान्य रूप से चलते रहे। इसके बाद अब अगला चंद्र ग्रहण अगले साल यानी 2027 में 20 से 21 फरवरी की रात्रि में लगेगा और भारत में भी इसका दीदार होने की संभावना है। लिहाजा लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और देखिए, चंद्र ग्रहण की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब बात रक्षाबंधन की, जिसकी तमाम तस्वीरें लगातार जीएनटी पर हम आपको दिखा रहे हैं।

0: चलिए, सुबह से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो जो सेलिब्रेट कर चुका है, मैं और सरगम तो काफी इमोशनल से हैं आज।
1: आज मिस कर रहे हैं भाई को, क्योंकि हम दोनों के भाई दिल्ली में नहीं रहते हैं।
0: इसलिए आप दोनों ने बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर लिया, मना लिया, राखी भेज दी, कैसा रहा?
2: भेज दी, बंधवा दी, गिफ्ट भी दे दिए,
1: ले लिए,
2: मिठाई भी खा ली। नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता है, हम खुद ही अपने आप को गिफ्ट कर देते हैं, दैट्स इट।
1: ये गलत बात है,
3: मुझे भी तो देना ही होता है ना।
1: छोटा भाई है क्या?
3: नहीं, मैं भाई नहीं है, मैं कजन हैं सारे। हाँ, तो जो दिल्ली में थे वो लोग बस अब शिफ्ट हो गए, कोई बैंगलोर चला गया, कोई कहीं चला गया। हाँ, तो वो तो अभी फिलहाल है नहीं। हाँ, बेटे को राखी बांधी गई, क्योंकि जो उनकी बहनें हैं कजन जिन्होंने राखी भेजी थी उनकी राखी बांधी, अब गिफ्ट देना है सबको।
0: वैसे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बोली कि सिर्फ भाइयों को नहीं, आप बहनों को, फ्रेंड्स को, मैं आपको किसी को भी बांध सकते हैं।
1: शगुफ्ता बता रही थी ना मैं सुबह कि हमारे ससुराल में बेटियां भी पिता को बांधती हैं, और बहुत से घरों में कल्चर,
2: ये बहुत घरों में कल्चर सुना है।
3: मैं आपको बताऊं, मैं राजस्थानी फैमिलीज के काफी करीब बचपन से रही हूं, तो राजस्थान में बड़ा चलन है भाभियों को राखी भेजने का।
2: मेरे को अलग तरह का,
3: तो वो ऐसे यहाँ पे वो चूड़ियों में बनता है, इसलिए वो ऐसे लंबी सी डोर होती है और नीचे वो राखी होती है, तो उसको लुम्बा बोलते हैं।
2: आजकल पंजाब में भी बहुत चल रहा है।
0: मैं वही बोल रही हूँ, मैंने जोड़े में राखी भेजी है भाई और भाभी,
1: मुझे भी बांधी गई है, हमारे इधर भाभी को भी बांधी जाती है। एक्चुअली भाई भाभी जोड़े से राखी बांधी जाती है, बहुत से घरों में ये कल्चर होता है।
0: चलिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुंदर सुंदर तस्वीरें, और ये सेलिब्रेशन देखिए देश भर में जारी है। रक्षाबंधन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो देश भर में राखी की रौनक नजर आई है। बाजार गुलजार है, मिठाई की दुकानों पर भीड़ मिलेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई समेत तमाम जगहों से आ रही तस्वीरें त्यौहार के उल्लास को बयां कर रही हैं। सोना चांदी समेत ट्रेंडिंग राखियों का चलन भी देखिए जोर पकड़ रहा है। देश के सरहद पर राखी का प्यार पहुंचा है, किसी ने जवान की कलाई पर राखी बांधी तो किसी ने तिलक लगाकर उसको मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत।
3: और उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी आपको बता दें, रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई। इसी दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को राखी अर्पित की। इस तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित की गई। मध्य प्रदेश के नीमच में तो आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां 12 रुद्राक्षों पर विशेष किस्म के ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म मिनिएचर चित्र उकेरे गए। साथ ही बीच में एक रुद्राक्ष पर पशुपतिनाथ महादेव का चित्र बनाया गया।
2: तो देश आज भाई बहन के अटूट रिश्ते यानी कि रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है। रक्षाबंधन के रंग में रंगा हुआ है पूरा देश, और भाई की कलाई पर सजी राखी बहन के प्यार और विश्वास की वो डोर है जो इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। आज सुबह से ही घर घर में रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिल रही है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, भाई भी बहनों को उनकी पसंद का तोहफा देकर इस रिश्ते की मिठास को और बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन देखिए इस बार रक्षाबंधन का जो रंग है सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, कहीं पेड़ों को भी राखी बांधी जा रही है, तो कहीं भगवान को राखी अर्पित कर इस पर्व को आस्था के साथ भी जोड़ा जा रहा है। यानी राखी की ये जो डोर है, रक्षा सूत्र है, रिश्तों के साथ साथ प्रकृति और समाज को जोड़ने का भी संदेश दे रहा है।
4: भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूत डोर, रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक पूरे देश में छाई हुई है। बाजार गुलजार हैं और बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध रही हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, तो भाई की ओर से बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उन्हें उपहार देने का सिलसिला भी चल रहा है। भाई बहन के इस त्योहार की छटा जंगलों तक में दिखाई पड़ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुड्डू और उनकी टीम जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सब पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आईं। जमुना टुड्डू चाकुलिया के भालुकबिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई हैं। इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टुड्डू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उसे बचाने की शपथ लेती है।
5: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधते हैं।
4: भगवान के दरबार में भी रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला चल रहा है। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान उन्हें 2 फीट की यही खूबसूरत राखी बांधी गई, जिसे मंदिर के पुजारी ओम शर्मा के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया।
6: इस पे बाबा का स्वरूप हुआ है पूरा, उसमें नेत्र है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, मिरर का वर्क है, मोर पंख है, डमरू है, मोती है, सभी मिला के और राखी पूरी बनाई है। इसमें सभी प्रकार के जितने भी गण हैं बाबा के, उसको सबको मिला के और इस राखी को पूरा करा है।
4: रक्षाबंधन पर श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलल्ला के लिए राखी भेजने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से ये राखी भेजी जाती है। जरी और मोतियों से सजी ये विशेष राखी पूरे विधि विधान के साथ भक्तिमय उल्लास के बीच अयोध्या पहुंची। इस विशेष राखी को ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार आरती के बाद रामलल्ला को अर्पित की जाती है। भगवान को अर्पित होने वाली राखियों के अलावा रक्षाबंधन के लिए कई ऐसी राखियां तैयार की गई जो बेहद आकर्षक दिखती हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में एक कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म मिनिएचर चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया है, जिस पर उकेरा गया है मंदसौर स्थित प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का सूक्ष्म चित्र। यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई देती है। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी का निर्माण किया। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनी हुई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। ये महाराखी देशभक्ति, ईश्वर की भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश देती है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, अयोध्या से मयंक शुक्ला, मंदसौर से अजय बाड़ोलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले गर्भगृह में विराजमान बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद मुख्य पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा को रेशमी धागों से निर्मित खूबसूरत राखी अर्पित की और संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि सृष्टि के पालनहार को रक्षा सूत्र अर्पित करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। आरती समाप्त होते ही श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के द्वार खोल दिए गए। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। रक्षाबंधन और सावन का यह अद्भुत संयोग हर वर्ष की तरह इस बार भी काशी में एक अनोखा आध्यात्मिक माहौल पैदा कर गया।
0: और देखिए, आस्था, भक्ति और समर्पण की एक ऐसी ही तस्वीर वृंदावन में भी देखी गई। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। महिला श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के चरणों में राखियां अर्पित कर घर परिवार की कामना की। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ठाकुर जी के दरबार में भीड़ उमड़ी। पूरा दरबार राखियाँ ही राखियाँ यहाँ पर नजर आईं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने ठाकुर जी को अपना भाई मानकर उनके चरणों में राखियों के साथ साथ पत्र भी अर्पित किए। इन राखियों के जरिए महिलाएं ठाकुर जी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करती हैं। बांके बिहारी मंदिर में ये परंपरा बरसों से चली आ रही है।
1: तो चलिए अब आपको इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश की भव्य दिव्य तस्वीरें दिखाते हैं। खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन के मौके पे भगवान गणेश को विधि विधान से अनोखी और विशाल राखी अर्पित की गई। 40x40 इंच की इस विशेष राखी में भारत की संस्कृति, शक्ति, समृद्धि और विकास की झलक देखने को मिली। लेकिन सबसे खास बात यह है कि राखी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। राखी पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी विशेष रूप से शामिल किया गया। इसके अलावा राखी में शक्ति की प्रतीक माँ काली, धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के साथ महाकाल और भगवान जगन्नाथ की आकृतियां भी खास तौर पर बनाई गई थी।
2: तो देशभर में रक्षाबंधन के पर्व की रौनक है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज पर रक्षाबंधन के इस पर्व पर छोटी बच्चियों से राखियां बंधवाई। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर इसका आयोजन किया था। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी, उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने भी सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और इन तस्वीरों में रक्षाबंधन की खुशियों के साथ साथ अपनेपन की आत्मीयता भी साफ नजर आ रही है।
0: देखिए, रक्षाबंधन के इस मौके पर देश की सरहद से लेकर शहरों तक भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो कहीं जवानों ने देश की रक्षा का वचन दोहराया। एसएसबी और बीएसएफ के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधकर बहनों ने उनकी लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की कामना की। मुस्लिम बहनों ने भी जवानों की कलाई पर राखी बांधकर भाईचारे और एकता का संदेश दिया। तो वहीं स्कूली बच्चों ने जवानों को राखी बांधकर अपने इन रक्षकों के प्रति सम्मान जताया। एलओसी पर भी जवानों के साथ रक्षाबंधन की खुशियां साझा की गईं।
3: और जम्मू कश्मीर के सांबा से रक्षाबंधन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच स्कूली बच्चे पहुंचे, उनके हाथों में राखियां थी और दिल में जवानों के लिए सम्मान। बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। घर परिवार से दूर सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए ये पल बेहद खास रहा।
2: रक्षाबंधन पर कानपुर में एक बच्ची अपनी मां के साथ डीएम को राखी बांधने पहुंची, लेकिन इस मुलाकात में डीएम ने बच्ची को ऐसा तोहफा दिया जैसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएगी। बच्ची की मां ने जब 6 महीने से स्कूल फीस जमा न कर पाने की बात बताई तो डीएम ने तुरंत स्कूल प्रशासन से बात की, आधी फीस माफ करवाई और बाकी आधी फीस खुद भर दी। इतना ही नहीं, बच्चे के स्कूल जाने के लिए साइकिल भी उसे दिलवाई।
1: तो देखिए, रक्षाबंधन के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के लिए मिठाइयां और तोहफा भेजा है। और देखिए, खास बात यह है कि बाबा रामदेव ने इस मौके पर कंगना से अपने मतभेद खत्म करने की पहल भी की है। बाबा रामदेव ने कहा कि देश में किसी भी बात को लेकर नफरत और आपसी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मतभेद है तो उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। इसी संदेश के साथ बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के लिए राखी के मौके पर मिठाइयां और तोहफा डाक से भेजा है।
3: बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने सारी नाराजगी और मनमुटाव खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो खुद भी कंगना से बात करेंगे, यानी कि रक्षाबंधन के मौके पर बाबा रामदेव ने रिश्तों में आई दूरी को खत्म करने की कोशिश की। मिठाई और तोहफे के साथ बाबा रामदेव का संदेश साफ है, नफरत नहीं, बातचीत से सुलझे मतभेद और रिश्तों में बनी रहे मिठास।
7: बहन कंगना रनौत को भी आज हम राखी पर उपहार भी भेज रहे हैं और उनको ये मिठाई भी भेज रहे हैं, जिससे कि रिश्तों में मिठास बनी रहे। बहुत से ऐसे प्रवाह होते हैं। हमारी बहन कंगना रनौत से कुछ बोला गया, हमने कुछ बोला, सब गिला शिकवा भुला करके हम एक दूसरे के साथ प्रीति से आगे बढ़े, यही रक्षाबंधन का संदेश है।
0: यही संदेश हम जीएनटी पर भी देते हैं कि बी पॉजिटिव, खुश रहिए और अपनों के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। अब देखिए, देश भर में जहां बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो वहीं मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में रक्षाबंधन का खास नजारा देखने को मिला। यहां देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में बहनें पहुंची, लेकिन इन बहनों के लिए राखी बांधने के लिए कोई अपना सगा भाई नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद थे। धाम में सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल नजर आया। दूर दूर से पहुंची बहनों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भाई माना और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी चबूतरे पर बैठकर एक एक करके बहनों से राखी बंधवाते रहे।
2: राखी बांधने के बाद बहनों ने उनसे आशीर्वाद लिया, उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना की। यानी बागेश्वर धाम में इस बार रक्षाबंधन पर आस्था के साथ भाई बहन के रिश्ते की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां तक पहुंचा नेपाल में मिशन रेस्क्यू।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश की सरहदों पर रक्षाबंधन की रौनक, नाथुला में भारत चीन सीमा पर जवानों को बांधी गई राखी, जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भव्य आयोजन। पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी, पीएम ने बच्चों से किया सीधा संवाद, कहा अटूट भरोसे का बंधन है ये त्योहार। सियासी गलियारे में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह को बांधी गई राखी, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रक्षाबंधन की धूम, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माताओं बहनों ने बांधी राखी, मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी कतारें। नेपाल में फिर से बाढ़ की चेतावनी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, त्रिशूली हाइड्रोपावर टनल में फंसे 350 लोगों को बचाया गया।

0: और नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य तेज हो गया है। प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के मुताबिक सेना पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के 13,295 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बुधवार को 69 हवाई उड़ानों के जरिए 573 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रभावित इलाकों में अब अतिरिक्त हेलीकॉप्टर भी भेजे जा रहे हैं।
1: वहीं भोटेकोशी नदी की बाढ़ के बीच नेपाली सेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे करीब 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। रसुआ के अलग अलग इलाकों में सेना अब 883 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा चुकी है। सियाफ्रूबेसी, टिमुरे और हाकुबेसी जैसे मुश्किल इलाकों में भी रेस्क्यू जारी है।

0: नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के बाद हर गुजरता लम्हा एक एक जिंदगी के लिए कीमती होता जा रहा है। कहीं मलबे के पहाड़ हैं, कहीं बह चुके रास्ते, तो कहीं तबाही के बीच जिंदगी की तलाश चल रही है। नेपाल के सबसे प्रभावित इलाकों में सेना और पुलिस के जवान मलबे में उम्मीद तलाश रहे हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 12 हेलीकॉप्टर मैदान में उतारे गए हैं। इनमें 4 सैन्य और 8 निजी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जमीन पर जेसीबी लगातार मलबा हटाने में जुटी है। नेपाल में सबसे मुश्किल मिशन त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में चल रहा है। यहां से करीब 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की बात सामने आई है। लेकिन इन लोगों तक पहुंचने से पहले रेस्क्यू टीमों को तबाही की उस दीवार को तोड़ना पड़ रहा है जो फ्लैश फ्लड अपने साथ लेकर आई है। मुश्किल हालात के बावजूद त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास नेपाल सेना का ऑपरेशन जारी है। यहां हेलीकॉप्टर से जवानों को नीचे उतारा गया है। कीचड़ और मलबे के बीच जवान सुरंग तक पहुंचे हैं और एक एक जिंदगी को बाहर निकालने की जंग जारी है। जहां जमीन पर चलना मुश्किल है, वहीं जवान हर इंच रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी की तलाश के लिए नेपाली सेना ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। नेपाल में कई ऐसे सेंटर बनाए गए जहां लोग अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं। किसी की नजर रेस्क्यू करके उतरते हेलीकॉप्टर पर है, तो कोई रेस्क्यू टीम से उम्मीद लगाए बैठा है। इस सेंटर में हर पल सैकड़ों लोग अपनों को तलाशते हुए पहुँच रहे हैं।
1: मैं इस समय नुआकोट के सबसे आखिरी बाजार के उस बेस कैंप पे हूँ जहाँ पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, एयर ऑपरेशन चल रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये नेपाल पुलिस के वो लोग हैं और प्रहरी हैं जो दरअसल नागरिक सुविधा केंद्र बनाई है, और वो इसलिए जरूरी है कि जो लोग लापता हैं उनके बारे में यहाँ जानकारियां दी जा रही हैं, वो इन जानकारियों को दर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद जिन लोगों का को रिकवर कर लिया जा रहा है, जिनको वापस इवैक्यूएट कर लिया जा रहा है, उनको यहाँ लाया जा रहा है और बाकायदा उनके नाम बताए जा रहे हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग हैं, जो लोग लापता हैं, उनको खोजा जा सके। अभी भी देखेंगे आप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है, तो दूर दराज के इलाकों से उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर उनके पास ये नाम हो, जरूरत के लोग हो, कौन कहाँ है, तो सर यहाँ पर किस तरह की जानकारी दर्ज की जा रही है?
2: ये तो हरा को मानसे को तो संपर्क बीन भाग मानसे
1: आपको लिस्ट दिखाता हूँ जो लोग मिसिंग है, उनको इस तरह की जानकारियां इन्होंने दर्ज की हुई है। और कोशिश ये हो रही है कि जब अपनों को खोजने के लिए लोग आते हैं तो उनको बताया जा सके कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है तो उनको कहाँ ले जाया गया है।
0: उधर नेपाल सरकार ने राहत और बचाव अभियान को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। सेना, नेपाल पुलिस और सशक्त पुलिस बल के 13,295 सुरक्षा कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। बुधवार को ही 69 हवाई उड़ानों के जरिए 573 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत भी नेपाल के साथ खड़ा है। भारत ने नेपाल के लिए और 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाएं भेजी है। राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए भारतीय वायुसेना का C-130 जे विमान भी नेपाल भेजा गया। और राहत की एक बड़ी खबर ये भी है कि नेपाल में फंसे तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। फिलहाल नेपाल सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। रेस्क्यू टीमें जिंदगी की तलाश में मलबे का एक एक ढेर छान रही है। सुरंग का एक एक अंधेरा कोना खंगाल रहा है, क्योंकि रेस्क्यू टीमों को पता है मलबे के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं, किसी की जिंदगी भी हो सकती है। और इसी उम्मीद के साथ नेपाल में मिशन जिंदगी लगातार जारी है। नेपाल से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भारत सरकार लगातार हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की तरफ करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में भी हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री से बात कर हर संभव मदद की पेशकश भी की है। भारत की ओर से राहत और बचाव के लिए कई तरह के सहयोग का प्रस्ताव नेपाल को दिया गया है।
4: और देखिए, नेपाल की बाढ़ से बचाए गए तमिलनाडु के 21 तीर्थ यात्री आज दिल्ली पहुंचे, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। एक यात्री ने बताया है कि वहां हालात बेहद गंभीर थे और करीब 250 भारतीयों के लापता होने की जानकारी भी मिली है। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी उनसे महज 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन भगवान की कृपा से उनकी जान बच गई। भारत अब नेपाल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने और हर जरूरी मदद पहुंचाने में जुटा है।
5: I

0: rescued after the floods. So they were brought back to Kathmandu. They were rescued by the Nepali army. Then our embassy arranged for them to come back. So I just came to meet them and...
1: आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग में भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह स्थली। अब आस्था के साथ साथ शादियों के लिए भी खास पसंद की जा रही है और बड़ी संख्या में जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत यहीं से करना चाहते हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल नवंबर से इस साल जुलाई तक 1500 से ज्यादा जोड़ों ने यहां पर विवाह किया है। यानी शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी इस पावन धरती पर सात फेरे लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है।
2: बिल्कुल, आपको बता दें कि धार्मिक पर्यटन के साथ वेडिंग टूरिज्म का ये बढ़ता आकर्षण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। होटल, होमस्टे, परिवहन और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। ऐसे में रुद्रप्रयाग की ये पौराणिक धरती अब आस्था, पर्यटन और रोजगार के लिए नई पहचान बना रही है।

0: भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का साक्षी बना ये मंदिर अब आस्था के नए कीर्तिमान का गवाह भी बन रहा है। रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर दिन यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। मान्यता है कि भगवान नारायण के इस मंदिर में महादेव और माता पार्वती ने सात फेरे लिए थे। अब इस पवित्र धाम में देश भर से नए जोड़े आकर विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। अनंत आस्था की प्रतीक सदियों पुरानी अखंड धुनी नए जोड़े के विवाह की साक्षी बन रही है। वक्त के साथ इस मंदिर में विवाह का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल जुलाई तक 1500 से ज्यादा शादियां यहां संपन्न हो चुकी हैं।
1: 1564 शादियां वहां पर हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी नए जोड़ों को जो वहां पर शादी करने में विश्वास रखते हैं। भगवान से भी यही प्रार्थना है कि वो दिन बुरी रात चौधरी उन्नति करें। वहां पर इन शादियों से रोजगार भी हमारा बड़ा है। हमारे स्थानीय जो वहां पर परंपरागत मंदिर में सेवा देते हैं उनमें उपाधि वहां पर रोजगार बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है।
0: मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिव्य विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई, जबकि भगवान ब्रह्मा ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया। इस पौराणिक आस्था को महसूस करने के लिए आज भी नौ दंपति त्रियुगी नारायण पहुँचते हैं और अखंड धुनी को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं।
2: यहाँ पे जितनी शादी बारात होती है हमारे गांव के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिलता है। तीर्थ पुरोहित हो गए, चाहे होटल वाले हो गए, चाहे दुकानदार हो गए, चाहे गांव की महिलाएं हो गई, किसान हो गए, मंडली कीर्तन और भजन, चार गांव की समूह की महिलाएं, सबके लिए बहुत अच्छा रोजगार मिलता है। और जितने भी तीर्थ यात्री केदारनाथ जाते उनमें से अधिक यात्री यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं।
3: यहाँ पर जो भी बरातें होती है उससे जो है कि स्थानीय पुरोहित लोगों को, स्थानीय दुकानदारों को, होटल व्यवसायों को, स्थानीय महिलाओं को काफी जो है कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। हम जो है तीर्थ यात्रियों से, प्रदेश वासियों से, समस्त देशवासियों से सभी से प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर जो है शादी का अपना शादी का प्रोग्राम बनाए यहाँ पर और भगवान नारायण का आशीर्वाद लें।
0: त्रियुगिनी नारायण मंदिर की ख्याति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 22 अप्रैल से अब तक 35,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से यहां होटल और होम स्टे की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिली है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे शादी का खर्च बचाकर एक जोड़े ने बनवाया परिंदों का घर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर

0: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: तो देखिए, शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया है। देखिए, सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया है।
3: बिल्कुल, देखिए, इस आशियाने में परिंदे रह सकते हैं जो उन्हें धूप, हवा और ठंड से बचाने का काम भी करेगा। तालाब किनारे बना ये अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। सलोनी की ये पहल शादी की खुशियों के साथ प्रकृति प्रेम की खूबसूरत मिसाल भी कायम कर रही है।
4: तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
5: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
4: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
6: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सके जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
4: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
6: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
4: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
7: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं।
4: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: मुंबई में ऑटो और टैक्सी चलाने वाले गैर मराठी ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी सीखने की अनिवार्यता को लेकर ड्राइवर्स को एक साल की अतिरिक्त मोहलत देने का फैसला किया है, यानी कि अब अगर कोई ड्राइवर तय समय तक मराठी नहीं सीख पाता है तो सिर्फ इसी वजह से उसका परमिट रद्द नहीं होगा। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में गैर मराठी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को राहत मिली है। फैसले के बाद मुंबई में कई ड्राइवर्स ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया और खुशी जाहिर की।
0: दरअसल महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखने की शर्त को लेकर काफी चर्चा हो रही है। नियम के मुताबिक ड्राइवर्स को एक तय समय के भीतर ही मराठी सीखनी है, ऐसा नहीं करने पर परमिट पर कार्रवाई की बात भी कही गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने ड्राइवर्स को एक साल और वक्त देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त समय में ड्राइवर्स मराठी सीख पाएंगे और भाषा से जुड़ी शर्त को भी पूरा कर पाएंगे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: शिरडी के साईं दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साईं बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। देश की सरहदों पर रक्षाबंधन की रौनक, नाथुला में भारत चीन सीमा पर जवानों को बांधी गई राखी, जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भव्य आयोजन। पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी, पीएम ने बच्चों से किया सीधा संवाद, कहा अटूट भरोसे का बंधन है ये त्योहार। नेपाल से रेस्क्यू किए गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्री पहुंचे दिल्ली, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे श्रद्धालु। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी जा रही मदद की तीसरी खेप, विदेश मंत्रालय के मंत्री बोले चीन की तरफ से मौजूद करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।
5: अरे तो करते जा, सीते सोते जा।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। आप सभी को रक्षाबंधन की सबसे पहले तो GNT की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से देशभर में मनाया जा रहा है। देशभर में राखी की रौनक है, बाजार गुलजार हैं, मिठाई की दुकानों पर भीड़ है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई समेत तमाम जगहों से आज सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस त्योहार के उल्लास को बयां करती ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। देश की सरहद पर भी बहनों की राखी और ढेर सारा प्यार पहुंचा है। किसी ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो किसी ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई, इसी दौरान बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित की गई। तो GNT स्पेशल में आज हम आपको देशभर से आई राखी के तमाम रंग समेट कर दिखा रहे हैं।

करं सूत्र बध्नाति हृदयं तु स्नेह, यानी सूत्र कलाई या हाथ को बांधता है, किंतु स्नेह हृदय को बांधता है। स्नेह की डोर से हृदय को बांधने वाली तस्वीरें आज दिन भर देश के कोने कोने से आई और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, आज देश में दिन भर राखी के रंग बिखरे रहे। शहर शहर, घर घर, बहनों ने भाई की कलाई राखी से सजाई। तो वही भारत माँ की रक्षा करने वाले सीमा पर तैनात सपूतों की कलाई पर भी रेशमी डोर जगमगाई। इसी बीच रंग बिरंगे धागों संग अगाध आस्था के भावों को पिरोकर आराध्य के दर पर रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला भी खूब चला। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां उज्जैन के राजा अधिराज महाकालेश्वर के दरबार में राखी की रौनक खूब बिखरी। रक्षाबंधन पर महाकाल की विशेष पूजा हुई, भगवान को भक्तों ने राखी अर्पित की। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू करने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान यहां बाबा महाकाल को 2 फीट की ये शानदार राखी बांधी गई। इस राखी को मंदिर के पुजारी के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया था। राखी अर्पित करने के बाद महाकालेश्वर भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। ये विशेष लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से तैयार किए गए थे। भोग के बाद लड्डुओं का प्रसाद भक्तों के बीच बांटा गया।

राखी की ऐसी ही सुंदर तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई, जहां भगवान खजराना गणेश को 40x40 इंच की विशालकाय और भव्य सनातन राखी अर्पित की गई।

पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजाना गणेश के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया। इस राखी को 10-15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आई।

राखी की रौनक काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खूब नजर आई। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के दौरान विशेष रक्षा सूत्र अर्पित किया गया। देवादिदेव महादेव को राखी बांधकर संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। काशी जैसी ही रौनक रामलला की अयोध्या में भी दिखी। अयोध्या में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कलाई पर सजाने के लिए उनकी बड़ी बहन शांता की राखी पहुंची।

0: मठों, आश्रमों और मंदिरों में भक्त हाथों में राखी थामे उमड़ पड़ते हैं। राखी के मौके पर बागेश्वर धाम में भी भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इस मौके पर कई श्रद्धालु इंग्लैंड, कनाडा और यूएई से भी बाबा बागेश्वर को राखी बांधने पहुंचे थे। दोपहर तक आलम ये हो गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ राखियों से इस कदर लग गया कि उनकी कलाई और बाह पर राखी बांधने की जगह ही नहीं बची। लेकिन वे भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए सबका रक्षा सूत्र स्वीकार करते रहे।
1: भाई बहन का प्यारा त्योहार है, जहां रोली है, चंदन है, भाई बहन के प्रेम में सबका अभिनंदन है। इस पावन रक्षाबंधन के उत्सव पर हम संपूर्ण भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज बागेश्वर धाम पुण्य भूमि पर हमारी हजारों बहनें, जिनके कोई भाई नहीं, किसी के भाई हैं तो बुलाते नहीं, वो सभी बहनें हर रक्षाबंधन को राखी बांधने आ जाती हैं। उसी कारण से यह रक्षाबंधन के उत्सव पर बहनों के प्रेम का प्रतीक धागा, उत्साह का प्रतीक धागा, जिसमें बचपन की यादें छिपी हैं, प्रेम छिपा है, केवल ये राखी नहीं है, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था। हमने उन्हें वचन दिया, इस देश में बेटियों के ऊपर उंगली उठाने वालों के खिलाफ पुरजोर तरीके से हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम पूरे भारत के भाइयों से प्रार्थना कर रहे, अपनी बहन को राखी बांधने के बदले आप कुछ रुपया, दक्षिणा, पैसा, गिफ्ट दें या ना दें, उन्हें वचन जरूर दें कि इस देश में बेटियों का कोई अपमान नहीं कर पाएगा।
0: हजारों आस्थावानों ने मंगल कामना के साथ बाबा बागेश्वर को रक्षा सूत्र बांध कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कई भक्त बेहद भावुक नजर आए।
1: पल को अपने मुख से कह पाना बहुत कठिन है। ऐसी बहन भी आज एक आई जिन्होंने 22 साल से राखी नहीं बांधी, उनके भाई बुलाते नहीं, 22 साल हो गए। आज 22 वर्ष बाद उन्होंने राखी बांधी तो वो रो पड़ी, तो उस भावुक पल को देखकर हमें ये सौभाग्य मिला तो हमारी भी आंखें डबडबा गईं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आज के दिन भगवान ऐसी कृपा करें किसी भी भाई की कलाई सूनी ना रहे।
0: राखी की ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश से ही आई है। एमपी के नीमच में कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुछड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि मिनिएचर वाले इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया, जिस पर उकेरा गया मंदसौर में ही मौजूद प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी ज्योतिर्लिंगों के बीच एमपी की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई दी। इस खास राखी में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्यार ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रति आस्था और कलाकार की उत्कृष्ट कारीगरी भी एक साथ देखने को मिली। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी बनाई। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनाई गई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। इस महाराखी में देश

0: प्रकृति, ईश्वर के प्रति आस्था और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश निहित है। त्योहार की छटा देश के सुदूर कोनों तक किस तरह छाई रही, उसकी वानगी झारखंड के जंगलों से आई ये तस्वीर बयान करती है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टूडू और उनकी टीम ने जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आई। जमुना टूडू चकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई, इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टूडू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने की शपथ लेती है।
1: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधे।
0: रक्षाबंधन पर्व की रौनक प्रधानमंत्री आवास पर भी नजर आई। भाई बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी भी बच्चों के साथ घुल मिलकर राखी का त्योहार मनाते नजर आए। पीएम मोदी ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी।
2: तो हमारे देश में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। कई पौराणिक कहानियों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसी ही कहानियां जिनका सिरा हमारी राखी की डोर से बंधा है, ऐसी ही एक कहानी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की।

0: देखो तो बस एक डोर है, मामूली सा धागा है, रेशम का एक तार है, लेकिन इसी तार से बुना है, बंधा है, जुड़ा है वो रिश्ता जिसमें संसार भर का सार समाया है। हर दोस्ती से गहरी दोस्ती, हर वादे से पक्का वादा और हर हाल में साथ निभाने का इरादा, अंत तक, वहां तक जहां माँ बाप का साथ भी शायद एक रोज छूट जाएगा, लेकिन भैया या दीदी कहते हो प्यार से जिसे, ये साथी तुम्हें तब भी साथ खड़ा नजर आएगा। भाई बहन की इसी दोस्ती, साथ और भाव को दिल से सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा दिन है रक्षाबंधन, जिसे हमारे भारत में अनादिकाल से मनाया जाता रहा है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब एक रक्षा सूत्र ने रिश्तों की लाज रखी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं हमारे यहाँ। इनमें राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा को खास तौर पर सुनाया और बताया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 बग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपने 2 कदमों में पूरी पृथ्वी और फिर आकाश को नाप लिया। अब 3रा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने कर दिया। राजा बलि की दानशीलता और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में रहकर उसकी रक्षा करें। भगवान ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने लगे। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी को चिंता हुई। देवी लक्ष्मी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे नारायण को वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुँची। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि उनका कोई भाई नहीं है और वे उन्हें रक्षा सूत्र बांध कर अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए। देवी लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के बाद देवी लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप राजा बलि से भगवान विष्णु को उनके दिए वरदान से मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रति स्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय राजा बलि से जुड़े इस मंत्र का जप करने की परंपरा है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा मनु बदनामि रक्षे मा चल मा चलः। यानी जिस तरह शक्तिशाली दैत्य राज बलि को रक्षा सूत्र से बांधा गया था, उसी तरह ये रक्षा सूत्र भी सुरक्षा और शुभता का प्रतीक बने। आज भी बहनें प्यारे भाई की कलाई पर ये धागा बांधते हुए इस मंत्र का जाप करती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, राखी का दिन है और सारे भाई रंग बिरंगे धागों से सजी कलाई को देखकर इटला रहे हैं, पर इनके बीच आखिर उन भाइयों को कैसे भूला जा सकता था जो हर वचन से ऊपर देश की रक्षा का वचन सीमाओं पर निभा रहे हैं। तभी तो सीमावर्ती शहरों में बहनें आज जा पहुंची इन भाइयों के पास और हमारे जाबाजों की कलाई पर क्या शान से सजी देश की बहनों की राखी। लेकिन इसी बीच भुलाया उस भाई को भी नहीं गया जो भले ही आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन दिलों में उसकी याद राखी की डोर जितनी मजबूत है।
3: राखी की ये तस्वीर रणबांकुरों की धरती और शूरवीरों के आंगन राजस्थान से आई। फतेहपुर शेखावाटी से आई राखी की इस तस्वीर को देखकर हर आंख नम हो गई, जहां एक बहन ने अपने शहीद भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधी। ये प्रतिमा भारत के वीर सपूत शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की है। धर्मवीर सिंह शेखावत कश्मीर के लाल चौक में जुलाई 2005 में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। इस घटना को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी बहन उषा कंवर हर राखी पर गुजरात से भाई की प्रतिमा को राखी बांधने आती है। अब की बार भी वे आई तो पहले भाई की प्रतिमा के माथे पर गर्व से तिलक लगाया, फिर कलाई पर राखी बांधी। दिल भर आया तो भाई की प्रतिमा से लिपट गए, फिर नन्हे बेटे को उसके जाबाज मामा का आशीर्वाद दिलवाया। ये नजारा देखकर हर कोई भावुक हो गया। जम्मू कश्मीर के सांबा से भी रक्षाबंधन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आईं। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच स्कूली बच्चे पहुंचे, उनके हाथों में राखियां थी और दिल में जवानों के लिए सम्मान। बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। घर परिवार से दूर सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए ये पल बेहद खास रहा। राखी बंधवाने के बाद जवानों ने भी बच्चों को गिफ्ट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। यानी सरहद पर आज सिर्फ राखी नहीं बंधी, बल्कि जवानों और बच्चों के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता भी और मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सरहद के रखवालों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान जताया। जवानों ने भी बच्चों को उपहार देकर इस मुलाकात को यादगार बनाया। देश की रक्षा में घर से दूर तैनात जवानों के लिए ये पल अपनों के बीच होने जैसा एहसास लेकर आया।

ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर के बनिहाल से भी आई, जहां छोटी बहनों ने देश के वीर जवान भाइयों को राखी बांधी। घर से दूर तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार और खास हो गया।

वहीं श्रीनगर में सहस्त्र सीमा बल के जवानों के लिए रक्षाबंधन के दिन खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जवान और आम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने जवानों को राखी बांधी, उनका मुंह मीठा करवाया और सारे देश की कृतज्ञता के भाव के साथ देश के रक्षकों को रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामनाएं दी।

देश का शत्रु जब सामने खड़ा हो तो ये रणबांकुरे युद्ध की बाजी पलट देते हैं, जैसे कभी एक रक्षा सूत्र ने देवासुर संग्राम की बाजी पलटी थी। राखी की तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको राखी त्योहार की कहानी भी सुना रहे हैं और रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी देवताओं के राजा इंद्र के साथ जुड़ती है। ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ा था। असुरों का पलड़ा कुछ इस कदर भारी था कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा था।

0: रक्षाबंधन पर्व कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध रक्षाबंधन से जुड़ता है। इस कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र बांधा था। ये कथा बताती है कि जब देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब दानवों को विजय की ओर अग्रसर देख देवराज इंद्र बेहद परेशान हो गए थे। दिन रात उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया।
1: दूसरा एक कथा ये कहलाती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इंद्र थोड़ा भय में थे, तो इंद्र को अभय वर देते हुए इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था ताकि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करें और उनकी ख्याति और उनका छत्र सदैव के लिए सुरक्षित रहे।
0: इस तरह इंद्राणी ने असुरों पर विजय पाने में देवराज इंद्र की सहायता की। मान्यता है कि विजय के आशीर्वाद से सिक्त उस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और कालांतर में यही रक्षा सूत्र सनातन परंपरा में रक्षा बंधन त्योहार के उद्गम का निमित्त बना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो 12 महीने में एक बार आने वाली राखी सनातन धर्म का बेहद खास त्यौहार है। आम और खास सभी के लिए दिन मायने रखता है। आम लोगों की तस्वीरों के बीच ही आज तमाम नेताओं और अभिनेताओं के राखी सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी खूब नजर आईं।

0: रक्षाबंधन का रंग नेताओं और अभिनेताओं पर भी खूब दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास अंदाज में रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारियों ने रक्षा मंत्री को राखी बांधी। राखी के दिन कई छात्र और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी रक्षा मंत्री को राखी बांधने उनके दफ्तर पहुंचे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर निराश्रित बच्चियों ने सीएम योगी को तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। सीएम योगी ने बच्चियों के साथ सेल्फी ली और उन्हें खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बच्चों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने लिखा कि स्नेह के धागों से बंधा भाई बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और मजबूत हो। वहीं दिल्ली से दूर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राखी मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिवार की बहनों ने पहुंचकर चिराग की कलाई पर राखी बांधी। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत और प्रीति जिंटा ने भाइयों को राखी बांधते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, संजय दत्त और ऋतिक रोशन ने भी राखी से जुड़ी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की।
1: तो चलिए एक बार फिर से जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन के इस त्यौहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: कैसा जेल है सर?
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। देश की सरहदों पर रक्षाबंधन की रौनक, नाथुला में भारत चीन सीमा पर जवानों को बांधी गई राखी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भव्य आयोजन। शिरडी के साईं दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साईं बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। नेपाल से रेस्क्यू किए गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्री पहुंचे दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे श्रद्धालु। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी जा रही मदद की तीसरी खेप। विदेश मंत्रालय बोले चीन की तरफ मौजूद करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: पीएम नरेंद्र मोदी जैन अल्फा संग उन्होंने मनाया रक्षाबंधन, बच्चियों ने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर बांधी राखी। बच्चियों के साथ पीएम मोदी का दिखा खास अंदाज, राखी के बाद पीएम मोदी ने बच्चियों के साथ किया हाई फाइव। बच्चियों संग हंसी मजाक करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, नन्ही बच्ची की कविता पर पीएम मोदी हुए प्रभावित। राखी बांधकर बच्ची ने सुनाई खूबसूरत सी कविता, बच्ची की कविता सुन पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। महाकाल के प्रसाद पर बच्ची से प्रधानमंत्री मोदी की प्यारी बात, बोले प्रधानमंत्री अगली बार मेरे लिए महाकाल के प्रसाद लेते आना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों और एनसीसी कैडेट से बंधवाई राखी, रक्षाबंधन के पावन पर्व की दी शुभकामनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बेटियों संग मनाया रक्षाबंधन, टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रही बेटियों से बंधवाई राखी। ब्रह्म कुमारी बहनों ने भी राजनाथ सिंह को बांधी राखी, राखी बांधकर बहनों ने दिया स्नेह का संदेश। बेटियों संग अमित शाह का स्नेह भरा अंदाज, अमित शाह ने बेटियों के साथ बांटी रक्षाबंधन की खुशियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मनाया रक्षाबंधन, स्कूली छात्राओं ने सीएम योगी को बांधी राखी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, मुस्लिम लड़कियों ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी। भद्रवाह में बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व, बच्चियों और महिलाओं ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर बांधी राखी। महिलाओं ने थाली उतारकर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर जवानों को बांधी राखी, भारतीय सैनिकों ने दिया छात्राओं को भेंट की उपहार। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने जवानों को बांधी राखी। कोलकाता में बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बंधवाई राखी, बहनों को दिया आशीर्वाद। आज धूमधाम से मनाया जा रहा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार, इस दिन बहन भाई की कलाई पर बांधती है राखी। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, प्यार और विश्वास की निशानी है, भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ये त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसके पीछे इंद्र इंद्राणी, कृष्ण द्रौपदी, यमराज यमुना जैसी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी। वाराणसी में रक्षाबंधन पर उतारी गई बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रक्षाबंधन पर भगवान विश्वनाथ को बांधी गई राखी, भक्तों ने लगाए जयकारे। उज्जैन में रक्षाबंधन पर उतारी गई बाबा महाकाल की विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रक्षाबंधन का महाउत्सव, भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को बांधी गई पहली राखी। महिलाएं बाबा महाकाल को बांधती हैं रक्षा सूत्र, महाकाल के दरबार से होती है रक्षाबंधन की शुरुआत, 1.25 लाख लड्डुओं का लगा भोग। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया रक्षाबंधन, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर को अर्पित की गई राखी, राखी में भारत की संस्कृति, शक्ति, समृद्धि और विकास की झलक दिखाई दी। लखनऊ में सीएम योगी ने बच्चियों से बंधवाई राखी, बच्चियों को बांटे उपहार। राजौरी में सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को महिलाओं ने बांधी राखी, जवानों ने महिलाओं को दिया आशीर्वाद। जामनगर की जेल में बहनों ने भाइयों को बांधी राखी, सुबह से राखी बांधने के लिए लगी होड़। रोहतास में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर उन्होंने बांधी राखी, भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। नीमच में बनी अनोखी शिव राखी, 13 रुद्राक्षों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उकेरी गई तस्वीरें। राखी के बीच में दिखेंगे मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव, यानी एक छोटी राखी में समाई शिव की पूरी आस्था। रुद्राक्ष की बेहद छोटी सतह पर हुए कमाल की चित्रकारी, कलाकार ने सिर्फ एक दो बाल वाले महीन ब्रश से ये तस्वीरें बनाई हैं। नीमच के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने तैयार की है ये खास राखी, इसमें महाकाल से लेकर सोमनाथ और केदारनाथ तक के चित्र हैं। रक्षाबंधन पर यह राखी बनी आकर्षण का केंद्र, रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ का संगम इसे बनाता है बेहद खास। लखनऊ में बहनों ने जेल पहुंचकर अपने कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र सलामती की दुआ करती दिखी। रक्षाबंधन को लेकर प्रशासन की तरफ से किए गए विशेष इंतजाम, बहनों ने भाइयों से की मुलाकात। रायपुर के सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर, महिलाओं ने अपने कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। सेंट्रल जेल पर सुबह से राखी बांधने के लिए महिलाओं की लगी भीड़, महिलाओं ने कैदी भाइयों को राखी बांधकर उनकी सलामती की दुआ की। प्रयागराज में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए चलाई गई 650 बसें, 29 अगस्त तक चलेगी बसें। आज लगा साल का दूसरा आखिरी चंद्रग्रहण, खगोल प्रेमियों के लिए साबित होने वाला है एक खास मौका। चंद्रग्रहण को अमेरिका समेत कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये ग्रहण। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 6:53 से दोपहर 12:32 तक रहा यह ग्रहण, करीब 5.5 घंटा चली यह खगोलीय घटना। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने से सूतक काल भी नहीं लगा, आज रक्षाबंधन और चंद्रग्रहण का रहा संयोग। देश के सभी मंदिरों के कपाट सामान्य दिनों की तरह पूजा के लिए खुले रहे, त्योहार मनाने में नहीं आई कोई अड़चन। देवघर में सावन के आखिरी दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भोलेनाथ के दर्शन। सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। देवघर में नमो सेवा शिविर का समापन समारोह में गीतों पर झूमे श्रद्धालु, सांसद मनोज तिवारी और सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। अयोध्या में सावन के आखिरी दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ, मंदिरों में लगी कतारें। तिरुचिरापल्ली में अवनी पूर्णिमा पर शिव भक्तों ने कावेरी नदी के भव्य आरती की वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने सुख शांति की कामना की। तिरुचिरापल्ली में अवनी पूर्णिमा पर जनेऊ संस्कार और वैदिक अनुष्ठान संपन्न हुए, पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धालुओं ने धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तिरुचेंदूर के समुद्र तट पर अवनी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भक्तों ने मिट्टी के दीप जलाकर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। थूथुकुड़ी में अवनी पूर्णिमा पर तिरुचेंदूर समुद्र तट पर दिखा आस्था का अद्भुत नजारा। भक्तों ने समुद्र किनारे मिट्टी के दीपक जलाए। पुरी में बलभद्र की जयंती पर श्री जगन्नाथ मंदिर की उतारी गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में भक्त हुए इसमें शामिल। बिहार के बांका में सावन पूर्णिमा पर जैसठ गौर नाथ महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। जैसठ गौर नाथ महादेव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए बम भोले के जयकारे। फतेहपुर शेखावटी में श्रावणी उपाकर्म महोत्सव का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्त हुए इसमें शामिल। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हिमाद्री स्नान और आत्मशुद्धि की निभाई गई परंपरा। लोगों ने किया हिमाद्री स्नान। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था। भगवान का लिया आशीर्वाद। जबलपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट के लिए किया भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव रहे मौजूद। ओडिशा में सीएम मोहन चरण मांझी ने धबलेश्वर मंदिर की परिधि विकास परियोजना का उद्घाटन किया। कई अन्य मंत्री भी रहे साथ। संभल में प्रशासन ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को दी बड़ी सौगात। 21 महिलाओं को मिला आवासीय भूमि का पट्टा। मालदा में मंत्री सुकांत मजुमदार ने अरोतपुर में नए केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ भवन का उद्घाटन किया। कहा बच्चों को मिलेगी अच्छी सुविधा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्लीवासियों को दी बड़ी सौगात। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बाढ़ प्रभावित नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। त्रिशूली हाइड्रोपार्क टनल में फंसे 350 लोगों का रेस्क्यू। नेपाल के त्रिशूली में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव कार्य जारी। फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। नुवाकोट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का यूनिसेफ टीम ने किया दौरा। राहत गतिविधियों की निगरानी। गोपालगंज में नेपाल में अचानक से आई बाढ़ के बावजूद नहीं बढ़ा गंडक का जलस्तर। प्रशासन ने ली राहत की सांस। नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद बिहार के बाल्की नगर में प्रशासन सख्त। गंडक नदी के जलस्तर की हो रही लगातार निगरानी। 16 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म राणा बाली। इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड बास्तु भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म खोसला का घोसला पार्ट 2 रिलीज। लगभग 20 साल के बाद आ रहा सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कल ओटीटी पर रिलीज। नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम।

0: 99% चांद पर पड़ी धरती की छाया। लाल रंग में बदला चांद, मंत्रमुग्ध हुए लोग, रियो में आसमान की ओर टिकी हजारों निगाहें। बोलीविया में 3000 मीटर की ऊंचाई से शानदार नजारा नजर आया, टेलीस्कोप से चांद को निहारते दिखे स्काई वॉचर्स। अमेरिका कनाडा में लालिमा लिए नजर आया चांद, सेनेगल में आधी रात के बाद दिखा खूबसूरत सा नजारा। एथेंस में एक्रोपोलिस के ऊपर दिखा चंद्र ग्रहण, रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका के ऊपर चमका चांद। ब्राजील में चंद्र ग्रहण का भव्य नजारा, रियो सर्टेनेरियम में उमड़ी लोगों की भीड़, टेलीस्कोप से चांद को निहारते दिखे खगोल प्रेमी। मैक्सिको सिटी में दिखा चंद्र ग्रहण का शानदार नजारा, रेवोल्यूशन मॉन्यूमेंट के ऊपर दिखा ग्रहण का चांद। चंद्र ग्रहण ने रात को बना दिया यादगार, पहली बार चंद्र ग्रहण देखकर भावुक हुए दर्शक। इस नजारे को कैद करते लोग दिखे ग्रीस के आसमान में, भी दिखा ये खूबसूरत चंद्र ग्रहण। एक्रोपोलिस के ऊपर दिखा ये अद्भुत नजारा, रात के आसमान में धीरे धीरे बदला चांद का रूप। स्पेन में दिखा आंशिक चंद्र ग्रहण, ग्रैंड कैनेरिया में लाल हुआ चांद, धरती की छाया ने चांद को ढक दिया। आसमान में दिखा बेहद खूबसूरत नजारा, टेलीस्कोप से चांद को निहारते दिखाई दिए लोग। अमेरिका कनाडा में चंद्र ग्रहण के बीच में दिखा खूबसूरत ब्लड मून, आसमान में ब्लड मून ने बिखेरी लालिमा। लालिमा में नहाया चांद बना आकर्षण का केंद्र, वैंकूवर में इमारतों के ऊपर दिखा चंद्र ग्रहण। आसमान में धीरे धीरे बदला चांद का रंग, यहां पर पेड़ों के पीछे चमका ब्लड मून, चांद ने रात के आसमान को बनाया खास। फ्रांस में ड्रैगन बॉल थीम पार्क को लेकर फैंस एक्साइटेड, पेरिस के पास बनेगा विशाल ड्रैगन बॉल पार्क। मैक्रों बिन सलमान की मौजूदगी में हुआ समझौता, फ्रांस में ड्रैगन बॉल की नई दुनिया बसाने की तैयारी। फ्रांस में बनेगा यूरोप का बड़ा ड्रैगन बॉल आकर्षण, की डिया प्रोजेक्ट बना फ्रांस पार्क की प्रेरणा। सऊदी अरब ड्रैगन बॉल थीम पार्क के निर्माण में करेगा निवेश, 6 अरब यूरो के निवेश से बदलेगी तस्वीर। युवाओं को जोड़ते हुए सऊदी अरब का बड़ा दाव, किडिया से पेरिस तक ड्रैगन बॉल का विस्तार। चीन के रोबो ने बनाया नया इतिहास, रोबो ने उसैन बोल्ट का 100 मीटर का रिकॉर्ड पछाड़ा। उसैन बोल्ट के 9.58 सेकंड्स के रिकॉर्ड से भी तेज बीजिंग में रोबोट की रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया। रोबो की तेज चाल बनी प्रतियोगिता का आकर्षण, चीन की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ने दिखाई यहां पर अपनी ताकत। बैलेंस बनाए रखने के लिए रोबोट बढ़ाता है कदमों की रफ्तार, मोटर सॉफ्टवेयर ने रोबोट को दी जबरदस्त स्पीड। रोबोटिक्स और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का नया संगम, बीजिंग में 2000 से ज्यादा रोबोट मुकाबले, रोबोट ने दौड़ से लेकर जिम्नास्टिक तक दिखाया अपना हुनर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी

0: रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: चले रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह स्थली अब आस्था के साथ साथ शादियों के लिए खास पसंद बनती जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत करने पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले साल नवंबर से इस साल जुलाई तक 1500 से ज्यादा जोड़ों ने यहाँ विवाह किया है। यानी शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी इस पावन धरती पर सात फेरे लेने का चलन तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है।

0: भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का साक्षी बना यह मंदिर अब आस्था के नए कीर्तिमान का गवाह भी बन रहा है। रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर दिन यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। मान्यता है कि भगवान नारायण के इस मंदिर में महादेव और माता पार्वती ने सात फेरे लिए थे। अब इस पवित्र धाम में देश भर से नए जोड़े आकर विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। अनंत आस्था की प्रतीक सदियों पुरानी अखंड धुनी नए जोड़े के विवाह की साक्षी बन रही है। वक्त के साथ इस मंदिर में विवाह का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल जुलाई तक 1500 से ज्यादा शादियां यहां संपन्न हो चुकी हैं।
1: 1564 शादियां वहां पर हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी नए जोड़ों को जो वहां पर शादी करने में विश्वास रखते हैं। भगवान से भी यही प्रार्थना है कि वो दिन बुगनी रात चौगुनी विनती करें। वहां पर इन शादियों से रोजगार भी हमारा बड़ा है। हमारे स्थानीय जो वहां पर परंपरागत मंदिर में सेवा देते हैं उनमें वो पानी वहां पर रोजगार बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है।
0: मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिव्य विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई, जबकि भगवान ब्रह्मा ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया। इस पौराणिक आस्था को महसूस करने के लिए आज भी नौ दंपति त्रियुगी नारायण पहुँचते हैं और अखंड धुनी को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं।
2: यहाँ पे जितनी भी शादी बारात होती है हमारे गांव के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिलता है। तीर्थ पुरोहित हो गए, चाहे होटल वाले हो गए, चाहे दुकानदार हो गए, चाहे गांव की महिलाएं हो गई, कीर्तन हो गए, मंडल कीर्तन और भजन, चार गांव की समूह की महिलाएं, सबके लिए बहुत अच्छा रोजगार मिलता है। और जितने भी तीर्थ यात्री केदारनाथ जाते उनमें से अधिक यात्री यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं।
3: यहाँ पर जो भी बरातें होती है उससे जो है कि स्थानीय पुरोहित लोगों को, स्थानीय दुकानदारों को, होटल व्यवसायों को, स्थानीय महिलाओं को काफी जो है कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम जो है तीर्थ यात्रियों से, प्रदेश वासियों से, समस्त देशवासियों से सभी से प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर जो है शादी का अपना शादी का प्रोग्राम बनाएं यहाँ पर और भगवान नारायण का आशीर्वाद लें।
0: त्रियुगनी नारायण मंदिर के ख्याति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 22 अप्रैल से अब तक 35,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से यहां होटल और होम स्टे की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिली है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है वायरल तस्वीरें आपके सामने रखने का। इन तस्वीरों में कुछ आपको इमोशनल करेंगे, कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे।
5: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के सनों के साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की ये बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसे आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है। इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता। इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी हैं। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखी सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, प्रधानमंत्री मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। देश के सरहदों पर रक्षाबंधन की रौनक। नाथुला में भारत चीन सीमा पर जवानों को बांधी गई राखी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भव्य आयोजन। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक। साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी। 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। नेपाल से रेस्क्यू किए गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्री पहुंचे दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे श्रद्धालु। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज। भारत की ओर से भेजी जा रही मदद की तीसरी खेप। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन की तरफ मौजूद करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। राखी का त्यौहार सभी भाई बहनों के लिए खास होता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी सजाती हैं और भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वादा करता है। आज वही राखी का पवित्र त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है, देश मना रहा है भाई बहन के प्यार का त्यौहार राखी। राखी के मौके पर लोग भगवान को भी राखी बांध रहे हैं। इंदौर के खजराना गणेश जी को विशाल राखी पहनाई गई। वहीं फतेहपुर में शहीद की कलाई पर राखी बांधने के लिए जब उसकी बहन पहुंची तो माहौल भावुक हो गया।

0: रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक पूरे देश में छाई हुई है। बाजार गुलजार हैं और बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध रही हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। तो भाई की ओर से बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उन्हें उपहार देने का सिलसिला भी चल रहा है। भाई बहन के अलावा लोग बड़ी संख्या में भगवान के दरबार में राखी बांधने पहुँच रहे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन के मौके पर भगवान गणेश को अनोखी और विशाल राखी अर्पित की गई। 40 बाई 40 इंच की इस विशेष राखी में भारत की संस्कृति, शक्ति, समृद्धि और विकास की झलक देखने को मिली। खास बात यह है कि इस राखी को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस खास राखी में देश की संस्कृति और शक्ति के साथ भारत के विकास और समृद्धि को भी प्रदर्शित किया गया है। राखी पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा राखी में शक्ति की प्रतीक माँ काली, धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के साथ महाकाल और भगवान जगन्नाथ की आकृतियाँ भी बनाई गयी है।
1: यह राखी हम पूरे राष्ट्र की ओर से प्रथम पूजनीय भगवान खजराना गणेश जी को चरणों में अर्पण करते हैं। इस बार यह वंदे भारत जो 150 वर्ष पूरे हुए हैं उसके ऊपर हमने आधारित यह राखी बनाई थी। सनातन राखी है, इसमें भोजशाला की धार की सरस्वती देवी, महालक्ष्मी जी, महाकाली कलकत्ते वाली, महाकाल राजा और जगन्नाथ प्रभु हमने बनाए।
0: रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के दौरान विशेष रक्षा सूत्र अर्पित किया गया। सुबह होने वाली इस मुख्य आरती में सबसे पहले देवाधिदेव महादेव को राखी बांधकर संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए जुटे। मंदिर आने वाली बहनें अपने ठाकुर जी के चरणों में राखियां अर्पित करके अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना कर रही हैं। यहां हर वर्ष बांके बिहारी मंदिर में हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु रक्षाबंधन पर ठाकुर जी को अपना भाई मानकर राखी अर्पित करती हैं और उनसे अपने और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद लेती हैं।
2: ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो सीधे डायरेक्ट यहाँ मंदिर नहीं आ पाती, काफ़ी दूर दूर रहती हैं, भारत के कोने कोने से। तो वो उन्होंने डाक के द्वारा, कुरियर के द्वारा अपनी राखियाँ भेजी हैं ठाकुर जी के लिए और साथ में एक पत्र भी भेजा है जिसमें उनके ना आने का कारण है और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए उन्होंने मनोकामना उसमें की है।
0: राजस्थान के सीकर झुंझुनू बॉर्डर पर स्थित फतेहपुर शेखावटी में गांव दीनवा लाड खानी में अनोखा रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की बहन उषा कंवर हर साल गुजरात से भाई की प्रतिमा को राखी बांधने के लिए आती हैं और भाई की प्रतिमा को राखी बांधती हैं। इस बार वो भाई को राखी बांधने के बाद काफी देर तक वहाँ खड़ी रही, भाई को निहार कर भावुक हो गयी।
3: भाई भले शहीद हो गया, एक गर्व की बात है देश के लिए, एक बहन के लिए, पर इस पर्व पर एक बहन को अपना भाई बहुत याद आता है। वो अपने आंसू छुपा सकती है पर वो भाई को याद करे बगैर रह नहीं सकती।
0: भाई बहन के इस त्योहार की छटा जंगलों तक में दिखाई पड़ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टूडू और उनकी टीम जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आईं।
4: पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधते हैं।
0: इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
5: देशभर में यूं तो सावन महीने में कई सारे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, लेकिन उज्जैन में होने वाले धार्मिक आयोजन अपने आप में खास होते हैं। ऐसे में सावन माह के अंतिम दिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, और वो है बाबा महाकाल की भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु। इस मौके पर पुजारी परिवार की ओर से महाकाल को राखी अर्पित की गई और इसके साथ ही महाकाल को 125,000 लड्डुओं का महाभोग लगाया गया।

0: रक्षाबंधन के साथ ही आज से सावन महीने की समाप्ति भी हो रही है। ऐसे में सावन महीने के अंतिम दिन आज रक्षाबंधन के त्योहार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और बाबा की पूजा अर्चना की। त्योहार की शुरुआत आज तड़के होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती से हुई। सुबह सबसे पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया, फिर दूध दही घी शहद और फलों के रस से बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद ओम नमः शिवाय के जाप के बीच बाबा महाकाल का मनोहारी श्रृंगार हुआ। इसके बाद परंपरा के अनुसार बाबा महाकाल को भस्म अर्पित किया गया और भस्मीभूत होने के बाद बाबा महाकाल की सुबह की पहली आरती की गई।
1: वो पंचामृत से अभिषेक किया गया, दूध दही से शक्कर घी फलों के स्नान से फलों के रस से स्नान कराया गया, विजया से स्नान कराया गया, इस तरह से स्नान कराया गया, सुगंधित द्रव्य से स्नान करा के बाबा को विशेष श्रृंगार हुआ। बाबा को भस्म चढ़ी और आज राखी चढ़ी। आज पुजारी परिवार की तरफ से सर्वप्रथम राखी हमारे परिवार की महिला बहनें बनाती है और आज वो चढ़ी। उसके बाद भक्तजन भी लाते हैं, कोई देश विदेश से कोई भक्त अपने मनोकामना करते हैं, बाबा महाकाल को कोई भाई मानते हैं कोई, तो उसको लेके आते थे, वो भी सब राखी बाबा को हमने अर्पण किए। वो बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका कल्याण करे।
0: बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए हजारों श्रद्धालु रात से ही मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए थे। जिन लोगों ने पहले से अनुमति ले रखी थी उन्होंने बैठकर भगवान की आरती की और अन्य श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में चलित दर्शन व्यवस्था की गई थी। बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार और आरती देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे।

0: मेरा बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। मैं पहली बार यहाँ महाकाल आई हूँ। मैं अपनी बहन इंदु बंसल के साथ आई हूँ। हम दिल्ली से आए हैं, ये दुबई से आई हैं। हम स्पेशली आज महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। हमने शाम को संध्या आरती करी थी, बहुत खूबसूरत बाबा के आकस्मिक हमें दर्शन मिले और हमारा मन गदगद हो गया।
1: एक भाई और एक बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर एक बहन अपने हाथ से राखी बना के भाई को चढ़ाए तो इसका मौत भी बढ़ जाता है। और ये तो मेरे पिता है और मैंने इनके लिए रक्षा सूत्र बनाया था और उन्होंने स्वीकार किया।
2: आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में बाबा महाकाल के दरबार में भी रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। पंडे पुजारियों और उनके परिवार द्वारा बनाई गई राखी आरती पूजन के बाद भगवान महाकाल को अर्पित की गई। इस खास मौके पर बाबा महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से 125,000 लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। महाभोग के बाद लड्डुओं को मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में वितरित किया गया।
0: भाई बहन का प्रमुख त्यौहार है जैसे आपने बताया, और सावन की पूर्णिमा है जिस दिन भाई जो रक्षाबंधन मनाया जाता है भाई के साथ, बाबा के साथ। आज हमने बनाया सबसे पहली राखी उन्हें, जो पुजारी परिवार के द्वारा चांदी की उन्हें अर्पित की गई और उनसे कामना की गई कि आप सभी की रक्षा करें, हमारे भाइयों की, हमारे बेटों की, हमारे पिता की और जितने भी विश्व में हमारे भाई हैं उन सब की आप रक्षा करें और ऐसे ही हमें प्रदान करें।
2: मंदिर में रात 11 बजे शयन आरती होती है और तब तक भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि देश भर में उज्जैन ही एकमात्र वह मंदिर जहां इतनी सुबह आरती पूजन का क्रम शुरू होकर रात करीब 11 बजे तक चलता है। इस दौरान दूर दूर से श्रद्धालु महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहां पहुंचते हैं और इस अनुपम नजारे का हिस्सा बनते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे।
3: और रक्षाबंधन पर कानपुर में एक भावुक नजारा देखने को मिला। एक गरीब बच्ची अपनी मां के साथ डीएम को राखी बांधने पहुंची। इस मुलाकात में डीएम ने बच्ची को ऐसा तोहफा दिया जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएगी। डीएम ने बच्ची के स्कूल की फीस जमा कराई और इतना ही नहीं, बच्ची के स्कूल जाने के लिए साइकिल भी दिलवाई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है कानपुर की डीएम का राखी गिफ्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि ललिता देवी और उनकी बेटी ईशु के लिए ये रक्षाबंधन कभी ना भूलने वाला दिन बन गया। दूसरे के घरों में बर्तन धोने का काम करने वाली ललिता देवी की बेटी ईशु रक्षाबंधन पर कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह को राखी बांधने पहुंची। डीएम ने राखी बंधवाने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई और घर के बारे में पूछा तो ललिता देवी ने बताया कि उसके पति की 2017 में मौत हो गई थी और वो दूसरे के घरों में बर्तन साफ करती है। उनकी बेटी ईशु एक इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा है। उसकी कई महीने से फीस जमा नहीं हुई। स्कूल ने 29,000 रुपए के बकाया होने का स्लिप भेजा है। ऐसा सुनकर डीएम ने तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। इसके बाद उसकी आधी फीस स्कूल की तरफ से माफ कराई गई और बाकी की फीस खुद अपनी जेब से उन्होंने अदा की। इतना ही नहीं, बच्ची जब जाने लगी तो उन्होंने पूछा कि स्कूल कितनी दूर है और कैसे जाती हो। इस पर लड़की ने बताया कि सर इतना पैसा नहीं कि किराए से जा पाऊं, तो पैदल ही चली जाती हूं। इतना सुनकर डीएम ने तुरंत बच्ची के लिए अपने पास से पैसे देकर एक साइकिल खरीद दी। रक्षाबंधन के साथ ही इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन का समापन अब हो गया है। 57 दिनों तक चली पवित्र अमरनाथ यात्रा में देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचे। इस बार करीब 5,00,000 भक्तों ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है छड़ी मुबारक पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न। रक्षाबंधन के पावन मौके पर आज पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ बाबा अमरनाथ की इस साल की यात्रा विधिवत संपन्न हो गई। अब पवित्र गुफा के कपाट अगले साल की यात्रा तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

0: श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार और इस पावन अवसर पर संपन्न हुई अमरनाथ यात्रा। इस वर्ष 3 जुलाई को पहले जत्थे के साथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई थी और उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलग अलग जत्थों में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान उनका भक्ति भाव और जोश देखते ही बना और रक्षाबंधन के पर्व पर 28 अगस्त को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के प्रवेश और अंतिम पूजा के साथ श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष के अमरनाथ दर्शन का औपचारिक समापन हो गया।
1: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज अपने अंत तक पहुंच गई। छड़ी मुबारक जो कि एक रीति है, आज रक्षाबंधन के दिन जो है वो अमरनाथ गुफा ली जाती है और वहां पर इस छड़ी मुबारक की पूजा होती है और उसी के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो कि पूंछ में होती है वो भी संपन्न हो गई है और छोटा अमरनाथ यात्रा जो कि मात्र एक दिन की यात्रा है जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके गुरेज में पिछले कई सालों से की जाती है वो भी आज ही संपन्न हो गई।
0: अमरनाथ यात्रा का छड़ी मुबारक यात्रा सबसे अहम हिस्सा है। अमरनाथ यात्रा के संपन्न के लिए श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से शुरू हुई छड़ी मुबारक यात्रा ने पारंपरिक पड़ावों पहलगाम चंदनवाड़ी शेषनाग पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक की यात्रा पूरी की। रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह सूर्योदय के समय छड़ी मुबारक ने पवित्र गुफा में प्रवेश किया और फिर अंतिम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ। अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं अधिक रही। इस वर्ष 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए जबकि 2025 में ये संख्या 4,14,000 से अधिक थी। 57 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा में इस बार सिर्फ 12 दिनों के भीतर ही 3,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन का कीर्तिमान स्थापित हो गया।
1: अब की बार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए राहत की सबसे बड़ी बात ये थी कि अब की बार यात्रा न सिर्फ सफल रही बल्कि सुरक्षित भी रही। बिना किसी घटना के अब की बार इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी राहत की सांस ले ली है।
0: परंपरा के अनुसार अमरनाथ गुफा में मुख्य पुजारी के बाद पवित्र छड़ी की वापसी यात्रा होती है। 30 अगस्त को पहलगाम में अंतिम पूजा और पारंपरिक जल विसर्जन समारोह होगा और उसके साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा पूरी तरह संपन्न हो जाएगी और अगले वर्ष की यात्रा तक के लिए धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं तो कहीं बप्पा का स्वागत किया जा रहा है। इस बार महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी विशेष तरह से की जा रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है गणेशोत्सव के लिए इको फ्रेंडली बप्पा की डिमांड। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव पिछले 5 साल से साडू मिट्टी से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं।

0: जो जीवन में शुभता का संचार करते हैं, जो हर बाधा को दूर करने वाले विघ्नहर्ता हैं। बड़े कान, माथे पर तिलक, चेहरे पर मनमोहक मुस्कान और सूंड पर कलाकारी के रंग। भगवान गणेश का ये सुंदर स्वरूप हर किसी का मन मोह लेता है। भक्तों को बल, बुद्धि, सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देने वाले भगवान गजानंद का शुभ आगमन हो रहा है। जैसे जैसे बापा के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ने लगा है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे मूर्तिकार दिन रात काम में जुटे हैं। कहीं छोटी गणेश प्रतिमाएं आकार ले रही हैं, तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। गणपति के चेहरे की बारीकियां, मुकुट की नक्काशी, मूर्ति के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने में कलाकार जी जान से जुटे हैं। भक्ति, आस्था और उल्लास के बीच इस बार गणपति उत्सव की तैयारियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कलाकार ही नहीं बल्कि भक्तों की कोशिश है कि ये गणपति पहले से ज्यादा इको फ्रेंडली बने।
1: घरेलू गणपति महाराष्ट्र में सबसे अधिक विराजमान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अपनी भक्ति आराधना साधना के साथ बापा की 10 दिन मनोभावे पूजा भी अच्छी तरीके से हो और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। इसी को लेकर जो है अकोला की पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव जो है पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है इस पर्यावरण पूरक बापा की प्रतिमाएं जो है निर्माण कर रही है।
0: पीओपी की जगह साड़ू मिट्टी से तैयार ये प्रतिमाएं पानी में आसानी से घुल जाती हैं, जिससे इकोसिस्टम पर इनका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता का असर अब मांग पर भी दिखाई दे रहा है। इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाओं के ऑर्डर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
2: सनातन धर्म में अपना पूजा पाठ को महत्व है, तो घर में हाथ से बनी मूर्ति रहेगी, आप लोग घर में विसर्जन करिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता।
0: मूर्तिकारों के हाथों से निकल रही हर प्रतिमा के साथ गणेशोत्सव का रंग भी गहराता जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इको फ्रेंडली बाप्पा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कर्नाटक के तेनकाशी में कलाकारों का हुनर और कारीगरी लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ भगवान गजानंद की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं मौजूद है। तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तियों पर की गई कलाकारी देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर से यहां गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यानी इस बार बापा का स्वागत भव्य ही होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी। कलाकार अपनी कला से बापा के सुंदर स्वरूप को आकार दे रहे हैं, तो दूसरी इको फ्रेंडली की मांग एक नई सोच की तस्वीर पेश कर रही है। अकोला से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गया जी शहर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गया पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। यहां पर पुलिस ने दीदी योजना का शुभारंभ किया है। इससे स्कूटी और बाइक सवार महिला पुलिसकर्मी शहर के संवेदनशील और महिलाओं की अधिक आवाजाही वाले इलाके में विशेष गश्ती करेंगी। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है गया जी में मंचलों के खिलाफ पुलिस दीदी की एंट्री। जी आपको बता दें कि शहर के सुनसान इलाकों में खड़े होकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए गया पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष गश्ती शुरू की गई है। सख्ती बरतने के लिए पुलिस दीदियों की टीम उन इलाकों पर विशेष नजर बनाकर रखेगी और मंचलों को पकड़ने के बाद पुलिस दीदी खुद एक्शन भी ले सकेंगी। बिहार सरकार द्वारा गया पुलिस को 70 स्कूटी और बाइक्स दी गई है। इन्हीं स्कूटी सवार महिलाओं को गश्त में लगाया गया है। पुलिस ने शहर के कई छेड़छाड़ वाले हॉटस्पॉट को चिन्हित किया है। इन चिन्हित स्थानों पर पुलिस दीदी नियमित रूप से डायल 112 से संपर्क बनाते हुए गश्ती करेगी तथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों तथा बाजारों में महिलाओं के अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखेगी। पुलिस के इस कदम से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए आशियाना। आपको बता दें कि सलोनी के इस आशियाने में परिंदे रहते हैं जो उन्हें धूप हवा और ठंड से बचाते हैं। तालाब किनारे बना यह अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
4: तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
5: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
4: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
6: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सकें जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
4: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
6: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
4: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
7: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं।
4: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला
9: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा, भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं, भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं, जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
11: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी।

0: रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को राखी बांधी, दिव्यांग छात्राओं ने सीडीएस को मिठाई खिलाई। शिरडी के साईं दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साईं बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी जा रही मदद की तीसरी खेप, विदेश मंत्रालय ने कहा चीन की तरफ मौजूद करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे पर किन्हें सच मान लेते हैं और यही से अफवाहों का दौर शुरू होता है। लोग बिना जांचे परखे जब इसे सच मानते हैं, लगातार आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और इसी तरीके से लगातार अफवाह फैलती जाती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ के बीच की रेखा को साफ करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं सही सच्ची खबरें। हर खबर की होती है सटीक पड़ताल और जांच और उसके बाद आपको मिलती है सही खबर। फैक्ट चेक में आज इन दो खबरों की हम पड़ताल करेंगे। वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जो कहा जा रहा है कि नेपाल का है और ये पुल गिरने का वीडियो है। हाल ही में नेपाल में आपदा आई है और इसके बाद लोग पुल के ऊपर से जा रहे थे, अचानक से पुल गिर गया। इस वीडियो को इसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या आगे जानी। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। ये उसी दौरान का वीडियो है, क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और इन प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान भी चली गई है जबकि हजारों लोग लापता हैं। इनमें करीब 300 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक बहुत से लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इसी से जोड़ता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्या इसकी सच्चाई आई आपको बताते हैं।

0: नेपाल चीन के सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल में आए इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में कई लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण कई क्षेत्र का परिवहन और संपर्क ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क बाधित हो गया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर पुल के गिरने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान पुल पर मौजूद गाड़ियों और लोगों को भी नीचे नदी में गिरते हुए देखा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बाढ़ का यह वीडियो असली है, तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा जिसने मुझे इतना दुखी किया हो। हे भगवान, पलक झपकते ही लोगों की जान जाते देखना सच में दिल तोड़ने वाला है। मैं उन सभी लोगों के साथ हूँ जो इससे प्रभावित हुए हैं, खासकर उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खो दिया है। वहीं एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि इसे देखना वाकई बहुत डरावना है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक पुल को देखा जा सकता है। पुल पर गाड़ियों और लोगों की अच्छी खासी भीड़ है और नीचे नदी भारी उफान पर नजर आ रही है। कुछ सेकंड के बाद पुल गिरता है और उस पर मौजूद गाड़ियों और लोग नदी में गिर जाते हैं। लोग इसे नेपाल का बताकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि नेपाल में हाल फिलहाल में बाढ़ आई है, सब कुछ तबाह हो गया है, हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। लेकिन अभी तक कई मौतें भी हो चुकी हैं, ये भी खबर आई है। हजारों की तादाद में लोग लापता भी हैं। कई लोगों को अब तक कुछ अता पता नहीं है, उनके परिजन लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं। इन सब के बीच नेपाल का बताकर ये वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। ऐसे में वीडियो में हमें कई गलतियां देखने को मिली। वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर हमें संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर लोग जानते हुए भी कि जमीन धस रही है उस पर चल रहे हैं, उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की और ना ही खुद को बचाने की कोशिश की। और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी हिस्से को अगर देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि अचानक से एक व्यक्ति हवा में गायब हो जाता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई ये असली होता तो इसके बारे में खबरें जरूर होती, कहीं ना कहीं कोई जानकारी जरूर मिलती। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे यूजर्स इस वीडियो को एआई निर्मित ही बता रहे, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है। हमारा अगला सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जाने।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर सच में कोई पुल गिरा होता तो उसमें गाड़ियां और लोग नदी में गिर गए होते तो इस घटना की खबरें जरूर आई होती। लेकिन हमें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिसमें इस वीडियो के विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया हो। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें ये वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो की शुरुआत में पुल के दाईं ओर जो रेलिंग दिख रही है वो 5 सेकंड बाद गायब हो जाती है। 0 सेकंड और 0.3 सेकंड के बीच पुल पर मौजूद लोग अचानक गायब होते हुए दिखते हैं। इससे ये साफ हो गया कि ये वीडियो असली नहीं है। इसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वीडियो एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। हमने साइट इंजन एआई डिटेक्टर का इस्तेमाल करके वीडियो के एक स्क्रीनशॉट का विश्लेषण किया। टूल ने पाया कि इस बात की 95% संभावना है कि विजुअल एआई जनरेटेड है। हमने इसकी पुष्टि के लिए हाई मॉडरेशन एआई वीडियो डिटेक्टर का इस्तेमाल भी किया और पाया कि इस बात की 99.9% संभावना है कि वीडियो में एआई जनरेटेड या डीप फेक कंटेंट है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर झूठा दावा किया जा रहा है। ये वीडियो किसी असली घटना को नहीं दिखाता है, ये वीडियो एआई के जरिए बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है और इमरान खान को एक व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा जा सकता है। वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, अस्पताल में भर्ती होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का पहला वीडियो सामने आया। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
2: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 5 अगस्त 2023 को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार हुए थे और तब से जेल में हैं। वो रावलपिंडी के बाहरी इलाके में स्थित अदियाला जेल में बंद हैं। इमरान की पार्टी और परिवार लंबे समय से उनके स्वास्थ्य और इलाज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। पीटीआई समर्थकों का आरोप है कि इमरान को पर्याप्त मेडिकल सुविधा, परिवार से मुलाकात और कानूनी मदद नहीं मिल रही है। हालांकि सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। इन सब के बीच 18 अगस्त को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराने का आदेश दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान खान को एक व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा जा रहा है। वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, अस्पताल में भर्ती होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पहला वीडियो। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल शिफा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल 18 अगस्त को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था और इसी फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में इमरान खान को एक व्हीलचेयर पर बैठे देखा जा सकता है और वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज, अस्पताल में भर्ती होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पहला वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच की। हमने पाकिस्तान के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला। इस दौरान जानकारी सामने आई कि 18 अगस्त को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें शिफा अस्पताल ले जाने के बजाय सरकारी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया था। वहां उनकी आंखों की जांच हुई, दूसरे मेडिकल टेस्ट हुए। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने आरोप लगाया कि इमरान खान को वापस अदियाला जेल भेज दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें अगली सुनवाई यानी कि 16 सितंबर तक अस्पताल में ही रहने के लिए कहा गया था। पार्टी ने इसे अदालत के आदेश की अवमानना बताया। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से अवमानना की याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद सरकार ने इमरान खान को शिफा अस्पताल में नहीं भेजने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अदालत से 18 अगस्त को आदेश की समीक्षा और उसे वापस लेने की मांग की। वायरल हो रहे वीडियो में जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो दिन का है, जबकि इमरान खान इलाज के लिए अस्पताल में रात के अंधेरे में गए थे। इस दौरान कोई तस्वीर सामने नहीं आई, लिहाजा हमें इस पर शक हुआ। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वीडियो कब का है और ये वीडियो कहाँ का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल हो रहे वीडियो जैसा ही ये क्लिप मिला। 7 नवंबर 2022 को एक यूट्यूब चैनल पर ये हमें मिला। इससे तो यही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। इस वीडियो में ये जानकारी दी गई थी कि वजीराबाद में एक रैली के दौरान घायल होने के बाद इमरान खान को 3 दिन अस्पताल में बिताने पड़े। सर्च के दौरान हमें कई आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो मिला। नवंबर 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान जल्द चुनाव की मांग को लेकर एक विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, जिसका समापन राजधानी इस्लामाबाद में होना था। इस जानलेवा हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। इमरान खान को बाद में लाहौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दावा किया कि उनके पैरों में 4 गोलियां लगी। साफ है, वायरल वीडियो के जरिए झूठा दावा किया जा रहा है। ये वीडियो नवंबर 2022 का है। रिद्धिश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।

0: अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट,
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
2: फैक्ट चेक की आखिरी सफर कहां दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: के लिए लड़की ढूंढी है ना,
6: तै?
5: है वो फॉरनर।
6: अच्छा,
5: पर आती है उसको हिंदी में बात करनी।
6: इधर है
5: नाना, बाहर की है।
6: अच्छा अच्छा,
5: ठीक है।
6: हेलो,
7: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक दादी बेहद प्यार और अपनेपन के साथ फोन पर एक विदेशी महिला से बात करती नजर आ रही हैं। लेकिन कहानी में सबसे प्यारा ट्विस्ट तब सामने आता है जब पता चलता है कि फोन के दूसरी तरफ कोई महिला नहीं बल्कि चैट जीपीटी का एआई वॉइस असिस्टेंट था।
6: कैसे हो आप? ठीक है?
8: हाँ बिल्कुल।
5: आशु, आशु से
6: दादी है जी। इसकी नानी है अभिषेक की दादी।
8: अच्छा जी, आप दादी से पूछिए, मैं यही रही हूँ, अगर आपको कुछ बताना हो या फिर कोई मैसेज देना हो तो बताइए।
5: पूछिए, शादी की बात करनी है तो कुछ पूछना है?
6: कोई नहीं जी, कुछ नहीं पूछना उसे। आप राजी चाहिए ठीक रहो, फिर तो वो बात कर लेंगे।
7: वीडियो वायरल होने के बाद लोग दादी की मासूमियत पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।
8: अगर कुछ और जरूरत हो तो मैं।
6: कोई बात नहीं जी, जरूरत तो क्या है, दोनों खुश रहना चाहिए। तो शादी नहीं कर रहा ना जी।
7: सच है, चाह और लगन अगर पक्की हो तो राही मुश्किलों से नहीं घबराते। इन छोटी बच्चियों को देखिए, कितनी कठिन डगर है पढ़ाई की, लेकिन मुश्किलों से डरकर जो हार मान जाए ये वो नहीं है। आसमान बरस रहा है, पहाड़ी रास्ता है, कीचड़ है, फिसलने का डर है, लेकिन भारी बैग कांधे पे लादे संभल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। छोटी बच्चियों का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। माँ तो माँ है, अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी मिसाल, जो कभी हार मानना नहीं जानती। कम से कम अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो हरगिज नहीं, हर हालात से लड़ जाती है, पर बच्चों के होठों की मुस्कान कम नहीं होने देती। इस माँ ने भी हार नहीं मानी, बच्ची को माँ के साथ रहना था और माँ को स्टेज पर परफॉर्म करना था, बीच का रास्ता निकाला और बेटी को साथ लेकर स्टेज पर पहुँची और कमाल कर दिया। Yes, she...

सोशल मीडिया पर इन दोनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गार्ड की सतर्कता और फुर्ती ने एक बच्चे को बड़े हादसे का शिकार होने से बचा लिया। वीडियो में एक बच्चा लिफ्ट के आसपास दिखाई देता है। इसी दौरान वो लिफ्ट के दरवाजे और उसके खाली हिस्से के बीच ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां थोड़ी सी भी लापरवाही उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकती थी। हालात अचानक ऐसे बन जाते हैं कि बच्चे के नीचे गिरने का खतरा नजर आने लगता है। वहां मौजूद लोगों को शायद कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। तभी पास में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की नजर बच्चे पर पड़ती है। वो बिना एक पल गवाए उसकी तरफ दौड़ता है और तुरंत बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। गार्ड की तेज प्रतिक्रिया के चलते बच्चा नीचे गिरने से बच जाता है।

नेपाल के उत्तरी हिस्से में आई बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की वजह से लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में प्रकृति से शांत होने की अपील करती महिला का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला प्लेट में आटा ली होती है, जिसे वो नदी में अर्पित करके उनके सामने अपना सिर झुकाती है और उनसे आगे बढ़ते रहने की अपील करती है। तेज लहरों के साथ बह रहे पानी को महिला जमीन पर पैर छूती है। वो गंगा मैया से अपनी पूरी श्रद्धा से ये प्रार्थना कर रही होती है, जिसका ये उद्देश्य होता है कि भगवान अब बस थम जाओ और जो गलती हुई हो उसको माफ कर दो। महिला अपनी पारंपरिक आस्था के साथ नदी को शांत करने की गुहार लगाती देखी जा रही है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। कहते हैं कि किसी इंसान की पहचान उसकी आवाज से नहीं बल्कि उसके काम और व्यवहार से होती है। सूरत के एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक शख्स की कहानी इस बात को बिल्कुल सही साबित करती है। वो बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन पिछले 23 साल से लगातार अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं। उनकी यही लगन अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। एक इंस्टाग्राम पेज पर इस कर्मचारी की कहानी शेयर की गई, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में पेट्रोल पंप के मालिक और वहां काम करने वाले दूसरे लोग इस कर्मचारी के बारे में बात करते नजर आए। सभी ने उनकी जमकर तारीफ की और बताया कि इतने लंबे समय में उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं मिली। बोल और सुन न पाने के बावजूद उन्होंने ग्राहकों से बातचीत का अपना आसान तरीका खोज लिया है। पेट्रोल पंप पर एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पर 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर 20,000 रुपए तक की रकम लिखी हुई है। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से रकम का नंबर चुनता है और कर्मचारी इशारे से उसे समझकर उसे हिसाब से पेट्रोल भर देते हैं। पड़ोस में रहने वाले लोगों से अक्सर हमारी मुलाकात सिर्फ हेलो, नमस्ते या छोटी सी बातचीत तक ही सीमित रहती है। लेकिन अगर पड़ोसी ही आपके साथ सुर मिलाकर गाना शुरू कर दे तो ये पल निश्चित रूप से खास बन जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें दो पड़ोसी बिना ज्यादा कुछ कहे संगीत के लिए एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक फेमस बॉलीवुड गाना शुरू किया। तो सामने वाले पड़ोसी ने गिटार बजाकर उसका साथ दिया। दोनों की अचानक बनी म्यूजिकल जुगलबंदी का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।

0: सोशल मीडिया पर इन दोनों एक चलती ट्रेन का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाओं का एक ग्रुप गाना गाते, तालियां बजाते और जमकर मस्ती करते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि आखिर ट्रेन जैसी पब्लिक जगह पर इस तरह का जश्न मनाना कितना सही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के कोच में कई महिलाएं एक साथ बैठी दिखाई दे रही हैं। माहौल कुछ ऐसा था जैसे किसी शादी में महिला संगीत चल रहा हो। महिलाएं गाने गा रही थी, तालियां बजा रही थी और खुशी जाहिर कर रही थी। हालांकि उनकी तेज आवाज की वजह से आसपास बैठे दूसरे यात्रियों का ध्यान भी बार बार उनकी तरफ जा रहा था। इसके बाद कुछ यात्रियों ने ट्रेन के टीटी से शिकायत की, जिसके बाद टीटी वहां पहुंचकर महिलाओं से जश्न रोकने के लिए कहा। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कल्पना कीजिए, आप जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ रहे एक प्लेन के पंख पर बंधे हैं। तभी प्लेन हवा में घूमता है और उल्टा हो जाता है। तेज हवा शरीर से टकरा रही है और नीचे जमीन की जगह आसमान नजर आने लगता है। ऐसी हालत में खुद को संभालना ही मुश्किल है, लेकिन हॉलीवुड एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी ने ये कर दिखाया है। 28 साल की सिडनी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उड़ते हुए बाइप्लेन के ऊपरी विंग पर बंधी नजर आती है। कुछ ही देर में प्लेन हवा में लूप और रोल लेने लगता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब विमान पूरी तरह उल्टा हो जाता है और सिडनी भी हवा में उल्टी लटकती दिखाई देती है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि उनका असली विंग वॉक स्टंट था। स्टंट का वीडियो शेयर करते हुए सिडनी ने मजाक के अंदाज में हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार टॉम क्रूज को भी ललकार दिया। उन्होंने लिखा कि टॉम क्रूज अब संभल जाइए। दरअसल इसी तरह के स्टंट के लिए टॉम क्रूज भी मशहूर हैं। उनकी 2025 के फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में उन्होंने इथन हंट के किरदार के लिए बाइप्लेन के साथ खतरनाक विंग वॉक किया था। इसलिए सिडनी के वीडियो ने लोगों को टॉम क्रूज की याद दिला दी।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आकार लेता विघ्नहर्ता का पावन स्वरूप गणेश प्रतिमा से प्रकृति बचाने का संदेश। बांदीपुरा में गूंजे बम बम भोले के जयघोष, छोटी अमरनाथ यात्रा पर मिल रहा पुण्य। आगे दिखाएंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक रक्षाबंधन की धूम, द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी। प्रधानमंत्री मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में CDS ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने CDS को मिठाई खिलाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएंगी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी जा रही मदद की तीसरी खेप, विदेश मंत्रालय ने बताया चीन की तरफ मौजूद करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात बप्पा के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों की। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां इस वक्त पूरे देश में जोरों पर हो रही हैं। मुंबई से लेकर देश के अलग अलग शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियां अपने अंतिम रूप में हैं। वर्कशॉप में मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है, दिन रात बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे हैं कारीगर, इन्हें सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है। अलग अलग आकार की प्रतिमाएं इन दिनों रौनक बढ़ा रही हैं, कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग बिखेर रहे हैं। बस अब इंतजार है 14 सितंबर का, जब पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से शुरू होगा।

0: गीली मिट्टी पर चलती उंगलियां, छेनी की हर एक बारीक चोट और फिर आकार लेता विघ्नहर्ता का ये पावन स्वरूप। ये सिर्फ मिट्टी को ढालने की कला नहीं, बल्कि बेजान पत्थरों और माटी में भगवान को गढ़ने की वो तपस्या है जो हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे मूर्तिकार दिन रात बप्पा की मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं। अलग अलग आकार की प्रतिमा इन दिनों रौनक बढ़ा रही है। कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। गणपति के चेहरे की बारीकियां, मुकुट की नक्काशी, मूर्ति के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने में कलाकार जी जान से जुटे हैं। कलाकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन इस बार अकोला से आस्था और कला की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का बड़ा संदेश भी दे रही है।
1: घरेलू गणपति महाराष्ट्र में सबसे अधिक विराजमान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अपनी भक्ति आराधना साधना के साथ बाप्पा की 10 दिन मनोभावे पूजा भी अच्छी तरीके से हो और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। इसी को लेकर जो है अकोला की पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव जो है पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है इस पर्यावरण पूरक बाप्पा की प्रतिमाएं जो है निर्माण कर रही है।
0: अकोला में साडू मिट्टी से तैयार की जा रही प्रतिमाएं इन दिनों डिमांड में है, क्योंकि विसर्जन के बाद साडू मिट्टी पानी में आसानी से घुल जाती है और प्रदूषण का खतरा खत्म हो जाता है।
2: पिछले 5 साल पहले मैंने देखा कि जैसे गणपति का विसर्जन होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति गलती नहीं है और वो वैसे पड़े रहती इधर उधर, तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं ऐसा सोची कि अपन क्यों ना मिट्टी से बनाए गणपति, और इतना हर महाराष्ट्र में हर घर में गणेश बैठाते हैं और मूर्तियां इतने प्रमाण में बिकती है और विसर्जित होती नहीं है, उससे पानी का भी नुकसान है, पानी की भी कमी है अकोला में।
0: मूर्तिकार कल्पना राव पिछले 5 सालों से साडू मिट्टी से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं बना रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि कल्पना इन प्रतिमाओं पर कोई मुनाफा नहीं कमाती बल्कि सिर्फ लागत मूल्य पर मूर्तियां भक्तों को सौंपती हैं।
2: और मेरे जितने पहचान वाले मैंने सबसे आग्रह किया कि आप लोग साडू माता की मिट्टी की मूर्ति बनाइए और उसको घर पे विसर्जन करिए और मान सम्मान के साथ सनातन धर्म में अपना पूजा पाठ को महत्व है, तो घर में हाथ से बनी मूर्ति रहेगी, आप लोग घर में विसर्जन करिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे को ये बिजनेस जैसा नहीं है, मेरी श्रद्धा है और पर्यावरण पूरक, मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ पे अपने पर्यावरण को बचाना है।
0: जैसे जैसे बप्पा के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वैसे तो देश के कोने कोने में बप्पा की मूर्तियाँ बनती है, लेकिन राजस्थान के अलवर में काली मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों की बात ही कुछ अलग है। अपनी खास इको फ्रेंडली बनावट के कारण अलवर की इन गणपति मूर्तियों की मांग सिर्फ भारत के शहरों में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक है।
3: गणपति महोत्सव में अलवर की गणपति जी की मूर्तियां विराजमान होती हैं। अलवर की मिट्टी से तैयार होने वाली मूर्तियां देश ही नहीं पूरे विदेश में भी अपनी खास पहचान रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार मूर्ति बनाने का काम जोरों से चल रहा है। रात दिन कारीगर मूर्ति बना रहे हैं और उसके बाद इन मूर्तियों को अलग अलग जगह डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाता है।
0: प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए खतरा होती हैं, लेकिन अलवर की चिकनी काली मिट्टी पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे कूट कर, छान कर और कई दिनों तक भिगो कर सांचों में ढाला जाता है। पानी में जाते ही यह मूर्ति पूरी तरह घुल जाती है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अलवर और आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा कारीगर साल भर इस काम में जुटे रहते हैं। ये मूर्तियाँ खास ऑर्डर्स पर तैयार होती हैं और यूरोप, स्पेन और नेपाल समेत 15 से ज्यादा देशों में अपनी छटा बिखेरती हैं।
4: जी अपने पास देखो नेचुरली मिट्टी होती है जो खेतों और बांधों से जरिए आती है, उस नेचुरली मिट्टी के द्वारा भी हम गणपति की मूर्तियाँ रेडी करते हैं और अपने पास 4 इंची से लेकर 5-6 फीट तक की मूर्ति अवेलेबल हो जाती है। मिट्टी को सबसे पहले तो इसको छानना पड़ता है, छानने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए फिर इसके एक मोल्ड होता है जो उसको मोल्ड में ढालने के बाद इसको निकालने के बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के बाद इसके हाथ और सूंड वगैरह वो अलग से लगाए जाते हैं, तो इसको मतलब बनाने के प्रोसेस तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के समथिंग आता है।
0: बप्पा के आगमन की तैयारी कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जोर शोर से हो रही है, जहां इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। कर्नाटक के तेनकाशी में कलाकारों का हुनर और कारीगरी लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ भगवान गजानन की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तियों पर की गई कलाकारी देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर यहाँ गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी इस बार बप्पा का स्वागत भव्य भी होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी। गणपति उत्सव मुंबई के जिक्र के बिना अधूरा है। देश भर में भले ही गणपति उत्सव की रौनक है, लेकिन मुंबई में इस मौके पर भक्तों का जोश और जज्बा अलग ही होता है। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा की अलग अलग स्वरूपों वाली प्रतिमाओं की डिमांड है, लेकिन भगवान शिव और कृष्ण स्वरूप वाली मूर्तियां सबसे ज्यादा ट्रेंड में है।
5: ये टाइम पे बैलेंसिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बैलेंसिंग मूर्तियां बहुत ज्यादा देखने मिली है।
6: अच्छा, और जैसे अलग अलग रूप होते हैं, अवतार होते हैं, नरसिम्हा रूप हो गया या फिर किसान का रूप हो गया, क्या
5: शिवजी अवतार और कृष्ण अवतार बहुत ज्यादा ये टाइम पे फेमस है।
6: अच्छा, इस वजह से भी क्या, क्योंकि श्रावण भी चल रहा है?
5: ऐसा कुछ नहीं है,
6: क्योंकि श्रावण में लोग थोड़ा सा क्या है कि श्रावण में भी शिवजी को चार
5: है, तो हमेशा मतलब रहते हैं फेवरेट, बट शिवजी और कृष्ण की मूर्तियां ज्यादा चल रही है।
0: एक तरफ कलाकार अपनी कला से बप्पा के सुंदर स्वरूप को आकार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इको फ्रेंडली गणपति की बढ़ती मांग एक नई सोच की तस्वीर पेश कर रही है। अब इंतजार 14 सितंबर का है, जब बप्पा का दरबार सजेगा और भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर होगा। अकोला से धनंजय साबले, अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात सिर्फ एक दिन के लिए आयोजित होने वाली छोटी अमरनाथ यात्रा की। पूरे दिन धर्म भक्ति और आध्यात्म के इस मार्ग पर बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष गूंजता रहा। बांदीपुरा के कालूसा में मौजूद शारदा माता मंदिर से पवित्र गुफा महादानेश्वर मंदिर तक यात्रा निकाली गई। करीब 15 किलोमीटर तक लंबे आस्था के इस मार्ग पर कुल 108 श्रद्धालु चले, जिन्होंने कई घंटों तक चढ़ाई के बाद जंगल के बीचों बीच विराजमान इस अद्भुत शिवधाम की प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग यानी कि पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि महादानेश्वर मंदिर में प्रकट होने वाले पवित्र शिवलिंग के दर्शन पर मुख्य अमरनाथ यात्रा के बराबर का पुण्य मिलता है।

0: धर्म, भक्ति और अध्यात्म के इस मार्ग पर बम बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष हर तरफ गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के दर्दपुरा गांव के घने जंगलों के बीच एक पवित्र गुफा तक पहुंचना इन श्रद्धालुओं का लक्ष्य है। ये पवित्र गुफा महादानेश्वर मंदिर है, जिसे लोग छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा की तरह इस गुफा के अंदर बनने वाला प्राकृतिक हिमलिंग यानी पवित्र शिवलिंग छत से टपकने वाली पानी की बूंदों के जमने से बनता है। अनन्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से चलने वाले हर शिव भक्त का उद्देश्य इसी पवित्र शिवलिंग का दिव्य दर्शन करना है। पवित्र शिवलिंग को भगवान शिव के निराकार और साक्षात स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों को असीम शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि छोटे अमरनाथ की गुफा तक प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के भाव से श्रद्धालुओं ने अपने कदम बढ़ाए। पंद्रह किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करके शिव भक्त इस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। हर साल बर्फ की वजह से प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में आने वाले शिवलिंग के दर्शन से श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इस पवित्र यात्रा के लिए बांदीपुरा के कालूसा में मौजूद शारदा माता मंदिर में पहले पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को बसों के जरिए से अरिनडाडपोरा के लिए रवाना किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदीपुरा के ADC जफर हुसैन और SSP बांदीपुरा की मौजूदगी में यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई।
1: बम बम बोले, बम बम बोले।
0: इस साल की छोटी अमरनाथ यात्रा में कुल 108 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इनमें हर आयु वर्ग के श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी शामिल रहे। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए करीब 15 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा, सृजन और विसर्जन का आधार है। यही वजह है कि महादानेश्वर मंदिर में प्रकट होने वाले पवित्र शिवलिंग के दर्शन को भी पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है।
2: बिल्कुल खोप नहीं है, एकदम खोप की कोई बात नहीं है। माहौल बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें पहले होता था, और उम्मीद है कि जो इस साल यात्री है उससे ज्यादा यात्री हमें अगले साल को देखने को मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत फर्क है। मेरी यात्रियों से ये अनुरोध है कि आप आ जाए और इस यात्रा में शामिल हो जाए अगले साल। डरने की कोई बात नहीं है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अरेंजमेंट जो हमारे पास है और ज्यादा तैयार कर लें कि आने वाले टाइम में आप अच्छा यात्रा कर सकते हैं।
0: ये यात्रा बांदीपुरा के कालूसा से शुरू होकर अरिनडाडपुरा और शमथान के रास्ते होते हुए घने जंगलों में मौजूद छोटा अमरनाथ गुफा तक जाती है। अमरनाथ जी की यात्रा ज्यादा ऊंचाई, ठंड और कठिन चढ़ाई की वजह से काफी मुश्किल मानी जाती है। ऐसे में जो भक्त कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लंबी दूरी की वजह से मुख्य अमरनाथ यात्रा पर जाने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये यात्रा एक सुगम और पुण्यदायी विकल्प के तौर पर मानी जाती है।
3: फिलहाल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, स्पेशली इतना बढ़िया क्राउड और पूरा बांदीपुरा का एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, तो इट्स सेफ।
0: यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा के समापन के दिन आयोजित होने वाली छोटी अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में भी वही उत्सुकता होती है। प्रशासन की तरफ से ट्रैकिंग रूट पर खाने पीने की व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं की खास व्यवस्था होती है।
4: हर साल की तरह इस टाइम भी आज का दिन दो था, दैट वाज अबाउट छोटा अमरनाथ यात्रा जो यहाँ से जाती है पवन मंदिर तक, ये हर साल तक होती है और सेम तरीके पे आज भी हुई थी। तो जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर इसमें इंतजाम किए थे, जिसमें चाहे सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजाम थे, जिसके SPs भी हैं यहीं पे मौजूद हैं, और या बाकी इंतजाम करने पड़ते हैं, चाहे वो ट्रैक बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो पानी का इंतजाम है, चाहे हॉस्पिटल की या SDRF की या बाकी सारे जितने भी इंतजाम करने की ज़रूरत थी, वो हमने कोशिश की है लास्ट टाइम जो हमने किए थे उससे बेहतर आज करने की कोशिश की थी।
0: दरअसल रक्षाबंधन के दिन ही छड़ी मुबारक यानी भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुख्य अमरनाथ पवित्र गुफा तक पहुंचती है, जहां साल की आखिरी पूजा होती है। छड़ी मुबारक को अमरनाथ यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक माना जाता है।
5: अमरनाथ गुफा की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही अब की बार जो है इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई है। अब की बार अमरनाथ यात्रा में 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज अपने अंत तक पहुंच गई। छड़ी मुबारक जो कि एक रीति है रक्षाबंधन के दिन जो है वो अमरनाथ गुफा ली जाती है और वहां पर इस छड़ी मुबारक की पूजा होती है और उसी के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो कि पुंछ में होती है वो भी संपन्न हो गई है और छोटा अमरनाथ यात्रा जो कि मात्र एक दिन की यात्रा है जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके गुरेज में पिछले कई सालों से की जाती है वो भी आज ही संपन्न हो गई। अब की बार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए राहत की सबसे बड़ी बात ये थी कि अब की बार यात्रा न सिर्फ सफल रही बल्कि सुरक्षित भी रही। बिना किसी घटना के अब की बार इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो गई है जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी राहत की सांस ले ली है।
0: मुख्य अमरनाथ यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित होने वाली छोटी अमरनाथ यात्रा को शांति और सद्भाव बढ़ाने का प्रतीक भी माना जाता है। श्रीनगर से अश्रवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन नागर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया और इस आशियाने में परिंदे रह सकते हैं जो उन्हें धूप हवा और ठंड से बचाता है। तालाब किनारे बना यह अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। सलोनी की ये पहल शादी की खुशियों के साथ प्रकृति प्रेम की खूबसूरत मिसाल भी बन गई।
7: तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
8: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
7: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
9: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सके जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
7: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
9: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
7: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
10: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं है।
7: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
11: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल
11: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद के महीने का आरंभ हो रहा है तो आज हम बात करेंगे भाद्रपद के महीने की महिमा के बारे में। इस महीने की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, इस महीने के व्रत और त्योहार क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह के 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं भाद्रपद के महीने की। भाद्रपद के महीने की महिमा क्या है? देखिए, भाद्रपद दो शब्दों से मिलकर बना है। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। भाद्रपद का महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने के लिए, मन में पवित्र भावनाएं भरने के लिए, पवित्र भावनाएं लाने के लिए ये महीना काफी असरदार है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व, गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी भाद्रपद के महीने में आती है। यानी भाद्रपद में मुख्यतः भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से 26 सितंबर तक रहेगा, जिसमें हमें भाद्रपद महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। भाद्रपद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, अपने रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार में शांति बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और भाद्रपद महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए, कच्ची सब्जियां और सलाद ना खाएं, उबाल कर या पका करके ही खाएं, दही का प्रयोग करना पूरी तरीके से वर्जित है, दही का प्रयोग भाद्रपद महीने में नहीं किया जाता। भाद्रपद के महीने में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना काफी होती है, इसका ध्यान उन्हें बनाए रखना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है, इसलिए इस महीने में शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल को चाय में या दूध में उबाल कर पीना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे। भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें मत खाइए और दही से परहेज करिए, क्योंकि भाद्रपद में दही खाने से पेट की दिक्कतें और त्वचा की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। भाद्रपद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश की विशेष पूजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष में की जाती है। इसी महीने में भगवान कृष्ण का, श्री बलराम का और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी आता है। कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। मुख्यतः भाद्रपद के दो हिस्से हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अगर आप भाद्रपद में श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा करें तो आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि,

कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, लेकिन काम का प्रेशर रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो भाद्रपद के महीने में गोपाल सहस्त्र नाम, इसका नियमित रूप से पाठ करिए, आपको संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं।

0: आपको समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आस्था की तस्वीरें हैं, परंपरा और अपनी जड़ों से जुड़े होने का संदेश दे रही हैं। तिजवारा अमरनाथ मंदिर, जिसे छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है, कश्मीरी पंडितों ने यहां पर पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। लंबे समय बाद अपने आराध्य के दरबार में पहुंचे इन भक्तों में खुशी की लहर थी, भावनाओं ने माहौल को बेहद भावुक कर दिया। तस्वीरों में देखिए मंदिर परिसर में कैसे पूजा अर्चना करते कश्मीरी पंडित, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, कोई शिव भक्ति में पूरी तरह से लीन है, शिव भक्ति के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। तिजवारा अमरनाथ मंदिर कश्मीरी पंडितों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा एक अहम स्थल है। अनंतनाग की धरती पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और जम्मू कश्मीर में शांति खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं के चेहरों पर आस्था के साथ साथ अपनी पुरानी धार्मिक परंपराओं से दोबारा जुड़ने की खुशी भी साफ नजर आई। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा बांधती हैं, लेकिन शिरडी में इस बार एक ऐसी राखी चर्चा का केंद्र है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। साईं बाबा के लिए बनाई गई 8 फीट की विशाल नक्काशीदार राखी, इस अनोखी राखी पर साईं बाबा की प्रतिमा विराजमान है। वैसे आमतौर पर राखी का आकार 1 से 4 इंच तक का होता है, लेकिन शिरडी साईं बाबा के लिए बनी ये अनूठी राखी उससे कहीं बड़ी है। 8 फीट चौड़ी, 40 फीट लंबी साईं बाबा की प्रतिमा पर यह रखी गई नकाशीदार डिजाइन और श्रद्धा का संदेश दे रही है। साईं मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का को अपनी ओर भी आकर्षित कर रही है। साथ ही साथ बताते चलें कि बिलासपुर के रिटायर्ड कला शिक्षक दिलीप पाथरेकर ने साईं बाबा को यह अनोखी राखी समर्पित की है। इसे तैयार करने में करीब 3 महीने का वक्त लगा और इसे बनाने में लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आया है। देश भर में इसकी खूब चर्चा हो रही है। मुंबई की सड़कों पर दौड़ते ऑटो रिक्शा और टैक्सी और इनकी कमान संभालने वाले ड्राइवर्स के चेहरों पर खुशी की लहर है। वजह है महाराष्ट्र सरकार का वो फैसला जिसमें ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दी गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस के इस ऐलान का रिक्शा टैक्सी चालक स्वागत कर रहे हैं और इसे खुशी को लेकर अपनी इस खुशी को अपने अलग अंदाज में बयां भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुंबई भेजी गई 1 लाख राखियां इस बात का प्रमाण है। ये राखियां किसी एक परिवार की नहीं बल्कि उन परिवारों की भावनाओं का संदेश है जिनके सदस्य मुंबई में रिक्शा और टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले इन परिवारों ने राखियां भेजकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस फैसले पर खुशी जताई है। रक्षाबंधन के मौके पर राखियां मुंबई के उन रिक्शा टैक्सी चालकों तक पहुंचेंगी जो रोजाना मुंबई की लाइफ लाइन का हिस्सा बनकर लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थलसेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की बच्चों के साथ रक्षाबंधन के यादगार लम्हों की भी है।
6: पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। असल में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बच्चे जिस तरह से उनसे घुल मिलकर मासूम बातें करते, उन पर प्यार लुटाते नजर आए, वो लोगों का दिल छू रहा है। पीएम को राखी बांधने पहुंचे बच्चों में से किसी ने उनसे हाथ मिलाया तो किसी ने हाई फाइव किया, पर जब पीएम मोदी एक छोटी बच्ची के पास पहुंचे तो उन्होंने पीएम की उंगलियों के साथ उंगलियां जोड़कर हार्ट का साइन बनाया। ये देखकर पीएम मोदी भी मुस्कुरा उठे। बच्चे अपनी राखियों के जरिए भी अलग अलग संदेश लेकर आए थे। ऐसे में पीएम ने न सिर्फ उन्हें धैर्य और प्यार से सुना बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी दिया। पीएम मोदी ने इन यादगार लम्हों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। सही है, वक्त को किसने देखा है, कब कौन सा मोड़ ले ले, ये वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, पल भर की देर थी, अगर कदम पीछे होते तो इन्हीं मलबों में दब गए होते, बस 2 कदम की दूरी ने जिंदगी का पासा पलट दिया। ये तो सीसीटीवी फुटेज है, सोचिए जिसने ये मंजर देखा होगा क्या महसूस किया होगा। हादसा लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया में होलीपुरा मोहल्ले की बताई जा रही है। इंसानियत पद और पैसे से कहीं बड़ा है, ये जहां होती है लोगों को उम्मीद देती है। उम्मीद और उजाले की एक ऐसी ही तस्वीर यूपी के कानपुर से आई है, जहां डीएम को राखी बांधने पहुंची गरीब छात्रा नया एहसास नई उम्मीद लेकर लौटी। कहानी कानपुर के हंसपुरम की रहने वाली ईशु की है। रक्षाबंधन पर जब वो डीएम जितेंद्र सिंह को राखी बांधने पहुंची तो उनसे बातचीत में डीएम को पता चला कि ईशु की माँ घरों में बर्तन मांजती है, पिता है नहीं, 11वीं में पढ़ती है, स्कूल फीस करीब 30,000 रुपए बकाया है और स्कूल दूर है, पर पैसों के अभाव में पैदल सफर तय करती हैं। ये सब बताते हुए बच्ची की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर डीएम का दिल भर आया। उन्होंने न सिर्फ स्कूल की फीस भरी बल्कि बच्ची को साइकिल भी दी और हमेशा मदद का भरोसा भी। ऐसी तस्वीरों का सुर्खियों में आना लाजमी भी है। रक्षाबंधन त्योहार रिश्तों का है, भरोसे विश्वास और प्रेम का है, तो भला भगवान से बेहतर ये बंधन कौन निभा सकता है। इसी भरोसे के साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक भक्त ने शिरडी के साईं बाबा को अनूठी राखी अर्पित की है। इस राखी की खासियत है इसका विशाल आकार और इसकी खूबसूरती। 8 फीट व्यास और 40 फीट लंबाई वाली इस नक्काशीदार राखी में साईं बाबा को समर्पित कुछ पंक्तियां भी हैं। साईं बाबा की ये भक्त आर्ट के टीचर रह चुके हैं, इनका नाम दिलीप पाथरीकर है। इनके मुताबिक इस राखी को बनाने में 3 महीने का समय और 2 लाख रुपए लगे हैं। ये सुंदर तस्वीरें राजस्थान के सीकर में ठाकुर जी के मंदिरों की है, जहां झूलोत्सव की छठा बिखरी हुई है। श्री जानकी वल्लभ मंदिर में भगवान की प्रतिमा का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया, मंदिर की भी शानदार सजावट की गई, भगवान को चांदी के झूले पर झुलाया गया। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं की उपस्थिति और ठाकुर जी के जयकारों से गुंजायमान रहा।
3: और अब बात करते हैं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में भीषण बाढ़ से आई तबाही के बाद राहत और रेस्क्यू का काम तेज कर दिया गया है। इस तबाही के कारण 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। बचाव कर्मी कीचड़ और मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे करीब 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनमें कई भारतीय भी शामिल हैं, जबकि रसुआ के अलग अलग इलाकों से सेना अब तक 883 लोगों को सुरक्षित पहुंचा चुकी है। हालांकि अभी भी सैकड़ों लोग लापता है। वहीं भारत के एयरफोर्स की 2 फ्लाइट्स में बाढ़ से जूझ रहे नेपाल को करीब 48 टन इमरजेंसी सप्लाई भेजी थी और कनेक्टिविटी ठीक करने और राहत कामों में मदद के लिए बेली ब्रिज भी बना रहा है।

0: ये कौन है, आप किसको खोज रहे हैं, ये कौन है?
1: ये हमारा छोटा चाचा जो मिसिंग फ्रॉम गटेकुल्लो रसुआ। हम तीन दिन से इधर आकर ढूंढ रहा हूँ अभी तक, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं।
0: कौन, आप किसको खोज रहे हैं यहाँ पर? लास्ट
2: में मेरा भाई का नाम खोज रहा है, लेकिन इधर नहीं है।
0: कहाँ पर काम करते
2: हैं? इधर पेत्रावती में काम करता है, जॉब उधर करता है मेरा भाई।
0: कितने लोगों को देख करके लगा कि वापस उम्मीद बनी कि भाई भी आ जाएगा?
2: आ जाएगा आज लग रहा है, लेकिन संपर्क बिन है ना। इधर है कैसे हालत में है, क्या क्या कर रहा है मालूम नहीं।
3: दीवार पर चस्पा इस नोटिस में बहुत सारे नाम दर्ज हैं, जिसमें लोग अपनों की तलाश में उंगलियों के सहारे एक एक नामों को उम्मीदों से देख रहे हैं, तो कोई मोबाइल के जरिए उसमें देखने की कोशिश कर रहा है।
4: तबाही अपने साथ क्या लेकर के आती है, अगर आपको समझना हो तो आप इस एयरबेस पर आइए। ये उन लोगों के नाम है जो लापता है, इनके नाम लगा दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो अपनों को खोजने के लिए आए हैं, और जब पूरी मेहनत करते हैं और सैकड़ों नाम में अपनों का नाम नहीं मिलता, तो उसके बाद आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की और इस उम्मीद के साथ कि उनके अपनों का नाम शायद लिस्ट में हो। लेकिन ये वो बहन है जो अपने परिवार के लोगों को खोज रही थी, सारी लिस्ट चेक किया, और उसके बाद उस दलदले के बाद जो परिवार पर हुआ, अब वो दलदला आंखों में दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सी आंखों में उम्मीद है, तो बहुत सी आंखों में आंसू है, क्योंकि वो अपनों को खोजने के लिए इस लिस्ट में आते हैं कि शायद वो अपने अपनों को खोज पाएंगे, जो लोग लापता हैं, जिनका नाम उन्होंने लिखवाया है, जिनकी जानकारी यहाँ बता दी गई है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा दिल पर क्या बीतेगी जब बहुतों को ये ना पता चले कि अपने आपका आप किसको खोज रहे हैं।
5: मैं अपना सालों को खोज रहा हूँ,
4: पता चला उनके बारे में?
5: कुछ भी पता नहीं चल रहा है अभी तक।
4: वो कहाँ पर थे?
5: वो टिमोरे में थे, टिमोरे रसागढ़ी, वो नाका में थे। ड्राइवर था, एक सीनू कंपनी का गाड़ी चलाता था, वो अभी तीन दिन से लापता है।
4: नाम इसमें नाम है उनका?
5: नाम देख रहा हूँ, एक ही नहीं, कल सुबह रे मैंने उसका नाम टिपाया था, अभी अभी रेस्क्यू टीम में, एक ही नहीं
4: वो लोग है जिनको बचाया गया।
5: हाँ, ये बचाया गया है, उसका मैं नाम देख रहा हूँ।
4: आप सोचिए कि जो लोग उम्मीद से आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यहाँ वो नाम है मेरे पीछे जिन्हें बचा लिया गया है, और अगर इनमें वो अपनों को पाते हैं तो खुशी होगी, आंखों में फिर खुशी के आंसू होंगे। लेकिन जो अपनों को नहीं खोज पाएंगे, सोचिए उनके दिल पर क्या बीतेगा।
3: नेपाल में आए फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में हर गुजरता लम्हा एक एक जिंदगी के लिए कीमती होता जा रहा है। कहीं मलबे के पहाड़ हैं, कहीं तबाह हो चुके रास्ते हैं, तो कहीं तबाही के बीच जिंदगी की तलाश चल रही है। रेस्क्यू टीम और सेना के जवान बचाव कार्य में जी जान से जुटे हैं। नेपाल के सबसे प्रभावित इलाकों में सेना और पुलिस के जवान मलबे में उम्मीद तलाश रहे हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 12 हेलीकॉप्टर मैदान में उतारे गए हैं। इनमें 4 सैन्य और 8 निजी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जमीन पर जेसीबी लगातार मलबा हटाने में जुटी है। आपदा के बाद राहत और बचाव में जुटे सेना के जवानों का जज्बा दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है।
4: राहत बचाव कार्य हर दिन की तरह सुबह एक बार फिर शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक कुल मिलाकर के जो राहत बचाव, दिन में 80 से 90 सॉर्टीज हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरते हैं। और ये देखिए, अब यहाँ से जो बच्चे हैं कुछ उन इलाकों पे जिनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ से निकाल के उन्हें सुरक्षित इलाकों पर ले जाया गया है। और इसी के साथ साथ जो जरूरत का सामान है, चाहे वो रसद हो, खाने पीने की जरूरत हो, दवाइयाँ हो, उनको भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य अभियान चलाया जा रहा है, और खासकर ऊपर का इलाका है रुसवा से लेकर के उसके नीचे जहाँ से लोगों को इवैक्यूएशन कराया गया था। हम यहाँ देख पा रहे हैं कई सारे स्कूल के बच्चे हैं, वो भी बचाए गए थे, और अब उनको क्योंकि इस तरह के हेलीकॉप्टर 7 से 8 एक बार ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हैं, तो उनको बचा करके अब सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हर 30 सेकंड में एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान है, और लगातार आप समझिए कि सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही राहत बचाव कार्य पूरा किया जा सकता है। बहुत बड़ा मिशन इस समय नेपाल में चल रहा है, उन आपका 10 इलाकों में लोगों को इवैक्यूएशन करने के लिए।
3: नेपाल में सबसे मुश्किल मिशन त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में चल रहा है। यहाँ से करीब 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को निकाला जा चुका है। जबकि 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की बात सामने आई है। लेकिन इन लोगों तक पहुंचने से पहले रेस्क्यू टीमों को तबाही की उस दीवार को तोड़ना पड़ रहा है जो फ्लैश फ्लड अपने साथ लेकर आई है। मुश्किल हालात के बावजूद त्रिशूली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के पास नेपाल सेना का ऑपरेशन जारी है। यहां हेलीकॉप्टर से जवानों को नीचे उतारा गया है। कीचड़ और मलबे के बीच जवान सुरंग तक पहुंचे हैं और एक एक जिंदगी को बाहर निकालने की जंग जारी है। जहां जमीन पर चलना मुश्किल है, वहीं जवान हर इंच रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहे हैं।
6: इस समय नुआकोट के सबसे आखिरी बाजार के उस बेस कैंप पे हूँ जहाँ पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, एयर ऑपरेशन चल रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेपाल पुलिस के वो लोग हैं और प्रहरी हैं जो दरअसल नागरिक सुविधा केंद्र बनाई है, और वो इसलिए जरूरी है कि जो लोग लापता हैं उनके बारे में यहाँ जानकारियां दी जा रही हैं, वो इन जानकारियों को दर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद जिन लोगों का को रिकवर कर लिया जा रहा है, जिनको वापस इवैक्यूएट कर लिया जा रहा है, उनको यहाँ लाया जा रहा है और बाकायदा उनके नाम बताए जा रहे हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग हैं, जो लोग लापता हैं, उनको खोजा जा सके। अभी भी देखेंगे आप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को चल रहा है तो दूर दराज के इलाकों से उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर उनके पास ये नाम हो, जरूरत के लोग हो, कौन कहाँ है, तो सर यहाँ पर किस तरह की जानकारी दर्ज की जा रही है?
7: ये तो हरा को मानसे को तो संपर्क बीन भाको मानसे
6: आपको लिस्ट दिखाता हूँ। जो लोग मिसिंग हैं, उनको इस तरह की जानकारियां इन्होंने दर्ज की हुई हैं, और कोशिश ये हो रही है कि जब अपनों को खोजने के लिए लोग आते हैं तो उनको बताया जा सके कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है तो उनको कहाँ ले जाया गया है।
3: जिंदगी की तलाश के लिए नेपाली सेना ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। नेपाल में कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां लोग अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं। किसी की नजर रेस्क्यू करके उतरते हेलीकॉप्टर पर है तो कोई रेस्क्यू टीम से उम्मीद लगाए बैठा है। इस सेंटर में हर पल सैकड़ों लोग अपनों को तलाशते हुए पहुंच रहे हैं। नेपाल के नुआकोट में 26 अगस्त के पीड़ित परिवार अपनों को तलाशने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहां प्रशासन ने कई नामों की लिस्ट लगाई है। कैंप पर पहुंच रहे लोग अपनों के नाम खोज रहे हैं। इस फ्लैश फ्लड में जमकर तबाही हुई, इसके चपेट में आने से सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। तो वहीं कुछ खुशनसीब थे जो बच गए, उन्हीं में से श्रेयस भी हैं। ये बच तो गए लेकिन अपने परिवार से बिछड़ गए। गनीमत है कि इनका पूरा परिवार महफूज है।
6: आप थे उस दिन जब ये जलजला आया था, सब कुछ देखा था आपने?
8: मैं कॉलेज पे था, अचानक से सर ने कहा कि सब लोग निकलो, उधर रिवर बहुत तेज बाढ़ में आ रहा है। हम एकदम हलबला में सब इधर उधर हो गए। हम इधर रिवर के इस साइड पे कॉलेज थे अपना, उधर पढ़ रहे थे, अचानक से आ गया, हम सब बिछड़ गए। और पता चला कि
6: डर लगा था उस समय,
8: बहुत डर लगा था। हम उधर हाइट पे चले गए रिवर आने के बाद सुरक्षित जगह पे, अनि एक दो घंटा पर अपने फैमिली को कॉल किया, कॉल नहीं रख रहा था, उधर बहुत टेंशन का माहौल चल रहा था।
6: ऐसे कई सारे लोग थे जो उस समय खुश नसीब थे जो बचने में कामयाब हुए, लेकिन सैकड़ों ऐसे भी थे जो बच नहीं पाए।
3: उधर नेपाल सरकार ने राहत और बचाव अभियान को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के 13,295 सुरक्षा कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। बुधवार को ही 69 हवाई उड़ानों के जरिए 573 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी लापता लोगों की खोजबीन और रेस्क्यू जारी है। नेपाल में आए फ्लैश फ्लड में 1600 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इनमें 290 भारतीय, 517 विदेशी नागरिक, 45 नेपाली सेना के जवान और 41 नेपाल पुलिसकर्मी शामिल हैं। हालांकि नेपाल प्रतिनिधि सभा के नेता विपक्ष ने भी मौसम को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अभी मौसम अच्छा नहीं है, इसके बावजूद नेपाल सेना के जवान और हेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं।
9: वो भी है क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक बनोट है ना, ये सब ले भी ऊपर जाने के लिए भी ये मौसम भी अच्छा नहीं है, फिर भी हमारा सब ये हेलीकॉप्टर, हमारा सेना और सब हम सब लगे रहे हैं यहाँ पर है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब ये सब आपका शुभेच्छा हम चाहते हैं और आपका सब लोगों के सब सहयोग भी आप चाहते हैं। आप जितना भी आप लोग कर सकते हैं अपने अपने प्लेस से ठम से वो सब कीजिए, हम लगे रहे हैं। हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय हम सब कर रहे हैं।
3: कितने हेलीकॉप्टर?
9: दो सेना का हेलीकॉप्टर है, 9 वाला और निजी क्षेत्र प्राइवेट ये सब चेन्नई हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। हम लग रहे हैं और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। हम
3: इस मुश्किल घड़ी में भारत भी नेपाल के साथ खड़ा है। भारत ने नेपाल के लिए और 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाएं भेजी हैं। राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J विमान भी नेपाल भेजा गया है। और राहत की एक बड़ी खबर ये भी है कि नेपाल में फंसे तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
10: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज 26 तारीख को 8:30 बजे सवेरे यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था। काठमांडू कुछ देर बाद पहुंचा था जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, उसके अलावा हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 जहाज वो आज सवेरे हमारे यहां से निकला और शायद पहुंचने वाला हो या पहुंच गया होगा। और इसमें 37.5 टन की सप्लाई जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम जिसमें कि टेंट है, ब्लैंकेट्स हैं, कंबल, सोलर लैंप्स, पंप, किचन सेट्स, जेन सेट्स वगैरह हैं और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री। कुल मिला के दोनों जहाजों में 37.5 टन के इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई हमारे यहां से गया है और भी इसके आगे जो हमसे हो सकता है असिस्टेंस जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
3: वहीं नेपाल में आई बाढ़ से बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। गंगा और गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर है। कोसी और बागमती नदियां भी उफान पर हैं। फिलहाल नेपाल सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। रेस्क्यू टीमें जिंदगी की तलाश में मलबे का एक एक ढेर छान रही है। सुरंग का एक एक अंधेरा कोना खंगाला जा रहा है क्योंकि रेस्क्यू टीमों को पता है कि मलबे के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं किसी की जिंदगी भी हो सकती है। और इसी उम्मीद के साथ नेपाल में मिशन जिंदगी को और तेज कर दिया गया है। नेपाल की नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: भारत की ओर से नेपाल को भेजी जा रही मदद की तीसरी खेप, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्कूली छात्रों और बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर अलग अलग स्कूलों और संगठनों के बच्चों ने राष्ट्रपति को राखी बांधी। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है बल्कि ये प्रेम, देखभाल और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने बच्चों से पेड़ पौधों की देखभाल करने और प्रकृति के प्रति प्रेम रखने की सीख भी दी। भीषण बाढ़ से तबाह नेपाल के लिए भारत सरकार मदद की तीसरी खेप भेज रही है। इसमें लगभग 12 से 13 टन राहत सामग्री है। भारत की ओर से इस तीसरी उड़ान में पोर्टेबल जनरेटर सेट, डिग्निटी किट, खाने पीने का सामान, पानी साफ करने वाली टैबलेट और आवश्यक दवाइयां शामिल हैं। नेपाल के अनुरोध पर भारत एक मेडिकल टीम और टनल रेस्क्यू विशेषज्ञों की टीम भी भेजने की तैयारी कर रहा है। रक्षाबंधन का उत्साह भारत चीन की सीमा पर नाथुला में भी देखने को मिला। सिक्किम के नाथुला दर्रे में 6 अलग अलग राज्यों से आई छात्राओं ने सैनिकों को राखी बांधी और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान, आभार और एकजुटता का संदेश दिया। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान के अजमेर में एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें कतार में खड़ी नजर आईं। सलाखों से बाहर आई कलाइयों पर राखी बांधती बहनों की आंखें अपनी बेबसी पर बार बार नम हो रही थीं, जिन्हें वो अपने आंचल से बार बार पूछती दिखीं।
11: और अब बात रक्षाबंधन की। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में इस मौके पर रौनक के रंग बिखरे दिखे, जहां यूपी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस के लिए 1,00,000 राखियों की सौगात ऑटो रिक्शा चालकों ने परिवारों ने भेजी है। वहीं इंदौर में खजराना गणेश जी को अनोखी राखी बांधी गई और कहीं पेड़ों को राखी बांधी गई तो कहीं भगवान को राखी अर्पित कर इस पर्व को आस्था से जोड़ा गया।

0: आज बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रेशमी धागा बांधकर स्नेह बंधन को और ज्यादा मजबूत बना रही हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भाई भी बहनों को प्यार, सम्मान और रक्षा का वचन दे रहे हैं। चारों तरफ इस पावन पर्व पर रौनक के रंग बिखरे हैं, लेकिन मुंबई की सड़कों पर दिन रात मेहनत करने वाले ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए इस बार रक्षाबंधन एक खास राहत और खुशी लेकर आया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑटो चालकों को राहत देते हुए मराठी सीखने के लिए एक साल का समय और दिया है। इसी फैसले से गदगद चालकों के परिवारों ने उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री फडणवीस के लिए एक अनोखा उपहार भेजा। उत्तर प्रदेश से चालकों की बहनों और परिवारों ने सीएम फडणवीस के लिए 1,00,000 राखियां भेजी हैं। परिवारों ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद के रूप में ये स्नेह भरा पैगाम भेजा है।
1: सभी लोगों ने 1,00,000 उत्तर प्रदेश से राखी आई है। उन रिक्शा वालों की परिवार के लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए 1,00,000 राखी भेजी है।
0: जहाँ उत्तर प्रदेश से मुंबई तक प्यार और आभार की ये डोर पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर देश के मंदिरों में भी अद्भुत रौनक देखने को मिल रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की तस्वीरें देखिए, जहां रक्षाबंधन पर भगवान गणेश को अनोखी और विशाल राखी अर्पित की गयी। 40 इंच की इस विश्व राखी में भारत की संस्कृति, शक्ति, समृद्धि और विकास की झलक देखने को मिली।
2: ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। यह राखी हम पूरे राष्ट्र की ओर से प्रथम पूजनी भगवान खजराना गणेश जी को चरणों में अर्पण करते हैं। इस बार यह वंदे भारत जो 150 वर्ष पूरे हुए उसके ऊपर हमने आधारित यह राखी बनाई थी, सनातन राखी है।
0: इस विशेष राखी में शक्ति की प्रतीक माँ काली, धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के साथ महाकाल और भगवान जगन्नाथ की आकृतियाँ भी बनाई गई हैं।
2: इसमें भोजशाला की धार की सरस्वती देवी, महालक्ष्मी जी, महाकाली कलकत्ते वाली, महाकाल राजा और जगन्नाथ प्रभु उनमें बनाए।
0: महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान उन्हें 2 फीट की यही खूबसूरत राखी बांधी गई, जिसे मंदिर के पुजारी ओम शर्मा के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया।
3: इस पे बाबा का स्वरूप हुआ है पूरा, उसमें नेत्र है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, मिरर का वर्क है, मोर पंख है, डमरू है, मोती है, सभी मिला के और राखी पूरी बनाई है। इसमें सभी प्रकार के जितने भी गण हैं बाबा के उसको सबको मिला के और इस राखी को पूरा करा है।
0: रक्षाबंधन पर श्रृंगेरी ऋषि आश्रम से रामलला के लिए राखी भेजने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से ये राखी भेजी जाती है। जरी और मोतियों से सजी ये विशेष राखी पूरे विधि विधान के साथ भक्तिमय उल्लास के बीच अयोध्या पहुंची। इसी विशेष राखी को ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार आरती के बाद रामलला को अर्पित की जाती है। भाई बहन के इस अटूट प्रेम की छटा जंगलों तक दिखाई पड़ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुडू और उनकी टीम जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आए।
4: पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधे।
0: जमुना टुडू टाकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई हैं। इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टुडू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उसे बचाने की शपथ लेती है। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्थानीय महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।
5: पेड़ों को राखी बांध के हम लोग भी ये वादा करते हैं कि हम लोग इसका ये जंगल का रक्षा हमेशा करेंगे और आने वाला पीढ़ी को भी हम यही बोलना चाहते हैं कि वो लोग भी जैसे हम लोग अभी पेड़ों की रक्षा करते हैं वो लोग भी वैसे ही रक्षा करें।
0: रक्षाबंधन के मौके पर कई जगह पर ऐसी राखियां भी तैयार की गईं जो बेहद आकर्षक दिखती हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचुड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म मिनिएचर चित्र उखेरे। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया है, जिस पर मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का सूक्ष्म चित्र उकेरा गया है। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी का निर्माण किया। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व ने भारतीय सेना और देशवासियों के बीच अटूट विश्वास की डोर को और मजबूत किया। दिल्ली के आर्मी हाउस में थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को दिल्ली, फरीदाबाद और करनाल के 14 स्कूलों से आई 38 छात्राओं ने राखी बांधकर ये रक्षा पर्व मनाया। सेना प्रमुख ने सभी छात्राओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को पूरा करने की सीख दी। इस बार का रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के पवित्र प्रेम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था, सामाजिक सद्भाव, कृतज्ञता और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। शुक्रवार 28 अगस्त को सेंसेक्स 331 अंक चढ़कर 77,265 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 85 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 24,176 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। शुक्रवार 28 अगस्त को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 3,300 रुपए फिसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,62,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 5,000 रुपए लुढ़की। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,45,500 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। शुक्रवार 28 अगस्त को रुपया 6 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.39 रुपए हो गई।
6: फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा सॉन्ग रिलीज हो गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
0: फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा सॉन्ग रिलीज हो गया। ये एक रोमांटिक ट्रैक है जिसका टाइटल है कहो तो। इस रोमांटिक सॉन्ग को गाया है अरमान मलिक ने और इसे फिल्माया गया है वीर पहाड़िया और आफिया सैयद पर। अपूर्व सिंह कार की तरह निर्देशित ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी भी अहम रोल में है।

0: फिल्मकार मेघना गुलजार की नई फिल्म दायरा का ट्रेलर 31 अगस्त को आएगा। ये जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर लिखे अपने इस पोस्ट में मेघना ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर कहा है कि इस फिल्म के जरिए उन्होंने क्रिएटिविटी के उस स्तर को छुआ है जो अब से पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। फिल्म दायरा में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में है। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री के बाद अब दूसरे दिन फिल्म टॉक्सिक की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 101.10 करोड़ रुपए से खाता खोला, जबकि दूसरे दिन की कमाई 36.40 करोड़ रुपए रही। हालांकि ये एक वर्किंग डे था, उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड का लाभ फिल्म को मिल सकता है। टॉक्सिक में यश, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत है। इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है।
1: चुकानी पड़ेगी।
0: बॉलीवुड सेलेब्स धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें और भावनाएं भी शेयर कर रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने भाई के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक प्यारा सा पोस्ट भी लिखा है। सुनील शेट्टी ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने परिवार की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है और लिखा है, कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते, सिर्फ तस्वीरें बदलती हैं। मेरी बहनें हमेशा मेरे साथ रहने वाले घर का एक हिस्सा रही हैं। अक्षय कुमार ने अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन के मौके पर एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है, रिश्ता वो जिसमें नोकझोंक भी है और हर मुश्किल में साथ भी है। प्रिय जिजिंटा ने भी अपने भाइयों के साथ की तस्वीरें शेयर की है। रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा ने रणवीर के साथ बचपन की एक तस्वीर शेयर की है, तो वहीं संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने भी संजय दत्त के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, बचपन की यादों से लेकर जिंदगी के हर पड़ाव तक कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। संजय दत्त ने भी दो प्यारी बहनों के भाई होने पर गर्व जताया। सैफ अली खान और करीना कपूर के दोनों बेटे तैमूर और जेह का बहन इनाया से खास रिश्ता है। इनाया सोहा और कुणाल खेमू की बेटी है। वो हर साल तैमूर और जेह को राखी बांधती आई हैं। तीनों भाई बहन जब भी मिलकर ये प्यारा पर्व मनाते हैं तो फैंस को एक क्यूट तस्वीर मिल जाती है।
2: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको
4: कुछ तो है आपके
5: हाथ पीछे जो कर रखा है ऐसे
4: कुछ भी नहीं।
0: शौक का भला उम्र से क्या लेना देना, दादी अम्मा को सजना संवरना पसंद है पर किसी को फिक्र ही नहीं। इस उम्र में आप कोई गिफ्ट भी नहीं करता ये सब, लेकिन घर में इतनी खूबसूरत रिंग्स देखी तो अरमा मचल पड़े, सो डाल लिया उंगलियों में। पर कोई क्या कहेगा इसका डर भी है, देखिए कैसे छुपाया जा रहा है। पर जब दादी अम्मा की ये क्यूट सी चोरी पकड़ी जाती है तो उनके चेहरे पर आई ये भोली मुस्कान देखिए, लोग इस मुस्कान पर दिल हार रहे हैं।
5: फिर ये बताओ हाथ में ऐसे बार बार हाथ के पीछे कर रहे हो?
4: कुछ नहीं हाथ में,
5: कुछ तो है आपके हाथ
4: में। नहीं हाथ में,
5: पीछे जो कर रखा है ऐसे
4: कुछ भी नहीं
5: भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
4: नहीं गड़बड़।
5: अच्छा दिखाओ तो एक बार हाथ, दिखाओ एक बार मेरी तसल्ली के लिए, ऐसे ऐसे दिखाओ जैसे मैं कह रही हूँ, दिखाओ हाथ तो दिखाओ। ये क्या पहना हुआ है? ओ अच्छा,
0: बस देखते जाइए इनकी हरकतें पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्हे हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिल हार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड हैं, तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
2: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली बड़ी राहत की। महाराष्ट्र में इन दिनों ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने का मुद्दा चर्चा में है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा फैसला किया है और ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दे दी। सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को बोलचाल की मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के ऑटो और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत देते हुए अनिवार्य मराठी भाषा की शर्त पूरी करने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की। मराठी भाषा सीखने के लिए एक साल की मोहलत मिलने पर गैर मराठी ऑटो रिक्शा चालकों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया, क्योंकि यह फैसला गैर मराठी ऑटो रिक्शा चालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। माना जा रहा है कि इससे उन चालकों को फायदा होगा जिन्हें नई भाषा संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। पहले सरकार ने नियम बनाया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मराठी भाषा नहीं सीखने वाले ड्राइवर्स के परमिट पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अब सरकार ने चालकों को बड़ी राहत देते हुए मराठी सीखने के लिए एक साल की अतिरिक्त मोहलत देने का फैसला किया। यानी कि फिलहाल मराठी नहीं बोल पाने के आधार पर किसी ऑटो या टैक्सी चालक का परमिट रद्द नहीं किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे और दूसरे शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में गैर मराठी आबादी रहती है। ऑटो टैक्सी और परिवहन क्षेत्र में भी दूसरे राज्यों से आए लोगों की बड़ी भागीदारी है। ऑटो टैक्सी चालकों की आशंकाओं को दूर करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि इस नियम का मकसद चालकों को भाषा विशेषज्ञ बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वे यात्रियों से स्थानीय भाषा में संवाद कर सके।
6: सारे रिक्शा टैक्सी चालक संगठन ने हमारे पास मांग की थी कि हमें मुदत बढ़ाई देनी चाहिए, क्योंकि 105 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम था उसमें 1,65,600 अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी थी, मगर राज्य में करीबन 10 लाख के आसपास रिक्शा टैक्सी चालक है, उसमें बहुतांश बड़े पैमाने पे अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक है तो सीख नहीं पाए थे, और उसमें से कुछ लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट की थी, कुछ लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के पास कंप्लेंट की, कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कंप्लेंट की। हम यही चाहते, देखिए हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते, रोजी रोटी देने वाला ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र के मिट्टी से आपको लगाव होना चाहिए, हमारा कहना है। देखिए मराठी अस्मिता हर राज्यों को जैसे अपने अपने राज्य की अस्मिता होती है, हमारे राज्यों का मराठी अस्मिता होनी चाहिए, हमारा ये कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये जो योजना है पूरी रद्द करने की घोषणा नहीं की बल्कि मुदत दे दी है, तो आप भी समझना चाहिए कि कम समय में अगर वो सीख नहीं पाए तो उनके रोजी रोटी के ऊपर आ जा सकती है। इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमें बंधनकारक है। मगर एक बात हम यही कहना चाहते हैं कि हम पहले कहते थे कि चलो 3-4 महीने में सीख जाएंगे, नहीं सीख पाए। अभी भी हम बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो अभियान है वो अभियान के माध्यम से एक साल हम और मराठी सिखाएंगे, 180 हम क्लासेज चलाएंगे, 1800 शिक्षक वर्ग जो है वो तैनात करेंगे पूरे महाराष्ट्र में। मगर उस एक साल के दौरान आपको मराठी अभी अच्छी तरह से आना चाहिए, खाली झुंझ भी नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से हम मराठी में संवाद करते हैं उसी तरह से प्रवासियों के साथ संवाद करते वक्त आप नहीं मराठी अच्छी तरह से बोलनी चाहिए, हमारी आशा है। आपको मोहलत चाहिए थी, मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने दे दी।
2: जाहिर है महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से गैर मराठी ऑटो रिक्शा चालकों को बड़ी राहत मिली है। इस मुद्दे पर मुंबई में गैर मराठी ऑटो रिक्शा चालकों से बात की और उनकी राय जानी।
7: राहत की बात तो है, राहत की बात तो नहीं है, उसके बाद निराहत है। अगर साल भर में अगर जिन भी मराठी भाषा अगर हर टैक्सी ड्राइवर हर व्यक्ति को बोल लेता है तो अपना फायदेमंद है, समझ गए ना। अगर हमको कोई चीज़ लेना है अगर उसको हिंदी नहीं आ रहा है, मराठी में सवाल कर रहा है, तो अगर हमको मराठी आएगा तभी हम उसको जवाब देंगे मराठी में। तो मराठी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी भी है, और इतना कोई ये नहीं है कि मतलब आपको कंटिन्यू सीखना है, मगर आप सीखेंगे ना आपका फायदा है।
8: तो ये राहत की खबर है,
7: राहत की खबर बहुत है। फडणवीस साहब ने बोले हैं कि एक साल का है आपके पास समय, आप सीखिए मराठी का, जो भी आपका प्रमाण पत्र है बनाइए, आपको आगे चल के काम आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। और सब टैक्सी ड्राइवर, सिर्फ टैक्सी ड्राइवर के लिए ही लागू है कि और व्यक्ति के लिए लागू है, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा, समझ गए ना। आखिर मुंबई में तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्सी ड्राइवर उत्तर भारतीय से आया है, चाहे बंगाल से आया, कलकत्ता से आया, कहीं भी, तो हर स्टेट का पब्लिक यहाँ पर है, तो हर स्टेट का पब्लिक के लिए मराठी भाषा अनिवार्य है या सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों के लिए, ऑटो ड्राइवरों के लिए?
9: राहत की खबर तो सीएम साहब ने जो दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब इसमें समय का बंधन नहीं होना चाहिए। इसमें जो है अगर मराठी सीखना है तो हम ड्राइवरिंग सीख सकते हैं, तो मराठी क्यों नहीं सीख सकते हैं? हम मराठी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं शौक से हमारे, मतलब अगर हमें कोई पाबंद किया जाएगा नहीं मराठी सीखना ही है तो हमें उस समय लाइसेंस जारी करते समय हमको ये प्रबंध देना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी हम अपने शौक से मराठी सीख सकें, हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएम साहब का मैं स्वागत करता हूँ अच्छी तरह से कि उन्होंने एक साल का समय दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसका पाबंद नहीं होना चाहिए। हम मराठी सीखने का शौकीन है, हम सीख लेंगे।
10: सर अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 वर्ष का समय दें, जो है 2 वर्ष का समय दें ड्राइवरों को, और ये जागरूकता पैदा करें ड्राइवरों के बीच में कि आप लोग मिनिमम जो है मराठी आप लोग सीखिए, जो है उसमें कोई बुराई नहीं है। मराठी हमारी, अगर हिंदी माता है तो मराठी मौसी है हमारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश की भाषा है और हमें सम्मान करना चाहिए उसका, जो है, और हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। इस धरती पर कमा रहे हैं 2 पैसा, तो इस जमीन का और इस भाषा का, इस संस्कृत का हमें सम्मान करना चाहिए, इसमें हमें बड़ी खुशी है। लेकिन ज्यादती ना हो, जो है ज्यादती होना ये तकलीफ वाली बात है, जो है, और भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, जो है, कि भाषा का आधार किसी को प्रताड़ित किया जाए, जो है। अगर मान लिया, एक मोटी बात समझ लिए कि यह महाराष्ट्र का ही आदमी है, अगर कोई तमिलनाडु में जाए, जैसे सरकारी नौकरी कर रही है, मान लीजिए केंद्रीय नौकरी कर रहा है, जो केंद्रीय सेवा में, तो अगर वो महाराष्ट्र में उसे ट्रांसफर हुआ होगा तमिलनाडु गया, तो उसको कहा जाए तमिलनाडु तमिली सीखो, फिर इसके बाद वो अगर बंगाल उसका ट्रांसफर हो गया तो बोले बंगाली से, वो क्या करेगा बताइए? तो पूरी जिंदगी उसको भाषा सीखने में निकल जाएगी। तो ये चीज जो है थोड़ा तकलीफ दे है, किसी के ऊपर ज्यादती ना हो, लेकिन सीखना चाहिए, सब सीखें, जो है अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। इसका बढ़ावा दिया जाए, इस पर जागरूकता किया जाए, लेकिन कुछ सरकार भी इस पर आवे, जो है कि कुछ ऐसा जो है व्यवस्था करे, कारण हम लोग कामकाज वाले हैं, जो है टाइम नहीं मिलता। अब 50 वर्ष उम्र हो गई, ये कहो अब कि 2 पैसा कमा करके बच्चों को पेट पालेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनके शादी ब्याह करेंगे, कि हम लोग बराबर मराठी सीखने चलेंगे, जो है। अब एक बात मोटी बात समझिए, उस पढ़ने लिखने वाला समय निकल गया, हमारे बच्चे जो है अच्छी मराठी बोलते हैं, जो है अच्छी पढ़ाई है, अच्छा जो सब कुछ यहाँ का संस्कृत भाषा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मुझसे अब उम्मीद करो तब नामुमकिन है ये चीज करना। लेकिन मूल चीज जो है, मैं भी सोचता हूँ कि मूल चीज मुझे सीखना चाहिए, इस पर थोड़ा जागरूकता करें और सरकार भी बढ़ावा दे, कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि छूटने के बाद घंटा आधा घंटा शाम को या सुबह या दोपहर को कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहाँ का आदमी गाड़ी खरीद के घंटा आधा घंटा जो है मराठी सीख सके, जो है।
11: एक साल का समय दिया है तो हम एक साल में सीख सकते हैं, बहुत काफी टाइम है एक साल का, हम कोशिश करेंगे। और डर का तो माहौल तो बना ही है, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वेज कैंसिल हो जाएगा, रोजी रोटी छिन जाएगी हमारी, ये माहौल तो है हमारे दिल के अंदर। 25-30 साल से गाड़ी चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई का खर्चा भी है, ये टाइम घर परिवार संभालना पड़ता है। इंडिया के अंदर हिंदी मतलब सबसे ज़्यादा चलती है तो हिंदी होना चाहिए, अब मराठी भाषा है यहाँ का थोड़ा लैंग्वेज, कस्टमर से मतलब थोड़ा व्यवहारिक भाषा सीखना भी चाहिए, वो अच्छी बात है। वो ज़्यादा एक्सपर्ट मतलब बताए सीएम साहब ने तो बनने की जरूरत नहीं है, छोटा मतलब पैसेंजर से वार्तालाप कर सकते हैं,
12: उतना कर सकते हैं, मराठी आती है आपको भी?
11: हाँ इतना आती है,
12: तो उसमें डर की कोई बात ही नहीं है?
11: नहीं उसमें कोई डर की बात नहीं।
2: शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया। सलोनी ने अपने शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया। इस आशियाने में परिंदे रह सकते हैं जो उन्हें धूप हवा और ठंड से बचाता है। तालाब किनारे बना ये अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सलोनी की ये पहल शादी की खुशियों के साथ प्रकृति प्रेम की खूबसूरत मिसाल पेश कर रही है।
13: तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
14: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
13: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
15: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी है, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सके जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
13: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
15: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
13: तालाब किनारे

0: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शतरंज की दुनिया में रचा नया इतिहास। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
7: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने शतरंज की दुनिया में नया इतिहास रच दिया। उन्होंने अमेरिका के दिग्गज ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना को 15-13 से हराकर पहली बार ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही प्रज्ञानानंदा इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ उन्हें $2,00,000 की इनामी राशि भी मिली। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को बीसीसीआई इंग्लैंड भेजने की तैयारी में है। नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को ध्यान में रखते हुए बोर्ड उन्हें इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में 2-3 रेड बॉल मैच खिलाने की योजना बना रही है। आकिब नबी पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 60 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। आज से वेमेंस क्रिकेट एशिया कप के 10वें एडिशन का आगाज हो गया है। दुबई में हो रहे इस टूर्नामेंट में इस बार 8 टीमों के बीच 12 मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन है, जबकि भारत 7 खिताब के साथ सबसे सफल टीम है। इस बार का सबसे बड़ा मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच 5 सितंबर को होगा।
1: इसी के साथ न्यूज़ पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के

0: ये आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
2: भाद्रपद के महीने से भगवान कृष्ण का क्या संबंध है? भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की पूजा भी होती है क्या? भाद्रपद का महीना क्या अशुभ महीना है? और भाद्रपद में दही खाना क्यों मना है? क्या है भाद्रपद की महिमा और क्या है इसके नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: भाद्रपद के महीने से भगवान कृष्ण का क्या संबंध है? भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की पूजा भी होती है क्या? भाद्रपद का महीना क्या अशुभ महीना है? और भाद्रपद में दही खाना क्यों मना है? क्या है भाद्रपद की महिमा और क्या है इसके नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक रक्षाबंधन की धूम, द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, प्रधानमंत्री मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थलसेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने मिठाई खिलाई। शिरडी के साईं दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साईं बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही है राखी की लंबाई।
9: सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा। अमेरिका से खरीदी जाएंगी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें। पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप। यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।
9: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं गणपति की। जल्दी ही बप्पा का आगमन होने वाला है, उनके स्वागत के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में पंडाल तैयार किए जा रहे हैं और इस बीच बड़े पंडालों में गणपति की विशाल मूर्तियों का आगमन भी शुरू हो चुका है जिनकी साज सज्जा पर काम किया जाना है। तो दूसरी ओर मूर्तिकार भव्य और खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने में जुटे हैं। अमरावती और अकोला जैसे इलाकों में भगवान गणेश की अलग अलग अंदाज वाली प्रतिमाओं का निर्माण अपने आखिरी चरण में है। आज हम आपको बप्पा की बिल्कुल अलग कंसेप्ट वाली मूर्तियां दिखाएंगे, समझेंगे कि इस दौर में किस तरह से कलाकार पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां बना रहे हैं। शुरुआत करते हैं अमरावती में बनाए जा रही भगवान गणेश की प्रतिमाओं से। महाराष्ट्र के इस इलाके में हमेशा बप्पा की बेजोड़ प्रतिमा बनाई जाती है और इन प्रतिमाओं की न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के कई राज्यों में भारी डिमांड है और उसकी वजह भी है। गणपति की इन मूर्तियों का रंग रूप बिल्कुल अलग होता है, अलग कॉन्सेप्ट पर तैयार की जाती हैं ये प्रतिमाएं, जिन्हें देखकर लगता है कि अभी बोल उठेंगी। तो चलिए आपको अमरावती के एक ऐसे बेजोड़ कलाकार से मिलवाते हैं, उनकी कार्यशाला के अद्भुत रंग भी दिखाते हैं।

0: अद्भुत है ये प्रतिमा और इस प्रतिमा की कल्पना माता पार्वती की गोद में मौजूद बाल गणेश, लेकिन बप्पा स्वयं शिव के रूप में, नीले शरीर पर पीली धोती, गुलाबी अंगवस्त्र और केश में मयूर पंख। बप्पा को जैसी मासूमियत के साथ मूर्त किया गया है वो बेमिसाल है। साथ में ममता भरी मुस्कान के साथ माता पार्वती, ऐसा लगता है जैसे मूर्ति अब बोली तब बोली। ये मूर्तियाँ उस विलक्षण कलाकार की पहचान है जिनके नाम की अमरावती में बड़ी शोहरत है, बड़ा सम्मान है। इस साल गणेश उत्सव के लिए हमेशा की तरह नरेश जोहरे ने अलग अलग थीम पर अलग अंदाज वाली बेमिसाल मूर्तियाँ बनाई हैं।
1: वैरायटीज तो एक पार्वती बाल वाली है, नारियल वाली है, अभिषेक वाली है, माउली है और तुतारी वाली है, उसके बाद में त्रिशूल डमरू वाली है और एक पशुपतिनाथ है। तो यहाँ से उज्जैन हो गया, तुम्हारे भोपाल हो गया, रायपुर हो गया, इधर जलगांव खानदेश, विजयवाड़ा, निजामबाद, नागपुर, यहाँ तक की मूर्ति अपनी जाती।
0: अमरावती की इस कार्यशाला में एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ बन रही हैं, ज्यादातर तैयार हैं और अब बस उन्हें आखिरी रूप दिया जा रहा है। कहीं लाल बाग के राजा जैसी प्रतिमा है तो कहीं भोलेनाथ के स्वरूप वाले बाप्पा। इतना ही नहीं, तबले और तुतारी पर विराजमान गणपति भी आपका ध्यान खींच लेते हैं। तो वहीं परशुराम अवतार के स्वरूप में बनी बाप्पा की प्रतिमा हैरान कर देती है। इस कला की बारीकी का क्या कहना, हर प्रतिमा जीवंत नजर आती है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में है जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से, इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। देखिए बाप्पा की मूर्ति प्रतिमा तो जो है बनकर तैयार है, कलरिंग भी लेकर तैयार है, लेकिन बाप्पा को इस तरीके की ज्वेलरी लगाकर जो है एक नया सौंदर्य देने का काम जो है ये कलाकार करते हैं। कितनी सुंदर मूर्ति है, पार्वती माँ के गोद में लाडले बाप्पा जो है वो बैठे हुए हैं। तो उधर दूसरे उसके पीछे जो है देखिए तबला और तुतारी जो है वो उस पर बाप्पा बैठे हैं। तो बाप्पा ने इसमें भोलेनाथ, अपने पिता भोलेनाथ का यहाँ पर रूप लिया है और उनके जो वाहन है नंदी उस पर वो सवार है।
0: अमरावती की इस कार्यशाला में बनी प्रतिमाओं की मांग जलगांव, नागपुर, वर्धा समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन और बुरहानपुर और तेलंगाना के निजामाबाद तक नरेश जोहरे की बनी प्रतिमाएं भेजी जाती हैं। गणेश उत्सव शुरू होने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं, इसलिए हाथ तेजी से काम में जुटे हैं। प्रतिमाओं पर बारीक नक्काशी के साथ साथ अलग अलग तरह की ज्वेलरी और सजावटी सामग्री लगाई जा रही है। इस तरह बाप्पा की हर प्रतिमा निखरती जा रही है जिससे जल्दी ही पंडाल गुलजार होंगे। लेकिन पंडाल भी तो अपने आप में किसी कलाकृति से कम नहीं, खासकर मुंबई में गणपति के पंडाल कई बार सिनेमा के सेट जैसे नजर आते हैं। गणेश गली इलाके के गणपति को मुंबई का राजा कहा जाता है और हमेशा की तरह इस साल भी मुंबई के राजा पंडाल की भव्य सजावट हो रही है।
3: मुंबई, महाराष्ट्र, ये पूरा देश अब गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है। 14 सितंबर से हर किसी के घर में, हर कोई नुक्कड़ पर हर किसी इलाके में हर सड़क पर बप्पा को विराजमान किया जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के गणेश गली, जो मुंबई का राजा के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसकर सेट पर। देखिए, जब यहाँ पर श्रद्धालु और जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बड़ी ही सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जैसे कि पिछली बार यहाँ पर रामेश्वर बनाया गया था, रामेश्वर धाम जो है वो तब्दील किया गया था, और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखें, एक डेढ़ महीने पहले से ही शुरू हो जाती है आलीशान बहुत बड़ा सेट, जो धीरे धीरे बहुत बड़े स्वरूप में बदलने वाला है।
0: पिछले साल सोमनाथ मंदिर के बैकग्राउंड पर पंडाल बनाया गया था। इस दफा कहा जा रहा है कि थीम महाराष्ट्र के संतों पर होगी।
4: मंडल का ये 99 ईयर है, और इस बार हम संतों की परंपरा यहाँ दिखाने की हमारी कोशिश है, जो कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो समृद्ध करने में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग ये महाराष्ट्र में है। तो उनकी परंपरा क्या है ये इस पीढ़ी को पता चले, इसीलिए ये संतों की परंपरा हम यहाँ दिखाए।
3: अच्छा, इस बार जो जानकारी है उसके हिसाब से 99वां साल आप मना रहे, मतलब एक साल और फिर आप, मतलब शंबर क्रॉस। हाँ,
4: बिल्कुल।
3: तो क्या कहेंगे, क्या तैयारी इस बार आपने क्या सोच रखा है?
4: देखिए, ये तो 100 साल की हमारी एक टेस्ट मानी जाती है, तो उसी के हिसाब से इस साल जो भी करेंगे वो बहुत ही धूमधाम से, हर साल तो करते ही है, लेकिन इसमें इस साल इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भव्य दिव्यता लाने की कोशिश है वो ज़्यादा रहेगी।
0: मुंबई के राजा का ये 99वां साल है, यानी 1 कम 100। स्वाभाविक है ये पंडाल अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों को नया मकाम देना चाहेगा। मंडप के मुख्य द्वार बनाने का काम भी पूरा हो चुका है, और गणपति की प्रतिमा अपने आखिरी चरण में है।
4: मुंबई के राज्य की ये परंपरा है, उनकी जो मूर्ति है वो जगह पे ही बनाई जाती है, और एकमेव ये जो मूर्ति है मुंबई में जो टोटली हैंडमेड है, उसमें साचा या मोल्ड का उपयोग नहीं किया जाता है, वो हाथ से ही बनाई जाती है। और वही खासियत है मूर्तिकार की, जिसमें उसका उसकी जो मेहनत है और उसकी जो खासियत है वो रंग लाती है।
3: मतलब हम ये मानकर चलें कि इस बार जो गणपति बप्पा आ रहे हैं वो किसी संत की भूमिका में होंगे, संत के अवतार में होंगे।
4: आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा 14 तारीख तक, क्योंकि सब मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो भी आप मूर्ति देखेंगे वो भव्य दिव्य रहेगी, और उसमें एक आध्यात्मिक भाव है वो आपको दिखाई देंगे।
3: इस महोत्सव के पहले, आखिरी सवाल, इस महोत्सव के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोग करते हैं मीडिया की, जहाँ पहला जो दर्शन है बप्पा का, वो कब किस तारीख होगा, और किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन देना चाहेंगे तमाम लोगों को?
4: देखिए, अभी तक तो हमने वो डिसाइड नहीं किया है किस तारीख पे ये होंगे, लेकिन गणेशोत्सव के पहले एक दो दिन पहले ही वो मुख दर्शन जो हमारा है, फर्स्ट लुक है, वो हम करने की कोशिश है हमारी।
0: जब ये मंडप तैयार होकर सज जाएगा तब इसकी छटा कुछ और होगी। हर साल इस मंडप में मुंबई के राजा के दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं, उसी हिसाब से मंडप को भी विशाल और भव्य बनाने की कोशिश है। अमरावती से धनंजय साबले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मुंबई के भव्य पंडालों में बप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। गणेश उत्सव से पहले बप्पा की विशाल मूर्तियों की सजावट होती है, और इसीलिए उनकी पूजा से पहले उन्हें मंडप लाया जाता है। लेकिन जब गणपति की प्रतिमा आती है तब श्रद्धालुओं में भी गजब का जोश होता है। मुंबई की खेतवाड़ी गली में स्थापित होने वाले बप्पा को खेतवाड़ीचा, लंबोदर और मुंबईचा महाराजा के नाम से जाना जाता है। इस बार यहां पर बप्पा नरसिंह अवतार में विराजमान होंगे, जिनकी ऊंचाई करीब 47 फीट है। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको।

0: बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक बप्पा का अपने दिव्य और भव्य पंडालों में आगमन शुरू हो चुका है। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति का शुभ आगमन हो चुका है। गणेशोत्सव से करीब 15 दिन पहले से खेतवाड़ी 11वीं गली में गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष सुनाई देने लगा है। लगातार भगवान गणेश के प्रति आस्था और अगाध प्रेम से जुड़ी भावनाओं का संचार हो रहा है। बप्पा के आगमन के दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखा और पूरा परिसर गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से गूंज उठा। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति आस्था, भक्ति और आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। वैसे गजानन की भक्ति की कोई सीमा या परिधि नहीं है। खेतवाड़ी की 11वीं गली का मंडल अपनी भव्य और विशाल मूर्तियों के लिए पूरे मुंबई में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव के लिए यहाँ विघ्नहर्ता की सबसे आकर्षक और विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। हर वर्ष यहाँ बप्पा देवी देवताओं के अवतार के रूप में विराजमान होते हैं। इस बार विनायक की विशाल प्रतिमा को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में स्थापित किया गया है। यानी गजानन का ये स्वरूप उग्र होने के साथ ही दिव्य और भव्य भी है। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 47 फीट है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले महीने यानी कि 14 तारीख से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश महाउत्सव यानी कि गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है, शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि हम हमेशा रोज ही अपनी खबरों में बताते हैं कि गणेश जी की जो ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं उन्हें पंडालों में लाने का काम भी शुरू हो गया है। इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा और अत्यंत भयंकर अवतार है, जिसमें उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का धारण किया है ताकि भक्त प्रहलाद को परेशान करने वाले हिरण्यकश्यप का वध किया जा सके। ऐसी परंपरा है कि मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्त खेतवाड़ी की गलियों में बप्पा के अलग अलग रूपों के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यही वजह है कि हर साल बप्पा नए अवतार में दिखते हैं। आस्था और भक्ति से जुड़ी ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
2: लास्ट 25 साल से भी ज्यादा हमें अनुभव हुआ है कि हम टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और लास्ट 5 साल से तो हम महाराष्ट्र में सबसे टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और उनका कंटिन्यू अवार्ड लेते हैं। और इसमें इस साल हमने नरसिम्हा अवतार बनानी है क्योंकि हम हर एक साल अलग अलग अलग अवतार हम यहाँ पे दर्शाते हैं और उसे मैसेज देते हैं कि जो यहाँ पे भक्तगण दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में आते हैं तो उनको अलग अलग रूप यहाँ पे दिखाई दे।
1: अच्छा, इसके पहले कौन से अवतार में बप्पा आ चुके हैं जिनके लिए आपने अवार्ड्स लिए?
2: उनके पहले आए हैं परशुराम अवतार आए हैं, फिर इंद्र अवतार बनाए हैं, फिर उसके बाद एक कल्कि अवतार बनाए हैं। कल्कि अवतार के बाद लास्ट ईयर स्वानंद देसाई, जो गणपति का खुद मूल स्थान है स्वानंद देसाई, वो रूप में गणेश जी की विराजमान की थी। वो भी 45 फीट की थी, इस बार 47 फीट की है। यहाँ पे इस बार नरसिम्हा अवतार की मूर्ति बनाई।
0: 47 फीट ऊंची प्रतिमा को अस्तित्व में लाना आसान कार्य नहीं था। निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिमा से जुड़ी कई बारीकियों का खास ख्याल रखा जाता है। इनमें कदा, त्रिशूल, चक्र और तलवार जैसे अस्त्रों का संयोजन शामिल होता है।
2: जब मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति के हम लोग करीबन 25 साल से, मैंने आपको कहा कि बड़ी मूर्तियां स्थापना करते, हम यहाँ पे ही हमारे नज़र के सामने ही मूर्ति बनाते। हमारे मूर्तिकार है सुनील वराड़कर जी। मैं और सुनील वराड़कर जी 2 महीने से शुरुआत करते हैं और उसमें कि उसका बैलेंस कैसा रहता है, उनके शस्त्र उनके जो बैलेंस रहता है उनको कैसे नियोजन करते हैं, उसमें सपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसमें बहुत से रोल काम करते हैं। पहले कास्टिंग करते हैं, जो टीम रहती है पहले कास्टिंग की टीम काम करती है, कास्टिंग की टीम काम करने के बाद जॉइंटिंग करती है, जॉइंटिंग करने में वेल्डर की बहुत महत्व की भूमिका रहती है। उसके बाद जो आते हैं पॉलिश करने वाले, जो टीम आती है उसके बाद जो पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद कलर के काम करने वाले, कलर की टीम आती है, कलर टीम करने के बाद ही मंडल को सौंपा जाता है।
0: खेतवाड़ी की गलियों में स्थापित पंडालों की सजावट बहुत मशहूर है। यहाँ के पंडालों में आधुनिक लाइट और पौराणिक कथाओं की सुंदर सजावट की जाती है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंडाल की सजावट का विशेष ख्याल रखा जाता है। हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी थीम पर ही खेतवाड़ी की 11वीं लेन के गणपति पंडाल की सजावट होगी।
1: डेकोरेशन भी नरसिंह अवतार से ही आसपास के संबंधित होगा।
2: हाँ जी, नरसिंह अवतार के जो रिलेटिव्स जो भी है, हिरण्यकश्यप और उनके जो वध किया था, उस रिलेशन में ही हम लोग यहाँ पे डेकोरेशंस करेंगे।
0: खेतवाड़ी इलाके में गणपति के एक नहीं बल्कि अनेक पंडाल हैं और सभी की रौनक देखने वाली होती है। खेतवाड़ी के लंबोदर के दर्शन करने लाखों की तादाद में भक्त पहुँचते हैं, इसीलिए जब उनका मंडप में आगमन हुआ तो धूमधाम से हुआ। भक्त झूमते गाते ढोल बजाते जब गणपति की प्रतिमा को लेकर पूजा पंडाल की ओर चले तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। 32 फीट ऊंची खेतवाड़ी के लंबोदर की प्रतिमा गणेशोत्सव के दौरान चर्चा में रहती है। खेतवाड़ी का ये पंडाल मुंबई के प्रसिद्ध और नामी पूजा पंडालों में एक है। यहाँ इस साल भगवान गणेश की प्रतिमा को किसान के रूप में दिखाया गया है।
1: गणेश उत्सव की तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात, फिलहाल मैं चौथी गली में हूं जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है।
0: खेतवाड़ी चा लंबोदर मंडल अपनी अलग थीम और भव्यता के लिए जाना जाता है। इस गणेश मंडल में हर साल एक नए थीम पर पंडाल बनता है और इस साल ये अपना 68वां गणेशोत्सव मनाने जा रहा है। इस बार इस गणेश मंडल में राज्य के किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किसान बचाओ थीम पर पंडाल बनाने का फैसला लिया गया।
3: संदेश दिया है गवर्नमेंट को कि क्षेत्री के लिए बहुत कठोर बात है, इतना मेहनत करके भी उनको मार्केट के अंदर भाव बराबर मिलता नहीं है। एक गवर्नमेंट देखना मांगता है कि शेतकरी है करके अपन लोग है, शेतकरी अनाज नहीं पकाएंगे तो अपन लोग कुछ खा नहीं सकते है। अगर शेतकरी को कुछ नहीं दिया तो शेतकरी किधर से अनाज लाएगा अपने लिए, खत भी नहीं मिलेगा। एक तो इतना महंगाई हो गया है, मार्केट में इनको भाव भी बराबर नहीं मिलता है, कुछ नहीं देते है। इसके लिए वो हम लोग ने गवर्नमेंट को ये संदेश दिया है
1: और बकायदा गणपति बप्पा के साथ संदेश दिया है,
3: गणपति बप्पा के साथ दिया है।
0: गली नंबर 4 में सजने वाला ये पूजा पंडाल अपनी सामाजिक और देशभक्ति थीम के लिए हर साल सुर्खियों में होता है। हर साल कोशिश यही रहती है कि गणेश पूजा के जरिए सामाजिक संदेश दिया जाए।
3: पहले साल लाया वामन अवतार, उसके बाद में लाया वर्ल्ड कप, उसके बाद में लाया ऑपरेशन सिंदूर, अभी शेतकरी आत्महत्या करते है इसके ऊपर हम लोग गणराय लेके आए।
1: तो कैसे मतलब आपस में आप लोग बातचीत करते, कमेटी बैठती, कैसे सोच होती कि इस बार क्या होना
3: चाहिए? बगैर कुछ नहीं होता है, कमेटी एक साथ बैठते हैं हम लोग 5-6 जन है कमेटी में, मेन वो लोग बैठ के हम लोग डिसीजन लेते पूरे, फिर बाद में हम लोग बच्चे लोग को बताते। ये हमारे बच्चे लोग सब राह देखते है, 365 साल में कभी आएंगे हमारे पापा, राह देखते रहते, दिन रात मेहनत भी वो लोग बच्चे लोग करते।
0: वैसे तो गणेश उत्सव का ये पर्व पूरे देश में ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन जैसी विविधता और रौनक इस पर्व को लेकर महाराष्ट्र में देखने को मिलती है वैसी कहीं और दिखाई नहीं देती। यहाँ हर साल छोटे बड़े सैकड़ों पूजा पंडाल सजते हैं जिनमें बप्पा के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। काला चौकी चा महाराजा और कामरा चा महाराजा की ये प्रतिमा इसका उदाहरण है। ये प्रतिमाएं न सिर्फ आकार में बड़ी हैं, बल्कि इनकी सजावट और थीम भी काफी आकर्षक है।
4: हमारा जो 10 दिन का प्रोग्राम होता है, जितना दिन गणपति बैठते हैं, हम लोग पूरे 10 या 12 दिन पूरे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, डेंटल चेकअप वगैरह, हेल्थ चेकअप, बहुत सारे ऐसे हमारे पूरे 10 के 10 दिन कार्यक्रम होता है। और हमारा 7वां दिन जो होता है उस दिन हम लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं।
0: खेतवाड़ी से चलिए परेल, जहां गणेश प्रतिमाओं के निर्माण से जुड़ा एक परिसर मौजूद है। इसे मुंबई का सबसे बड़ा गणपति वर्कशॉप कहा जाता है। मूर्ति कला के लिए इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक केंद्र में मुंबई के सबसे मशहूर पंडालों के लिए विशालकाय और भव्य मूर्तियां तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि इन मूर्तियों से जुड़ी इस कार्यशाला में 24 घंटे काम चलता रहता है।
1: बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपकी व्यस्तता चल रही है, कैसा चल रहा है आपका?
5: बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है।
1: अच्छा, तो कितनी अभी तक गणेश जी की प्रतिमाएं आप बना चुके हैं जो पंडालों में आपने भेज भी दिया है, और थोड़ा बताएं डिटेल?
5: काफी कम मूर्ति अभी तक निकली है, मतलब एक ट्रेलर ही हुआ, शुरुआत हुई है। अभी इस संडे से ज्यादा के आगमन शुरू हो जाएंगे, ये संडे, अगला संडे, ये दो संडे काफी जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अभी ये दो संडे में काफी सारी मूर्तियां जो मुंबई की बड़ी बड़ी मूर्तियां, बिगेस्ट पंडाल है, उनके आगमन शुरू हो जाएंगे।
1: अभी इस समय पंडाल में भी होंगी बहुत सारी मूर्तियां बनकर रेडी हो चुकी
5: है, कई सारी मूर्तियां हैं, मतलब मुंबई के बिगेस्ट मंडल जो है उनकी मूर्तियां अभी ये संडे अगले संडे जाने बाकी।
1: थोड़ा सा दो चार नाम बताएं ताकि लोग आकर के इंतजार करें, मूर्ति निकले तो लोग वहां पे शामिल हो, कौन से वो बड़े मंडल है?
5: परेल वर्कशॉप से मुंबई के दिग्गज मंडल है उनकी मूर्तियां जाना बाकी है, जैसे चिंतामणि हुआ, गंधराज हुआ, दावी खेतवाड़ी गली, खेतवाड़ी दसवीं गली, ओम तांडव हुआ, ऐसे बिगेस्ट मंडलों की मूर्तियां अभी तक यहाँ से जाना बाकी है।
1: अच्छा, अभी बहुत ही कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या सबकी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं?
5: और कुछ मूर्तियां तैयार है और बाकी मूर्तियों का काम चल रहा है।
1: कितने कितने समय तक आप काम करते हैं और कितने लोगों के साथ कर रहे हैं?
5: अभी 24 घंटे काम चल रहा है।
0: 14 सितंबर से शुरू होने वाला गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और ऐतिहासिक गौरव का भी प्रतीक है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे राज्य महोत्सव घोषित किया है, जिससे इसकी सांस्कृतिक महत्वता और बढ़ गई है। गणपति उत्सव के दौरान बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ उनके गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेशों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। 14 सितंबर से 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख समृद्धि के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्रों ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साईं दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साईं बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही है राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन अल्फा संघ, उन्होंने बनाया रक्षाबंधन, बच्चों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने खास अंदाज में पर्व मनाया, राखी के बाद पीएम ने बच्चियों के साथ हाईफाई भी किया। बच्चों संग हंसी मजाक करते नजर आए प्रधानमंत्री, नन्ही बच्चियों की कविता पर प्रधानमंत्री मोदी प्रभावित हुए। राखी बांधकर बच्चियों ने सुनाई खूबसूरत कविता, बच्ची की कविता सुन प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया हौसला। महाकाल के प्रसाद पर बच्ची से प्रधानमंत्री मोदी की प्यारी बात, बोले पीएम मोदी, अगली बार मेरे लिए महाकाल से प्रसाद लेते आना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों संग रक्षाबंधन का पर्व मनाया, बच्चियों ने राष्ट्रपति को बांधी राखियां। राष्ट्रपति ने भी दिव्यांग और स्कूली छात्रों को बांधी राखी, राखी की डोर से जुड़ा राष्ट्रपति भवन और बच्चों का अपनापन। राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में बच्चों ने लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी दी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बंधा समा। राष्ट्रपति भवन में बच्चों की राखी से सजा उत्सव, राखी को राष्ट्रपति ने बताया प्रेम और देखभाल का प्रतीक। रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया पर्यावरण का संदेश, पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों और एनसीसी कैडेट से बंधाई राखी, रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। ब्रह्मकुमारी बहनों ने भी राजनाथ सिंह को राखी बांधी, राखी बांधकर बहनों ने दिया स्नेह का संदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बेटियों संग राखी का त्योहार मनाया, टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रही बेटियों से राखी बंधवाई। बेटियों संग अमित शाह का स्नेह भरा अंदाज, अमित शाह ने बेटियों के साथ बांटी रक्षाबंधन की खुशियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मनाया रक्षाबंधन का पर्व। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मनाया रक्षाबंधन, छात्राओं ने सेना अध्यक्ष को राखी बांधी। आमिया उसमें 14 स्कूलों को की 38 छात्राओं ने मनाया खास रक्षाबंधन, स्नेह और सम्मान का संगम नजर। एलओसी पर जवानों की कलाई पर सजी राखियां, नॉर्थ कश्मीर में खाकी फाउंडेशन ने जवानों को राखी बांधी। रांची में घर से दूर जवानों संग महिला मोर्चा ने मनाया रक्षाबंधन, सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर सजी राखियां। सीआरपीएफ कैंप में गूंजा रक्षाबंधन का उल्लास, मिठाई खिलाकर बहनों ने जवानों से खुशियां बांटी। महाराष्ट्र सीमा पर जवानों ने मनाया रक्षाबंधन, नाथुला बॉर्डर पर महिलाओं ने जवानों को बांधी राखियां। सरहद पर जवानों की कलाई पर सजा प्यार, देश की रक्षा करते जवानों ने बांटी खुशियां। सुकमा में जवानों की कलाई पर सजा रक्षा सूत्र, स्थानीय बहनों ने सीआरपीएफ जवानों को बांधी राखी, बहनों ने कहा जवानों से सुरक्षित हुआ सुकमा। जवानों के शौर्य को बहनों ने कहा दिल से धन्यवाद, जवानों को मिला स्थानीय बहनों का प्यार। दार्जिलिंग में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को राखी बांधी, दिखी सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसाल। रक्षाबंधन पर शिरडी में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम, भक्तों ने साईं बाबा को रक्षक मानकर राखी अर्पित की। आज पीठ की राखी बनी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र, साईं बाबा के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम और विश्वास का बना खास। करीब 2 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई विशाल राखी, बिलासपुर के रिटायर्ड कला शिक्षक ने 3 महीने में तैयार की राखी। सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए यूपी के से मुंबई पहुंची 1 लाख राखियां, ऑटो रिक्शा चालकों के परिवारों से भेजी गई राखियां। गैर मराठी ऑटो रिक्शा चालकों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया, सीएम फडणवीस ने मराठी सीखने के लिए दिया है 1 साल का समय। कोटा जेल में रक्षाबंधन पर चल के बहनों के आंसू, भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, राखी बांधते भावुक हुई बहनें। सैलाखों के बीच भाई बहनों का भावुक मिलन, राखी बांधकर बहनों ने मांगी भाई की लंबी उम्र की कामना। करनाल जेल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। कानपुर जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंचे सैकड़ों बहनें, राखी बांधकर बहनों ने भाई से आशीर्वाद लिया। अलवर सेंट्रल जेल में बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांध दी, बहनों ने भाई से लिया आशीर्वाद। उज्जैन में रक्षाबंधन पर उतारी गई बाबा महाकाल की विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रक्षाबंधन महोत्सव, भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को बांधी गई पहली राखी। महिलाएं बाबा महाकाल को बांधती रक्षा सूत्र, महाकाल के दरबार से होती है रक्षाबंधन की शुरुआत, 1.25 लाख लड्डुओं का लगा भोग। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया रक्षाबंधन, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। देवघर में सावन के आखिरी दिन बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। देवघर में नमो सेवा शिविर समूह समारोह में गीतों पर झूमे श्रद्धालु, सांसद मनोज तिवारी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। अयोध्या में सावन के आखिरी दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा पाठ किया, भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। सीकर के फतेहपुर में झूलोत्सव की धूम, भगवान जानकी बल्लभ का फूलों से दिव्य श्रृंगार। चांदी के झूले पर झूले भगवान जानकी बल्लभ, झूलोत्सव में उमड़ी श्रद्धालु की भीड़। भव्य सजावट से जगमगाया मंदिर परिसर, ठाकुर जी के जयकारों से गूंज उठा पूरा मंदिर, फूलों के श्रृंगार ने सबका मन मोहा। मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना, आरती में शामिल हुए श्रद्धालु, भजनों से भक्तिमय पूरा माहौल। लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार, मंदिर सभागार में सजी आकर्षक देवी देवताओं की झांकियां। एक दिवसीय छोटा अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, 15 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई दिखा आस्था का अटूट जुनून। बांदीपुरा में भक्तों ने पूरी की पदयात्रा, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका, पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए निकले शिव भक्त। पहाड़ों पर आस्था की अद्भुत तस्वीर, वादियों में दिखी शिवभक्ति की शक्ति, कदम कदम पर गूंजा भोलेनाथ का नाम। अनंतनाग में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे, तजवाड़ा अमरनाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने पूजा अर्चना की, कश्मीर में आस्था और श्रद्धा का खूबसूरत नजारा दिखा। महादेव की भक्ति में डूबे नजर आए कश्मीरी पंडित, तजवाड़ा मंदिर में भक्तों ने चढ़ाए श्रद्धा के फूल, शिव के चरणों में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। तिरुचिरापल्ली में अवनी पूर्णिमा पर शिव भक्तों ने कावेरी नदी की भव्य आरती की, वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने सुख शांति की कामना की। तिरुचिरापल्ली में अवनी पूर्णिमा पर जनेऊ संस्कार और वैदिक अनुष्ठान संपन्न, पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धालुओं ने धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। त्रिशेंदूर के समुद्र तट पर अवनी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़, भक्तों ने मिट्टी के दीप जलाकर सुख समृद्धि शांति की कामना की। थूथुकुड़ी में अवनी पूर्णिमा पर तिरुशेंदूर समुद्र तट पर दिखा आस्था का अद्भुत नजारा, भक्तों ने समुद्र किनारे मिट्टी के दीपक जलाकर पूजा अर्चना की। पुरी में बलभद्र की जयंती पर श्री जगन्नाथ मंदिर की आरती की गई, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। बिहार के बांका में सावन पूर्णिमा पर ज्येष्ठ गौर नाथ महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। ज्येष्ठ गौरनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आई, भक्तों ने लगाए बम बम भोले की जयकारे। फतेहपुर शेखावटी में श्रावणी उपाखर महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हेमाद्री स्नान और आत्मशुद्धि की निभाई गई परंपरा, लोगों ने किया हेमाद्री स्नान। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोल्डन टेंपल में मत्था टेका, भगवान का आशीर्वाद लिया। जबलपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट के लिए किया भूमि पूजन, सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। ओडिशा के गंजम में सीएम मोहन चरण मांझी ने धवलेश्वर मंदिर की परिधि विकास परियोजना का उद्घाटन किया, कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। संभल में प्रशासन ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को दी बड़ी सौगात, 21 महिलाओं को मिला आवासीय भूमि का पट्टा। मालदा में मंत्री सुकांता मजुमदार ने अरोधपुर में नए केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ भवन का उद्घाटन किया, कहा बच्चों को मिलेगी अच्छी सुविधा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्लीवासियों को दी बड़ी सौगात, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सोलह अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म राणाबाली, इंटरनेशनल एक्टर आर्नोल्ड वोस्लू की अहम भूमिका। अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म कोसला का घोसला 2 रिलीज, लगभग 20 साल बाद आ रही सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कल ओटीटी पर होगी स्ट्रीम, नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाएगी। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी बॉबी देओल की बंदर, Z5 पर होगी स्ट्रीम। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। सुमित व्यास, नीना गुप्ता, देविन बिजानी और अमारा मसूर अहम रोल में। दुनिया भर में आसमान में दिखा चंद्रग्रहण का अद्भुत नजारा, अमेरिका से यूरोप तक खगोलीय नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, 96% चांद पर धरती की शान। लाल रंग में बदला चांद, मंत्रमुग्ध हुए लोग, रियो में आसमान की ओर चकचकी लगाए देखते रहे लोग ये नजारा। बोलिविया में 3000 मीटर की ऊंचाई पर शानदार नजारा, टेलीस्कोप से चांद को निहारते दिखे स्काई वॉचर्स। अमेरिका कनाडा के में लालिमा लिए नजर आया चांद, सेनेगल में आधी रात के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, ट्यूनिशिया में 93% तक ढका चांद। एथेंस में एक्रोपोलिस के ऊपर दिखा चंद्रग्रहण, रोम में सेंट पीटर्स बसिलिका के ऊपर चमका चांद, स्पेन में कई इलाकों में दिखा खगोलीय नजारा। ब्राजील में चंद्रग्रहण का भव्य नजारा, रियो प्लेनेटोरियम में उमड़ी लोगों की भीड़, टेलीस्कोप से चांद निहारते दिखे लोग। मैक्सिको सिटी में भी दिखा चंद्रग्रहण का शानदार नजारा, रेवोल्यूशन मॉन्यूमेंट के ऊपर दिखा ग्रहण का चांद। चंद्रग्रहण ने रात को बना दिया यादगार, पहली बार चंद्रग्रहण देख भावुक हुए लोग, खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आए। ग्रीस के आसमान में दिखा खूबसूरत चंद्रग्रहण, इस विभव तस्वीर आई सामने, पूर्णिमा के चांद पर उमड़ी पड़ी धरती की छाया। एक्रोपोलिस के ऊपर दिखा अद्भुत नजारा, रात के आसमान में धीरे धीरे बदला चांद का स्वरूप। स्पेन में दिखा आंशिक चंद्रग्रहण, ग्रेनेडियर में लाल हुआ चांद, धरती की छाया से ढक गया चांद। आसमान में दिखा बेहद खूबसूरत नजारा, टेलीस्कोप से चांद को निहारते दिखे लोग, स्काईलाइन के ऊपर चमका ग्रहण का चांद। अमेरिका कनाडा में भी चंद्रग्रहण का खूबसूरत नजारा, ब्लड मून को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। लाली मन में नहाया चांद बना आकर्षण का केंद्र, वैंकूवर में इमारतों के ऊपर दिखा चंद्रग्रहण। आसमान में धीरे धीरे बदला चांद का रंग, अनहाइड में पेड़ों के पीछे चमका ब्लड मून। फ्रांस में ड्रैगन बॉल थीम पार्क को लेकर फैंस का उत्साह, पेरिस के पास बनेगा विशाल ड्रैगन बॉल पार्क। मैक्रोबिन सलमान की

0: का भी प्रेरणा। सऊदी अरब ड्रैगन बॉल थीम पार्क के निर्माण में करेगा निवेश, 6 अरब यूरो के निवेश से बदलेगी तस्वीर। युवाओं को जोड़ने के लिए सऊदी अरब का बड़ा दाव, कीड़िया से पेरिस तक ड्रैगन बॉल का विस्तार। चीन के रोबोट्स ने बनाया इतिहास, रोबोट्स ने उसेन बोल्ट का 100 मीटर रिकॉर्ड पछाड़ा। यूसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड के रिकॉर्ड से भी तेज बीजिंग में रोबोट्स की रफ्तार ने सबको चौंकाया। ह्यूमन रोबोट की स्पीड ने मचाई हलचल, रोबोट्स की तेज चाल बनी प्रतियोगिता का आकर्षण। चीन की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ने दिखाई ताकत, रोबोट्स ने छोटे छोटे तेज कदमों से रचा इतिहास। बैलेंस बनाए रखने के लिए रोबोट बढ़ाता है कदमों की रफ्तार, मोटर और सॉफ्टवेयर ने रोबोट्स को दी जबरदस्त स्पीड, 400 मीटर रेस में भी रोबोट्स ने दम दिखाया। रोबोटिक्स और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का नया संगम, बीजिंग में 2000 से ज्यादा रोबोट्स का मुकाबला, रोबोट्स ने दौड़ से लेकर जिम्नास्टिक तक में दिखाए हुनर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: रुद्रप्रयाग में भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह स्थली अब आस्था के साथ साथ शादियों के लिए भी खास पसंद बनती जा रही है और यहाँ बड़ी संख्या में जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल जुलाई तक 1,500 से ज्यादा जोड़ों ने यहाँ पर विवाह किया है। यानी शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी इस पावन धरती पर सात फेरे लेने का चलन अब तेजी से बढ़ रहा है।

0: से नए जोड़े आकर विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। अनंत आस्था की प्रतीक सदियों पुरानी अखंड धुनी नए जोड़े के विवाह की साक्षी बन रही है। वक्त के साथ इस मंदिर में विवाह का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल जुलाई तक 1500 से ज्यादा शादियां यहां संपन्न हो चुकी हैं।
1: 1564 शादियां वहां पर हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी नए जोड़ों को जो वहां पर शादी करने में विश्वास रखते हैं। भगवान से भी यही प्रार्थना है कि वो दिलबुगरी रात चौधरी विनती करें। वहां पर इन शादियों से रोजगार भी हमारा बड़ा है। हमारे स्थानीय जो वहां पर परंपरागत मंदिर में सेवा देते हैं उनमें वो पानी वहां पर रोजगार बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है।
0: मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिव्य विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई, जबकि भगवान ब्रह्मा ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया। इस पौराणिक आस्था को महसूस करने के लिए आज भी नौ दंपति त्रियुगी नारायण पहुंचते हैं और अखंड धुनी को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं।
2: यहाँ पे जितनी भी शादी बारात होती है हमारे गांव के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिलता है। तीर्थ पुरोहित हो गए, चाहे होटल वाले हो गए, चाहे दुकानदार हो गए, चाहे गांव की महिलाएं हो गए, कीर्तन हो गए, मंडल कीर्तन और भजन, चार गांव की समूह की महिलाएं, सबके लिए बहुत अच्छा रोजगार मिलता है। और जितने भी तीर्थ यात्री केदारनाथ जाते उनमें से अधिक यात्री यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं।
3: यहाँ पर जो भी बरातें होती है उससे जो है कि स्थानीय पुरोहित लोगों को, स्थानीय दुकानदारों को, होटल व्यवसायों को, स्थानीय महिलाओं को काफी जो है कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम जो है किसी यात्रियों से, प्रदेशवासियों से, समस्त देशवासियों से सभी से प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर जो है शादी का जो है अपना शादी का प्रोग्राम बनाए यहाँ पर और भगवान नारायण का आशीर्वाद लें।
0: त्रियुग्नी नारायण मंदिर की ख्याति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 22 अप्रैल से अब तक 35,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से यहां होटल और होम स्टे की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिली है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
10: राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, प्रधानमंत्री मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थलसेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने मिठाई खिलाई। शिरडी के साईं दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साईं बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही है राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएंगी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का साक्षी बना ये मंदिर अब आस्था के नए कीर्तिमान का गवाह भी बन रहा है। रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर दिन यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। मान्यता है कि भगवान नारायण के इस मंदिर में महादेव और माता पार्वती ने सात फेरे लिए थे। अब इस पवित्र धाम में देश भर

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं भाद्रपद के महीने के बारे में। भाद्रपद का महीना शुरू होने जा रहा है, तो इस महीने के दौरान आप क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो इसका भरपूर फायदा आपको देंगे और आपके जीवन में इसका फायदा भी मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे। राशियों के बारे में हम बातचीत करेंगे, आगे जाकर आपके सवाल भी इस शो में शामिल करेंगे। महामंत्र के बारे में भी अंत में जाकर पंडित जी आपको बताएंगे। बहुत कुछ है इस शो में डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है आपके लिए।
1: अगर संतान प्राप्ति में आपको समस्या आ रही है तो पूरे भाद्रपद के महीने में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, संतान प्राप्ति की कामना आपकी पूरी होगी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 29 अगस्त 2026 शनिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। जैसे कि हमने आपको बताया, भाद्रपद माह के बारे में हम बातचीत करेंगे इस शो में पंडित जी के साथ। तो सबसे पहले सवाल यही है कि क्या है भाद्रपद का ये महीना और पंडित जी इसकी महिमा क्या होती है।
1: जी, भाद्रपद का महीना आरंभ होने जा रहा है और आज के कार्यक्रम में हम आपको भाद्रपद महीने से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद के महीने की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद दो शब्दों से मिलकर बना है, भाद्र और पद। भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। भाद्रपद का महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए सबसे बढ़िया महीना, सबसे उत्तम महीना भाद्रपद का महीना है। मन को शुद्ध करने में और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है, गणेश महोत्सव मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। यानी भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण की कृपा और भगवान गणेश की कृपा आपको बड़े आसानी से मिल सकती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये 26 सितंबर तक रहेगा। तो जितने दिन भाद्रपद का महीना रहेगा उतने दिन भाद्रपद महीने के नियमों का पालन आपको करना चाहिए।
0: चलिए, इसके बारे में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इसी मुद्दे के साथ जुड़े हुए, पंडित जी से आगे जाकर वो तमाम सवाल हम पूछेंगे। लेकिन अब आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
1: मेष राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा पर जा सकते हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए, भाद्रपद माह के बारे में आपको बताते हैं। सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और पंडित जी आपके सामने रखती हूँ। वो सवाल ये है कि भाद्रपद महीने के बारे में तो आप बता रहे हैं, इसकी महिमा क्या है आपने बताया, अब ये बताइए कि भाद्रपद महीने के बीच में कौन से नियम और सावधानियां हमें बरतनी जरूरी है।
1: अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और भाद्रपद महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करिए। जो भी खाइए उबाल कर या पका कर अच्छी तरह से तब खाइए, क्योंकि इस समय कच्चे फलों में सलाद में इन्फेक्शन हो सकता है। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। भाद्रपद में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, रक्तचाप आपका बढ़ सकता है, इसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है, इसीलिए शीतल जल से दोनों समय स्नान करें ताकि आपका आलस्य दूर हो जाए। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिएगा और तुलसी दल को चाय में या दूध में अगर आप उबाल करके पिए तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। तो भाद्रपद के महीने में सलाद खाने से, कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। और सामान्य नियम ये है कि भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: चलिए आपके सवाल भी इस शो में आगे जाकर शामिल हम करने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। लेकिन राशिफल पर आते हैं और कर्क सिंह और कन्या वालों के बारे में पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
1: कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार में शांति बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए शामिल करते हैं आप सबके सवालों को इस शो में। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आपको एक बार सूचित कर देती हूं कि आप भी कोई भी प्रश्न अगर भेजना चाहते हैं इस शो में अपने तमाम सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आपकी टीवी स्क्रीन्स पर है, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल इस शो में भेजने हैं। चलिए बढ़ते हैं पंडित जी पहले प्रश्न की तरफ।
1: जी, आज का पहला प्रश्न ममता जी ने हमें लिखा है और ममता जी हमें अलीगढ़ से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 12 अगस्त सन 2000, जन्म का समय रात में 10:35, जन्म स्थान है अलीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी? ममता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में जाने की इनकी संभावना कमजोर है। मैं आपको कहूंगा कि आप अपने बेटे को मैनेजमेंट या कंप्यूटर जैसी कोई पढ़ाई करवा दीजिए। मैनेजमेंट या कंप्यूटर की पढ़ाई करवाने से उसमें आगे चल करके ये अच्छा करियर बना सकेंगे। केवल गवर्नमेंट जॉब के भरोसे इनको सफलता नहीं मिल सकेगी। इनका करियर और जीवन बेहतर हो उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना धारण करवाएं, और दूसरे नंबर पर इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है दूसरा सवाल और कौन से दर्शक का है दूसरा सवाल।
1: जी अगला प्रश्न सीमा जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1989, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म स्थान है बागपत में, लिखती हैं गुड़गांव से। ये कह रही हैं कि मेरे करियर में बहुत सारी अड़चने रुकावटें आ रही हैं और मैं काफी समय से नौकरी बदलना चाह रही हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा करियर कैसा रहेगा? सीमा जी, आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर आप प्रयास करें तो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चली जाएंगी। आने वाला समय करियर के लिहाज से आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। देखिए, काम का प्रेशर अभी रहेगा आपके ऊपर, आप नई नौकरी में जाएंगी तो वहां भी रहेगा, उसको लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जो नई नौकरी मिलेगी उसमें आपकी तरक्की बेहतर दिखाई दे रही है। एक मोती बनवा के पहने, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
0: चलिए भाद्रपद माह के बारे में हम लगातार जानकारियां आपको दे ही रहे हैं। पंडित जी से सवाल एक और लेते हैं। पंडित जी, सवाल यह है कि भाद्रपद माह के व्रत और त्योहार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
1: हर महीने के अपने व्रत और त्योहार होते हैं, तो भाद्रपद महीने के व्रत, पर्व और त्योहार कौन से हैं? देखिए, भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, श्री बलराम और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी भाद्रपद महीने में आता है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं और इससे अनंत पुण्य मिलेगा ऐसा माना जाता है। तो टेक्निकली अगर आप देखिए तो भाद्रपद के 2 हिस्से हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, इसीलिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश महोत्सव मनाया जाता है।
0: चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, संपत्ति की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन लाभ के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, भाद्र माह की हम बात कर रहे हैं तो इसी महीने में हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा भी हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो कृपा पाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा वो आपसे जानेंगे।
1: जैसा आपको पहले बताया कि भाद्रपद महीने का संबंध है भगवान कृष्ण के साथ और भगवान गणेश के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा भाद्रपद में कैसे मिलेगी? भाद्रपद के महीने में वैसे तो दही का प्रयोग वर्जित है, लेकिन अगर भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, जो 15 दिन कृष्ण पक्ष के हैं, अगर आप भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत अर्पित करें, तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को इस महीने या तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, उनका जन्म कराना चाहिए, या कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। 11वें अध्याय का इसका पाठ करना शुभ परिणाम देगा। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आप चाहें तो लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जप आप कर सकते हैं।
0: चलिए पंडित जी से एक और प्रश्न लेते हैं। पंडित जी, सवाल आपके सामने ये है कि भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस महीने में भाद्र माह में कौन कौन से अचूक उपाय किए जा सकते हैं?
1: देखिए, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में मुख्यतः भगवान गणेश की पूजा होती है, उसके लिए क्या करें? विद्या बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की उपासना करें, पीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करें, रोज सवेरे उनको दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में रोज सुबह उनकी पूजा करें, पूरे महीने सात्विक रहें। अगर आप पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो हर प्रकार की बाधा आपकी दूर होगी और जीवन की तमाम मुश्किलें बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। तो कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करें और शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा करें। भगवत गीता का पाठ या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ पूरे भाद्रपद महीने में करना शुभ होगा।
0: चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और अब बारी आ जाती है मकर कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं पंडित जी से ही कि इन सबके भाग्य में आज क्या लिखा है। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
1: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि अगला प्रश्न इस शो में कौन से दर्शक का आया है। पंडित जी
1: जी, अगला प्रश्न विजय प्रताप जी ने हमें लिखा है और विजय प्रताप जी हमें पुणे से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1975। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। विजय जी कह रहे हैं कि मेरा जो परिवार है वो मुंबई में रहता है और मैं पुणे में नौकरी कर रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं चाहता हूँ कि नौकरी में परिवर्तन हो सके ताकि मैं मुंबई जाकर अपने परिवार के साथ रह पाऊँ। ऐसा कब से होने की संभावना मेरे जीवन में दिखाई दे रही है। विजय जी, अभी तो थोड़ा समय लगेगा। जून 2027 के बाद आपकी नौकरी बदलेगी और आप दोबारा से अपने परिवार के पास, अपने परिवार के साथ जा करके रह सकेंगे। 2027 के जून के बाद ये संभावना आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो सेहत को लेकर परेशान मत हो, थोड़ा तनाव कम कर लें, आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है इस शो में।
1: जी अंतिम प्रश्न अविनाश शर्मा जी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखते हैं। अविनाश जी की जन्म तारीख है 27 मार्च 1981, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म का स्थान है बदायूं, में लिखते मेरठ से। अविनाश जी कह रहे हैं कि एक मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा है और उस मुकदमे को लेके काफी समय भी हो गया है, उसमें कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो मुझे मुकदमे से मुक्ति कब तक मिलेगी, इसका समाधान कब तक होगा। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से आपके मुकदमे का निपटारा साल 2027 में होगा, अप्रैल से दिसंबर के बीच में, और जो मुकदमे का निपटारा होगा वो आपके पक्ष में रहेगा, आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं इतना कहूंगा कि बेवजह का वाद विवाद, बेवजह की झगड़े लड़ाई और बेवजह के क्रोध से बचिए, क्योंकि अप्रैल 2027 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें, सुबह के समय जल में हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
0: चलिए पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका गुड डे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: जन्मदिन 29 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, साल के अंत में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है।
0: हमने आपको बताया कि भाद्रपद के महीने में दही नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? देखिए, दही जो है वो एक विशेष बैक्टीरिया से बनती है, लैक्टोबैसिलस। भाद्रपद में ये बैक्टीरिया दही को जल्दी खराब कर देता है, जिससे दही का जल्दी पच पाना कठिन होता है, फूड पॉइजनिंग, पेट की और त्वचा की दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए भाद्रपद में दही का प्रयोग करने को मना किया जाता है।
1: पंडित जी से जानकारी लेते हैं अब 29 अगस्त 2026 शनिवार के शुभपहर के बारे में।
0: दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 अगस्त शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, वो पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के अंदर कौन सी गड़बड़ियां होती हैं और क्या सुधार करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। आपको बदला लेने की आदत और बेवजह चिंता करने की आदत से बचना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक होने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए, तमाम उपाय और इस शो से जुड़े हुए तमाम सवालों के बारे में पंडित जी ने आपको जवाब दे दिए हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है, वो जानेंगे।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे। रोज सवेरे जल में जरा सा गुड़ मिला करके शिव जी को जल चढ़ाइए। दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पूजा स्थान पर लाल कपड़े में बांध कर या लपेट कर तांबे का एक सिक्का रखकर प्रार्थना करिए कि आपका रिश्ता जुड़ जाए, आपका जो रिश्ता टूट रहा है वो बच जाएगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: चलिए, इसी के साथ इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: चलिए बात बप्पा के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों की कर लेते हैं। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां इस वक्त पूरे देश में चल रही हैं। मुंबई से लेकर देश के अलग अलग शहरों में गणेशोत्सव की तैयारियां अंतिम रूप में हैं। अब बस इंतजार 14 सितंबर का है, जब पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा।

0: गीली मिट्टी पर चलती उंगलियां, छेनी की हर एक बारीक चोट और फिर आकार लेता विघ्नहर्ता का ये पावन स्वरूप। ये सिर्फ मिट्टी को ढालने की कला नहीं, बल्कि बेजान पत्थरों और माटी में भगवान को गढ़ने की वो तपस्या है जो हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे मूर्तिकार दिन रात बप्पा की मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं। अलग अलग आकार की प्रतिमा इन दिनों रौनक बढ़ा रही है। कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। गणपति के चेहरे की बारीकियां, मुकुट की नक्काशी, मूर्ति के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने में कलाकार जी जान से जुटे हैं। कलाकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन इस बार अकोला से आस्था और कला की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का बड़ा संदेश भी दे रही है।
1: घरेलू गणपति महाराष्ट्र में सबसे अधिक विराजमान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अपनी भक्ति आराधना साधना के साथ बाप्पा की 10 दिन मनोभावे पूजा भी अच्छी तरीके से हो और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। इसी को लेकर जो है अकोला की पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव जो है पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है इस पर्यावरण पूरक बाप्पा की प्रतिमाएं जो है निर्माण कर रही है।
0: अकोला में साडू मिट्टी से तैयार की जा रही प्रतिमाएं इन दिनों डिमांड में है, क्योंकि विसर्जन के बाद साडू मिट्टी पानी में आसानी से घुल जाती है और प्रदूषण का खतरा खत्म हो जाता है।
2: पिछले 5 साल पहले मैंने देखा कि जैसे गणपति का विसर्जन होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति गलती नहीं है और वो वैसे पड़े रहती इधर उधर, तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं ऐसा सोची कि अपन क्यों ना मिट्टी से बनाए गणपति, और इतना हर महाराष्ट्र में हर घर में गणेश बैठाते हैं और मूर्तियां इतने प्रमाण में बिकती है और विसर्जित होती नहीं है, उससे पानी का भी नुकसान है, पानी की भी कमी है अकोला में।
0: मूर्तिकार कल्पना राव पिछले 5 सालों से साडू मिट्टी से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं बना रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि कल्पना इन प्रतिमाओं पर कोई मुनाफा नहीं कमाती बल्कि सिर्फ लागत मूल्य पर मूर्तियां भक्तों को सौंपती हैं।
2: और मेरे जितने पहचान वाले मैंने सबसे आग्रह किया कि आप लोग साडू माता की मिट्टी की मूर्ति बनाइए और उसको घर पे विसर्जन करिए, और मान सम्मान के साथ सनातन धर्म में अपना पूजा पाठ को महत्व है, तो घर में हाथ से बनी मूर्ति रहेगी, आप लोग घर में विसर्जन करिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे को ये बिजनेस जैसा नहीं है, मेरी श्रद्धा है और पर्यावरण पूरक, मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ पे अपना पर्यावरण को बचाना है।
0: जैसे जैसे बप्पा के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वैसे तो देश के कोने कोने में बप्पा की मूर्तियाँ बनती है, लेकिन राजस्थान के अलवर में काली मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों की बात ही कुछ अलग है। अपनी खास इको फ्रेंडली बनावट के कारण अलवर की इन गणपति मूर्तियों की मांग सिर्फ भारत के शहरों में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक है।
3: गणपति महोत्सव में अलवर की गणपति जी की मूर्तियां विराजमान होती हैं। अलवर की मिट्टी से तैयार होने वाली मूर्तियां देश ही नहीं पूरे विदेश में भी अपनी खास पहचान रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार मूर्ति बनाने का काम जोरों से चल रहा है, रात दिन कारीगर मूर्ति बना रहे हैं और उसके बाद इन मूर्तियों को अलग अलग जगह डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाता है।
0: प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए खतरा होती हैं, लेकिन अलवर की चिकनी काली मिट्टी पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे कूट कर, छान कर और कई दिनों तक भिगो कर सांचों में ढाला जाता है। पानी में जाते ही ये मूर्ति पूरी तरह घुल जाती है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अलवर और आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा कारीगर साल भर इस काम में जुटे रहते हैं। ये मूर्तियाँ खास ऑर्डर्स पर तैयार होती हैं और यूरोप, स्पेन और नेपाल समेत 15 से ज्यादा देशों में अपनी छटा बिखेरती हैं।
4: जी अपने पास देखो नेचुरली मिट्टी होती है जो खेतों और बांधों से जरिए आती है, उस नेचुरली मिट्टी के द्वारा भी हम गणपति की मूर्तियाँ रेडी करते हैं, और अपने पास 4 इंची से लेकर 5-6 फीट तक की मूर्ति अवेलेबल हो सकती है। मिट्टी को सबसे पहले तो इसको छानना पड़ता है, छानने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए फिर इसके एक मोल्ड होता है, जो उसको मोल्ड में डालने के बाद इसको निकालने के बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के बाद इसके हाथ और सूंड वगैरह वो अलग से लगाए जाते हैं, तो इसको मतलब बनाने के प्रोसेस तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के समथिंग आता है।
0: बप्पा के आगमन की तैयारी कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जोर शोर से हो रही है, जहां इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। कर्नाटक के तेनकाशी में कलाकारों का हुनर और कारीगरी लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ भगवान गजानन की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तियों पर की गई कलाकारी देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर यहाँ गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी इस बार बप्पा का स्वागत भव्य भी होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी। गणपति उत्सव मुंबई के जिक्र के बिना अधूरा है। देश भर में भले ही गणपति उत्सव की रौनक है, लेकिन मुंबई में इस मौके पर भक्तों का जोश और जज्बा अलग ही होता है। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा की अलग अलग स्वरूपों वाली प्रतिमाओं की डिमांड है, लेकिन भगवान शिव और कृष्ण स्वरूप वाली मूर्तियां सबसे ज्यादा ट्रेंड में है।
5: ये टाइम पे बैलेंसिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बैलेंसिंग मूर्तियां बहुत ज्यादा देखने मिली है।
6: अच्छा, और जैसे अलग अलग रूप होते हैं, अवतार होते हैं, नरसिम्हा रूप हो गया या फिर किसान का रूप हो गया, क्या
5: शिवजी अवतार और कृष्ण अवतार बहुत ज्यादा ये टाइम पे फेमस है।
6: अच्छा, इस वजह से भी क्या, क्योंकि श्रावण भी चल रहा है?
5: ऐसा कुछ नहीं है,
6: क्योंकि श्रावण में लोग थोड़ा सा क्या है कि श्रावण में भी शिव जी को चार
5: जी तो हमेशा मतलब रहते हैं फेवरेट, बट शिव जी और कृष्ण की मूर्तियां ज्यादा चल रही है।
0: एक तरफ कलाकार अपनी कला से बप्पा के सुंदर स्वरूप को आकार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इको फ्रेंडली गणपति की बढ़ती मांग एक नई सोच की तस्वीर पेश कर रही है। अब इंतजार 14 सितंबर का है, जब बप्पा का दरबार सजेगा और भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर होगा। अकोला से धनंजय साबले, अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब आज सिर्फ एक दिन के लिए आयोजित होने वाली छोटी अमरनाथ यात्रा की, पूरे दिन धर्म भक्ति और अध्यात्म के इस मार्ग पर बम बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष गूंजता रहा। बांदीपोरा के कालूसा में मौजूद शारदा माता मंदिर से पवित्र गुफा महादानेश्वर मंदिर तक यात्रा निकाली गई। करीब 15 किलोमीटर लंबे आस्था के इस मार्ग पर कुल 108 श्रद्धालु चले।

जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के दर्दपोरा गांव के घने जंगलों के बीच एक पवित्र गुफा तक पहुंचना इन श्रद्धालुओं का लक्ष्य है। ये पवित्र गुफा महादानेश्वर मंदिर है, जिसे लोग छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा की तरह इस गुफा के अंदर बनने वाला प्राकृतिक हिमलिंग यानी पवित्र शिवलिंग छत से टपकने वाली पानी की बूंदों के जमने से बनता है। अनन्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से चलने वाले हर शिव भक्त का उद्देश्य इसी पवित्र शिवलिंग का दिव्य दर्शन करना है। पवित्र शिवलिंग को भगवान शिव के निराकार और साक्षात स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों को असीम शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है।

0: 15 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करके शिव भक्त इस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। हर साल बर्फ की वजह से प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में आने वाले शिवलिंग के दर्शन से श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इस पवित्र यात्रा के लिए बांदीपुरा के कालूसा में मौजूद शारदा माता मंदिर में पहले पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को बसों के जरिए से अरिंदाडपुरा के लिए रवाना किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदीपुरा के ADC जफर हुसैन और SSP बांदीपुरा की मौजूदगी में यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई।
1: बम बम बोले, बम बम बोले।
0: इस साल की छोटी अमरनाथ यात्रा में कुल 108 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इनमें हर आयु वर्ग के श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी शामिल रहे। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए करीब 15 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा, सृजन और विसर्जन का आधार है। यही वजह है कि महादानेश्वर मंदिर में प्रकट होने वाले पवित्र शिवलिंग के दर्शन को भी पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है।
2: बिल्कुल खूब नहीं है, एकदम खूब की कोई बात नहीं है। माहौल बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमें पहले होता था, और उम्मीद है कि जो इस साल यात्री है उससे ज्यादा यात्री हमें अगले साल को देखने को मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत फर्क है। मेरी यात्रियों से ये अनुरोध है कि आप आ जाए और इस यात्रा में शामिल हो जाए अगले साल। डरने की कोई बात नहीं है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अरेंजमेंट जो हमारे पास है और ज्यादा तैयार कर लें कि आने वाले टाइम में आप अच्छा यात्रा कर सकते हैं।
0: ये यात्रा बांदीपुरा के कालूसा से शुरू होकर अरिंदाडपुरा और शमथान के रास्ते होते हुए घने जंगलों में मौजूद छोटा अमरनाथ गुफा तक जाती है। अमरनाथ जी की यात्रा ज्यादा ऊंचाई, ठंड और कठिन चढ़ाई की वजह से काफी मुश्किल मानी जाती है। ऐसे में जो भक्त कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लंबी दूरी की वजह से मुख्य अमरनाथ यात्रा पर जाने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये यात्रा एक सुगम और पुण्यदायी विकल्प के तौर पर मानी जाती है।
3: फिलहाल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, स्पेशली इतना बढ़िया क्राउड और पूरा बांदीपुरा का एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, तो इट्स सेफ।
0: यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा के समापन के दिन आयोजित होने वाली छोटी अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में भी वही उत्सुकता होती है। प्रशासन की तरफ से ट्रैकिंग रूट पर खाने पीने की व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं की खास व्यवस्था होती है।
4: हर साल की तरह इस टाइम भी आज का दिन दो था, दैट वाज अबाउट छोटा अमरनाथ यात्रा जो यहाँ से जाती है पवन मंदिर तक। ये हर साल तक होती है और सेम तरीके पे आज भी हुई थी। तो जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर इसमें इंतजाम किए थे, जिसमें चाहे सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजाम है, जिसके SPs भी हैं यहीं पे मौजूद हैं, और या बाकी इंतजाम करने पड़ते हैं, चाहे वो ट्रैक बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो पानी का इंतजाम है, चाहे हॉस्पिटल की या SDRF की या बाकी सारे जितने भी इंतजाम करने की ज़रूरत थी, वो हमने कोशिश की है। लास्ट टाइम जो हमने किए थे उससे बेहतर आज करने की कोशिश की थी।
0: दरअसल रक्षाबंधन के दिन ही छड़ी मुबारक यानी भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुख्य अमरनाथ पवित्र गुफा तक पहुंचती है, जहां साल की आखिरी पूजा होती है। छड़ी मुबारक को अमरनाथ यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक माना जाता है।
5: अमरनाथ गुफा की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही अब की बार जो है इस साल की अमरनाथ यात्रा सम्पन्न हो गई है। अब की बार अमरनाथ यात्रा में 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज अपने अंत तक पहुंच गई। छड़ी मुबारक जो कि एक रीति है, आज रक्षाबंधन के दिन जो है वो अमरनाथ गुफा ली जाती है और वहां पर इस छड़ी मुबारक की पूजा होती है, और उसी के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो कि पुंछ में होती है वो भी संपन्न हो गई है, और छोटा अमरनाथ यात्रा जो कि मात्र एक दिन की यात्रा है जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके गुरेज में पिछले कई सालों से की जाती है, वो भी आज ही संपन्न हो गई। अब की बार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए राहत की सबसे बड़ी बात ये थी कि अब की बार यात्रा न सिर्फ सफल रही बल्कि सुरक्षित भी रही। बिना किसी घटना के अब की बार इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी राहत की सांस ले ली है।
0: मुख्य अमरनाथ यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित होने वाली छोटी अमरनाथ यात्रा को शांति और सद्भाव बढ़ाने का प्रतीक भी माना जाता है। श्रीनगर से अश्रवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ एक नेक संदेश दिया। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया।
1: तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
2: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
1: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
3: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सके जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
1: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
3: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
1: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
4: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं है।
1: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल

0: भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी

0: सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आप सभी को रक्षाबंधन की सबसे पहले तो जीएनटी की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से देशभर में मनाया जा रहा है। देशभर में राखी की रौनक है, बाजार गुलजार हैं, मिठाई की दुकानों पर भीड़ है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई समेत तमाम जगहों से आज सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस त्योहार के उल्लास को बयां करती ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। देश की सरहद पर भी बहनों की राखी और ढेर सारा प्यार पहुंचा है। किसी ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो किसी ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई। इसी दौरान बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित की गई। तो जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देशभर से आई राखी के तमाम रंग समेट कर दिखा रहे हैं।

करम सूत्र बध्नाति हृदयम तु स्नेह, यानी सूत्र कलाई या हाथ को बांधता है किंतु स्नेह हृदय को बांधता है। स्नेह की डोर से हृदय को बांधने वाली तस्वीरें आज दिन भर देश के कोने कोने से आई और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, आज देश में दिन भर राखी के रंग बिखरे रहे। शहर शहर, घर घर, बहनों ने भाई की कलाई राखी से सजाई। तो वही भारत माँ की रक्षा करने वाले सीमा पर तैनात सपूतों की कलाई पर भी रेशमी डोर जगमगाई। इसी बीच रंग बिरंगे धागों संग अगाध आस्था के भावों को पिरोकर आराध्य के दर पर रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला भी खूब चला। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां उज्जैन के राजाधिराज महाकालेश्वर के दरबार में राखी की रौनक खूब बिखरी। रक्षाबंधन पर महाकाल की विशेष पूजा हुई, भगवान को भक्तों ने राखी अर्पित की। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू करने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान यहां बाबा महाकाल को 2 फीट की ये शानदार राखी बांधी गई। इस राखी को मंदिर के पुजारी के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया था। राखी अर्पित करने के बाद महाकालेश्वर भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। ये विशेष लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से तैयार किए गए थे। भोग के बाद लड्डुओं का प्रसाद भक्तों के बीच बांटा गया।

राखी की ऐसी ही सुंदर तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई, जहां भगवान खजराना गणेश को 40 बाय 40 इंच की विशालकाय और भव्य सनातन राखी अर्पित की गई।

पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजाना गणेश के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया। इस राखी को 10-15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आई।

राखी की रौनक काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खूब नजर आई। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के दौरान विशेष रक्षा सूत्र अर्पित किया गया। देवादिदेव महादेव को राखी बांधकर संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। काशी जैसी ही रौनक रामलला की अयोध्या में भी दिखी। अयोध्या में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कलाई पर सजाने के लिए उनकी बड़ी बहन शांता की राखी पहुंची।

यह राखी एक पौराणिक संबंध का प्रतीक है। देवी शांता राजा दशरथ की पुत्री और ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। पौराणिक मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि की पुत्रेष्टि यज्ञ से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी संबंध को निभाते हुए बहन शांता की ओर से श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हर साल भव्य शोभा यात्रा के जरिए ये राखियाँ भेजी जाती हैं।

0: राखी की रौनक के बीच ही सावन पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में पवित्र डुबकी लगाने अयोध्या पहुँचे। उधर कान्हा की ब्रज भूमि में भी राखी की धूम रही। रक्षाबंधन पर्व पर भगवान बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने लाडले कान्हा को राखी बांधने के लिए बहनें आतुर दिखी। मंदिर के भीतर और बाहर लगी लंबी कतारों में हाथों में प्रसाद और राखियां लिए भक्त सुबह से ही खड़े नजर आए। पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल की जयकार से गूंजता रहा। ये तस्वीर एमपी के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर बालाजी धाम से आई है, जहां राखी के दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। हमारे देश में गुरु, मार्गदर्शक और साधु संतों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। यही वजह है कि इस विशेष अवसर पर मठों, आश्रमों और मंदिरों में भक्त हाथों में राखी थामे उमड़ पड़ते हैं। राखी के मौके पर बागेश्वर धाम में भी भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इस मौके पर कई श्रद्धालु इंग्लैंड, कनाडा और यूएई से भी बाबा बागेश्वर को राखी बांधने पहुंचे थे। दोपहर तक आलम ये हो गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ राखियों से इस कदर लग गया कि उनकी कलाई और बाह पर राखी बांधने की जगह ही नहीं बची। लेकिन वे भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए सबका रक्षा सूत्र स्वीकार करते रहे।
1: भाई बहन का प्यारा त्योहार है, जहां रोली है, चंदन है, भाई बहन के प्रेम में सबका अभिनंदन है। इस पावन रक्षाबंधन के उत्सव पर हम संपूर्ण भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज बागेश्वर धाम पुण्य भूमि पर हमारी हजारों बहनें, जिनके कोई भाई नहीं, किसी के भाई हैं तो बुलाते नहीं, वो सभी बहनें हर रक्षाबंधन को राखी बांधने आ जाती हैं। उसी कारण से यह रक्षाबंधन के उत्सव पर बहनों के प्रेम का प्रतीक धागा, उत्साह का प्रतीक धागा, जिसमें बचपन की यादें छिपी हैं, प्रेम छिपा है, केवल ये राखी नहीं है, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था। हमने उन्हें वचन दिया, इस देश में बेटियों के ऊपर उंगली उठाने वालों के खिलाफ पुरजोर तरीके से हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम पूरे भारत के भाइयों से प्रार्थना कर रहे, अपनी बहन को राखी बांधने के बदले आप कुछ रुपया, दक्षिणा, पैसा, गिफ्ट दें या ना दें, उन्हें वचन जरूर दें कि इस देश में बेटियों का कोई अपमान नहीं कर पाएगा।
0: हजारों आस्थावानों ने मंगल कामना के साथ बाबा बागेश्वर को रक्षा सूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कई भक्त बेहद भावुक नजर आए।
1: पल को अपने मुख से कह पाना बहुत कठिन है। ऐसी बहन भी आज एक आई जिन्होंने 22 साल से राखी नहीं बांधी, उनके भाई बुलाते नहीं, 22 साल हो गए। आज 22 वर्ष बाद उन्होंने राखी बांधी तो वो रो पड़ी, तो उस भावुक पल को देखकर हमें ये सौभाग्य मिला तो हमारी भी आंखें डबडबा गईं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आज के दिन भगवान ऐसी कृपा करें किसी भी भाई की कलाई सूनी ना रहे।
0: राखी की ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश से ही आई है। एमपी के नीमच में कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि मिनिएचर वाले इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया, जिस पर उकेरा गया मंदसौर में ही मौजूद प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी ज्योतिर्लिंगों के बीच एमपी की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई दी। इस खास राखी में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्यार ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रति आस्था और कलाकार की उत्कृष्ट कारीगरी भी एक साथ देखने को मिली। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी बनाई। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनाई गई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। इस महाराखी में देशभक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश निहित है। त्योहार की छटा देश के सुदूर कोनों तक किस तरह छाई रही, उसकी वानगी झारखंड के जंगलों से आई ये तस्वीर बयान करती है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टूडू और उनकी टीम ने जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आई। जमुना टूडू चकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई, इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टूडू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने की शपथ लेती है।
2: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे। आज जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधे।
0: रक्षाबंधन पर्व की रौनक प्रधानमंत्री आवास पर भी नजर आई। भाई बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी भी बच्चों के साथ घुल मिलकर राखी का त्योहार मनाते नजर आए। पीएम मोदी ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी।
3: तो हमारे देश में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। कई पौराणिक कहानियों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसी ही कहानियां जिनका सिरा हमारी राखी की डोर से बंधा है, ऐसी ही एक कहानी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की।

0: देखो तो बस एक डोर है, मामूली सा धागा है, रेशम का एक तार है, लेकिन इसी तार से बुना है, बंधा है, जुड़ा है वो रिश्ता जिसमें संसार भर का सार समाया है। हर दोस्ती से गहरी दोस्ती, हर वादे से पक्का वादा और हर हाल में साथ निभाने का इरादा, अंत तक, वहां तक जहां माँ बाप का साथ भी शायद एक रोज छूट जाएगा, लेकिन भैया या दीदी कहते हो प्यार से जिसे, ये साथी तुम्हें तब भी साथ खड़ा नजर आएगा। भाई बहन की इसी दोस्ती, साथ और भाव को दिल से सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा दिन है रक्षाबंधन, जिसे हमारे भारत में अनादिकाल से मनाया जाता रहा है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब एक रक्षा सूत्र ने रिश्तों की लाज रखी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं हमारे यहाँ, इनमें राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा को खास तौर पर सुनाया और बताया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 बग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपने 2 कदमों में पूरी पृथ्वी और फिर आकाश को नाप लिया। अब 3रा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने कर दिया। राजा बलि की दानशीलता और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में रहकर उसकी रक्षा करें। भगवान ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने लगे। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी को चिंता हुई। देवी लक्ष्मी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे नारायण को वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुँची। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि उनका कोई भाई नहीं है और वे उन्हें रक्षा सूत्र बांध कर अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए। देवी लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के बाद देवी लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप राजा बलि से भगवान विष्णु को उनके दिए वरदान से मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय राजा बलि से जुड़े इस मंत्र का जप करने की परंपरा है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा मनु बदनामि रक्षे मा चल मा चलः। यानी जिस तरह शक्तिशाली दैत्यराज बलि को रक्षा सूत्र से बांधा गया था, उसी तरह ये रक्षा सूत्र भी सुरक्षा और शुभता का प्रतीक बने। आज भी बहने प्यारे भाई की कलाई पर ये धागा बांधते हुए इस मंत्र का जाप करती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, राखी का दिन है और सारे भाई रंग बिरंगे धागों से सजी कलाई को देखकर इटला रहे हैं, पर इनके बीच आखिर उन भाइयों को कैसे भूला जा सकता था जो हर वचन से ऊपर देश की रक्षा का वचन सीमाओं पर निभा रहे हैं। तभी तो सीमावर्ती शहरों में बहनें आज जा पहुंची इन भाइयों के पास और हमारे जाबाजों की कलाई पर क्या शान से सजी देश की बहनों की राखी। लेकिन इसी बीच भुलाया उस भाई को भी नहीं गया जो भले ही आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन दिलों में उसकी याद राखी की डोर जितनी मजबूत है।
0: राखी की ये तस्वीर रणबांकुरों की धरती और शूरवीरों के आंगन राजस्थान से आई। फतेहपुर शेखावाटी से आई राखी की इस तस्वीर को देखकर हर आंख नम हो गई, जहां एक बहन ने अपने शहीद भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधी। ये प्रतिमा भारत के वीर सपूत शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की है। धर्मवीर सिंह शेखावत कश्मीर के लाल चौक में जुलाई 2005 में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। इस घटना को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी बहन उषा कंवर हर राखी पर गुजरात से भाई की प्रतिमा को राखी बांधने आती है। अब की बार भी वे आई तो पहले भाई की प्रतिमा के माथे पर गर्व से तिलक लगाया, फिर कलाई पर राखी बांधी। दिल भर आया तो भाई की प्रतिमा से लिपट गए, फिर नन्हे बेटे को उसके जाबाज मामा का आशीर्वाद दिलवाया। ये नजारा देखकर हर कोई भावुक हो गया। जम्मू कश्मीर के सांबा से भी रक्षाबंधन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच स्कूली बच्चे पहुंचे। उनके हाथों में राखियां थी और दिल में जवानों के लिए सम्मान। बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। घर परिवार से दूर सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए ये पल बेहद खास रहा। राखी बंधवाने के बाद जवानों ने भी बच्चों को गिफ्ट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। यानी सरहद पर आज सिर्फ राखी नहीं बंधी बल्कि जवानों और बच्चों के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता भी और मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सरहद के रखवालों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान जताया। जवानों ने भी बच्चों को उपहार देकर इस मुलाकात को यादगार बनाया। देश की रक्षा में घर से दूर तैनात जवानों के लिए ये पल अपनों के बीच होने जैसा एहसास लेकर आया। तस्वीर जम्मू कश्मीर के बनिहाल से भी आई, जहां छोटी बहनों ने देश के वीर जवान भाइयों को राखी बांधी। घर से दूर तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार और खास हो गया।

तो वहीं श्रीनगर में सहस्त्र सीमा बल के जवानों के लिए रक्षाबंधन के दिन खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जवान और आम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने जवानों को राखी बांधी, उनका मुंह मीठा करवाया और सारे देश की कृतज्ञता के भाव के साथ देश के रक्षकों को रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामनाएं दी।

देश का शत्रु जब सामने खड़ा हो तो ये रणबांकुरे युद्ध की बाजी पलट देते हैं, जैसे कभी एक रक्षा सूत्र ने देवासुर संग्राम की बाजी पलटी थी। राखी की तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको राखी त्योहार की कहानी भी सुना रहे हैं और रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी देवताओं के राजा इंद्र के साथ जुड़ती है। ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ा था। असुरों का पलड़ा कुछ इस कदर भारी था कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा था।

0: रक्षाबंधन पर्व कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध रक्षाबंधन से जुड़ता है। इस कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र बांधा था। ये कथा बताती है कि जब देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब दानवों को विजय की ओर अग्रसर देख देवराज इंद्र बेहद परेशान हो गए थे। दिन रात उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया।
1: दूसरा एक कथा ये कहलाती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इंद्र थोड़ा भय में थे, तो इंद्र को अभय वर देते हुए इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था ताकि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करें और उनकी ख्याति और उनका छत्र सदैव के लिए सुरक्षित रहे।
0: इस तरह इंद्राणी ने असुरों पर विजय पाने में देवराज इंद्र की सहायता की। मान्यता है कि विजय के आशीर्वाद से सिक्त उस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और कालांतर में यही रक्षा सूत्र सनातन परंपरा में रक्षा बंधन त्योहार के उद्गम का निमित्त बना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो 12 महीने में एक बार आने वाली राखी सनातन धर्म का बेहद खास त्यौहार है। आम और खास सभी के लिए दिन मायने रखता है। आम लोगों की तस्वीरों के बीच ही आज तमाम नेताओं और अभिनेताओं के राखी सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी खूब नजर आईं।

रक्षाबंधन का रंग नेताओं और अभिनेताओं पर भी खूब दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास अंदाज में रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारियों ने रक्षा मंत्री को राखी बांधी। राखी के दिन कई छात्र और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी रक्षा मंत्री को राखी बांधने उनके दफ्तर पहुंचे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर निराश्रित बच्चियों ने सीएम योगी को तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। सीएम योगी ने बच्चियों के साथ सेल्फी ली और उन्हें खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बच्चों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने लिखा कि स्नेह के धागों से बंधा भाई बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और मजबूत हो। वहीं दिल्ली से दूर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राखी मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिवार की बहनों ने पहुंचकर चिराग की कलाई पर राखी बांधी। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत और प्रीति जिंटा ने भाइयों को राखी बांधते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, संजय दत्त और ऋतिक रोशन ने भी राखी से जुड़ी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखिए, मौली या कलावा ये सिर्फ साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये देवों द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा रही है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कि कलावा क्यों बांधा जाता है? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कलावा से जुड़ी ऐसी ही खास बातें।

0: सनातन संस्कृति का संस्कार है कलावा, त्रिदेवों का वरदान है कलावा, त्रि शक्तियों का दिया हुआ सुरक्षा कवच है कलावा। बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला है कलावा। आपने देखा भी होगा, कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो या धार्मिक अनुष्ठान, आपने कलाई पर कलावा जरूर बांधा होगा। माना जाता है कि पूजा पाठ या अनुष्ठान से अभिमंत्रित ये ऐसी ढाल है जो सदैव आप पर ईश्वर की कृपा बनाए रखती है।
1: यह जो कलावा मौली रक्षा सूत्र, एक ही चीज को कई नामों से जाना जाता है। भगवान के पूजा पद्धति में सर्वप्रथम यह जो 16 उपचार हैं, खोडशोपचार, उसी के अंतर्गत भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए नारे का प्रयोग किया जाता है। यह नारा जो देवता को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद स्वरूप अपने दाहिने हाथ के कलाई पर उसको 3 राउंड घुमा करके ब्रह्म ग्रंथि से युक्त गांठ उसमें दे करके रखते हैं।
0: रक्षा सूत्र कहिए या मौली, जिसके साथ जुड़ी है हमारी सनातनी आस्था, इसे यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता रहा है, क्योंकि कलावा बांधना हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है कलावा। कलावा 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आमतौर पर ये सूत का बना हुआ होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। 3 धागे त्रिशक्तियों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था।
1: जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तिनत्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार राजा बलि को माता लक्ष्मी ने जाकर के यही रक्षा सूत्र बांधा था। क्यों बांधा था? बामना अवतार के समय भगवान विष्णु जब आए, आकर के 3 पग में पूरी पृथ्वी को, लोगों 3 लोग को भगवान ने दान में ले लिया। नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके माता लक्ष्मी ने वही रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा था। और उसी दिन ब्राह्मणों के उपाकर्म श्रावणी का दिन था, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्राप्त थी, इसलिए हमारे यहाँ माताएं बहनें भी भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षा बंधन के नाम से त्योहार प्रचलित हुआ।
0: सनातनी परंपराओं में मंगल कार्यों की शुरुआत में संकल्प के लिए हो या देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए, मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ज्योतिष की जानकार ये दावा करते हैं कि कलावा बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र शरीर के कई हिस्सों में आप बांध सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां बांधते हैं मौली।
1: वैवाहिक समारोह में जो मंडपा छादन होता है तो उस मंडप में भी हम लोग नारा बांधते हैं और उसमें कुछ विषय सामग्रियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि लोहे के छल्ला है, हल्दी की गांठ है इत्यादि। पीढ़े पर भी बांधते हैं, चौकी पर भी बांधते हैं, और जो वर और कन्या होती हैं, वर और कन्या के दाहिने हाथ में बांधा जाता है उसमें यह नारा रक्षा सूत्र।
0: मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने के कई लाभ भी बताए गए हैं और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह की कलावा बांधने का महत्व भी ज्योतिष बताते हैं। माना जाता है कि इसका न सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि कलाई पर सजी ये डोर आपकी सेहत से भी बंधी हुई होती है। कलावा धारण करने के लाभ क्या है?
1: कलावा धारण करने से हमारे हाथ के पास यहाँ देखेंगे कि वहाँ तीन नाड़ी होती है। नाड़ी तीन प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। यहाँ बांधे रहने से यहाँ से धड़कन भी हाथ के पास जो है धड़कन भी नापने के लिए यहीं से हम लोग देखा डॉक्टर लोग देखा करते हैं। उसी जगह के उसी पॉइंट को नारा बांध करके उसको दबाए रहते हैं जिसके कारण से वह अनियंत्रित न होने पावे।
0: कलावा कफ वात पित्त को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मन्नतों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले की रक्षा भी करती है। हर तरह के कलावा के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कुछ दिनों के बाद जब कलावा थोड़ा बदरंग और ढीला हो जाता है तो आप इसे बिना सोचे समझे अपने हाथों से उतारने से पहले समझिए कि इसे बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ किसी भी जगह पर रख देना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है। इसलिए मौली या रक्षा सूत्र बांधने का भी नियम तय है। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व कलावा का है उतना ही उसे उतारने और बदलने के नियम का भी है। वो नियम क्या होंगे, किन सावधानियों पर आपको ध्यान देना होगा, आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: माना जाता है कि कलावा बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कहते हैं कि इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये माना जाता है कि कलावा बांधने से वात पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं, इसकी सावधानियां भी समझनी जरूरी है।

0: मन को शांति प्रदान करता है कलावा। इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाता है कलावा। कलावा से होती है आध्यात्मिक उन्नति। कलावा से आते हैं संस्कार और सन्मति। तो देखा आपने कितना कारगर है आपके जीवन से जुड़ा ये कलावा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जिसका पालन आज तक किया जा रहा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा या रक्षा सूत्र कल्याणकारी है। कलाई पर बांधा जाने वाला ये धागा हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और जीवन के मूल्यों से जुड़ा है।
1: सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, उसके बाद चढ़ा हुआ नारा, भगवान की पूजा में सम्मिलित नारा लेकर के ब्राह्मण के द्वारा या किसी पूज्य व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ में धारण किया जाता है। यजुर्वेद कहता है कि ये नारा धारण करने से देवता प्रत्यक्ष रूप से आ करके आपकी रक्षा करते हैं। वो परोक्ष और अपरोक्ष की विधि को अपना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अग्रगण्य रहते हैं। और इसी नारा प्रतीकात्मक रूप में हम लोग हाथ में बांध करके भगवान के उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं।
0: माना जाता है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधना चाहिए। पर्व त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संस्कृति यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधी जाती है। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। माना जाता है कि पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से जुड़ी हर वस्तु का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। कलावा के उपयोग के साथ भी जुड़े हैं नियम और सावधानियाँ। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मन्नतों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। लाल और पीला रंग मिलकर बहुत शुभ फल देते हैं। लाल रंग शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि पीला रंग धन और सौभाग्य से जुड़ा होता है। सफेद रंग का कलावा पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जीवन में सुरक्षा और समृद्धि दोनों लेकर आता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावा पतला होना चाहिए। एक बार बांधा हुआ कलावा एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अलावा काले और हरे रंग का भी कलावा लोग बांधते हैं। कलावा देखने में साधारण सा धागा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। अगर आप इसे सही तरीके से पहनते हैं तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। लेकिन अगर इसमें उपयोग में लापरवाही कर दी जाए तो ये जीवन में दिक्कतें बढ़ा भी सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। कहते हैं अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांध कर किए गए संकल्प का उल्लंघन कभी ना करें। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलावे को कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: देखिए, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा बांधने से ग्रहों की कृपा भी पाई जा सकती है। मौली बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से आपकी रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मौली या फिर रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी बताए गए हैं। कौन कौन से अलग अलग कलावे आप धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

0: मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। माना जाता है कि कलावा धारण करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। जानकारों का मानना है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौली बांधने के लाभ भी अलग अलग हैं। कहते हैं इसे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट बताते हैं कि कलाई के हिस्सों में कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। कलावे के बंधे रहने से इन बिंदुओं पर दबाव बना रहता है, जो दिल, दिमाग और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। तो देखा आपने, कलावा चिकित्सीय गुणों से भी भरपूर है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपके मन में शांति और पवित्रता का भी संचार करता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप अलग अलग कलावा धारण कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आपके जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान किस तरह कर सकता है कलावा। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें। इसे बृहस्पतिवार सुबह बांधें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करें। शुक्रवार सुबह इसे धारण करें।
1: मांगलिक द्रव्य के रूप में कलावा, रक्षा सूत्र, वस्त्र के निमित्त देवता को अर्पण किया जाता है। ध्यान को एकाग्रता की ओर अग्रसर करने के लिए यह सारी पद्धतियां बनी हुई है। जब हमारा ध्यान एकाग्र रहेगा तो हम व्यापार करें या युद्ध करें या पढ़ाई करें या सेवा करें, वह कार्य सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है।
0: रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधना अच्छा होगा। इसे शनिवार की शाम को बांधें। इसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो अच्छा होगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पूर्व माँ काली को अर्पित करें। इसे किसी अन्य रंग के धागे के साथ ना बांधें। हर प्रकार से रक्षा के लिए लाल, पीले, सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पहले भगवान को अर्पित कर दें। तो आप भी चमत्कारी कहे जा रहे इस कलावे को धारण करें, जिससे आपके जीवन के संकटों का नाश हो सके और जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से, इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते

0: दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानन की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जापान में इन दिनों एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सैकड़ों लोग एक साथ जुटे हैं, हाथों में मोटी मोटी रस्सियां हैं और इन रस्सियों के सहारे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी भरकम किले को खींच रहे हैं। दरअसल यहां ऐतिहासिक किले को उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाने का काम जारी है और इसके लिए मशीनों के साथ साथ इंसानी ताकत का भी सहारा लिया जा रहा है।
2: ये तस्वीरें जापान के हिरोसाकी शहर की हैं, जहां इतिहास को वापस उसकी जगह पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ जुटे, हाथों में रस्सियां, कदमों में तालमेल और पूरी ताकत के साथ बुर्ज को खींचते लोग नजर आए। सबसे खास बात ये रही कि बुर्ज को खींचने के लिए लोगों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग चुने गए। चुने गए स्वयंसेवकों ने करीब 400 टन वजनी इस बुर्ज को रस्सियों की मदद से 3 मीटर से ज्यादा ऊपर उठाया। दरअसल ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा बड़ा संरक्षण अभियान है। किले की दीवारों के ऊपर मौजूद इस बुर्ज को करीब 70 मीटर दूर उसकी मूल जगह पर वापस ले जाया जा रहा है। इस पूरे मिशन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये बुर्ज मूल रूप से 1611 में बनाया गया था, लेकिन साल 2015 में आए भूकंप ने किले की दीवार को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दीवार की मरम्मत के लिए बुर्ज को उसकी जगह से हटाना पड़ा। करीब एक दशक बाद अब इस ऐतिहासिक बुर्ज की घर वापसी हो रही है। खास बात यह है कि इस काम में मशीनों के साथ साथ आम लोगों की ताकत को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इंसानों के जरिए किए जाने वाले हिस्से का काम खत्म हो गया और अब बाकी प्रक्रिया मशीनों की मदद से पूरी हो रही है। 400 टन के बुर्ज को रस्सियों से खींचते सैकड़ों लोग, तस्वीरें भले ही अनोखी हों, लेकिन संदेश बेहद खास है। जब बात अपनी विरासत को बचाने की हो तो लोगों का साथ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम, द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई बिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आप सभी को रक्षाबंधन की सबसे पहले तो जीएनटी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से देशभर में मनाया जा रहा है। देशभर में राखी की रौनक है, बाजार गुलजार हैं, मिठाई की दुकानों पर भीड़ है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई समेत तमाम जगहों से आज सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस त्योहार के उल्लास को बयां करती ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। देश की सरहद पर भी बहनों की राखी और ढेर सारा प्यार पहुंचा है। किसी ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो किसी ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई। इसी दौरान बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित की गई। तो जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देशभर से आई राखी के तमाम रंग समेट कर दिखा रहे हैं।

करम सूत्र बध्नाति हृदयम तु स्नेह, यानी सूत्र कलाई या हाथ को बांधता है किंतु स्नेह हृदय को बांधता है। स्नेह की डोर से हृदय को बांधने वाली तस्वीरें आज दिन भर देश के कोने कोने से आई और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्या आम क्या खास, क्या नेता क्या अभिनेता, आज देश में दिन भर राखी के रंग बिखरे रहे। शहर शहर घर घर बहनों ने भाई की कलाई राखी से सजाई। तो वही भारत माँ की रक्षा करने वाले सीमा पर तैनात सपूतों की कलाई पर भी रेशमी डोर जगमगाई। इसी बीच रंग बिरंगे धागों संग अगाध आस्था के भावों को पिरोकर आराध्य के दर पर रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला भी खूब चला। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां उज्जैन के राजाधिराज महाकालेश्वर के दरबार में राखी की रौनक खूब बिखरी। रक्षाबंधन पर महाकाल की विशेष पूजा हुई, भगवान को भक्तों ने राखी अर्पित की। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू करने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान यहां बाबा महाकाल को 2 फीट की ये शानदार राखी बांधी गई। इस राखी को मंदिर के पुजारी के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया था। राखी अर्पित करने के बाद महाकालेश्वर भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। ये विशेष लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से तैयार किए गए थे। भोग के बाद लड्डुओं का प्रसाद भक्तों के बीच बांटा गया।

राखी की ऐसी ही सुंदर तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई, जहां भगवान खजराना गणेश को 40x40 इंच की विशालकाय और भव्य सनातन राखी अर्पित की गई।

पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजाना गणेश के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया। इस राखी को 10-15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आई।

राखी की रौनक काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खूब नजर आई। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के दौरान विशेष रक्षा सूत्र अर्पित किया गया। देवादिदेव महादेव को राखी बांधकर संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। काशी जैसी ही रौनक रामलला की अयोध्या में भी दिखी। अयोध्या में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कलाई पर सजाने के लिए उनकी बड़ी बहन शांता की राखी पहुंची।

यह राखी एक पौराणिक संबंध का प्रतीक है। देवी शांता राजा दशरथ की पुत्री और ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। पौराणिक मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि की पुत्रेष्टि यज्ञ से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी संबंध को निभाते हुए बहन शांता की ओर से श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हर साल भव्य शोभा यात्रा के जरिए ये राखियाँ भेजी जाती हैं।

0: राखी की रौनक के बीच ही सावन पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में पवित्र डुबकी लगाने अयोध्या पहुँचे। उधर कान्हा की ब्रजभूमि में भी राखी की धूम रही। रक्षाबंधन पर्व पर भगवान बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने लाडले कान्हा को राखी बांधने के लिए बहनें आतुर दिखी। मंदिर के भीतर और बाहर लगी लंबी कतारों में हाथों में प्रसाद और राखियां लिए भक्त सुबह से ही खड़े नजर आए। पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल की जयकार से गूंजता रहा।
1: तस्वीर एमपी के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर बालाजी धाम से आई है, जहां राखी के दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। हमारे देश में गुरु, मार्गदर्शक और साधु संतों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। यही वजह है कि इस विशेष अवसर पर मठों, आश्रमों और मंदिरों में भक्त हाथों में राखी थामे उमड़ पड़ते हैं। राखी के मौके पर बागेश्वर धाम में भी भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इस मौके पर कई श्रद्धालु इंग्लैंड, कनाडा और यूएई से भी बाबा बागेश्वर को राखी बांधने पहुंचे थे। दोपहर तक आलम ये हो गया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का हाथ राखियों से इस कदर लग गया कि उनकी कलाई और बाह पर राखी बांधने की जगह ही नहीं बची। लेकिन वे भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए सबका रक्षा सूत्र स्वीकार करते रहे।
2: भाई बहन का प्यारा त्योहार है, जहां रोली है, चंदन है, भाई बहन के प्रेम में सबका अभिनंदन है। इस पावन रक्षाबंधन के उत्सव पर हम संपूर्ण भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज बागेश्वर धाम पुण्य भूमि पर हमारी हजारों बहनें, जिनके कोई भाई नहीं, किसी के भाई हैं तो बुलाते नहीं, वो सभी बहनें हर रक्षाबंधन को राखी बांधने आ जाती हैं। उसी कारण से यह रक्षाबंधन के उत्सव पर बहनों के प्रेम का प्रतीक धागा, उत्साह का प्रतीक धागा, जिसमें बचपन की यादें छिपी हैं, प्रेम छिपा है, केवल ये राखी नहीं है, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था। हमने उन्हें वचन दिया, इस देश में बेटियों के ऊपर उंगली उठाने वालों के खिलाफ पुरजोर तरीके से हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम पूरे भारत के भाइयों से प्रार्थना कर रहे, अपनी बहन को राखी बांधने के बदले आप कुछ रुपया, दक्षिणा, पैसा, गिफ्ट दें या ना दें, उन्हें वचन जरूर दें कि इस देश में बेटियों का कोई अपमान नहीं कर पाएगा।
1: हजारों आस्थावानों ने मंगल कामना के साथ बाबा बागेश्वर को रक्षा सूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कई भक्त बेहद भावुक नजर आए।
2: पल को अपने मुख से कह पाना बहुत कठिन है। ऐसी बहन भी आज एक आई जिन्होंने 22 साल से राखी नहीं बांधी, उनके भाई बुलाते नहीं, 22 साल हो गए। आज 22 वर्ष बाद उन्होंने राखी बांधी तो वो रो पड़ी, तो उस भावुक पल को देखकर हमें ये सौभाग्य मिला तो हमारी भी आंखें डबडबा गईं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आज के दिन भगवान ऐसी कृपा करें किसी भी भाई की कलाई सूनी ना रहे।
1: राखी की ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश से ही आई है। एमपी के नीमच में कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि मिनिएचर वाले इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया, जिस पर उकेरा गया मंदसौर में ही मौजूद प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी ज्योतिर्लिंगों के बीच एमपी की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई दी। इस खास राखी में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्यार ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रति आस्था और कलाकार की उत्कृष्ट कारीगरी भी एक साथ देखने को मिली। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी बनाई। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनाई गई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। इस महाराखी में देशभक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश निहित है। त्योहार की छटा देश के सुदूर कोनों तक किस तरह छाई रही, उसकी बानगी झारखंड के जंगलों से आई ये तस्वीर बयान करती है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टूडू और उनकी टीम ने जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आई। जमुना टूडू चकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई, इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टूडू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने की शपथ लेती है।
3: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधे।
1: रक्षाबंधन पर्व की रौनक प्रधानमंत्री आवास पर भी नजर आई। भाई बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी भी बच्चों के साथ घुल मिलकर राखी का त्योहार मनाते नजर आए। पीएम मोदी ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी।
4: तो हमारे देश में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। कई पौराणिक कहानियों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसी ही कहानियां जिनका सिरा हमारी राखी की डोर से बंधा है, ऐसी ही एक कहानी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की।

0: देखो तो बस एक डोर है, मामूली सा धागा है, रेशम का एक तार है, लेकिन इसी तार से बुना है, बंधा है, जुड़ा है वो रिश्ता जिसमें संसार भर का सार समाया है। हर दोस्ती से गहरी दोस्ती, हर वादे से पक्का वादा और हर हाल में साथ निभाने का इरादा, अंत तक, वहां तक जहां माँ बाप का साथ भी शायद एक रोज छूट जाएगा, लेकिन भैया या दीदी कहते हो प्यार से जिसे, ये साथी तुम्हें तब भी साथ खड़ा नजर आएगा। भाई बहन की इसी दोस्ती, साथ और भाव को दिल से सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा दिन है रक्षाबंधन, जिसे हमारे भारत में अनादिकाल से मनाया जाता रहा है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब एक रक्षा सूत्र ने रिश्तों की लाज रखी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं हमारे यहाँ। इनमें राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा को खास तौर पर सुनाया और बताया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 बग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपने 2 कदमों में पूरी पृथ्वी और फिर आकाश को नाप लिया। अब 3रा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने कर दिया। राजा बलि की दानशीलता और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में रहकर उसकी रक्षा करे। भगवान ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने लगे। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी को चिंता हुई। देवी लक्ष्मी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे नारायण को वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुँची। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि उनका कोई भाई नहीं है और वे उन्हें रक्षा सूत्र बांध कर अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए। देवी लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के बाद देवी लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप राजा बलि से भगवान विष्णु को उनके दिए वरदान से मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय राजा बलि से जुड़े इस मंत्र का जप करने की परंपरा है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा मनु बदनामि रक्षे मा चल मा चलः। यानी जिस तरह शक्तिशाली दैत्य राज बलि को रक्षा सूत्र से बांधा गया था, उसी तरह ये रक्षा सूत्र भी सुरक्षा और शुभता का प्रतीक बने। आज भी बहनें प्यारे भाई की कलाई पर ये धागा बांधते हुए इस मंत्र का जाप करती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, राखी का दिन है और सारे भाई रंग बिरंगे धागों से सजी कलाई को देखकर इटला रहे हैं, पर इनके बीच आखिर उन भाइयों को कैसे भूला जा सकता था जो हर वचन से ऊपर देश की रक्षा का वचन सीमाओं पर निभा रहे हैं। तभी तो सीमावर्ती शहरों में बहनें आज जा पहुंची इन भाइयों के पास और हमारे जाबाजों की कलाई पर क्या शान से सजी देश की बहनों की राखी। लेकिन इसी बीच भुलाया उस भाई को भी नहीं गया जो भले ही आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन दिलों में उसकी याद राखी की डोर जितनी मजबूत है।
0: राखी की ये तस्वीर रणबांकुरों की धरती और शूरवीरों के आंगन राजस्थान से आई। फतेहपुर शेखावाटी से आई राखी की इस तस्वीर को देखकर हर आंख नम हो गई, जहां एक बहन ने अपने शहीद भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधी। ये प्रतिमा भारत के वीर सपूत शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की है। धर्मवीर सिंह शेखावत कश्मीर के लाल चौक में जुलाई 2005 में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। इस घटना को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी बहन उषा कंवर हर राखी पर गुजरात से भाई की प्रतिमा को राखी बांधने आती है। अब की बार भी वे आई तो पहले भाई की प्रतिमा के माथे पर गर्व से तिलक लगाया, फिर कलाई पर राखी बांधी। दिल भर आया तो भाई की प्रतिमा से लिपट गए, फिर नन्हे बेटे को उसके जाबाज मामा का आशीर्वाद दिलवाया। ये नजारा देखकर हर कोई भावुक हो गया। जम्मू कश्मीर के सांबा से भी रक्षाबंधन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आईं। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच स्कूली बच्चे पहुंचे, उनके हाथों में राखियां थी और दिल में जवानों के लिए सम्मान। बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। घर परिवार से दूर सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए ये पल बेहद खास रहा। राखी बंधवाने के बाद जवानों ने भी बच्चों को गिफ्ट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। यानी सरहद पर आज सिर्फ राखी नहीं बंधी बल्कि जवानों और बच्चों के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता भी और मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सरहद के रखवालों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान जताया। जवानों ने भी बच्चों को उपहार देकर इस मुलाकात को यादगार बनाया। देश की रक्षा में घर से दूर तैनात जवानों के लिए ये पल अपनों के बीच होने जैसा एहसास लेकर आया।

ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर के बनिहाल से भी आई, जहां छोटी बहनों ने देश के वीर जवान भाइयों को राखी बांधी। घर से दूर तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार और खास हो गया।

वहीं श्रीनगर में सहस्त्र सीमा बल के जवानों के लिए रक्षाबंधन के दिन खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जवान और आम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने जवानों को राखी बांधी, उनका मुंह मीठा करवाया और सारे देश की कृतज्ञता के भाव के साथ देश के रक्षकों को रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामनाएं दी।

देश का शत्रु जब सामने खड़ा हो तो ये रणबांकुरे युद्ध की बाजी पलट देते हैं, जैसे कभी एक रक्षा सूत्र ने देवासुर संग्राम की बाजी पलटी थी। राखी की तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको राखी त्योहार की कहानी भी सुना रहे हैं और रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी देवताओं के राजा इंद्र के साथ जुड़ती है। ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ा था। असुरों का पलड़ा कुछ इस कदर भारी था कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा था।

0: रक्षाबंधन पर्व कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध रक्षाबंधन से जुड़ता है। इस कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र बांधा था। ये कथा बताती है कि जब देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब दानवों को विजय की ओर अग्रसर देख देवराज इंद्र बेहद परेशान हो गए थे। दिन रात उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया।
1: दूसरा एक कथा ये कहलाती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इंद्र थोड़ा भय में थे, तो इंद्र को अभय वर देते हुए इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था ताकि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करें और उनकी ख्याति और उनका छत्र सदैव के लिए सुरक्षित रहे।
0: इस तरह इंद्राणी ने असुरों पर विजय पाने में देवराज इंद्र की सहायता की। मान्यता है कि विजय के आशीर्वाद से सिक्त उस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और कालांतर में यही रक्षा सूत्र सनातन परंपरा में रक्षा बंधन त्योहार के उद्गम का निमित्त बना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो 12 महीने में एक बार आने वाली राखी सनातन धर्म का बेहद खास त्यौहार है। आम और खास सभी के लिए दिन मायने रखता है। आम लोगों की तस्वीरों के बीच ही आज तमाम नेताओं और अभिनेताओं के राखी सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी खूब नजर आईं।

रक्षाबंधन का रंग नेताओं और अभिनेताओं पर भी खूब दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास अंदाज में रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारियों ने रक्षा मंत्री को राखी बांधी। राखी के दिन कई छात्र और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी रक्षा मंत्री को राखी बांधने उनके दफ्तर पहुंचे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर निराश्रित बच्चियों ने सीएम योगी को तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। सीएम योगी ने बच्चियों के साथ सेल्फी ली और उन्हें खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बच्चों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने लिखा कि स्नेह के धागों से बंधा भाई बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और मजबूत हो। वहीं दिल्ली से दूर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राखी मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिवार की बहनों ने पहुंचकर चिराग की कलाई पर राखी बांधी। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत और प्रीति जिंटा ने भाइयों को राखी बांधते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, संजय दत्त और ऋतिक रोशन ने भी राखी से जुड़ी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम, द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थलसेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखिए, मौली या कलावा ये सिर्फ साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये देवों द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा रही है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कि कलावा क्यों बांधा जाता है? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कलावा से जुड़ी ऐसी ही खास बातें।
1: सनातन संस्कृति का संस्कार है कलावा, त्रिदेवों का वरदान है कलावा, त्रिशक्तियों का दिया हुआ सुरक्षा कवच है कलावा। बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला है कलावा। आपने देखा भी होगा, कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो या धार्मिक अनुष्ठान, आपने कलाई पर कलावा जरूर बांधा होगा। जाता है कि पूजा पाठ या अनुष्ठान से अभिमंत्रित ये ऐसी ढाल है जो सदैव आप पर ईश्वर की कृपा बनाए रखती है।
2: यह जो कलावा मौली रक्षा सूत्र, एक ही चीज को कई नामों से जाना जाता है। भगवान के पूजा पद्धति में सर्वप्रथम यह जो 16 उपचार हैं, खोडशोपचार, उसी के अंतर्गत भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए नारे का प्रयोग किया जाता है। यह नारा जो देवता को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद स्वरूप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर उसको 3 राउंड घुमा करके ब्रह्म ग्रंथि से युक्त गांठ उसमें दे करके रखते हैं।
1: रक्षा सूत्र कहिए या मौली, जिसके साथ जुड़ी है हमारी सनातनी आस्था, इसे यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता रहा है, क्योंकि कलावा बांधना हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है कलावा। कलावा 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आमतौर पर ये सूत का बना हुआ होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। 3 धागे त्रिशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था।
2: जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तिनत्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार राजा बलि को माता लक्ष्मी ने जाकर के यही रक्षा सूत्र बांधा था। क्यों बांधा था? बामना अवतार के समय भगवान विष्णु जब आए, आकर के 3 पग में पूरी पृथ्वी को, लोगों 3 लोग को भगवान ने दान में ले लिया। नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके माता लक्ष्मी ने वही रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा था। और उसी दिन ब्राह्मणों के उपाकर्म श्रावणी का दिन था, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्राप्त थी, इसलिए हमारे यहाँ माताएं बहने भी भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षाबंधन के नाम से त्योहार प्रचलित हुआ।
1: सनातनी परंपराओं में मंगल कार्यों की शुरुआत में संकल्प के लिए हो या देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ज्योतिष की जानकार ये दावा करते हैं कि कलावा बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र शरीर के कई हिस्सों में आप बांध सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां बांधते हैं मौली।
2: वैवाहिक समारोह में जो मंडपा छादन होता है तो उस मंडप में भी हम लोग नारा बांधते हैं, और उसमें कुछ विषय सामग्रियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि लोहे के छल्ला है, हल्दी की गांठ है इत्यादि। पीढ़े पर भी बांधते हैं, चौकी पर भी बांधते हैं, और जो वर और कन्या होती हैं, वर और कन्या के दाहिने हाथ में बांधा जाता है उसमें यह नारा रक्षा सूत्र।
1: मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने के कई लाभ भी बताए गए हैं, और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह के कलावा बांधने का महत्व भी ज्योतिष बताते हैं। माना जाता है कि इसका न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि कलाई पर सजी ये डोर आपकी सेहत से भी बंधी हुई होती है। कलावा धारण करने के लाभ क्या है?
2: कलावा धारण करने से हमारे हाथ के पास यहाँ देखेंगे कि वहाँ तीन नाड़ी होती है, नाड़ी तीन प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। यहाँ बांधे रहने से यहाँ से धड़कन भी हाथ के पास जो है, धड़कन भी नापने के लिए यहीं से हम लोग देखा, डॉक्टर लोग देखा करते हैं। उसी जगह के उसी पॉइंट को नारा बांध करके उसको दबाए रहते हैं, जिसके कारण से वह अनियंत्रित न होने पावे।
1: कलावा कफ वात पित्त को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मन्नतों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले की रक्षा भी करती है। हर तरह के कलावा के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कुछ दिनों के बाद जब कलावा थोड़ा बदरंग और ढीला हो जाता है तो आप इसे बिना सोचे समझे अपने हाथों से उतारने से पहले समझिए कि इसे बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ किसी भी जगह पर रख देना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है। इसलिए मौली या रक्षा सूत्र बांधने का भी नियम तय है। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व कलावा का है, उतना ही उसे उतारने और बदलने के नियम का भी है। वो नियम क्या होंगे, किन सावधानियों पर आपको ध्यान देना होगा, आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
0: माना जाता है कि कलावा बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कहते हैं कि इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये माना जाता है कि कलावा बांधने से वात पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं, इसकी सावधानियां भी समझनी जरूरी है।

0: मन को शांति प्रदान करता है कलावा। इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाता है कलावा। कलावा से होती है आध्यात्मिक उन्नति। कलावा से आते हैं संस्कार और सन्मति। तो देखा आपने कितना कारगर है आपके जीवन से जुड़ा ये कलावा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जिसका पालन आज तक किया जा रहा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा या रक्षा सूत्र कल्याणकारी है। कलाई पर बांधा जाने वाला ये धागा हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और जीवन के मूल्यों से जुड़ा है।
1: सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, उसके बाद चढ़ा हुआ नारा, भगवान की पूजा में सम्मिलित नारा लेकर के ब्राह्मण के द्वारा या किसी पूज्य व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ में धारण किया जाता है। यजुर्वेद कहता है कि ये नारा धारण करने से देवता प्रत्यक्ष रूप से आ करके आपकी रक्षा करते हैं। वो परोक्ष और अपरोक्ष की विधि को अपना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अग्रगण्य रहते हैं। और इसी नारा प्रतीकात्मक रूप में हम लोग हाथ में बांध करके भगवान की उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं।
0: माना जाता है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधना चाहिए। पर्व त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संस्कृति यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधी जाती है। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। माना जाता है कि पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से जुड़ी हर वस्तु का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। कलावा के उपयोग के साथ भी जुड़े हैं नियम और सावधानियां। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मन्नतों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। लाल और पीला रंग मिलकर बहुत शुभ फल देते हैं। लाल रंग शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि पीला रंग धन और सौभाग्य से जुड़ा होता है। सफेद रंग का कलावा पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जीवन में सुरक्षा और समृद्धि दोनों लेकर आता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावा पतला होना चाहिए। एक बार बांधा हुआ कलावा एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अलावा काले और हरे रंग का भी कलावा लोग बांधते हैं। कलावा देखने में साधारण सा धागा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। अगर आप इसे सही तरीके से पहनते हैं तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। लेकिन अगर इसमें उपयोग में लापरवाही कर दी जाए तो ये जीवन में दिक्कतें बढ़ा भी सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। कहते हैं अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांध कर किए गए संकल्प का उल्लंघन कभी ना करें। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलावे को कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: देखिए, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा बांधने से ग्रहों की कृपा भी पाई जा सकती है। मौली बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से आपकी रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मौली या फिर रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी बताए गए हैं। कौन कौन से अलग अलग कलावे आप धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

0: मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। माना जाता है कि कलावा धारण करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। जानकारों का मानना है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौली बांधने के लाभ भी अलग अलग हैं। कहते हैं इसे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट बताते हैं कि कलाई के हिस्सों में कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। कलावे के बंधे रहने से इन बिंदुओं पर दबाव बना रहता है, जो दिल, दिमाग और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। तो देखा आपने, कलावा चिकित्सीय गुणों से भी भरपूर है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपके मन में शांति और पवित्रता का भी संचार करता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप अलग अलग कलावा धारण कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आपके जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान किस तरह कर सकता है कलावा। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें। इसे बृहस्पतिवार सुबह बांधें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करें। शुक्रवार सुबह इसे धारण करें।
1: मांगलिक द्रव्य के रूप में कलावा, रक्षा सूत्र, वस्त्र के निमित्त देवता को अर्पण किया जाता है। ध्यान को एकाग्रता की ओर अग्रसर करने के लिए यह सारी पद्धतियां बनी हुई है। जब हमारा ध्यान एकाग्र रहेगा तो हम व्यापार करें या युद्ध करें या पढ़ाई करें या सेवा करें, वह कार्य सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है।
0: रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधना अच्छा होगा। इसे शनिवार की शाम को बांधें। इसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो अच्छा होगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पूर्व माँ काली को अर्पित करें। इसे किसी अन्य रंग के धागे के साथ ना बांधें। हर प्रकार से रक्षा के लिए लाल, पीले, सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पहले भगवान को अर्पित कर दें। तो आप भी चमत्कारी कहे जा रहे इस कलावे को धारण करें, जिससे आपके जीवन के संकटों का नाश हो सके और जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है, बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। और इसी बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर

0: यहां भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बापा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहां गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी की 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही है। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में है जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जापान में इन दिनों एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सैकड़ों लोग एक साथ जुटे हैं, हाथों में मोटी मोटी रस्सियां हैं और इन रस्सियों के सहारे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी भरकम किले को खींच रहे हैं। दरअसल यहां ऐतिहासिक किले को उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाने का काम जारी है और इसके लिए मशीनों के साथ साथ इंसानी ताकत का भी सहारा लिया जा रहा है।
4: ये तस्वीरें जापान के हिरोसाकी शहर की हैं, जहां इतिहास को वापस उसकी जगह पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ जुटे।

0: हाथों में रस्सियां, कदमों में तालमेल और पूरी ताकत के साथ बुर्ज को खींचते लोग नजर आए। सबसे खास बात ये रही कि बुर्ज को खींचने के लिए लोगों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग चुने गए। चुने गए स्वयंसेवकों ने करीब 400 टन वजनी इस बुर्ज को रस्सियों की मदद से 3 मीटर से ज्यादा ऊपर उठाया। दरअसल ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा बड़ा संरक्षण अभियान है। किले की दीवारों के ऊपर मौजूद इस बुर्ज को करीब 70 मीटर दूर उसकी मूल जगह पर वापस ले जाया जा रहा है। इस पूरे मिशन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये बुर्ज मूल रूप से 1611 में बनाया गया था, लेकिन साल 2015 में आए भूकंप ने किले की दीवार को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दीवार की मरम्मत के लिए बुर्ज को उसकी जगह से हटाना पड़ा। करीब एक दशक बाद अब इस ऐतिहासिक बुर्ज की घर वापसी हो रही है। खास बात यह है कि इस काम में मशीनों के साथ साथ आम लोगों की ताकत को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इंसानों के जरिए किए जाने वाले हिस्से का काम खत्म हो गया और अब बाकी प्रक्रिया मशीनों की मदद से पूरी हो रही है। 400 टन के बुर्ज को रस्सियों से खींचते सैकड़ों लोग, तस्वीरें भले ही अनोखी हों, लेकिन संदेश बेहद खास है। जब बात अपनी विरासत को बचाने की हो तो लोगों का साथ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार।
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए। मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम, द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई बिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आप सभी को रक्षाबंधन की सबसे पहले तो जीएनटी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से देशभर में मनाया जा रहा है। देशभर में राखी की रौनक है, बाजार गुलजार हैं, मिठाई की दुकानों पर भीड़ है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई समेत तमाम जगहों से आज सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस त्योहार के उल्लास को बयां करती ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। देश की सरहद पर भी बहनों की राखी और ढेर सारा प्यार पहुंचा है। किसी ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो किसी ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई। इसी दौरान बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित की गई। तो जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देशभर से आई राखी के तमाम रंग समेट कर दिखा रहे हैं।

करम सूत्र बध्नाति हृदयम तू स्नेह, यानी सूत्र कलाई या हाथ को बांधता है किंतु स्नेह हृदय को बांधता है। स्नेह की डोर से हृदय को बांधने वाली तस्वीरें आज दिन भर देश के कोने कोने से आई और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, आज देश में दिन भर राखी के रंग बिखरे रहे। शहर शहर, घर घर बहनों ने भाई की कलाई राखी से सजाई। तो वही भारत माँ की रक्षा करने वाले सीमा पर तैनात सपूतों की कलाई पर भी रेशमी डोर जगमगाई। इसी बीच रंग बिरंगे धागों संग अगाध आस्था के भावों को पिरोकर आराध्य के दर पर रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला भी खूब चला। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां उज्जैन के राजा अधिराज महाकालेश्वर के दरबार में राखी की रौनक खूब बिखरी। रक्षाबंधन पर महाकाल की विशेष पूजा हुई, भगवान को भक्तों ने राखी अर्पित की। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू करने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान यहां बाबा महाकाल को 2 फीट की ये शानदार राखी बांधी गई। इस राखी को मंदिर के पुजारी के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया था। राखी अर्पित करने के बाद महाकालेश्वर भगवान को 125,000 लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। ये विशेष लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से तैयार किए गए थे। भोग के बाद लड्डुओं का प्रसाद भक्तों के बीच बांटा गया।

राखी की ऐसी ही सुंदर तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई, जहां भगवान खजराना गणेश को 40x40 इंच की विशालकाय और भव्य सनातन राखी अर्पित की गई।

पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजाना गणेश के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया। इस राखी को 10-15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आई।

राखी की रौनक काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खूब नजर आई। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के दौरान विशेष रक्षा सूत्र अर्पित किया गया। देवादिदेव महादेव को राखी बांधकर संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। काशी जैसी ही रौनक रामलला की अयोध्या में भी दिखी। अयोध्या में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कलाई पर सजाने के लिए उनकी बड़ी बहन शांता की राखी पहुंची।

यह राखी एक पौराणिक संबंध का प्रतीक है। देवी शांता राजा दशरथ की पुत्री और ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। पौराणिक मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि की पुत्रेष्टि यज्ञ से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी संबंध को निभाते हुए बहन शांता की ओर से श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हर साल भव्य शोभा यात्रा के जरिए ये राखियाँ भेजी जाती हैं।

0: राखी की रौनक के बीच ही सावन पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में पवित्र डुबकी लगाने अयोध्या पहुँचे। उधर कान्हा की ब्रज भूमि में भी राखी की धूम रही। रक्षाबंधन पर्व पर भगवान बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने लाडले कान्हा को राखी बांधने के लिए बहनें आतुर दिखी। मंदिर के भीतर और बाहर लगी लंबी कतारों में हाथों में प्रसाद और राखियां लिए भक्त सुबह से ही खड़े नजर आए। पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल की जयकार से गूंजता रहा। तस्वीर एमपी के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर बालाजी धाम से आई है, जहां राखी के दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। हमारे देश में गुरु, मार्गदर्शक और साधु संतों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। यही वजह है कि इस विशेष अवसर पर मठों, आश्रमों और मंदिरों में भक्त हाथों में राखी थामे उमड़ पड़ते हैं। राखी के मौके पर बागेश्वर धाम में भी भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इस मौके पर कई श्रद्धालु इंग्लैंड, कनाडा और यूएई से भी बाबा बागेश्वर को राखी बांधने पहुँचे थे। दोपहर तक आलम ये हो गया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का हाथ राखियों से इस कदर लग गया कि उनकी कलाई और बाह पर राखी बांधने की जगह ही नहीं बची। लेकिन वे भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए सबका रक्षा सूत्र स्वीकार करते रहे।
1: भाई बहन का प्यारा त्योहार है, जहां रोली है, चंदन है, भाई बहन के प्रेम में सबका अभिनंदन है। इस पावन रक्षाबंधन के उत्सव पर हम संपूर्ण भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज बागेश्वर धाम पुण्य भूमि पर हमारी हजारों बहनें, जिनके कोई भाई नहीं, किसी के भाई हैं तो बुलाते नहीं, वो सभी बहनें हर रक्षाबंधन को राखी बांधने आ जाती हैं। उसी कारण से यह रक्षाबंधन के उत्सव पर बहनों के प्रेम का प्रतीक धागा, उत्साह का प्रतीक धागा, जिसमें बचपन की यादें छिपी हैं, प्रेम छिपा है, केवल ये राखी नहीं है, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था। हमने उन्हें वचन दिया, इस देश में बेटियों के ऊपर उंगली उठाने वालों के खिलाफ पुरजोर तरीके से हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम पूरे भारत के भाइयों से प्रार्थना कर रहे, अपनी बहन को राखी बांधने के बदले आप कुछ रुपया, दक्षिणा, पैसा, गिफ्ट दें या ना दें, उन्हें वचन जरूर दें कि इस देश में बेटियों का कोई अपमान नहीं कर पाएगा।
0: हजारों आस्थावानों ने मंगल कामना के साथ बाबा बागेश्वर को रक्षा सूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कई भक्त बेहद भावुक नजर आए।
1: पल को अपने मुख से कह पाना बहुत कठिन है। ऐसी बहन भी आज एक आई जिन्होंने 22 साल से राखी नहीं बांधी, उनके भाई बुलाते नहीं, 22 साल हो गए। आज 22 वर्ष बाद उन्होंने राखी बांधी तो वो रो पड़ी, तो उस भावुक पल को देखकर हमें ये सौभाग्य मिला तो हमारी भी आंखें डबडबा गईं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आज के दिन भगवान ऐसी कृपा करें किसी भी भाई की कलाई सूनी ना रहे।
0: राखी की ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश से ही आई है। एमपी के नीमच में कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि मिनिएचर वाले इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया, जिस पर उकेरा गया मंदसौर में ही मौजूद प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी ज्योतिर्लिंगों के बीच एमपी की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई दी। इस खास राखी में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्यार ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रति आस्था और कलाकार की उत्कृष्ट कारीगरी भी एक साथ देखने को मिली। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी बनाई। इसी को फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनाई गई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। इस महाराखी में देशभक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश निहित है। भाई बहन के इस त्योहार की छटा देश के सुदूर कोनों तक किस तरह छाई रही, उसकी वानगी झारखंड के जंगलों से आई ये तस्वीर बयान करती है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टूडू और उनकी टीम ने जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आई। जमुना टूडू चकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई, इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टूडू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने की शपथ लेती है।
2: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे। आज जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधे।
0: रक्षाबंधन पर्व की रौनक प्रधानमंत्री आवास पर भी नजर आई। भाई बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी भी बच्चों के साथ खुल मिलकर राखी का त्योहार मनाते नजर आए। पीएम मोदी ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी।
3: तो हमारे देश में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। कई पौराणिक कहानियों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसी ही कहानियां जिनका सिरा हमारी राखी की डोर से बंधा है, ऐसी ही एक कहानी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की।

0: देखो तो बस एक डोर है, मामूली सा धागा है, रेशम का एक तार है, लेकिन इसी तार से बुना है, बंधा है, जुड़ा है वो रिश्ता जिसमें संसार भर का सार समाया है। हर दोस्ती से गहरी दोस्ती, हर वादे से पक्का वादा और हर हाल में साथ निभाने का इरादा, अंत तक, वहां तक जहां माँ बाप का साथ भी शायद एक रोज छूट जाएगा, लेकिन भैया या दीदी कहते हो प्यार से जिसे, ये साथी तुम्हें तब भी साथ खड़ा नजर आएगा। भाई बहन की इसी दोस्ती, साथ और भाव को दिल से सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा दिन है रक्षाबंधन, जिसे हमारे भारत में अनादिकाल से मनाया जाता रहा है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब एक रक्षा सूत्र ने रिश्तों की लाज रखी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं हमारे यहाँ, इनमें राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा को खास तौर पर सुनाया और बताया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 बग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपने 2 कदमों में पूरी पृथ्वी और फिर आकाश को नाप लिया। अब 3रा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने कर दिया। राजा बलि की दानशीलता और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में रहकर उसकी रक्षा करें। भगवान ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने लगे। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी को चिंता हुई। देवी लक्ष्मी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे नारायण को वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुँची। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि उनका कोई भाई नहीं है और वे उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए। देवी लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के बाद देवी लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप राजा बलि से भगवान विष्णु को उनके दिए वरदान से मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविका या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रति स्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय राजा बलि से जुड़े इस मंत्र का जप करने की परंपरा है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा मनु बदनामि रक्षे माचल माचलः। यानी जिस तरह शक्तिशाली दैत्य राज बलि को रक्षा सूत्र से बांधा गया था, उसी तरह ये रक्षा सूत्र भी सुरक्षा और शुभता का प्रतीक बने। आज भी बहनें प्यारे भाई की कलाई पर ये धागा बांधते हुए इस मंत्र का जाप करती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, राखी का दिन है और सारे भाई रंग बिरंगे धागों से सजी कलाई को देखकर इटला रहे हैं, पर इनके बीच आखिर उन भाइयों को कैसे भूला जा सकता था जो हर वचन से ऊपर देश की रक्षा का वचन सीमाओं पर निभा रहे हैं। तभी तो सीमावर्ती शहरों में बहनें आज जा पहुंची इन भाइयों के पास और हमारे जाबाजों की कलाई पर क्या शान से सजी देश की बहनों की राखी। लेकिन इसी बीच भुलाया उस भाई को भी नहीं गया जो भले ही आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन दिलों में उसकी याद राखी की डोर जितनी मजबूत है।
3: राखी की ये तस्वीर रणबांकुरों की धरती और शूरवीरों के आंगन राजस्थान से आई। फतेहपुर शेखावाटी से आई राखी की इस तस्वीर को देखकर हर आंख नम हो गई, जहां एक बहन ने अपने शहीद भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधी। ये प्रतिमा भारत के वीर सपूत शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की है। धर्मवीर सिंह शेखावत कश्मीर के लाल चौक में जुलाई 2005 में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। इस घटना को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी बहन उषा कंवर हर राखी पर गुजरात से भाई की प्रतिमा को राखी बांधने आती है। अब की बार भी वे आई तो पहले भाई की प्रतिमा के माथे पर गर्व से तिलक लगाया, फिर कलाई पर राखी बांधी। दिल भर आया तो भाई की प्रतिमा से लिपट गए, फिर नन्हे बेटे को उसके जाबाज मामा का आशीर्वाद दिलवाया। ये नजारा देखकर हर कोई भावुक हो गया। जम्मू कश्मीर के सांबा से भी रक्षाबंधन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच स्कूली बच्चे पहुंचे, उनके हाथों में राखियां थी और दिल में जवानों के लिए सम्मान। बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। घर परिवार से दूर सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए ये पल बेहद खास रहा। राखी बंधवाने के बाद जवानों ने भी बच्चों को गिफ्ट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। यानी सरहद पर आज सिर्फ राखी नहीं बंधी बल्कि जवानों और बच्चों के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता भी और मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सरहद के रखवालों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान जताया। जवानों ने भी बच्चों को उपहार देकर इस मुलाकात को यादगार बनाया। देश की रक्षा में घर से दूर तैनात जवानों के लिए ये पल अपनों के बीच होने जैसा एहसास लेकर आया।

ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर के बनिहाल से भी आई, जहां छोटी बहनों ने देश के वीर जवान भाइयों को राखी बांधी। घर से दूर तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार और खास हो गया।

वहीं श्रीनगर में सहस्त्र सीमा बल के जवानों के लिए रक्षाबंधन के दिन खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जवान और आम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने जवानों को राखी बांधी, उनका मुंह मीठा करवाया और सारे देश की कृतज्ञता के भाव के साथ देश के रक्षकों को रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामनाएं दी।

देश का शत्रु जब सामने खड़ा हो तो ये रणबांकुरे युद्ध की बाजी पलट देते हैं। जैसे कभी एक रक्षा सूत्र ने देवासुर संग्राम की बाजी पलटी थी। राखी की तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको राखी त्योहार की कहानी भी सुना रहे हैं और रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी देवताओं के राजा इंद्र के साथ जुड़ती है। ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ा था। असुरों का पलड़ा कुछ इस कदर भारी था कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा था।

0: रक्षाबंधन पर्व कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध रक्षाबंधन से जुड़ता है। इस कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र बांधा था। ये कथा बताती है कि जब देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब दानवों को विजय की ओर अग्रसर देख देवराज इंद्र बेहद परेशान हो गए थे। दिन रात उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया।
1: दूसरा एक कथा ये कहलाती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इंद्र थोड़ा भय में थे, तो इंद्र को अभय वर देते हुए इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था ताकि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करें और उनकी ख्याति और उनका छत्र सदैव के लिए सुरक्षित रहे।
0: इस तरह इंद्राणी ने असुरों पर विजय पाने में देवराज इंद्र की सहायता की। मान्यता है कि विजय के आशीर्वाद से सिक्त उस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और कालांतर में यही रक्षा सूत्र सनातन परंपरा में रक्षा बंधन त्योहार के उद्गम का निमित्त बना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो 12 महीने में एक बार आने वाली राखी सनातन धर्म का बेहद खास त्योहार है। आम और खास सभी के लिए दिन मायने रखता है। आम लोगों की तस्वीरों के बीच ही आज तमाम नेताओं और अभिनेताओं के राखी सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी खूब नजर आईं।

रक्षाबंधन का रंग नेताओं और अभिनेताओं पर भी खूब दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास अंदाज में रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारियों ने रक्षा मंत्री को राखी बांधी। राखी के दिन कई छात्र और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी रक्षा मंत्री को राखी बांधने उनके दफ्तर पहुंचे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर निराश्रित बच्चियों ने सीएम योगी को तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। सीएम योगी ने बच्चियों के साथ सेल्फी ली और उन्हें खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बच्चों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने लिखा कि स्नेह के धागों से बंधा भाई बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और मजबूत हो। वहीं दिल्ली से दूर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राखी मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिवार की बहनों ने पहुंचकर चिराग की कलाई पर राखी बांधी। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत और प्रीति जिंटा ने भाइयों को राखी बांधते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, संजय दत्त और ऋतिक रोशन ने भी राखी से जुड़ी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम, द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखिए, मौली या कलावा ये सिर्फ साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये देवों द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा रही है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कि कलावा क्यों बांधा जाता है? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कलावा से जुड़ी ऐसी ही खास बातें।
1: सनातन संस्कृति का संस्कार है कलावा, त्रिदेवों का वरदान है कलावा, त्रि शक्तियों का दिया हुआ सुरक्षा कवच है कलावा। बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला है कलावा। आपने देखा भी होगा, कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो या धार्मिक अनुष्ठान, आपने कलाई पर कलावा जरूर बांधा होगा। जाता है कि पूजा पाठ या अनुष्ठान से अभिमंत्रित ये ऐसी ढाल है जो सदैव आप पर ईश्वर की कृपा बनाए रखती है।
2: यह जो कलावा मौली रक्षा सूत्र, एक ही चीज को कई नामों से जाना जाता है। भगवान के पूजा पद्धति में सर्वप्रथम यह जो 16 उपचार हैं, खोडशोपचार, उसी के अंतर्गत भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए नारे का प्रयोग किया जाता है। यह नारा जो देवता को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद स्वरूप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर उसको 3 राउंड घुमा करके ब्रह्म ग्रंथि से युक्त गांठ उसमें दे करके रखते हैं।
1: रक्षा सूत्र कहिए या मौली, जिसके साथ जुड़ी है हमारी सनातनी आस्था, इसे यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता रहा है, क्योंकि कलावा बांधना हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है कलावा। कलावा 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आमतौर पर ये सूत का बना हुआ होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। 3 धागे त्रि शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था।
2: जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तिनत्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार राजा बलि को माता लक्ष्मी ने जाकर के यही रक्षा सूत्र बांधा था। क्यों बांधा था? बामना अवतार के समय भगवान विष्णु जब आए, आकर के 3 पग में पूरी पृथ्वी को, लोगों 3 लोग को भगवान ने दान में ले लिया। नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके माता लक्ष्मी ने वही रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा था। और उसी दिन ब्राह्मणों के उपाकर्म श्रावणी का दिन था, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्राप्त थी, इसलिए हमारे यहाँ माताएं बहनें भी भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षा बंधन के नाम से त्योहार प्रचलित हुआ।
1: सनातनी परंपराओं में मंगल कार्यों की शुरुआत में संकल्प के लिए हो या देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ज्योतिष की जानकार ये दावा करते हैं कि कलावा बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र शरीर के कई हिस्सों में आप बांध सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां बांधते हैं मौली।
2: वैवाहिक समारोह में जो मंडपा छादन होता है तो उस मंडप में भी हम लोग नारा बांधते हैं, और उसमें कुछ विषय सामग्रियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि लोहे के छल्ला है, हल्दी की गांठ है इत्यादि। पीढ़े पर भी बांधते हैं, चौकी पर भी बांधते हैं, और जो वर और कन्या होती हैं, वर और कन्या के दाहिने हाथ में बांधा जाता है उसमें यह नारा रक्षा सूत्र।
1: मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधने की परंपरा है। बांधने के कई लाभ भी बताए गए हैं, और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह की कलावा बांधने का महत्व भी ज्योतिष बताते हैं। माना जाता है कि इसका न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि कलाई पर सजी ये डोर आपकी सेहत से भी बंधी हुई होती है। कलावा धारण करने के लाभ क्या है?
2: कलावा धारण करने से हमारे हाथ के पास यहाँ देखेंगे कि वहाँ तीन नाड़ी होती है, नाड़ी तीन प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। यहाँ बांधे रहने से यहाँ से धड़कन भी हाथ के पास जो है, धड़कन भी नापने के लिए यहीं से हम लोग देखा, डॉक्टर लोग देखा करते हैं। उसी जगह के उसी पॉइंट को नारा बांध करके उसको दबाए रहते हैं, जिसके कारण से वह अनियंत्रित न होने पावे।
1: कलावा कफ वात पित्त को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मन्नतों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले की रक्षा भी करती है। हर तरह के कलावा के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कुछ दिनों के बाद जब कलावा थोड़ा बदरंग और ढीला हो जाता है तो आप इसे बिना सोचे समझे अपने हाथों से उतारने से पहले समझिए कि इसे बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ किसी भी जगह पर रख देना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है। इसलिए मौली या रक्षा सूत्र बांधने का भी नियम तय है। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व कलावा का है, उतना ही उसे उतारने और बदलने के नियम का भी है। क्या होंगे, किन सावधानियों पर आपको ध्यान देना होगा, आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
0: माना जाता है कि कलावा बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कहते हैं कि इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये माना जाता है कि कलावा बांधने से वात पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं, इसकी सावधानियां भी समझनी जरूरी है।

0: मन को शांति प्रदान करता है कलावा। इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाता है कलावा। कलावा से होती है आध्यात्मिक उन्नति। कलावा से आते हैं संस्कार और सन्मति। तो देखा आपने कितना कारगर है आपके जीवन से जुड़ा ये कलावा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जिसका पालन आज तक किया जा रहा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा या रक्षा सूत्र कल्याणकारी है। कलाई पर बांधा जाने वाला ये धागा हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और जीवन के मूल्यों से जुड़ा है।
1: सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, उसके बाद चढ़ा हुआ नारा, भगवान की पूजा में सम्मिलित नारा लेकर के ब्राह्मण के द्वारा या किसी पूज्य व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ में धारण किया जाता है। यजुर्वेद कहता है कि ये नारा धारण करने से देवता प्रत्यक्ष रूप से आ करके आपकी रक्षा करते हैं। वो परोक्ष और अपरोक्ष की विधि को अपना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अग्रगण्य रहते हैं। और इसी नारा प्रतीकात्मक रूप में हम लोग हाथ में बांध करके भगवान की उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं।
0: माना जाता है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधना चाहिए। पर्व त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संस्कृति यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधी जाती है। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। माना जाता है कि पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से जुड़ी हर वस्तु का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। कलावा के उपयोग के साथ भी जुड़े हैं नियम और सावधानियाँ। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मन्नतों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। लाल और पीला रंग मिलकर बहुत शुभ फल देते हैं। लाल रंग शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि पीला रंग धन और सौभाग्य से जुड़ा होता है। सफेद रंग का कलावा पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जीवन में सुरक्षा और समृद्धि दोनों लेकर आता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावा पतला होना चाहिए। एक बार बांधा हुआ कलावा एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अलावा काले और हरे रंग का भी कलावा लोग बांधते हैं। कलावा देखने में साधारण सा धागा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। अगर आप इसे सही तरीके से पहनते हैं तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। लेकिन अगर इसमें उपयोग में लापरवाही कर दी जाए तो ये जीवन में दिक्कतें बढ़ा भी सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। कहते हैं अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांध कर किए गए संकल्प का उल्लंघन कभी ना करें। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलावे को कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: देखिए, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा बांधने से ग्रहों की कृपा भी पाई जा सकती है। मौली बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से आपकी रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मौली या फिर रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी बताए गए हैं। कौन कौन से अलग अलग कलावे आप धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

0: मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। माना जाता है कि कलावा धारण करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। जानकारों का मानना है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौली बांधने के लाभ भी अलग अलग हैं। कहते हैं इसे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट बताते हैं कि कलाई के हिस्सों में कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। कलावे के बंधे रहने से इन बिंदुओं पर दबाव बना रहता है, जो दिल, दिमाग और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। तो देखा आपने, कलावा चिकित्सीय गुणों से भी भरपूर है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपके मन में शांति और पवित्रता का भी संचार करता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप अलग अलग कलावा धारण कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आपके जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान किस तरह कर सकता है कलावा। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें। इसे बृहस्पतिवार सुबह बांधें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करें। शुक्रवार सुबह इसे धारण करें।
1: मांगलिक द्रव्य के रूप में कलावा, रक्षा सूत्र, वस्त्र के निमित्त देवता को अर्पण किया जाता है। ध्यान को एकाग्रता की ओर अग्रसर करने के लिए यह सारी पद्धतियां बनी हुई हैं। जब हमारा ध्यान एकाग्र रहेगा तो हम व्यापार करें या युद्ध करें या पढ़ाई करें या सेवा करें, वह कार्य सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है।
0: रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधना अच्छा होगा। इसे शनिवार की शाम को बांधें। इसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो अच्छा होगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पूर्व माँ काली को अर्पित करें। इसे किसी अन्य रंग के धागे के साथ ना बांधें। हर प्रकार से रक्षा के लिए लाल, पीले, सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पहले भगवान को अर्पित कर दें। तो आप भी चमत्कारी कहे जा रहे इस कलावे को धारण करें, जिससे आपके जीवन के संकटों का नाश हो सके और जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है, बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है, और इसी बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

0: मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही है। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानन भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से, इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानन की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जापान में इन दिनों एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सैकड़ों लोग एक साथ जुटे हैं, हाथों में मोटी मोटी रस्सियां हैं और इन रस्सियों के सहारे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी भरकम किले को खींच रहे हैं। दरअसल यहां ऐतिहासिक किले को उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाने का काम जारी है और इसके लिए मशीनों के

0: साथ साथ इंसानी ताकत का भी सहारा लिया जा रहा है।
1: ये तस्वीरें जापान के हिरोसाकी शहर की हैं, जहां इतिहास को वापस उसकी जगह पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ जुटे, हाथों में रस्सियां, कदमों में तालमेल और पूरी ताकत के साथ बुर्ज को खींचते लोग नजर आए। सबसे खास बात ये रही कि बुर्ज को खींचने के लिए लोगों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग चुने गए। चुने गए स्वयंसेवकों ने करीब 400 टन वजनी इस बुर्ज को रस्सियों की मदद से 3 मीटर से ज्यादा ऊपर उठाया। दरअसल ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं, बल्कि कई महीनों से चल रहा बड़ा संरक्षण अभियान है। किले की दीवारों के ऊपर मौजूद इस बुर्ज को करीब 70 मीटर दूर उसकी मूल जगह पर वापस ले जाया जा रहा है। इस पूरे मिशन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये बुर्ज मूल रूप से 1611 में बनाया गया था, लेकिन साल 2015 में आए भूकंप ने किले की दीवार को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दीवार की मरम्मत के लिए बुर्ज को उसकी जगह से हटाना पड़ा। करीब एक दशक बाद अब इस ऐतिहासिक बुर्ज की घर वापसी हो रही है। खास बात यह है कि इस काम में मशीनों के साथ साथ आम लोगों की ताकत को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इंसानों के जरिए किए जाने वाले हिस्से का काम खत्म हो गया और अब बाकी प्रक्रिया मशीनों की मदद से पूरी हो रही है। 400 टन के बुर्ज को रस्सियों से खींचते सैकड़ों लोग, तस्वीरें भले ही अनोखी हों, लेकिन संदेश बेहद खास है। जब बात अपनी विरासत को बचाने की हो, तो लोगों का साथ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आप सभी को रक्षाबंधन की सबसे पहले तो जीएनटी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से देशभर में मनाया जा रहा है। देशभर में राखी की रौनक है, बाजार गुलजार हैं, मिठाई की दुकानों पर भीड़ है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई समेत तमाम जगहों से आज सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस त्योहार के उल्लास को बयां करती ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। देश की सरहद पर भी बहनों की राखी और ढेर सारा प्यार पहुंचा है। किसी ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो किसी ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई। इसी दौरान बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित की गई। तो जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देशभर से आई राखी के तमाम रंग समेट कर दिखा रहे हैं।

करम सूत्र बध्नाति हृदयम तु स्नेह, यानी सूत्र कलाई या हाथ को बांधता है, किंतु स्नेह हृदय को बांधता है। स्नेह की डोर से हृदय को बांधने वाली तस्वीरें आज दिन भर देश के कोने कोने से आई और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, आज देश में दिन भर राखी के रंग बिखरे रहे। शहर शहर, घर घर बहनों ने भाई की कलाई राखी से सजाई। तो वही भारत माँ की रक्षा करने वाले सीमा पर तैनात सपूतों की कलाई पर भी रेशमी डोर जगमगाई। इसी बीच रंग बिरंगे धागों संग अगाध आस्था के भावों को पिरोकर आराध्य के दर पर रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला भी खूब चला। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां उज्जैन के राजा अधिराज महाकालेश्वर के दरबार में राखी की रौनक खूब बिखरी। रक्षाबंधन पर महाकाल की विशेष पूजा हुई, भगवान को भक्तों ने राखी अर्पित की। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू करने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान यहां बाबा महाकाल को 2 फीट की ये शानदार राखी बांधी गई। इस राखी को मंदिर के पुजारी के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया था। राखी अर्पित करने के बाद महाकालेश्वर भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। ये विशेष लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से तैयार किए गए थे। भोग के बाद लड्डुओं का प्रसाद भक्तों के बीच बांटा गया।

राखी की ऐसी ही सुंदर तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई, जहां भगवान खजराना गणेश को 40 बाय 40 इंच की विशालकाय और भव्य सनातन राखी अर्पित की गई।

पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजाना गणेश के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया। इस राखी को 10-15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आई।

राखी की रौनक काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खूब नजर आई। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के दौरान विशेष रक्षा सूत्र अर्पित किया गया। देवादिदेव महादेव को राखी बांधकर संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। काशी जैसी ही रौनक रामलला की अयोध्या में भी दिखी। अयोध्या में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कलाई पर सजाने के लिए उनकी बड़ी बहन शांता की राखी पहुंची।

यह राखी एक पौराणिक संबंध का प्रतीक है। देवी शांता राजा दशरथ की पुत्री और ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। पौराणिक मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि की पुत्रेष्टि यज्ञ से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी संबंध को निभाते हुए बहन शांता की ओर से श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हर साल भव्य शोभा यात्रा के जरिए ये राखियाँ भेजी जाती हैं।

0: राखी की रौनक के बीच ही सावन पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में पवित्र डुबकी लगाने अयोध्या पहुँचे। उधर कान्हा की ब्रज भूमि में भी राखी की धूम रही। रक्षाबंधन पर्व पर भगवान बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने लाडले कान्हा को राखी बांधने के लिए बहनें आतुर दिखी। मंदिर के भीतर और बाहर लगी लंबी कतारों में हाथों में प्रसाद और राखियां लिए भक्त सुबह से ही खड़े नजर आए। पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल की जयकार से गूंजता रहा। ये तस्वीर एमपी के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर बालाजी धाम से आई है, जहां राखी के दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। हमारे देश में गुरु, मार्गदर्शक और साधु संतों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। यही वजह है कि इस विशेष अवसर पर मठों, आश्रमों और मंदिरों में भक्त हाथों में राखी थामे उमड़ पड़ते हैं। राखी के मौके पर बागेश्वर धाम में भी भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इस मौके पर कई श्रद्धालु इंग्लैंड, कनाडा और यूएई से भी बाबा बागेश्वर को राखी बांधने पहुँचे थे। दोपहर तक आलम ये हो गया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का हाथ राखियों से इस कदर लग गया कि उनकी कलाई और बाह पर राखी बांधने की जगह ही नहीं बची। लेकिन वे भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए सबका रक्षा सूत्र स्वीकार करते रहे।
1: भाई बहन का प्यारा त्योहार है, जहां रोली है, चंदन है, भाई बहन के प्रेम में सबका अभिनंदन है। इस पावन रक्षाबंधन के उत्सव पर हम संपूर्ण भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज बागेश्वर धाम पुण्य भूमि पर हमारी हजारों बहनें, जिनके कोई भाई नहीं, किसी के भाई हैं तो बुलाते नहीं, वो सभी बहनें हर रक्षाबंधन को राखी बांधने आ जाती हैं। उसी कारण से यह रक्षाबंधन के उत्सव पर बहनों के प्रेम का प्रतीक धागा, उत्साह का प्रतीक धागा, जिसमें बचपन की यादें छिपी हैं, प्रेम छिपा है, केवल ये राखी नहीं है, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था। हमने उन्हें वचन दिया, इस देश में बेटियों के ऊपर उंगली उठाने वालों के खिलाफ पुरजोर तरीके से हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम पूरे भारत के भाइयों से प्रार्थना कर रहे, अपनी बहन को राखी बांधने के बदले आप कुछ रुपया, दक्षिणा, पैसा, गिफ्ट दें या ना दें, उन्हें वचन जरूर दें कि इस देश में बेटियों का कोई अपमान नहीं कर पाएगा।
0: हजारों आस्थावानों ने मंगल कामना के साथ बाबा बागेश्वर को रक्षा सूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कई भक्त बेहद भावुक नजर आए।
1: पल को अपने मुख से कह पाना बहुत कठिन है। ऐसी बहन भी आज एक आई जिन्होंने 22 साल से राखी नहीं बांधी, उनके भाई बुलाते नहीं, 22 साल हो गए। आज 22 वर्ष बाद उन्होंने राखी बांधी तो वो रो पड़ी, तो उस भावुक पल को देखकर हमें ये सौभाग्य मिला तो हमारी भी आंखें डबडबा गईं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आज के दिन भगवान ऐसी कृपा करें किसी भी भाई की कलाई सूनी ना रहे।
0: राखी की ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश से ही आई है। एमपी के नीमच में कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि मिनिएचर वाले इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया, जिस पर उकेरा गया मंदसौर में ही मौजूद प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी ज्योतिर्लिंगों के बीच एमपी की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई दी। इस खास राखी में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्यार ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रति आस्था और कलाकार की उत्कृष्ट कारीगरी भी एक साथ देखने को मिली। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी बनाई। इसे को फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनाई गई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। इस महाराखी में देशभक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश निहित है। त्योहार की छटा देश के सुदूर कोनों तक किस तरह छाई रही, उसकी वानगी झारखंड के जंगलों से आई ये तस्वीर बयान करती है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टूडू और उनकी टीम ने जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आई। जमुना टूडू चकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई, इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टूडू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने की शपथ लेती है।
2: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज, जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधे।
0: रक्षाबंधन पर्व की रौनक प्रधानमंत्री आवास पर भी नजर आई। भाई बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी भी बच्चों के साथ घुल मिलकर राखी का त्योहार मनाते नजर आए। पीएम मोदी ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी।
3: तो हमारे देश में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। कई पौराणिक कहानियों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसी ही कहानियां जिनका सिरा हमारी राखी की डोर से बंधा है, ऐसी ही एक कहानी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की।

0: देखो तो बस एक डोर है, मामूली सा धागा है, रेशम का एक तार है, लेकिन इसी तार से बुना है, बंधा है, जुड़ा है वो रिश्ता जिसमें संसार भर का सार समाया है। हर दोस्ती से गहरी दोस्ती, हर वादे से पक्का वादा और हर हाल में साथ निभाने का इरादा, अंत तक, वहां तक जहां माँ बाप का साथ भी शायद एक रोज छूट जाएगा, लेकिन भैया या दीदी कहते हो प्यार से जिसे, ये साथी तुम्हें तब भी साथ खड़ा नजर आएगा। भाई बहन की इसी दोस्ती, साथ और भाव को दिल से सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा दिन है रक्षाबंधन, जिसे हमारे भारत में अनादिकाल से मनाया जाता रहा है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब एक रक्षा सूत्र ने रिश्तों की लाज रखी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं हमारे यहाँ। इनमें राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा को खास तौर पर सुनाया और बताया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 बग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपने 2 कदमों में पूरी पृथ्वी और फिर आकाश को नाप लिया। अब 3रा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने कर दिया। राजा बलि की दानशीलता और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में रहकर उसकी रक्षा करें। भगवान ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने लगे। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी को चिंता हुई। देवी लक्ष्मी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे नारायण को वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुँची। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि उनका कोई भाई नहीं है और वे उन्हें रक्षा सूत्र बांध कर अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए। देवी लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के बाद देवी लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप राजा बलि से भगवान विष्णु को उनके दिए वरदान से मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय राजा बलि से जुड़े इस मंत्र का जप करने की परंपरा है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा मनु बदनामि रक्षे मा चल मा चलः। यानी जिस तरह शक्तिशाली दैत्य राज बलि को रक्षा सूत्र से बांधा गया था, उसी तरह ये रक्षा सूत्र भी सुरक्षा और शुभता का प्रतीक बने। आज भी बहने प्यारे भाई की कलाई पर ये धागा बांधते हुए इस मंत्र का जाप करती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, राखी का दिन है और सारे भाई रंग बिरंगे धागों से सजी कलाई को देखकर इटला रहे हैं, पर इनके बीच आखिर उन भाइयों को कैसे भूला जा सकता था जो हर वचन से ऊपर देश की रक्षा का वचन सीमाओं पर निभा रहे हैं। तभी तो सीमावर्ती शहरों में बहनें आज जा पहुंची इन भाइयों के पास और हमारे जाबाजों की कलाई पर क्या शान से सजी देश की बहनों की राखी। लेकिन इसी बीच भुलाया उस भाई को भी नहीं गया जो भले ही आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन दिलों में उसकी याद राखी की डोर जितनी मजबूत है।
0: राखी की ये तस्वीर रणबांकुरों की धरती और शूरवीरों के आंगन राजस्थान से आई। फतेहपुर शेखावाटी से आई राखी की इस तस्वीर को देखकर हर आंख नम हो गई, जहां एक बहन ने अपने शहीद भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधी। ये प्रतिमा भारत के वीर सपूत शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की है। धर्मवीर सिंह शेखावत कश्मीर के लाल चौक में जुलाई 2005 में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। इस घटना को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी बहन उषा कंवर हर राखी पर गुजरात से भाई की प्रतिमा को राखी बांधने आती है। अब की बार भी वे आई तो पहले भाई की प्रतिमा के माथे पर गर्व से तिलक लगाया, फिर कलाई पर राखी बांधी। दिल भर आया तो भाई की प्रतिमा से लिपट गए, फिर नन्हे बेटे को उसके जाबाज मामा का आशीर्वाद दिलवाया। कि नजारा देखकर हर कोई भावुक हो गया। जम्मू कश्मीर के सांबा से भी रक्षाबंधन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच स्कूली बच्चे पहुंचे, उनके हाथों में राखियां थी और दिल में जवानों के लिए सम्मान। बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। घर परिवार से दूर सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए ये पल बेहद खास रहा। राखी बंधवाने के बाद जवानों ने भी बच्चों को गिफ्ट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। यानी सरहद पर आज सिर्फ राखी नहीं बंधी, बल्कि जवानों और बच्चों के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता भी और मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सरहद के रखवालों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान जताया। जवानों ने भी बच्चों को उपहार देकर इस मुलाकात को यादगार बनाया। देश की रक्षा में घर से दूर तैनात जवानों के लिए ये पल अपनों के बीच होने जैसा एहसास लेकर आया।

ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर के बनिहाल से भी आई, जहां छोटी बहनों ने देश के वीर जवान भाइयों को राखी बांधी। घर से दूर तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार और खास हो गया।

वहीं श्रीनगर में सहस्त्र सीमा बल के जवानों के लिए रक्षाबंधन के दिन खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जवान और आम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने जवानों को राखी बांधी, उनका मुंह मीठा करवाया और सारे देश की कृतज्ञता के भाव के साथ देश के रक्षकों को रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामनाएं दी।

देश का शत्रु जब सामने खड़ा हो तो ये रणबांकुरे युद्ध की बाजी पलट देते हैं, जैसे कभी एक रक्षा सूत्र ने देवासुर संग्राम की बाजी पलटी थी। राखी की तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको राखी त्योहार की कहानी भी सुना रहे हैं और रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी देवताओं के राजा इंद्र के साथ जुड़ती है। ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ा था। असुरों का पलड़ा कुछ इस कदर भारी था कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा था।

0: रक्षाबंधन पर्व कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध रक्षाबंधन से जुड़ता है। इस कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र बांधा था। ये कथा बताती है कि जब देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब दानवों को विजय की ओर अग्रसर देख देवराज इंद्र बेहद परेशान हो गए थे। दिन रात उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया।
1: दूसरा एक कथा ये कहलाती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इंद्र थोड़ा भय में थे, तो इंद्र को अभय वर देते हुए इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था ताकि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करें और उनकी ख्याति और उनका छत्र सदैव के लिए सुरक्षित रहे।
0: इस तरह इंद्राणी ने असुरों पर विजय पाने में देवराज इंद्र की सहायता की। मान्यता है कि विजय के आशीर्वाद से सिक्त उस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और कालांतर में यही रक्षा सूत्र सनातन परंपरा में रक्षा बंधन त्योहार के उद्गम का निमित्त बना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो 12 महीने में एक बार आने वाली राखी सनातन धर्म का बेहद खास त्यौहार है। आम और खास सभी के लिए दिन मायने रखता है। आम लोगों की तस्वीरों के बीच ही आज तमाम नेताओं और अभिनेताओं के राखी सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी खूब नजर आईं।

रक्षाबंधन का रंग नेताओं और अभिनेताओं पर भी खूब दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास अंदाज में रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारियों ने रक्षा मंत्री को राखी बांधी। राखी के दिन कई छात्र और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी रक्षा मंत्री को राखी बांधने उनके दफ्तर पहुंचे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर निराश्रित बच्चियों ने सीएम योगी को तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। सीएम योगी ने बच्चियों के साथ सेल्फी ली और उन्हें खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बच्चों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने लिखा कि स्नेह के धागों से बंधा भाई बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और मजबूत हो। वहीं दिल्ली से दूर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राखी मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिवार की बहनों ने पहुंचकर चिराग की कलाई पर राखी बांधी। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत और प्रीति जिंटा ने भाइयों को राखी बांधते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, संजय दत्त और ऋतिक रोशन ने भी राखी से जुड़ी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की धूम। द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थल सेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखिए, मौली या कलावा ये सिर्फ साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये देवों द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा रही है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कि कलावा क्यों बांधा जाता है? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कलावा से जुड़ी ऐसी ही खास बातें।
1: सनातन संस्कृति का संस्कार है कलावा, त्रिदेवों का वरदान है कलावा, त्रि शक्तियों का दिया हुआ सुरक्षा कवच है कलावा। बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला है कलावा। आपने देखा भी होगा, कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो या धार्मिक अनुष्ठान, आपने कलाई पर कलावा जरूर बांधा होगा। जाता है कि पूजा पाठ या अनुष्ठान से अभिमंत्रित ये ऐसी ढाल है जो सदैव आप पर ईश्वर की कृपा बनाए रखती है।
2: यह जो कलावा मौली रक्षा सूत्र, एक ही चीज को कई नामों से जाना जाता है। भगवान के पूजा पद्धति में सर्वप्रथम यह जो 16 उपचार हैं, खोडशोपचार, उसी के अंतर्गत भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए नारे का प्रयोग किया जाता है। यह नारा जो देवता को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद स्वरूप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर उसको 3 राउंड घुमा करके ब्रह्म ग्रंथि से युक्त गांठ उसमें दे करके रखते हैं।
1: रक्षा सूत्र कहिए या मौली, जिसके साथ जुड़ी है हमारी सनातनी आस्था, इसे यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता रहा है, क्योंकि कलावा बांधना हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है कलावा। कलावा 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आमतौर पर ये सूत का बना हुआ होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। 3 धागे त्रि शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था।
2: जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तिनत्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार राजा बलि को माता लक्ष्मी ने जाकर के यही रक्षा सूत्र बांधा था। क्यों बांधा था? बामना अवतार के समय भगवान विष्णु जब आए, आकर के 3 पग में पूरी पृथ्वी को, लोगों 3 लोग को भगवान ने दान में ले लिया। नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके माता लक्ष्मी ने वही रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा था। और उसी दिन ब्राह्मणों के उपाक्रम श्रावणी का दिन था, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्राप्त थी, इसलिए हमारे यहाँ माताएं बहने भी भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षा बंधन के नाम से त्योहार प्रचलित हुआ।
1: सनातनी परंपराओं में मंगल कार्यों की शुरुआत में संकल्प के लिए हो या देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ज्योतिष की जानकार ये दावा करते हैं कि कलावा बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र शरीर के कई हिस्सों में आप बांध सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां बांधते हैं मौली।
2: वैवाहिक समारोह में जो मंडपा छादन होता है तो उस मंडप में भी हम लोग नारा बांधते हैं, और उसमें कुछ विषय सामग्रियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि लोहे के छल्ला है, हल्दी की गांठ है इत्यादि। पीढ़े पर भी बांधते हैं, चौकी पर भी बांधते हैं, और जो वर और कन्या होती हैं, वर और कन्या के दाहिने हाथ में बांधा जाता है उसमें यह नारा रक्षा सूत्र।
1: मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधने की परंपरा है। बांधने के कई लाभ भी बताए गए हैं, और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह की कलावा बांधने का महत्व भी ज्योतिष बताते हैं। माना जाता है कि इसका न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि कलाई पर सजी ये डोर आपकी सेहत से भी बंधी हुई होती है। कलावा धारण करने के लाभ क्या है?
2: कलावा धारण करने से हमारे हाथ के पास यहाँ देखेंगे कि वहाँ तीन नाड़ी होती है, नाड़ी तीन प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। यहाँ बांधे रहने से यहाँ से धड़कन भी हाथ के पास जो है धड़कन भी नापने के लिए यहीं से हम लोग देखा, डॉक्टर लोग देखा करते हैं। उसी जगह के उसी पॉइंट को नारा बांध करके उसको दबाए रहते हैं, जिसके कारण से वह अनियंत्रित न होने पावे।
1: कलावा कफ वात पित्त को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मन्नतों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले की रक्षा भी करती है। हर तरह के कलावा के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कुछ दिनों के बाद जब कलावा थोड़ा बदरंग और ढीला हो जाता है तो आप इसे बिना सोचे समझे अपने हाथों से उतारने से पहले समझिए कि इसे बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ किसी भी जगह पर रख देना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है। इसलिए मौली या रक्षा सूत्र बांधने का भी नियम तय है। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व कलावा का है उतना ही उसे उतारने और बदलने के नियम का भी है। क्या होंगे, किन सावधानियों पर आपको ध्यान देना होगा, आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
0: माना जाता है कि कलावा बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कहते हैं कि इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये माना जाता है कि कलावा बांधने से वात पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं, इसकी सावधानियां भी समझनी जरूरी है।

0: मन को शांति प्रदान करता है कलावा। इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाता है कलावा। कलावा से होती है आध्यात्मिक उन्नति। कलावा से आते हैं संस्कार और सन्मति। तो देखा आपने कितना कारगर है आपके जीवन से जुड़ा ये कलावा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जिसका पालन आज तक किया जा रहा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा या रक्षा सूत्र कल्याणकारी है। कलाई पर बांधा जाने वाला ये धागा हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और जीवन के मूल्यों से जुड़ा है।
1: सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, उसके बाद चढ़ा हुआ नारा, भगवान की पूजा में सम्मिलित नारा लेकर के ब्राह्मण के द्वारा या किसी पूज्य व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ में धारण किया जाता है। यजुर्वेद कहता है कि ये नारा पंच धारण करने से देवता प्रत्यक्ष रूप से आ करके आपकी रक्षा करते हैं। वो परोक्ष और अपरोक्ष की विधि को अपना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अग्रगण्य रहते हैं। और इसी नारा प्रतीकात्मक रूप में हम लोग हाथ में बांध करके भगवान के उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं।
0: माना जाता है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधना चाहिए। पर्व त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संस्कृति यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधी जाती है। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। माना जाता है कि पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से जुड़ी हर वस्तु का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। कलावा के उपयोग के साथ भी जुड़े हैं नियम और सावधानियां। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मन्नतों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। लाल और पीला रंग मिलकर बहुत शुभ फल देते हैं। लाल रंग शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि पीला रंग धन और सौभाग्य से जुड़ा होता है। सफेद रंग का कलावा पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जीवन में सुरक्षा और समृद्धि दोनों लेकर आता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावा पतला होना चाहिए। एक बार बांधा हुआ कलावा एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अलावा काले और हरे रंग का भी कलावा लोग बांधते हैं। कलावा देखने में साधारण सा धागा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। अगर आप इसे सही तरीके से पहनते हैं तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। लेकिन अगर इसमें उपयोग में लापरवाही कर दी जाए तो ये जीवन में दिक्कतें बढ़ा भी सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। कहते हैं अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांध कर किए गए संकल्प का उल्लंघन कभी ना करें। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलावे को कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: देखिए, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा बांधने से ग्रहों की कृपा भी पाई जा सकती है। मौली बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से आपकी रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मौली या फिर रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी बताए गए हैं। कौन कौन से अलग अलग कलावे आप धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

0: मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। माना जाता है कि कलावा धारण करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। जानकारों का मानना है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौली बांधने के लाभ भी अलग अलग हैं। कहते हैं इसे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट बताते हैं कि कलाई के हिस्सों में कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। कलावे के बंधे रहने से इन बिंदुओं पर दबाव बना रहता है, जो दिल, दिमाग और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। तो देखा आपने, कलावा चिकित्सीय गुणों से भी भरपूर है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपके मन में शांति और पवित्रता का भी संचार करता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप अलग अलग कलावा धारण कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आपके जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान किस तरह कर सकता है कलावा। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें। इसे बृहस्पतिवार सुबह बांधें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करें। शुक्रवार सुबह इसे धारण करें।
1: मांगलिक द्रव्य के रूप में कलावा, रक्षा सूत्र, वस्त्र के निमित्त देवता को अर्पण किया जाता है। ध्यान को एकाग्रता की ओर अग्रसर करने के लिए यह सारी पद्धतियां बनी हुई हैं। जब हमारा ध्यान एकाग्र रहेगा तो हम व्यापार करें या युद्ध करें या पढ़ाई करें या सेवा करें, वह कार्य सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है।
0: रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधना अच्छा होगा। इसे शनिवार की शाम को बांधें। इसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो अच्छा होगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पूर्व माँ काली को अर्पित करें। इसे किसी अन्य रंग के धागे के साथ ना बांधें। हर प्रकार से रक्षा के लिए लाल, पीले, सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पहले भगवान को अर्पित कर दें। तो आप भी चमत्कारी कहे जा रहे इस कलावे को धारण करें, जिससे आपके जीवन के संकटों का नाश हो सके और जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है, बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है, और इसी बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने

0: महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहां गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। यह मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानन भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक रक्षाबंधन की

धूम, द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों को बांधी राखी, पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली में थलसेना प्रमुख ने मनाया रक्षाबंधन, स्कूल की बच्चियों ने जनरल धीरज सेठ को बांधी राखियां, दिव्यांग छात्राओं ने खिलाई मिठाई। शिरडी के साई दरबार में रक्षाबंधन की रौनक, साई बाबा को अर्पित की गई 8 फीट चौड़ी राखी, 40 फीट बताई जा रही राखी की लंबाई। सेना की मारक क्षमता में होगा इजाफा, अमेरिका से खरीदी जाएगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, पलक झपकते तबाह होंगे दुश्मन के टैंक। नेपाल में मिशन जिंदगी तेज, भारत की ओर से भेजी गई मदद की तीसरी खेप, यूरोपीय संघ डोनेट करेगा 2 मिलियन यूरो।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आप सभी को रक्षाबंधन की सबसे पहले तो जीएनटी की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से देशभर में मनाया जा रहा है। देशभर में राखी की रौनक है, बाजार गुलजार हैं, मिठाई की दुकानों पर भीड़ है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई समेत तमाम जगहों से आज सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस त्योहार के उल्लास को बयां करती ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। देश की सरहद पर भी बहनों की राखी और ढेर सारा प्यार पहुंचा है। किसी ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो किसी ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। यही तो रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक छोटा सा धागा लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल मंदिर में तड़के करीब 3 बजे भस्म आरती हुई। इसी दौरान बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित की गई। तो जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देशभर से आई राखी के तमाम रंग समेट कर दिखा रहे हैं।

करम सूत्र बध्नाति हृदयम तु स्नेह, यानी सूत्र कलाई या हाथ को बांधता है किंतु स्नेह हृदय को बांधता है। स्नेह की डोर से हृदय को बांधने वाली तस्वीरें आज दिन भर देश के कोने कोने से आई और ये सिलसिला अब भी जारी है। क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, आज देश में दिन भर राखी के रंग बिखरे रहे। शहर शहर, घर घर, बहनों ने भाई की कलाई राखी से सजाई। तो वही भारत माँ की रक्षा करने वाले सीमा पर तैनात सपूतों की कलाई पर भी रेशमी डोर जगमगाई। इसी बीच रंग बिरंगे धागों संग अगाध आस्था के भावों को पिरोकर आराध्य के दर पर रक्षा सूत्र अर्पित करने का सिलसिला भी खूब चला। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां उज्जैन के राजा अधिराज महाकालेश्वर के दरबार में राखी की रौनक खूब बिखरी। रक्षाबंधन पर महाकाल की विशेष पूजा हुई, भगवान को भक्तों ने राखी अर्पित की। महाकाल की नगरी में बाबा को राखी अर्पित करने के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू करने की परंपरा है। भस्म आरती के दौरान यहां बाबा महाकाल को 2 फीट की ये शानदार राखी बांधी गई। इस राखी को मंदिर के पुजारी के परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किया था। राखी अर्पित करने के बाद महाकालेश्वर भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। ये विशेष लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से तैयार किए गए थे। भोग के बाद लड्डुओं का प्रसाद भक्तों के बीच बांटा गया।

राखी की ऐसी ही सुंदर तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई, जहां भगवान खजराना गणेश को 40x40 इंच की विशालकाय और भव्य सनातन राखी अर्पित की गई।

पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजाना गणेश के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया। इस राखी को 10-15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आई।

राखी की रौनक काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खूब नजर आई। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के दौरान विशेष रक्षा सूत्र अर्पित किया गया। देवादिदेव महादेव को राखी बांधकर संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। काशी जैसी ही रौनक रामलला की अयोध्या में भी दिखी। अयोध्या में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कलाई पर सजाने के लिए उनकी बड़ी बहन शांता की राखी पहुंची।

यह राखी एक पौराणिक संबंध का प्रतीक है। देवी शांता राजा दशरथ की पुत्री और ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। पौराणिक मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि की पुत्रेष्टि यज्ञ से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी संबंध को निभाते हुए बहन शांता की ओर से श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हर साल भव्य शोभा यात्रा के जरिए ये राखियाँ भेजी जाती हैं।

0: राखी की रौनक के बीच ही सावन पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में पवित्र डुबकी लगाने अयोध्या पहुँचे। उधर कान्हा की ब्रज भूमि में भी राखी की धूम रही। रक्षाबंधन पर्व पर भगवान बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने लाडले कान्हा को राखी बांधने के लिए बहनें आतुर दिखी। मंदिर के भीतर और बाहर लगी लंबी कतारों में हाथों में प्रसाद और राखियां लिए भक्त सुबह से ही खड़े नजर आए। पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल की जयकार से गूंजता रहा। ये तस्वीर एमपी के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर बालाजी धाम से आई है, जहां राखी के दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। हमारे देश में गुरु, मार्गदर्शक और साधु संतों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। यही वजह है कि इस विशेष अवसर पर मठों, आश्रमों और मंदिरों में भक्त हाथों में राखी थामे उमड़ पड़ते हैं। राखी के मौके पर बागेश्वर धाम में भी भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इस मौके पर कई श्रद्धालु इंग्लैंड, कनाडा और यूएई से भी बाबा बागेश्वर को राखी बांधने पहुंचे थे। दोपहर तक आलम ये हो गया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का हाथ राखियों से इस कदर लग गया कि उनकी कलाई और वहाँ पर राखी बांधने की जगह ही नहीं बची। लेकिन वे भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए सबका रक्षा सूत्र स्वीकार करते रहे।
1: भाई बहन का प्यारा त्योहार है, जहाँ रोली है, चंदन है, भाई बहन के प्रेम में सबका अभिनंदन है। इस पावन रक्षाबंधन के उत्सव पर हम संपूर्ण भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज बागेश्वर धाम पुण्य भूमि पर हमारी हजारों बहनें, जिनके कोई भाई नहीं, किसी के भाई हैं तो बुलाते नहीं, वो सभी बहनें हर रक्षाबंधन को राखी बांधने आ जाती हैं। उसी कारण से यह रक्षाबंधन के उत्सव पर बहनों के प्रेम का प्रतीक धागा, उत्साह का प्रतीक धागा, जिसमें बचपन की यादें छिपी हैं, प्रेम छिपा है, केवल ये राखी नहीं है, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था। हमने उन्हें वचन दिया, इस देश में बेटियों के ऊपर उंगली उठाने वालों के खिलाफ पुरजोर तरीके से हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम पूरे भारत के भाइयों से प्रार्थना कर रहे, अपनी बहन को राखी बांधने के बदले आप कुछ रुपया, दक्षिणा, पैसा, गिफ्ट दें या ना दें, उन्हें वचन जरूर दें कि इस देश में बेटियों का कोई अपमान नहीं कर पाएगा।
0: हजारों आस्थावानों ने मंगल कामना के साथ बाबा बागेश्वर को रक्षा सूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कई भक्त बेहद भावुक नजर आए।
1: पल को अपने मुख से कह पाना बहुत कठिन है। ऐसी बहन भी आज एक आई जिन्होंने 22 साल से राखी नहीं बांधी, उनके भाई बुलाते नहीं, 22 साल हो गए। आज 22 वर्ष बाद उन्होंने राखी बांधी तो वो रो पड़ी, तो उस भावुक पल को देखकर हमें ये सौभाग्य मिला तो हमारी भी आंखें डबडबा गईं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आज के दिन भगवान ऐसी कृपा करें किसी भी भाई की कलाई सूनी ना रहे।
0: राखी की ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश से ही आई है। एमपी के नीमच में कलाकार ने राखी बनाने में अपनी बारीक कला का दिव्य प्रदर्शन किया। कुचड़ोद गांव के चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस विशेष राखी में 12 अलग अलग रुद्राक्षों पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के सूक्ष्म चित्र उकेरे। विशेष बात यह है कि मिनिएचर वाले इन 12 रुद्राक्षों के बीच एक अलग रुद्राक्ष को केंद्र में रखा गया, जिस पर उकेरा गया मंदसौर में ही मौजूद प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी ज्योतिर्लिंगों के बीच एमपी की धार्मिक पहचान भी इस कलाकृति के केंद्र में दिखाई दी। इस खास राखी में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्यार ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रति आस्था और कलाकार की उत्कृष्ट कारीगरी भी एक साथ देखने को मिली। अब इस महाराखी को देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर 65 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी ये विशाल राखी बनाई। इस इको फ्रेंडली राखी को बांस, कागज और पत्तों से तैयार किया गया है। इस राखी को भारत की आजादी के 80वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राखी के बीच में भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनाई गई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है। इस महाराखी में देशभक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश निहित है। भाई बहन के इस त्योहार की छटा देश के सुदूर कोनों तक किस तरह छाई रही, उसकी वानगी झारखंड के जंगलों से आई ये तस्वीर बयान करती है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टूडू और उनकी टीम ने जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आई। जमुना टूडू चकुलिया के भालुक बिंदा जंगल की लंबे समय से रक्षा और सेवा करती आई, इसके चलते उन्हें लेडी टार्जन कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर टूडू समेत उनकी टीम पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने की शपथ लेती है।
2: राखी बांधे पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे। आज जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधे।
0: रक्षाबंधन पर्व की रौनक प्रधानमंत्री आवास पर भी नजर आई। भाई बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी भी बच्चों के साथ खुल मिलकर राखी का त्योहार मनाते नजर आए। पीएम मोदी ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी।
3: तो हमारे देश में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। कई पौराणिक कहानियों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसी ही कहानियां जिनका सिरा हमारी राखी की डोर से बंधा है, ऐसी ही एक कहानी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की।

0: देखो तो बस एक डोर है, मामूली सा धागा है, रेशम का एक तार है, लेकिन इसी तार से बुना है, बंधा है, जुड़ा है वो रिश्ता जिसमें संसार भर का सार समाया है। हर दोस्ती से गहरी दोस्ती, हर वादे से पक्का वादा और हर हाल में साथ निभाने का इरादा, अंत तक, वहां तक जहां माँ बाप का साथ भी शायद एक रोज छूट जाएगा, लेकिन भैया या दीदी कहते हो प्यार से जिसे, ये साथी तुम्हें तब भी साथ खड़ा नजर आएगा। भाई बहन की इसी दोस्ती, साथ और भाव को दिल से सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा दिन है रक्षाबंधन, जिसे हमारे भारत में अनादिकाल से मनाया जाता रहा है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब एक रक्षा सूत्र ने रिश्तों की लाज रखी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं हमारे यहाँ, इनमें राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा को खास तौर पर सुनाया और बताया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 बग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपने 2 कदमों में पूरी पृथ्वी और फिर आकाश को नाप लिया। अब 3रा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने कर दिया। राजा बलि की दानशीलता और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में रहकर उसकी रक्षा करें। भगवान ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने लगे। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी को चिंता हुई। देवी लक्ष्मी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे नारायण को वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुँची। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि उनका कोई भाई नहीं है और वे उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए। देवी लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के बाद देवी लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप राजा बलि से भगवान विष्णु को उनके दिए वरदान से मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रति स्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय राजा बलि से जुड़े इस मंत्र का जप करने की परंपरा है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलह तेन त्वा मनु बदनामी रक्षे माचल माचलह। यानी जिस तरह शक्तिशाली दैत्य राज बलि को रक्षा सूत्र से बांधा गया था, उसी तरह ये रक्षा सूत्र भी सुरक्षा और शुभता का प्रतीक बने। आज भी बहनें प्यारे भाई की कलाई पर ये धागा बांधते हुए इस मंत्र का जाप करती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, राखी का दिन है और सारे भाई रंग बिरंगे धागों से सजी कलाई को देखकर इटला रहे हैं, पर इनके बीच आखिर उन भाइयों को कैसे भूला जा सकता था जो हर वचन से ऊपर देश की रक्षा का वचन सीमाओं पर निभा रहे हैं। तभी तो सीमावर्ती शहरों में बहनें आज जा पहुंची इन भाइयों के पास और हमारे जाबाजों की कलाई पर क्या शान से सजी देश की बहनों की राखी। लेकिन इसी बीच भुलाया उस भाई को भी नहीं गया जो भले ही आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन दिलों में उसकी याद राखी की डोर जितनी मजबूत है।
3: राखी की ये तस्वीर रणबांकुरों की धरती और शूरवीरों के आंगन राजस्थान से आई। फतेहपुर शेखावाटी से आई राखी की इस तस्वीर को देखकर हर आंख नम हो गई, जहां एक बहन ने अपने शहीद भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधी। ये प्रतिमा भारत के वीर सपूत शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की है। धर्मवीर सिंह शेखावत कश्मीर के लाल चौक में जुलाई 2005 में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। इस घटना को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी बहन उषा कंवर हर राखी पर गुजरात से भाई की प्रतिमा को राखी बांधने आती है। अब की बार भी वे आई तो पहले भाई की प्रतिमा के माथे पर गर्व से तिलक लगाया, फिर तलाई पर राखी बांधी। दिल भर आया तो भाई की प्रतिमा से लिपट गई, फिर नन्हे बेटे को उसके जाबाज मामा का आशीर्वाद दिलवाया। ये नजारा देखकर हर कोई भावुक हो गया। जम्मू कश्मीर के सांबा से भी रक्षाबंधन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच स्कूली बच्चे पहुंचे, उनके हाथों में राखियां थी और दिल में जवानों के लिए सम्मान। बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। घर परिवार से दूर सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे जवानों के लिए ये पल बेहद खास रहा। राखी बंधवाने के बाद जवानों ने भी बच्चों को गिफ्ट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। यानी सरहद पर आज सिर्फ राखी नहीं बंधी बल्कि जवानों और बच्चों के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता भी और मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रक्षाबंधन का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सरहद के रखवालों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान जताया। जवानों ने भी बच्चों को उपहार देकर इस मुलाकात को यादगार बनाया। देश की रक्षा में घर से दूर तैनात जवानों के लिए ये पल अपनों के बीच होने जैसा एहसास लेकर आया।

ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर के बनिहाल से भी आई, जहां छोटी बहनों ने देश के वीर जवान भाइयों को राखी बांधी। घर से दूर तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार और खास हो गया।

वहीं श्रीनगर में सहस्त्र सीमा बल के जवानों के लिए रक्षाबंधन के दिन खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जवान और आम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने जवानों को राखी बांधी, उनका मुंह मीठा करवाया और सारे देश की कृतज्ञता के भाव के साथ देश के रक्षकों को रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामनाएं दी।

देश का शत्रु जब सामने खड़ा हो तो ये रणबांकुरे युद्ध की बाजी पलट देते हैं, जैसे कभी एक रक्षा सूत्र ने देवासुर संग्राम की बाजी पलटी थी। राखी की तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको राखी त्योहार की कहानी भी सुना रहे हैं और रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी देवताओं के राजा इंद्र के साथ जुड़ती है। ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ा था। असुरों का पलड़ा कुछ इस कदर भारी था कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा था।

0: रक्षाबंधन पर्व कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध रक्षाबंधन से जुड़ता है। इस कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र बांधा था। ये कथा बताती है कि जब देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब दानवों को विजय की ओर अग्रसर देख देवराज इंद्र बेहद परेशान हो गए थे। दिन रात उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया।
1: दूसरा एक कथा ये कहलाती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इंद्र थोड़ा भय में थे, तो इंद्र को अभय वर देते हुए इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था ताकि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करें और उनकी ख्याति और उनका छत्र सदैव के लिए सुरक्षित रहे।
0: इस तरह इंद्राणी ने असुरों पर विजय पाने में देवराज इंद्र की सहायता की। मान्यता है कि विजय के आशीर्वाद से सिक्त उस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और कालांतर में यही रक्षा सूत्र सनातन परंपरा में रक्षा बंधन त्योहार के उद्गम का निमित्त बना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो 12 महीने में एक बार आने वाली राखी सनातन धर्म का बेहद खास त्यौहार है। आम और खास सभी के लिए दिन मायने रखता है। आम लोगों की तस्वीरों के बीच ही आज तमाम नेताओं और अभिनेताओं के राखी सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी खूब नजर आईं।

रक्षाबंधन का रंग नेताओं और अभिनेताओं पर भी खूब दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास अंदाज में रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारियों ने रक्षा मंत्री को राखी बांधी। राखी के दिन कई छात्र और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी रक्षा मंत्री को राखी बांधने उनके दफ्तर पहुंचे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर निराश्रित बच्चियों ने सीएम योगी को तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। सीएम योगी ने बच्चियों के साथ सेल्फी ली और उन्हें खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बच्चों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने लिखा कि स्नेह के धागों से बंधा भाई बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और मजबूत हो। वहीं दिल्ली से दूर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राखी मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिवार की बहनों ने पहुंचकर चिराग की कलाई पर राखी बांधी। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत और प्रीति जिंटा ने भाइयों को राखी बांधते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, संजय दत्त और ऋतिक रोशन ने भी राखी से जुड़ी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है जो हम